0: इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
0: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश

0: Your Saturday nights will never be the same.
1: The biggest hits back to back in the mix.
2: Get ready for the biggest mix show on the planet.
3: The Tailgate Block Party.
0: The Tailgate Block Party.
2: 6 hours nonstop. Nonstop.
3: The best DJs from around the world.
0: The Tailgate Block Party.
2: Saturday night.
0: 8 p.m. Eastern.
3: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
4: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हुए शामिल। केदारनाथ और बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा गहमा गहमी। अयोध्या में रामलला के साथ ही अब परकोटा कॉरिडोर में भी शुरू हुए दर्शन। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सभी 6 उपमंदिर। आज से शुरू हो रही उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की पवित्र यात्रा, इस बार 3 जगह हल्द्वानी, टनकपुर और धारचूला से होगी शुरुआत। देश में रेलवे की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में शानदार खबर, पहली बार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। राजस्थान के कोटा रेलवे रूट पर हुआ सफल स्पीड ट्रायल। सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने जा रही है फिल्म दादी की शादी। फिल्म से रिद्धमा कपूर का डेब्यू, मानीतू कपूर लीड रोल में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं भी होगी रिलीज। लगातार 6 हार के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स को मिली जीत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 रन से हराया। 19 ओवर के मैच में लक्ष्य नहीं हासिल कर सकी आरसीबी।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो।
8: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

साधु जी, अरे जरा जोर से तो बोलो, साधु जी कहो कैसे हो? बढ़िया, सब बने बने हैं? हाँ, तो रहना ही पड़ेगा बने बने, और हम लोग कर भी क्या सकते। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए सीता राम, सीता राम, सीता राम। रामायण में भी गोस्वामी जी लिख रहे, सबई नचावत राम गोसाई, बंधो कीट मर कट की नाई। सबको राम जी नचा रहे, हम लोग नच रहे, भगवान नचा रहे, तो बने बने रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते। पर धन्य है हनुमान जी की माया, गुरु की छत्र छाया, छत्तीसगढ़ महतारी की इस पावन भूमि की रज को स्पर्श करने का हमें बार बार सौभाग्य मिल जाता है। इस भूमि को हम प्रणाम करते हैं, इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। अरे भला छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम क्यों ना करें? ये राम जी का ननिहाल है। और हमने पहले ही दिन कहा था, इस नाते हम तुम्हारे भांचा लगे। हाँ, राम जी के नाते तुम्हारे भांचा लगे, पर धन्य है राम जी की महिमा। सुनो, धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रहीम कही काज। तुलसीदास जी ने पूछा, धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रहीम कही काज। तो रहीम दास जी बोले, या रजते मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। जिस

कल्या का तरन तारण हो गया, वो रज कौन है? राम जी के चरणों की चरण रज। अच्छा, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य क्यों है? अरे पागलो, जिन राम जी के दर्शन के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तप करते, जप करते, यज्ञ करते, दान करते, पुण्य करते, तब एक झलक मुश्किल से दिखाई पड़ती। धन्य है छत्तीसगढ़ वाले, अपने आप पर गौरव करना चाहिए कि वही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा छत्तीसगढ़ के जंगलों में बन बन डोले हैं। ये भगवान की माया है, है? राम बन पदगमन के रूप में बन बन डोले। यहीं पर आहा माता कौशल्या का भी स्थान है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और कल रात तो हम भैया चढ़ गए थे आपके छत्तीसगढ़ की हनुमान गढ़ी पर। कहाँ? चकचकवा हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। भैया क्या अद्भुत नजारा, आहा पूरा कट घोरा दिख रहा था। राम जी का बड़ा प्यारा दर्शन हुआ, वो हमने चरण के दर्शन किए जहां जल भरा है। बताओ उतनी ऊंचाई पर जल है, बताओ? हमारे यहां गांव में जमीन पे जल नहीं, प्रभु की माया देखो, यहां पर्वत पे जल है। कितनी अद्भुत माया है, इसी को तो भगवान की माया कहते। भगवान की माया सबको समझ में नहीं आ सकती है, भगवान की लीला सबकी समझ से परे है। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, कहो कहां लगी करो बड़ाई। भगवान की माया की कोई बड़ाई या नाम की बड़ाई कोई कर नहीं सकता। अच्छा, भगवान की माया को समझ कौन सकता? वही जाने जेह देह जनाई, जिसे भगवान जना दे वो जान सकता। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जाने कैसे? बुरा न मानना, हम लोग अभी भगवान को मानते हैं, जानते नहीं है। क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो। मानते हैं, जानते नहीं है। मानना अलग है, जानना अलग है। मान तो किसी को भी लो, पर जानो तो। पर भाई जैसे तुम बैठे हो, अब तुम्हारे बगल में जो बैठा है, अब वो बार बार पैर लगाए तो क्या कहोगे? ए किसको? पैर रख, दूर हो, दूर हो, दूर हो, अब नहीं रखना, अब नहीं रखना, दूर हो। इतने में कोई कान में कह दे मंत्री जी है। अच्छा भाई साहब, भाई साहब रख लो, कोई बात नहीं। हाँ भाई साहब, भाई साहब आ जाओ, भाई साहब, भाई साहब आ जाओ, आ जाओ। बताओ अध्यक्ष जी बैठे यहाँ के, हमारे श्री किरण देव जी भी बैठे हुए हैं, तो उनको हंसी आ गई कि हो सकता उनके साथ कभी ऐसा हुआ हो। तो बगल में कोई बैठा हो और वो पहचानता ना हो तो वो कहे दूर दूर, लेकिन पहचान हो जाए, आजा आजा आजा आजा हमारे महाराज महाराज। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में, बहुत पुरानी बात है, तब इतने फेमस नहीं थे, इतने टीवी पे नहीं आए थे, मोबाइल पे तो आ रहे थे, इतने टीवी पे नहीं आए। ट्रेन में जा रहे थे, सामान था, बालाजी थे, बैग था, अकेले थे, चेला था नहीं, बैग लिए ट्रेन पे चढ़े तो जो सीट नंबर था वो ऊपर का था, स्लीपर, तो नीचे एक सज्जन लेटे थे, अकेले थे और लीड लगाए मोबाइल चला रहे थे। तो हमने उन्हें इशारा किया, हमका बुरा ना मानो, तो आप ऊपर हो जाओ, हमें ये नीचे वाली सीट दे दो, हम सामान भी पकड़े रहेंगे और उतरने में धोती पहने हैं तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो उन्होंने बोले नहीं कुछ, हमें दो तीन बार देखा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमका कोई बात नहीं, सज्जन आदमी, अपन तो लड़ने वाली कोई बात ही नहीं। हमने उनको सीताराम किया, अपना बैग नीचे रखा, ऊपर चढ़ गए और बैठ के थोड़ा भजन किया, भोजन लाए थे तो भोजन पाया, लेट गए। इतने में उन भाई साहब की लीड खराब हो गई, तो वो लीड निकाली तो जब वॉल्यूम तेज किया तो वो हमारी कथा सुन रहे थे यूट्यूब पे। आओ आओ, हमारी कथा सुन रहे थे। अब हम पहचान तो गए कि ये अपनी आवाज है, क्योंकि बांस जैसी फटी हुई हमारी भाषा है।
हम पहचान गए कि ये पंचम स्वर हमारा ही है और हम कुछ बोले नहीं, हम लेटे रहे, वो भी लेटे रहे। इतने में जहां हमें उतरना था, सतना पहुंचे हम। जैसे ही उतरना था तो रेलवे स्टेशन पर जिनके यहां जा रहे थे भगत जी के यहां, वो 20-25 लोग माला लिए दरवाजे पर आ गए। हम नीचे उतरे सीट से, हमने बैग वैग लिया, सोचा कि गाड़ी कम खड़ी होती है तो दरवाजे के पास तक खड़े हो जाए। तो जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई तो चेलों ने बाहर से जयकारा लगाया, बागेश्वर धाम की। तो वो सज्जन उठे और दौड़े दौड़े दरवाजे पे आके लोगों से पूछ रहे, बागेश्वर धाम है क्या? तो लोगों ने इशारा किया पीछे दे, तो उसने हवाई तरफ देखा, अरे बोले गुरुजी। अरे हम कहे क्या गुरुजी, रात भर सीट नहीं दी टटरी के भरे। क्या गुरुजी? अच्छा तो आप ही ऊपर थे? अब हमने कहा हम ऊपर थे, तुम भू पर थे। और बाद में उसे बड़ा पछतावा हुआ, अरे क्षमा करो क्षमा करो, भूल हो गई क्षमा करो। अगर कोई बात नहीं, अब हो गई सो हो गई। हमने सर पे हाथ रखा, बढ़िया जो है गाड़ी चलने की, हॉर्न बज गया, हम नीचे उतरे आए, लोगों ने सामान लिया, फूलमाला डाली। अब वो फिर जो है बाद में धाम पर मिलने आए। तो जब तक जानेंगे नहीं मानेंगे नहीं, तो कथा क्यों हम सुनाते? कथा इसलिए सुनाते हैं, अभी आप हनुमान जी को मान रहे, अब सुंदर कांड सुनकर के आप जान जाओगे, और जान जाओगे तो ज्यादा मान जाओगे। इसीलिए कथा सुनाई जाती। कथा क्यों सुनाई जाती? ताकि आप मानो। जैसे दो दो रास्ते हैं, कितने रास्ते? दो। कौन कौन? पहला भागना और दूसरा जागना। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें भागना है या जागना है। भागोगे तो भागते ही रहोगे, जागोगे तो जहां रहोगे वहीं सब पा जाओगे। अच्छा, रामायण में एक जगह और लिखा, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन जाने नहीं होई प्रीति। ऐसी चौपाई, बिन जाने, जाने बिना प्रीति नहीं होती। जब तक जाने ना तब तक प्रेम हो नहीं सकता। हम जिसके बारे में सुने, भाई कोई किसी से कहे कि अमुक आदमी अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, सुंदर है, लेकिन सामने दिख जाए, बात बात तो हमने ऐसे ही सुना था, बड़े सुंदर है, लेकिन शरीर सुंदर हो आचरण खराब। मतलब सोने के बर्तन में जहर हो तो क्या कोई काम का है? बोलो बोलो बोलो, कोई काम का है? नहीं है भाई। शरीर सुंदर हो, चित्र सुंदर हो, चरित्र घटिया हो तो कोई काम का है क्या? मेरे पागलो, जिसका चित्र भी सुंदर हो और चरित्र भी सुंदर हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा पूजनीय होता है। हमें लगता ऐसे हनुमान जी हैं, जिनका चित्र भी सुंदर है, कंचन वरन विराज सुवेसा, और जिनका चरित्र भी सुंदर है, कि जब राम कथा होती तो हनुमान जी आते हैं, पर हनुमान कथा होती तो राम जी स्वयं सुनने चले आते हैं।

की आवाज में असर हो जाए। कहां मेरे दिल की इस आवाज में असर हो जाए, मैं याद करूं और उसको खबर हो जाए।

0: क्या बृहस्पति महिलाओं का विवाह समय से करवा देते हैं? क्या बृहस्पति देव वैवाहिक जीवन को सुखी बना देते हैं? क्या बृहस्पति देव किसी न किसी तरीके से महिलाओं के बिगड़े हुए जीवन को संवार देते हैं? क्या है बृहस्पति की महिलाओं के विवाह में भूमिका? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
2: It's my music and it's my station.
1: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Good news today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हुए शामिल, केदारनाथ और बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा गहमा गहमी। अयोध्या में रामलला के साथ ही अपर कोटा कॉरिडोर में भी शुरू हुए दर्शन, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सभी 6 उपमंदिर। आज से शुरू हो रही है उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की पवित्र यात्रा, इस बार 3 जगह हल्द्वानी, टनकपुर और धारचूला से होगी शुरुआत। देश में रेलवे की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में शानदार खबर, पहली बार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत ट्रेन, राजस्थान के कोटा रेलवे रूट पर हुआ सफल स्पीड ट्रायल। आज सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने जा रही है फिल्म दादी की शादी, फिल्म से रिधिमा कपूर का डेब्यू, मानीतू कपूर लीड रोल में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं भी होगी रिलीज। लगातार 6 हार के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स विली को मिली जीत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 रन से हराया। 19 ओवर के मैच में लक्ष्य नहीं हासिल कर सकी आरसीबी।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भक्तों से गुलजार। अभी तक 8,57,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे। केदारनाथ धाम में उमड़ रहे हैं सबसे ज्यादा श्रद्धालु। कल 17,575 यात्री पहुंचे थे धाम। इस साल अब तक 3,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी पहुंच रहे हैं धाम। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के 2 हफ्तों में 2,16,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। मंदिर और यात्रा मार्गों पर भारी भीड़ उमड़ी। मौसम और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह नहीं हुआ कम। तप्त कुंड से ब्रह्म कपाल तक देखने को मिल रही है लंबी कतारें। लगातार मौसम खराब होने के बाद भी केदार धाम में यात्रियों की भीड़। छाता, रेनकोट और गर्म कपड़ों के साथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। हर रोज 25,000 से ज्यादा यात्री टोकन सिस्टम के जरिए कर रहे हैं दर्शन। पैदल यात्रा मार्ग पर SDRF, NDRF, पुलिस, होमगार्ड सहित अन्य सुरक्षा जवानों की तैनाती। यात्रियों की सुगमता के लिए पैदल यात्रा मार्ग को सेक्टर के हिसाब से बांटा गया। हर सेक्टर पर तैनात किए गए हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट। यात्रा की हो रही है मॉनिटरिंग। टोकन सिस्टम के जरिए 1 घंटे के भीतर हर यात्री को दर्शन कराए जाने का लक्ष्य। रोज 2 से 3 यात्रियों को एयर एम्बुलेंस की भी दी जा रही है सुविधा। तत्काल इलाज के लिए भेजा जा रहा है मेडिकल सेंटर। बद्रीनाथ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे 21 दिन की साधना। इस दौरान एकांतवास में रहेंगे बाबा बागेश्वर। ऋषि गंगा अलकनंदा के तट पर 10,279 फीट की ऊंचाई पर बाबा बागेश्वर कर रहे हैं ध्यान। प्राचीन हनुमान मंदिर खाक चौक आश्रम में साधना। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद बाबा बागेश्वर ने शुरू की साधना। 26 मई तक चलेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का योग ध्यान। फिलहाल एक वक्त के फलाहार पर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर की साधना के वक्त सिर्फ उनका एक सेवादार रहेगा। पिछले 12 साल में ये पहला मौका है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार और कथा वाचन पर लगा है विराम। कर रहे हैं आत्मचिंतन। जम्मू क्षेत्र में श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियां तेज। पहला जत्था 2 जुलाई को होगा रवाना। तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 आवास केंद्र चिन्हित किए गए। पेयजल, बिजली, आवास जैसी सुविधाओं को किया जा रहा है दुरुस्त। अधिकारियों को दिया गया निर्देश, सभी बुनियादी सुविधाओं सहित पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। पंचूर गांव के यमकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे साथ। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी का सेना को सलाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बदली डीपी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक चिन्ह लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के अतुलनीय पराक्रम को देश ने किया याद। अलग अलग शहरों में सेना के सम्मान में आयोजित किए गए कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लड़कियों ने सेना के शौर्य को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई रंगोली। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ। सेना ने कहा ऑपरेशन अभी भी जारी है और आगे जारी रहेगा। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई चलती रहेगी। भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पिता बने। पत्नी देविशा शेट्टी ने दिया बेटी को जन्म। सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी खुशखबरी, लिखा खिलखिलाती हंसी, प्यार भरी झप्पी और सपनों को साकार करते हुए हम अपनी बेबी गर्ल का स्वागत करते हैं। अनुराग कश्यप निर्देशित बॉबी देओल स्टार फिल्म बंदर का रिलीज हुआ टीजर, फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मुंबई में फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं की स्क्रीनिंग में लगा सितारों का मेला, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्वानंद किरकिरे, शारिब हाशमी, सना सुल्तान, अहमद खान आए नजर। मैं एक्टर नहीं हूं 8 मई यानी कल सिनेमाघर में रिलीज होगी, दमदार भूमिका में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 2026 के कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के सितारे बिखेरेंगे चमक, फिल्म समारोह में शामिल होंगे ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी। ईशान खट्टर पंजाबी अभिनेत्री तानिया के साथ जुगाड़ू में आएंगे नजर, फिल्म का निर्देशन पलाश वासवानी करेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 23 पैसे ऊपर चढ़ा, इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 94.26 रुपए हो गई। अयोध्या में रामलला के साथ ही अब परकोटा कॉरिडोर में भी शुरू हुए दर्शन, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सभी 6 उपमंदिर। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती में तेज हवा के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दोनों रनवे चालू हो गए, मानसून की तैयारियों के लिहाज से कल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मेंटेनेंस के लिए किया गया था बंद। बिहार के मुजफ्फरपुर में झालमुड़ी का बड़ा क्रेज, 5 गुना बड़ी बिक्री, बंगाल में पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने का असर। जयपुर की तपती गर्मी में बुजुर्ग पेश कर रहे हैं इंसानियत की मिसाल, 78 साल के गोपाल दादा 30 साल से बुझा रहे हैं राहगीरों की प्यास। गोपाल दादा हवा महल के पास मटका और सैकड़ों लीटर पानी लेकर बैठते हैं, उनका मकसद है गर्मी में कोई प्यासा नहीं रहे। गोपाल दादा कहते हैं प्यास सबको लगती है, पानी जरूर पिलाना चाहिए, यही सोच उन्हें हर दिन सेवा के लिए प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश हरियाणा के करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टिकट बुकिंग शुरू। इंडिगो ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टिकट्स की बुकिंग कर दी शुरू, आने और दूसरे शहरों में जाने के लिए उड़ानों की टिकटों की बिक्री। डीएक्सएन एनआईए कोड इंडिगो के सिस्टम पर दिखना शुरू हो गया, पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगी। 15 जून को लखनऊ से उड़कर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट, 1 घंटे में पूरा होगा हवाई सफर। नोएडा एयरपोर्ट को बड़े एविएशन हब के रूप में किया जा रहा है विकसित, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के यात्रियों को होगा फायदा। नोएडा एयरपोर्ट पर आधुनिक टर्मिनल, बेहतर संचालन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा, उड़ान शुरू होने से व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के लोगों के लिए गुड न्यूज, रक्सौल से हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेज। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा रक्सौल एयरपोर्ट निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया कर दी गई है शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, द्वारका में 806 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में हर साल एमबीबीएस की 250 सीटें उपलब्ध होंगी, प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। आज रिलीज हो रही नीतू कपूर और कपिल शर्मा की फिल्म दादी की शादी, फिल्म से रिद्धमा कपूर साहनी कर रहे हैं बॉलीवुड में डेब्यू। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता का पोस्टर जारी, 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। प्रभास और तृप्ति डिमरी स्टार ऑफ फिल्म स्पिरिट 5 मार्च 2027 को रिलीज होगी, सलमान की ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म एसवीसी 63 से क्लैश तय। क्रिसमस 2027 पर रिलीज होगी सलमान खान की सुपर हीरो फिल्म द लास्ट हीरो, राजन डी के द्वारा निर्देशित है ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। रणदीप हुड्डा के फैंस के लिए गुड न्यूज, वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज, वेब सीरीज में 1990 के दशक के उत्तर प्रदेश की झलक।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: क्या बृहस्पति महिलाओं का विवाह समय से करवा देते हैं? क्या बृहस्पति देव वैवाहिक जीवन को सुखी बना देते हैं? क्या बृहस्पति देव किसी न किसी तरीके से महिलाओं के बिगड़े हुए जीवन को संवार देते हैं? क्या है बृहस्पति की महिलाओं के विवाह में भूमिका? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
13: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: तो कभी धीमे धीमे पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
2: Thank God I get to wake
1: and everything
2: up.
1: Else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
4: with artists like James Bay,
5: so come on, let it go.
3: Nora Jones,
6: the heart is drained.
3: Daniel Caesar. More as you sink into a good book or get lost in your work, just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह मानते हैं और बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में अगर बृहस्पति कमजोर हो जाए तो जीवन की शुभता कम हो जाती है, ईश्वर की कृपा कम हो जाती है। बृहस्पति को किन उपायों के द्वारा आप मजबूत कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 मई 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में और मंगल तथा शनि विद्यमान हैं मीन राशि में।

व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और दर्शन यानी फिलॉसफी ये प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं होती, या यूं कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं होता। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या अवश्य आती है, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता जाता है। व्यक्ति को मोटापे की, लिवर की, डायबिटीज की और अहंकार की समस्या हो जाती है। बृहस्पति अगर गड़बड़ हो तो आदमी कुछ जानता हो या न जानता हो, कोई योग्यता हो या ना हो, उसके अंदर अहंकार प्रबल रूप से पाया जाता है। बृहस्पति को लाभकारी बनाने के उपायों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, सबसे ज्यादा ग्रहों पर असर पड़ता है हमारे खाने पीने की आदतों का, तो बृहस्पति को खान पान के द्वारा कैसे ठीक करें, बृहस्पति को कैसे अनुकूल बनाएंगे। सिर्फ सात्विक आहार ग्रहण करने का प्रयास करिए, मांस मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए। जब भी आप भोजन करने जा रहे हैं उसके पहले भगवान का आभार व्यक्त करिए, भोजन करने के पहले प्रार्थना जरूर करिए। बेसन जरूर खाइए और थोड़ा सा मीठा खाने की आदत डालिए, ज्यादा मत खाइए। पीले फल और केसर का अपने भोजन में, अपने आहार में प्रयोग करिए। अगर आप अपना खान पान सात्विक बनाते हैं, प्रभु का प्रसाद समझ करके भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपका बृहस्पति अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। आप अगर अपने व्यवहार में बदलाव करें, अपने व्यवहार को बेहतर करें, तो उससे भी आपका बृहस्पति अनुकूल होगा। बृहस्पति को व्यवहार के द्वारा कैसे ठीक करेंगे? व्यवहार में गंभीरता लाने का प्रयास करें, अपने स्वभाव की, मन की चंचलता को कम करें। दूसरों की सहायता अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जरूर करें। नियमित रूप से दोनों समय थोड़ा ही समय निकालकर पूजा उपासना अवश्य करें। कोई स्तुति भगवान की नियमित रूप से करें, मंत्रों का जप करें या भगवान के नाम का निरंतर जप करें। अगर आपने कोई गुरु बनाए हुए हैं तो अपने गुरु से हमेशा जुड़े रहें। बड़े बुजुर्गों की सेवा और सहायता जरूर करें, बड़े बुजुर्गों का अनादर और अपमान ना करें। अपने स्वभाव में जितनी गंभीरता लाएंगे, जितना ठहराव लाएंगे, जितनी पवित्रता लाएंगे, आप

बृहस्पति उतना ही अनुकूल होगा। बृहस्पति पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो अपने खान पान के द्वारा, अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा आप बृहस्पति को कैसे मजबूत करेंगे ये आपने जान लिया। अन्य किन उपायों से आप बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं? प्रातः काल जल्दी उठने का प्रयास करिए। अगर सूर्योदय के पहले उठते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना जरूर करें। नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। रोज पूजा उपासना करें और अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर जाकर, मंदिर जाकर दर्शन करें और प्रार्थना करें। अपने साथ एक पीला रुमाल रखना आरंभ कर दें और एक पीतल का या सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें। मुख्य बात समझिए कि अगर आपका आहार और विचार पवित्र होते हैं और आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को बेहतर बना पाएंगे। देखिए, बृहस्पति की भूमिका हर व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद की तरह या ईश्वर की कृपा की तरह होती है, और महिलाओं के जीवन में बृहस्पति की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आशीर्वाद और कृपा के अलावा उनके वैवाहिक जीवन को और उनके विवाह को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी महिला के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो तो उनको अपने खान पान को सात्विक कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ जितना वो भगवान शिव की पूजा करेंगी बृहस्पति उतना अनुकूल होगा और वैवाहिक जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी। तो आज हमने आपको बताया बृहस्पति को मजबूत करने के सरल उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी मानसिक स्थिति चाहते हैं तो रात को सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ रखें तो हमेशा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 8 मई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हुए शामिल। केदारनाथ और बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा गहमा गहमी। अयोध्या में रामलला के साथ ही अब परकोटा कॉरिडोर में भी शुरू हुए दर्शन। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सभी 6 उपमंदिर। आज से शुरू हो रही उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की पवित्र यात्रा, इस बार 3 जगह हल्द्वानी, टनकपुर और धारचूला से होगी शुरुआत। देश में रेलवे की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में शानदार खबर, पहली बार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत ट्रेन, राजस्थान के कोटा रेलवे रूट पर हुआ सफल स्पीड ट्रायल। आज सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने जा रही है फिल्म दादी की शादी, फिल्म से रिद्मा कपूर का डेब्यू, मां नीतू कपूर लीड रोल में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं भी होगी रिलीज। लगातार 6 हार के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स को मिली जीत, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 रन से हराया, 19 ओवर के मैच में लक्ष्य नहीं हासिल कर सकी आरसीबी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। साहिल देव मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो का चर्चा का विषय क्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं महिलाओं और बृहस्पति के बारे में। महिलाओं का विवाह और बृहस्पति का आपस में कनेक्शन क्या है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन बृहस्पति का महिलाओं के विवाह के लिए किस तरह से वो प्रभावित करता है, अगर विवाह में किसी प्रकार का कोई विलम्ब है या दिक्कतें आती हैं तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है और इसके तमाम उपाय आपको कैसे करने हैं, सारी जानकारियां विस्तार से पंडित जी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या कहता है।
1: देखिए, जीवन में बृहस्पति ग्रह से संबंधित कैसी भी समस्या आए, कैसी भी समस्या हो, अगर बृहस्पति की समस्या को हल करना चाहते हैं तो रोज सुबह और रोज शाम जितना कर सकें यथाशक्ति भगवान शिव की उपासना करिएगा। जितना भगवान शिव की आप उपासना करेंगे, आपकी कुंडली का, आपके जीवन का बृहस्पति अनुकूल होगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 8 मई 2026 शुक्रवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 8 मई 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 12:21 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हमने आपको बताया महिलाएं बृहस्पति आपस में संबंध क्या है, गड़बड़ क्या होती है, उपाय क्या है, सबके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन पहला प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है, वो ये है कि महिलाओं के विवाह के साथ बृहस्पति ग्रह का पंडित जी संबंध क्या है, कनेक्शन क्या है, वो जानते हैं
1: जी। आज हम आपको बता रहे हैं कि महिलाओं के जीवन का, विशेष रूप से उनके विवाह का बृहस्पति से क्या संबंध है और बृहस्पति महिलाओं के जीवन को किस हद तक प्रभावित करता है। महिलाओं के विवाह से बृहस्पति कहां जुड़ता है? देखिए, किसी भी महिला के व्यक्तित्व और विवाह के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। जैसे पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शुक्र होता है, वैसे महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बृहस्पति। बृहस्पति उनके स्वास्थ्य पर, उनके संस्कार पर और उनके संतान पर भी असर डालता है। और महिलाओं का अच्छा बृहस्पति उन्हें एक कुशल गृहिणी बनाता है, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छा परिवार को चलाने वाली महिला बना देता है। और बृहस्पति अगर किसी महिला का फेवरेबल हो, अनुकूल हो, तो इनका करियर भी अच्छा हो जाता है और इनकी फैमिली लाइफ, इनका गृहस्थ जीवन भी अच्छा होता है। किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति का अच्छा होना उनके सुखद जीवन की गारंटी है। अगर किसी महिला का बृहस्पति अच्छा है तो वो किसी न किसी तरीके से इधर से उधर से व्यवस्था बना के उनके जीवन को हर तरह से सुखी रखने का प्रयास करेगा।
0: चलिए इसी से जुड़े हुए अन्य प्रश्न भी पंडित जी से जानेंगे और तमाम जानकारियां आप तक पंडित जी पहुंचाएंगे विस्तार के साथ। लेकिन अब बारी आती है राशिफल पर आने की। पहली तीन राशियों का हाल क्या है वो आपको बता देते हैं। मेष, वृष और मिथुन के भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
1: मेष राशि, धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। परिवार में व्यस्तता रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं और वो ये है पंडित जी प्रश्न की, किसी भी महिला का बृहस्पति अगर कुंडली में खराब है और इसके परिणाम पहले तो क्या होते हैं, अगर इसको सुधारना है तो क्या किया जा सकता है इसके लिए।
1: देखिए, महिला का बृहस्पति खराब होना अच्छी बात नहीं है। महिला के दो चार ग्रह खराब हो गए कोई बात नहीं, अगर बृहस्पति अच्छा है तो संभाल लेगा। लेकिन अगर किसी महिला के सारे ग्रह बेहतर हो जाए उसके बावजूद बृहस्पति खराब हो जाए तो परिणाम गंभीर होंगे। महिला के बृहस्पति खराब होने के क्या परिणाम होंगे? बिना बृहस्पति के पहले तो महिलाओं का विवाह ही नहीं होगा, और अगर किसी तरीके से विवाह हो गया तो विवाह चलेगा नहीं। बृहस्पति अगर कमजोर हुआ किसी महिला का तो विवाह में बहुत विलंब होता है, और बहुत प्रयास करने पर, बहुत उपाय करने पर जीवन में सुख आ पाता है। अगर बृहस्पति खराब हो गया तो विवाह में विलंब तो होता ही है, बड़ी कठिनाई के बाद असंभव स्थितियों में विवाह होता है और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर किसी महिला का बृहस्पति दूषित हो जाए, बृहस्पति दूषित होता है राहु से, अगर बृहस्पति किसी महिला की कुंडली में दूषित है तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। महिला की कुंडली में बृहस्पति खराब हो, कमजोर हो तो फिर भी उपाय हैं, लेकिन अगर बृहस्पति दूषित स्थिति में है तो वो महिलाओं के चरित्र को कमजोर कर देता है।
0: चलिए और भी प्रश्न पंडित जी से पूछेंगे और जानकारी आप तक पंडित जी पहुंचाएंगे विस्तार के साथ। अब वापस आते हैं राशिफल के ऊपर। कर्क सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको बताएंगे।
1: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होती दिख रही हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: के योग हैं, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, वाद विवाद से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए उस सेगमेंट पर आते हैं जिसका आप सबको बेसब्री के साथ इंतजार रहता है, आप सबके सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले कि पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, आपसे जानते हैं कौन सा है पहला प्रश्न।
0: जी आज का पहला प्रश्न शोभना जी ने हमें लिखा है, रांची झारखंड से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 अप्रैल 2002, जन्म का समय दोपहर के 12:45, जन्म स्थान है रांची। शोभना कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी सेवा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी? शोभना आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साल 2028 का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 2028-29 में पूरे मनोयोग से प्रयास करिएगा, आप सफल होंगी। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का वक्त हो चला है, पंडित जी ही आपको जानकारी देंगे कि कौन से दर्शक की समस्या पंडित जी आपके पास आई है।
0: जी अगला प्रश्न विक्रम जी ने हमें लिखा है, छत्तीसगढ़ रायपुर से मेल लिखते हैं। विक्रम जी की जन्म तारीख है 4 अक्टूबर 1975, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म का स्थान है भिलाई छत्तीसगढ़, मेल लिखते हैं रायपुर से। विक्रम जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए अपना व्यापार करना उचित होगा? विक्रम जी आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 के जून के बाद अगर आप अपना व्यवसाय करें, लोहे का, मशीनरी का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमोबाइल्स का, तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 2027 के जून के बाद आप व्यापार में जा सकते हैं। आपको आपके करियर में सफलता मिले, आप उन्नति करें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: पंडित जी अक्सर ये देखा गया है कि बहुत लोगों के जीवन में विवाह का विलंब होता है, देरी से विवाह होता है, तो विवाह के विलंब को दूर करना है, उसको दूर करने के लिए पहले तो बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए, तो उसके लिए आप कौन कौन से उपाय विस्तार से बताएंगे?
0: देखिए, अगर आप महिला हैं और आपके विवाह होने में विलंब हो रहा है तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि इसमें बृहस्पति की भूमिका जरूर होगी। तो क्या उपाय करें जिससे बृहस्पति अनुकूल हो, विवाह जल्दी हो जाए, विवाह में विलंब ना हो? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। जितना सुबह अर्पित करेंगी उतना अच्छा होगा। सुबह और शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में बृहस्पति वार को प्रातः धारण करिए और सप्ताह में एक बार बेहतर होगा बृहस्पति वार को किसी धर्म स्थान पर जाकर, किसी मंदिर में जाकर अगर आप प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप शीघ्र विवाह के लिए बृहस्पति के उपाय कर रही हैं, मांस मदिरा तामसिक आहार इसका प्रयोग मत करिएगा। सात्विक आहार और सात्विक जीवनचर्या का पालन करिएगा। और अगर विवाह में बहुत विलंब हो रहा है तो लोग बिना सोचे समझे पीला पुखराज लड़कियों को पहना देते हैं। पीला पुखराज सोच समझकर पहनिएगा। अगर बृहस्पति की स्थिति निगेटिव हुई और आपने बिना सोचे समझे पीला पुखराज पहन लिया तो विवाह होना आपका असंभव हो सकता है।
1: चलिए राशिफल पर वापस आते हैं और तुला, वृश्चिक और धनु वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है वो जानकारी आपको देंगे पंडित जी।
0: तुला राशि, कार्यक्षेत्र में बेवजह के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए विलंब के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, अन्य जानकारियां भी पंडित जी लगातार आपको बता ही रहे हैं। अब ये जानते हैं कि वैवाहिक जीवन को अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो इसको अच्छा करने के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छे से चलता रहे, बृहस्पति को मजबूत करना होता है। किस प्रकार से करें वो जानकारी आपको देते हैं।
0: अब किसी महिला की शादी हो गई लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में लगातार दिक्कतें बनी रहती हैं, पति के साथ तालमेल नहीं बनता, परिवार में सुख शांति खुशहाली नहीं रहती, तो क्या उपाय करें जिससे बृहस्पति अनुकूल हो और वैवाहिक जीवन अच्छा हो। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगी, जितना अर्ली कर सकेंगी, जितना सुबह कर सकेंगी उतना अच्छा होगा। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा हल्दी की माला से, और अगर हल्दी की माला नहीं मिलती तो रुद्राक्ष की माला से पीले आसन पर बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करिएगा। घर में सात्विक माहौल रखिए, घर में मांस मदिरा का प्रयोग ना हो, घर में लोग नॉनवेज ना खाएं, घर में शराब ना पी जाए, इसका ध्यान रखिए। और कम से कम सप्ताह में एक बार घर के जितने लोग भी मिलकर के करें, मिलकर के एक बार पूजा उपासना करिए। कोई नहीं मिलता है आप अकेले करिएगा। सबसे अच्छा होगा कि सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, या सप्ताह में एक दिन शनिवार को सुंदर कांड का पाठ किया जाए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगे, प्रयास करें घर में पवित्रता मेंटेन रहे, तो ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। घर का जो पूजा स्थान है वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती का एक चित्र जरूर रख लें, या शिव परिवार की एक मूर्ति या चित्र रख लें और नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना करें कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए।
1: चलिए अंतिम तीन राशियों का हाल भी अब आप सबके साथ साझा करेंगे पंडित जी। मकर, कुंभ और मीन वालों की पारी है, बताते हैं इनके भाग्यफल में क्या है।
0: मकर राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम एक दो दिन के लिए टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इस प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, आपको एक बार फिर से सूचित कर दूं कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। तो पंडित जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
0: जी। अगला प्रश्न अनिरुद्ध जी ने हमें लिखा है। अनिरुद्ध जी हमें झांसी उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 9 मार्च 2004, जन्म का समय है सुबह के 7:35, जन्म स्थान है झांसी। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री आगे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है, क्या मेरी बेटी आगे यूपीएससी में जा सकेगी, उसको सफलता मिलेगी। देखिए अनिरुद्ध जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से मैं कहूंगा कि आप अपनी बेटी को कानून की पढ़ाई करवा दें, लॉ की पढ़ाई अगर कर ले तो जुडिशियरी में या लॉ से संबंधित गवर्नमेंट जॉब में जा सकती है। यूपीएससी में जाना, प्रशासनिक सेवा में जाना मुझे कठिन दिखाई दे रहा है, और अगर लॉ नहीं करना चाहती हैं तब इनको उच्च शिक्षा की तरफ ले जाइए, उच्च शिक्षा में टीचिंग की नौकरी इनको मिल सकती है, इनका करियर बढ़िया रहे, इनका ध्यान ना भटके, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिएगा, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती इनको पहनाएं और इनसे कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सा अंतिम सवाल है और किस दर्शक का है। पंडित जी,
0: जी आज का अंतिम प्रश्न कृष्ण कुमार मेहता जी ने हमें लिखा है, और कृष्ण कुमार जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 जून 1984, जन्म का समय सुबह के अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, जन्म का स्थान है नासिक। ये कह रहे हैं कि व्यापार में मुझे पिछले 1 साल से काफी घाटा हो गया है, तो मेरी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में कैसी रहेगी, क्या मैं दोबारा से बेहतर स्थिति में पहुंच पाऊंगा। कृष्ण कुमार जी, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्पेक्युलेटिव सेक्टर से दूर रहिए, वरना बार बार आपको घाटा होता रहेगा। सामान्य इन्वेस्टमेंट करके सामान्य तरीके से काम करिए, सुखी रहेंगे। आपके हालात फरवरी 2027 से बेहतर होंगे और आप दोबारा से तरक्की कर सकेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में बड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि वहां पर मामला थोड़ा सेंसिटिव है। रोज सुबह और रोज शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और एक मूंगा, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक तो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, विवाह में विलंब के चलते बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसको दूर कैसे करना है, वो तो आपने बताया। अब ये बताइए कि बहुत सारी महिलाओं को ये कहा जाता है कि विवाह में अगर देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, तो पीला पुखराज पहन लीजिए, इसका कोई फायदा होता है, ऐसा होना चाहिए?
0: देखिए, आपको पहले भी बताया कि बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक है और पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है, बृहस्पति को शक्ति देता है, बृहस्पति को मजबूत करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी महिला की शादी नहीं हो रही है तो आप सब महिलाओं को एक ही तरीके से पीला पुखराज पहना देंगे। याद रखिए, कारक होने के बावजूद अलग अलग कुंडलियों में बृहस्पति की पोजीशन अलग अलग होती है और अलग अलग कुंडलियों में विवाह के स्थान का स्वामी भी अलग हो सकता है। इसीलिए उसी महिला को आप विवाह के लिए पीला पुखराज पहना सकते हैं जिसका बृहस्पति फायदेमंद हो और फायदा न पहुंचा रहा हो, यानी कमजोर हो, तब महिला को पीला पुखराज पहनाने से फायदा होगा। अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति दूषित है, बृहस्पति अशुभ या खराब स्थिति में बैठा है और आपने बिना सोचे समझे उसको पुखराज पहनाया, तो शादी की बात तो बाद में होगी, पहले वो महिला गंभीर बीमारियों से जूझने लगेगी। इसलिए ऐसा कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है कि किसी महिला की शादी नहीं हो रही है तो आंख मूंद के पीला पुखराज पहना दो।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी, आप सबको जानकारी देंगे कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 8 मई को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका ये गुड लक वाला दिन उनके लिए क्या लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 8 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, करियर में बड़े परिवर्तन के योग बने हुए हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह और संतान के मामलों में अभी इस साल में भी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार का व्रत रखने से कन्याओं का, महिलाओं का विवाह जल्दी हो जाता है? क्योंकि ज्यादातर लोग देखते हैं कि अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उससे कहते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो, क्या ऐसा होता है? देखिए, बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक ग्रह है। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से कुंडली के बृहस्पति को बल मिलता है, इसीलिए बृहस्पतिवार का व्रत रखने से महिलाओं के विवाह में सुविधा होती है। लेकिन केवल बृहस्पतिवार का व्रत रखने से शादी हो जाए ये जरूरी नहीं है, बाकी ग्रहों को और बाकी उपायों को भी देखना चाहिए।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 8 मई 2026 शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 8 मई 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 मई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि पंडित जी आपको जानकारी देते हैं गुडलक राशि के बारे में, तो आपकी राशि यानी आज की गुडलक राशि कौन सी है, इसमें क्या खास है, वो पंडित जी आपको बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। आज की गुडलक राशि है कुंभ। इनका वैवाहिक जीवन ज्यादातर गड़बड़ होता है। इनको अपने दायित्वों पर ध्यान रखना चाहिए, वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, तब इनका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।
1: चलिए उपायों के बारे में और इस शो से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां तो पंडित जी ने आप तक पहुंचा दी हैं। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की, तो पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है?
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको या परिवार में किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता हो तो क्या करना चाहिए। ये प्रयोग सोमवार और शुक्रवार को करिए। थोड़े से बिना टूटे हुए चावल ले लीजिए, इनको दूध के साथ मिलाकर खीर बना लें सोमवार की शाम को भी और शुक्रवार की शाम को भी। इस खीर को शाम को शिव जी को भोग लगाएं, उनको अर्पित करें, और जिसको बहुत क्रोध आता है वो पहले इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। निश्चित रूप से मन बेहतर होगा, क्रोध की समस्या में सुधार होगा।
1: पंडित जी, इन तमाम जानकारियों के लिए, उपाय के लिए और महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो कथा क्यों हम सुनाते? कथा इसलिए सुनाते हैं, अभी आप हनुमान जी को मान रहे, अब सुंदर कांड सुन करके आप जान जाओगे, और जान जाओगे तो ज्यादा मान जाओगे।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
3: Gone! Home run!
2: NHL.
3: He scores!
2: College basketball.
4: He shoots it immediately.
5: He makes it in!
2: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
6: One lap to go.
2: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो
1: तक जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो कथा क्यों हम सुनाते? कथा इसलिए सुनाते हैं, अभी आप हनुमान जी को मान रहे, अब सुंदर कांड सुनकर के आप जान जाओगे, और जान जाओगे तो ज्यादा मान जाओगे।
2: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, ऐसे वीडियोस जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे, कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जो आपको गुदगुदाएंगे और हैरान भी कर देंगे।
2: हर बात बोलकर नहीं सिखाई जाती, कभी कभी एक्शन भी बहुत काम करता है। यहाँ देखिए, मामा को पता था पिटिया रानी ऐसे नहीं खाने वाली, सो आसान सा तरीका ढूंढ लाई। और देखिए, प्रयोग भले ही कहीं और हुआ है लेकिन असर सीधा वही हुआ जहाँ चाहिए था। बच्ची जिस फुर्ती के साथ चम्मच मुंह में लेती है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं, और जिस तरह से वो अपने पिता को सांत्वना दे रही है वो देखना तो और भी दिलचस्प है।

कमाल है, बस यही कहेंगे आप और नजर हटाना मुश्किल हो जाएगा। इनका ये धमाकेदार डांस देखते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हैरानी बढ़ती जाएगी।

इनकी कलाबाजियां, आत्मविश्वास और बैलेंसिंग सब देखने लायक है। बच्चों के डांस का ये वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

गुनगुनाना सीखा है अभी, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूब कर। देखिए जरा अंदाज इनका। लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब, और अब यहाँ प्रार्थना हो रही है इनकी। पर इस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

जीत के लक्ष्य तक पहुंचना है चाहे जैसे भी। इन्होंने भी यही कोशिश की थी, लेकिन एक ही रेस में दो बार हार गए। देखिए, बच्चे ने रेस तो लगाई थी, लेकिन सब बहुत आगे निकल गए, इतने कि रेस में शामिल होना मुश्किल था। शैलोट तिवारी के साथ बोली, लेकिन ये भी ना हो सका इनसे, पर फिर भी खुश बहुत है। आखिर कोशिश में कोई कमी तो नहीं रखी ना इन्होंने।

0: माँ तो बस माँ है, उसके बराबरी भला कोई कहाँ कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। लोग कह रहे हैं माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं।
1: और अब खबर चीन से। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग में मई दिवस की छुट्टियों के दौरान एक बेहद शानदार ड्रोन लाइट शो आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के आसमान को एक अद्भुत कैनवस में बदल दिया गया। इस शो में हजारों ड्रोन्स ने आसमान में 3D आकृतियां और शहर का शानदार नजारा पेश किया। चोंगकिंग पहले भी 11,000 से अधिक ड्रोन के साथ विश्व रिकॉर्ड बना चुका है, जो AI और GPS टेक्निक का उपयोग करते हैं। इस शानदार लाइटिंग शो के गवाह हजारों शहरवासियों के साथ पर्यटक भी बने। विज्ञान से लेकर प्रकृति तक हर क्षेत्र की प्रकृतियां ड्रोन के जरिए आसमान में उकेरी गई। शो के आखिर में ड्रोन ने आसमान में एक चमकता हुआ लाल अनार बनाया, जो चीन के सभी जातीय समूह के बीच एकता और आपसी सहयोग का प्रतीक था।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
7: खान पान को सुधार कर बृहस्पति को बेहतर कैसे किया जा सकता है? अपने व्यवहार में बदलाव लाकर बृहस्पति को कैसे बेहतर कर सकते हैं? किस देवता की पूजा करके बृहस्पति की समस्याओं को हल कर सकते हैं? क्या है बृहस्पति को मजबूत करने के सरल उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: चारधाम में जोश और उत्साह के

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फूलों की बहार। बागवानी विभाग ने इलाके में फूलों की खेती के लिए कई खास इंतजाम किए। मुफ्त में पौधे बांटने की मुहिम भी की शुरू। दिल्ली में आज डीसी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। रूट डायवर्जन और पार्किंग को लेकर एडवाइजरी जारी। जिनेवा में 6 कैरेट के दुर्लभ ब्लू डायमंड की होगी नीलामी। 113 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच सकती है इसकी कीमत। ही हीरे को दिया गया खान के मालिक सर थॉमस कलेनन का नाम। सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म दादी की शादी की दस्तक। फिल्म से रिधमा कपूर का डेब्यू। मानीतू कपूर लीड रोल में। नवाजुद्दीन की फिल्म एक्टर नहीं हूं भी रिलीज।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशी भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की इन पांच खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: शुभ समाचार की शुरुआत चारधाम यात्रा के साथ होगी। हर दिन इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक श्रद्धालुओं की संख्या 9 लाख से पार हो चुकी है। बद्रीनाथ में भी 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो कैसे हैं चारधाम के रंग, वो भी आगे आपको दिखाएंगे।
2: किसी प्रदेश की पहचान उसकी संस्कृति के साथ साथ वहां के स्वाद और व्यंजन में भी छिपी होती है। अब इसी पारंपरिक पहचान को वैश्विक स्तर पर ले जाने का बीड़ा उठाया है यूपी सरकार ने। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन योजना लागू कर दी गई है। इस लिस्ट में प्रदेश के सभी 75 जिलों की अपनी खास स्वादिष्ट पहचान मौजूद है। तो इस सूची में कौन कौन से व्यंजन हैं, इनकी जानकारी देंगे आगे।
1: तो वहीं आईपीएल में आज दिल्ली और कोलकाता के बीच मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से राजधानी दिल्ली में खेला जाएगा। कैसी है दोनों टीमों की रणनीति, आगे आपको बताएंगे।
2: वहीं साथ ही आपको स्विट्जरलैंड भी लिए चलेंगे, जहां पर इस बार एक दुर्लभ ब्लू डायमंड की नीलामी के लिए रखा गया है। अपनी चमक और कीमत की वजह से यह हीरा सभी का ध्यान खींच रहा है। कहां से मिला है ये हीरा और कितनी हो सकती है इसकी कीमत, बताएंगे आगे।
1: इसके अलावा बात फिल्मी फ्राइडे की भी होगी। आज दो फिल्में दस्तक देने जा रही हैं। पहली है नीतू कपूर और कपिल शर्मा की फिल्म दादी की शादी। इस फैमिली एंटरटेनर से नीतू कपूर की बेटी रिद्धमा कपूर भी बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नवाजुद्दीन और चित्रांगदा की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं भी आज से बड़े पर्दे पर आ रही है। तो ये भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें।
2: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा में अभी तक 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे।
1: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फूलों की बहार छाई हुई है। असल में यहां के बागवानी विभाग ने इलाके में फूलों की खेती के लिए कई खास इंतजाम किए हैं। इस सिलसिले में मुफ्त में पौधे बांटने की मुहिम भी शुरू की गई है।

0: कश्मीर के उधमपुर में शानदार रंगोली बनाई गई। इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर सेना और सुरक्षा बलों के शौर्य को सलामी दी गई।
1: गुजरात के जामनगर में अनोखी बारात देखने को मिली। आमतौर पर दूल्हा घोड़े पर सवार होकर बारात निकालता है, लेकिन यहां एक युवक ने परंपरा से हटकर हाथी पर बारात निकाली। पूरे इलाके में शादी का माहौल उत्साह और खुशी से सराबोर नजर आया।
0: राजस्थान में कोटा के युवा कराटे खिलाड़ी अनुराग ने एक बार फिर से शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। अनुराग ने हाल ही में भोपाल में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे टूर्नामेंट में अनुराग ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में मेडल जीतना है।
1: अमेरिका के लॉस वेगास में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास उपाय किया गया। यहां के गैस स्टेशन पर लोगों को $100 तक के फ्री गैस पास दिए जा रहे हैं। अमेरिका में तेल की कीमतों में उछाल को देखते हुए कदम उठाया गया है।
0: चीन में मई दिवस की छुट्टियों के दौरान पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 5 दिन की छुट्टियों में इस बार पिछले साल के मुकाबले सफर में 3.5% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
1: चीन में मे डे हॉलीडे के दौरान रेलवे ने फेरे लगाकर छुट्टियों में ऑपरेशन का शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखा है। चीन रेलवे के अनुसार छुट्टियों में क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिक बढ़ा और चीन लाओस रेलवे पर यात्रियों की संख्या में 20% से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई।
0: ओडिशा के कटक में देश की पहली सुपरफ्लेक्स वेल्ड मेश लाइन का शुभारंभ किया गया। ये नई प्रौद्योगिकी है और इससे देश में कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा मिलेगा।

तो शुभ समाचार की शुरुआत महातीर्थ के महाउत्सव के साथ। बारिश बर्फबारी के बीच चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। अब तक 8.5 लाख से ज्यादा भक्त चारधाम में दर्शन पूजन कर चुके हैं। हर दिन औसतन 50,000 श्रद्धालु इस तीर्थ का आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं। बद्री विशाल के बाद बाबा बागेश्वर की ध्यान साधना का आज दूसरा दिन है। प्राचीन हनुमान मंदिर खाक चौक आश्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साधना में लीन है। तमाम तस्वीरें हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुलेंगे। वहीं 4 आस्था के महातीर्थ को विस्तार मिलने जा रहा है, क्योंकि अब 18 मई को रुद्रनाथ धाम के कपाट भी खोले जाने की तैयारी है। साथ ही आदि कैलाश यात्रा की रौनक भी दिखने लगी है। आज देहरादून में यात्रा का शुभारंभ हो गया है।

तो हर दिन के साथ चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी से ही 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल भी हो चुके हैं। उत्साह का आलम यह है कि सिर्फ बद्रीनाथ में 2 हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं।

0: जैसे जैसे बारिश और बर्फबारी की आमद कम हो रही है, चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि बारिश और बर्फबारी के दौरान भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दी और हर रोज 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अगर सिलसिलेवार ढंग से चारों धाम की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम में 7 मई को 9,218 श्रद्धालुओं ने माँ यमुना के दर्शन किए और अब तक यमुनोत्री धाम में 1,35,848 श्रद्धालु माँ यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं। गंगोत्री धाम में 7 मई को 9,360 श्रद्धालुओं ने माँ गंगा के दर्शन किए और अभी तक 1,33,517 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं। केदारनाथ धाम में 7 मई को 17,575 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए और अब तक 3,82,282 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 7 मई को 15,602 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और अभी तक बद्रीनाथ धाम में 2,16,045 श्रद्धालु दर्शन का पुण्य कमा चुके हैं। चार धाम यात्रा में कुल श्रद्धालुओं की बात की जाए तो 8,57,692 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर पुण्य लाभ ले चुके हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले हुए 2 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में 2 सप्ताह में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं और वहीं हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की कतार तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान बद्री विशाल की आस्था का ये सैलाब मई का महीना शुरू होने के साथ ही बढ़ने लगा है। ऐसे में रोजाना यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तीर्थ यात्रियों की भीड़ भी बढ़ेगी और जब बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी तो और अधिक यात्रियों के आने की संभावना है। यानी जून में और अधिक श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि मौसम लगातार चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी हर श्रद्धालु को आसानी से हो रहे हैं।
1: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का उत्साह हर तरफ देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले 2 सप्ताह का समय हो गया है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं यात्रा मार्गों पर तमाम जितने भी मंदिर हैं, इस समय जोशीमठ का नरसिंह मंदिर में हम मौजूद हैं, यहाँ भी बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
0: बद्रीनाथ में जिस ओर नजर जाती है उस ओर बस श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। हर श्रद्धालु में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है और हो भी क्यों ना, सरकार और प्रशासन तीर्थयात्रियों का पूरा ख्याल रख रही है।
2: यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ।
3: एनीथिंग
2: आगे हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। अभी हम जोशीमठ आए, बद्रीनाथ से हम सीधा हरिद्वार और बैक टू बैंगलोर।
3: बद्रीनाथ धाम हमारा हो गया, अब यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे भी जा रहे हैं। सो होपफुली गंगोत्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी वही डिसाइड हो रहा है। बस अभी मिसेस से वही बात ही कर रहा था। बाकी व्यवस्था सारी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, रोड्स वगैरह सारी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी सिस्टम ऑर्गेनाइज है, ऊपर बद्रीनाथ धाम पे भी बहुत ऑर्गेनाइज था।
4: यमुनोत्री देखा, गंगोत्री देखा, देन केदारनाथ पूरा। यस्टरडे मैं तुंगनाथ तक जी होके आया, आज हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। फंटास्टिक है, उत्तराखंड हैज डेवलप्ड अ लॉट बट स्टिल देयर मोर टू डेवलप, पर्टिकुलरली वॉशरूम्स फॉर सीनियर पीपल हु कम हियर। फंटास्टिक ट्रिप।
0: सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि यात्रा मार्ग के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम भले ही ठंडा हो, बर्फबारी देखने को मिली हो, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह अपार है। व्यवस्था से भी श्रद्धालु गदगद दिखाई दे रहे हैं।
5: हम लोग जयपुर से आए हैं, राजस्थान से, और सिर्फ बद्रीनाथ ही जाने के लिए आए थे, अब वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा व्यू है और बहुत अच्छा एक देखने लायक सब कुछ, बहुत अच्छा लगा।
0: बाबा केदार के दर्शन के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 3,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं। इन दिनों मौसम भी यात्रियों की परीक्षा ले रहा है। हर रोज बर्फ गिरने के साथ ही बारिश हो रही है, बावजूद इसके भक्तों की आस्था कम नहीं हो रही। केदारनाथ धाम में सुरक्षा के साथ सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। पैदल यात्रा मार्ग पर SDRF, NDRF, पुलिस, होमगार्ड के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। रुद्रप्रयाग के DM और SP लगातार श्रद्धालुओं से मिल रहे हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर समय यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है।
6: हाल के दिनों में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ है और लोगों को मौसम के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ से पूरे रूट की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना है, यदि है तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं जेसीबी इत्यादि वो डिप्लॉयड हैं कि नहीं है। साथ ही जो हमारे ट्रैक रूट है उसको सेक्टर्स में बांटा गया है, वहाँ पर हमारे सेक्टर ऑफिसर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और मंदिर परिसर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी कैमरे के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। हमारी टीम्स भी लगी हुई हैं, सेक्टर ऑफिसर्स वहाँ पर भी डिप्लॉयड हैं। तो जो हमारे चिकित्सा विभाग है, जो हमारे निर्माण विभाग है, वो सभी मिलकर के एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं।
0: मौसम खराब होने पर यात्री बीमार भी हो रहे हैं, ऐसे में यात्रियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जा रही है और हायर सेंटर भेजा जा रहा है। यात्रियों को जल्द बाबा केदार के दर्शन हो इसके लिए टोकन सिस्टम के जरिए दर्शन कराए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण से मोहाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: और चलिए बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं। जम्मू के रामबन में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अल्यास खान ने बाकी आला अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए अभी से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा के लिए 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तैयारियों के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत, सुविधाओं और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
8: बनिहाल के सब डिविजन मजिस्ट्रेट बनिहाल मोहम्मद नसीब साहब, नसीब साहब जो यात्रा की हम बात करेंगे, जो तैयारियां हैं वो किस तरह से अभी तक हुई हैं और क्या कहेंगे आप?
9: देखिए, डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही एक रिव्यू लिया है और अलॉन्ग विद साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ हमने वहाँ पे विजिट किया है। जो भी इंस्ट्रक्शंस थी हर डिपार्टमेंट को दी गई हैं डिस्ट साहब के थ्रू और हर डिपार्टमेंट अपने काम में लगा है और स्टिल वी हैव सफिशिएंट टाइम, हमने काम शुरू कर दिया है। चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सैनिटेशन का हो, चाहे अदर वर्क्स हो, तो सारे डिपार्टमेंट उसमें जोर शोर से काम कर रहे हैं और होपफुली वेल इन टाइम सारी तैयारी हम मुकम्मल कर देंगे।
7: तो चारधाम यात्रा की रौनक काफी ज्यादा बढ़ रही है। भारी बर्फबारी के बीच चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर के कपाट 18 मई को खुलेंगे। यहां आला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस बीच बर्फबारी के बीच बाबा रुद्रनाथ का धाम अपने आप में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो हरे भरे बुग्याल और हर किसी को अपनी ओर खींच रहे हैं। हम आपको भी बता दें कि रुद्रनाथ धाम चमोली जिले में मौजूद पंच केदारों में से एक है। यहाँ एकानन यानी कि भगवान शिव के मुख रूप की पूजा की जाती है और समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की मौजूद ये धाम प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। रुद्रनाथ धाम में ये भी मान्यता जुड़ी हुई है कि यहाँ पर भक्तों को साक्षात महादेव के दर्शन का अनुभव होता है। और चलिए अब बात करेंगे बद्रीनाथ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की।

और अब बात बाबा बागेश्वर की ध्यान साधना की कर लेते हैं। इन दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ में हैं, जहां उनकी ध्यान साधना शुरू हो चुकी है। उनकी ये ध्यान साधना प्राचीन हनुमान मंदिर में 21 दिनों तक चलेगी। इस दौरान वो एकांतवास में रहेंगे, मतलब किसी से नहीं मिलेंगे, ना ही कथा करेंगे। उनके इस ध्यान साधना की चर्चा दुनिया में हो रही है। पूरे 21 दिन तक वो बद्रीनाथ धाम की तपोभूमि पर बिल्कुल अकेले शांत चित्त होकर चिंतन मनन कर रहे हैं। सावधानी पूरी होने के बाद वो बद्रीनाथ में हनुमंत कथा भी करेंगे।

0: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहाँ जाते हैं सुर्खियां बन जाते हैं। बद्रीनाथ में उनकी 20 दिन की साधना शुरू हो चुकी है, जहाँ वे -2 डिग्री से नीचे के तापमान पर साधना कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि 12 साल के बाद वो अपनी दिनचर्या से ब्रेक लेकर इस तपस्या के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँचे। धीरेन्द्र शास्त्री के पहुँचने पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है। पिछले 3 सालों से बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। पहले वो बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर खाक चौक आश्रम पहुँचते हैं। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहाँ बाबा बागेश्वर आजकल साधना में लीन है। खाक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर ही मौजूद है। जब भी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम जाते हैं, यहीं पर रुकते हैं। फिलहाल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद हैं। हालांकि ऐसी खबर है कि 21 दिनों तक बागेश्वर धाम किसी को भी दर्शन नहीं देंगे और 21 दिनों की साधना के बाद हनुमान कथा का आयोजन करेंगे।
1: बागेश्वर धाम सरकार है, वो जब भी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो बालकनाथ महाराज का जो खाक चौक आश्रम है, यहीं पे हनुमान मंदिर है, पौराणिक हनुमान मंदिर है, यहीं पे वो पहुंचते हैं।
0: असल में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता बहुत है। वे जहाँ भी जाते हैं उनका दिव्य दरबार लग जाता है। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। उनकी एक झलक पाने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में स्थिति अलग है। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जब तक साधना करेंगे, तब तक उनके पास न तो भक्तों की भीड़ होगी और न ही वे प्रवचन करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में धीरेन्द्र शास्त्री की इस एकांत साधना का मकसद बेहद खास है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आत्मचिंतन करने के लिए यहाँ एकांतवास में आए हैं। इस दौरान वे स्वयं को साधेंगे। हिंदू राष्ट्र और सनातन के उत्थान के लिए वे 21 दिनों तक कठिन तप करेंगे। बताया जा रहा है कि इस विशेष साधना के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल अकेले होंगे। उनके पास न तो मोबाइल फोन रहेगा और न टेलीविजन या संचार के दूसरे साधन। धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम की इस तपोभूमि पर बिल्कुल अकेले शांतचित होकर चिंतन मनन करेंगे, ताकि अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए नए सिरे से तैयारी कर सकें, नई ऊर्जा और नए विचार हासिल कर सकें। कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड टुडे।
2: आज बाबा बागेश्वर की साधना का दूसरा दिन है, तो अभी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ में कहाँ हैं, कैसे साधना कर रहे हैं, इसी बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमल नयन सिलोड़ी। देखिए उनकी रिपोर्ट।
3: 6 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद वो अपने साधना में लीन हो चुके हैं। फिलहाल अभी तक इधर उधर कहीं भी नहीं गए हैं, यहाँ तक कि बद्री विशाल के दर्शनों को भी नहीं निकले हैं। साधना में लीन है क्योंकि आने वाला जो समय है 15 मई से अधिक मास का हो रहा है। ऐसे अधिक मास में खासकर बद्री विशाल का जब अधिक मास से खास संबंध होता है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है बद्रीनाथ धाम में एक महीना जो अधिक मास का होता है, खासकर जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो इसमें बद्रीनाथ धाम में जप तप पूजा पाठ भागवत कथा अनेकों श्रवण करने का मौका मिलता है। ऐसे में खुद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे हनुमान कथा का आयोजन भी करेंगे। उसके बाद जब 21 दिनों की साधना पूरी हो जाएगी, क्योंकि 21 दिन का जो विशेष महत्व निकाला है वो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विशेष तौर पे बद्रीनाथ धाम में ही निकाला है। ऐसे में वो ऋषि गंगा और अलकनंदा के तट पर विराजमान है, और यहीं पे जो नगर पंचायत द्वारा जो साधना कुटी बनाई है उनमें भी उनका हो सकता है कि साधना का कार्यक्रम हो, लेकिन अभी तक वो जो प्राचीन हनुमान मंदिर का जो आश्रम है वहीं पे मौजूद है। और आने वाले धीरे धीरे जो दिन बीतेंगे उसके बाद हनुमान कथा का आयोजन यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार करेंगे। हालांकि लगातार श्रद्धालुओं को जैसे ही पता चल रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार बद्रीनाथ धाम में है, तो हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद उस तरफ की जो खाक चौक आश्रम है वहाँ का रुख कर रहा है। एक दर्शन के लिए हर कोई वहाँ पे प्रफुल्लित हो रहा है, उनके दर्शनों के लिए हर कोई पहुंच रहा है, लेकिन वो अपने कमरे में अपनी साधना में लीन है। ऐसे में कब वो बाहर निकलेंगे अभी तक कुछ पता नहीं है। ऐसे में 21 दिनों की जो साधना होनी है वो उसके लिए उन्होंने बद्रीनाथ धाम को चुना है। कमल सिलोड़ी, बद्रीनाथ, जीएनटी।
2: और अब बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में मौसम का मिजाज आजकल बदला बदला हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राज्यों में बारिश का अलर्ट है, तो दिल्ली एनसीआर में आज से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि उत्तर भारत में 10 मई से एक बार फिर से फुहारे मेहरबान होने वाली है, क्योंकि फिर आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ।
4: उत्तर भारत में फिलहाल मौसम पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से बारिश का दौर आने वाला है। उम्मीद है कि 10 से 13 मई के बीच कहीं कहीं छिटपुट गरज चमक बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी के साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि 11 मई तक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दिख सकती है, लेकिन राहत की बात है कि दूर नहीं चलेगी, क्योंकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 11 से 13 मई के दौरान बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी संभव है। मैदानी इलाकों में आंधी और बिजली चमकने के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 10 मई तक बिहार के कई जिलों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। दिन में उमस रहेगी, लेकिन बारिश के चलते तापमान के नीचे गिरने की संभावना है। लू चलने की कोई उम्मीद नहीं है। देश के दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी आने वाले 7 दिनों तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में गरज और बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिटनेस टुडे।
2: में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे फिल्मी फ्राइडे की। आज से आ रही है फिल्म दादी की शादी।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन,
6: जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो कथा क्यों हम सुनाते? कथा इसलिए सुनाते हैं, अभी आप हनुमान जी को मान रहे, अब सुंदर कांड सुन करके आप जान जाओगे, और जान जाओगे तो ज्यादा मान जाओगे।
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
9: Jack, you're killing me.
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
13: खान पान को सुधार कर बृहस्पति को बेहतर कैसे किया जा सकता है? अपने व्यवहार में बदलाव लाकर बृहस्पति को कैसे बेहतर कर सकते हैं? किस देवता की पूजा करके बृहस्पति की समस्याओं को हल कर सकते हैं? क्या है बृहस्पति को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: चारधाम में जोश और उत्साह के साथ यात्रा जारी। अब तक 850,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन पूजन। केदारनाथ और बद्रीनाथ में अब तक सबसे ज्यादा भक्त पहुंचे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फूलों की बहार। बागवानी विभाग ने इलाके में फूलों की खेती के लिए कई खास इंतजाम किए। मुफ्त में पौधे बांटने की मुहिम भी की शुरू। गुजरात के जामनगर में निकली अनोखी बारा। गजराज पर सवार होकर निकले दूल्हे राजा। उत्साह खुशी से सराबोर नजर आया पूरा इलाका। दिल्ली में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। रूट डायवर्जन और पार्किंग को लेकर एडवाइजरी जारी। जिनेवा में 6 कैरेट के दुर्लभ ब्लू डायमंड की होगी नीलामी। 113 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच सकती है इसकी कीमत। हीरे को दिया गया खान के मालिक सर थॉमस कलीनन का नाम। सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म दादी की शादी की दस्तक। फिल्म से रिधिमा कपूर का डेब्यू। मानीतू कपूर लीड रोल में। नवाजुद्दीन की फिल्म में एक्टर नहीं हूं भी रिलीज।

0: और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस फिल्मी फ्राइडे बॉलीवुड की दो फिल्में जो हैं वो दस्तक दे रही हैं। पहली है नीतू कपूर और कपिल शर्मा स्टारर दादी की शादी, जो नाम से ही दिलचस्प है और स्टारकास्ट से ह्यूमरस लग रही है। इस फैमिली एंटरटेनर से नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर भी बॉलीवुड में कदम रख रही है। खास बात यह है कि माँ बेटी की ये रियल लाइफ जोड़ी रील लाइफ में भी इसी किरदार में नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ है नवाजुद्दीन और चित्रांगदा की फिल्म में एक्टर नहीं हूं, जो अपने नाम से ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
1: एक बार फिर फ्राइडे आया है और अपने साथ लाया है फिल्मों की वो फेहरिस्त जो आज सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने जा रही हैं। इनमें सबसे पहला नाम है फिल्म दादी की शादी का। इस फिल्म के जरिए कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्ट्रेस नीतू कपूर की जोड़ी बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है जो थिएटर्स में हंसी का डबल डोज देने वाली है। फिल्म में कपिल और नीतू का रिश्ता दादी पोते का है। फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई इस फिल्म में नीतू कपूर एक ऐसी दादी का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला करती है। वहीं कपिल शर्मा उनके पोते के रोल में है, जो इस शादी को लेकर पहले हैरान और फिर पूरी तरह सपोर्टिव नजर आते हैं। इसी अनोखे कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती ये फिल्म हर तरह से हंसी के शौकीनों के लिए उम्दा है। इस फिल्म की हाईलाइट हैं रिद्धिमा कपूर, जो फिल्म में भी नीतू कपूर की बेटी बनी हैं और इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। फिल्म में युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भी अहम किरदार में हैं। इसके अलावा सदिया खाती, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार शरद कुमार समेत कई सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। कुल मिलाकर आशीष आर मोहन के डायरेक्शन में बनी फिल्म दादी की शादी एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें हंसी और मस्ती भरपूर है। इस फैमिली एंटरटेनर के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं। ये फिल्म एक ऐसे बैंकर की कहानी है जो दो देशों भारत और जर्मनी में रहते हुए एक एक्टर से एक्टिंग सीखता है। नवाजुद्दीन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रहने वाले एक 55 साल के रिटायर्ड कश्मीरी बैंकर की भूमिका निभा रहे हैं, जो डिप्रेशन से जूझ रहा है और रिटायरमेंट के बाद जीवन में एक नए मकसद की तलाश में है। नवाजुद्दीन एंग्जायटी की थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वहां पता चलता है कि उन्हें एक्टिंग का शौक है। बस यहीं से शुरू होती है उनकी ट्रेनिंग। इस फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ चित्रांगदा सतरूपा मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म 1.5 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है। अब देखना यह है कि ये दो बजट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका करती है। रिपोर्ट गुड स्ट्रीम।
0: राम और रावण के बीच युद्ध को देखने के लिए भले ही आपको रामायण पार्ट 2 का इंतजार करना पड़े, लेकिन रामायण पार्ट 1 भी युद्ध के दृश्य देखने के लिए आपको निराश नहीं करेगी। दरअसल ये युद्ध राम और रावण के बीच नहीं होगा, बल्कि रावण और रामायणा के पार्ट 1 में रावण और इंद्र के युद्ध को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीक्वेंस में हॉलीवुड स्टाइल एक्शन, भारी VFX और CGI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

अब महज तीर से तीर नहीं टकराएंगे, अब सिर्फ तलवार से तलवार की टंकार नहीं सुनाई देगी। संग्राम तो अब भी होगा और पहले की तरह ही भीषण होगा, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर उस संग्राम का स्वरूप महा

रामायण पार्ट वन में बेशक ये युद्ध राम और रावण के बीच नहीं दिखाया जाएगा, उसके लिए आपको रामायण पार्ट टू का इंतजार करना होगा। लेकिन इस दिवाली रिलीज होने जा रही फिल्म रामायण पार्ट वन भी युद्ध के दृश्य से भरपूर होगी और इस सेंटर ऑफ वॉर के बीच होगा रावण।

0: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामायण पार्ट वन का सबसे भीषण युद्ध का सीक्वेंस बड़े स्केल पर शूट किया गया है। रावण और इंद्र के बीच के युद्ध को वर्ल्ड क्लास VFX और CGI तकनीक की मदद से हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस के रूप में फिल्माया गया है। इस युद्ध में रावण के किरदार में यश और इंद्र के रोल में कुणाल कपूर के बीच सीधा मुकाबला दर्शाया गया है। बताया जा रहा है कि इस जंग को विजुअल गेम चेंजर के तौर पर तैयार किया गया है। बड़ी बड़ी सेनाओं, देवताओं और दानवों के बीच जंग के साथ इंद्र और रावण के कॉम्बैट क्लोजअप भी होंगे। दोनों के हथियार त्रेता युग को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। जंग में रावण और इंद्र के बॉडी डबल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि एक्टर्स के साथ ही इसे शूट किया गया है। बताया जा रहा है कि हॉलीवुड फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्शन कोरियोग्राफर गाय नॉरिस ने इस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि युद्ध के कई हिस्से ग्रीन स्क्रीन और CGI बैकग्राउंड पर फिल्माए गए, ताकि स्वर्गलोक और दिव्य अस्त्रों का प्रभाव दिखाया जा सके। उड़ते रथ, दिव्य अस्त्र और देवताओं की सेना जैसी चीजें पोस्ट प्रोडक्शन VFX से बनाई जा रही हैं। एक्शन को ज्यादा वास्तविक दिखाने के लिए वायर वर्क, मोशन कंट्रोल कैमरा और हाई स्पीड शूटिंग का इस्तेमाल हुआ। बताया जा रहा है कि यश ने रावण के रूप में अपने युद्ध दृश्यों की शूटिंग मुंबई के अक्सा बीच और दहिसर स्थित स्टूडियो में बने भव्य सेट्स पर की है। स्टंट और एक्शन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये रावण की रणनीतिक कुशलता और उसकी क्रूरता को प्रभावी तरीके से दिखा पाए। रामायण के उत्तरकांड में रावण और देवराज इंद्र के बीच हुए भीषण युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। पुराणों में उल्लेख है कि रावण और इंद्र के बीच 4 युद्ध हुए। जानकारी के अनुसार इस फिल्म में वो युद्ध दिखाया जाएगा जिसमें रावण इंद्र से बुरी तरह से परास्त हो गया था। बाद में रावण के बेटे मेघनाद ने इंद्र पर हमला बोला और युद्ध जीतकर इंद्रजीत कहलाया। वैसे रामायण पार्ट वन में रावण और इंद्र के बीच ये इकलौता युद्ध नहीं दिखाया जाएगा। बताया जा रहा है कि फिल्म की शुरुआत ही रावण और उसके सौतेले भाई कुबेर के बीच एक विशाल युद्ध दृश्य से की गई है। इसके अलावा रावण और जटायु के बीच का संघर्ष भी दिखाया जाएगा, जिसे खुद यश ने एक इंटरव्यू में क्रेजी स्टंट सीक्वेंस बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब आपको IPL के मैदान लिए चलेंगे। आज IPL में दिल्ली और कोलकाता के बीच मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली के लिए ये मुकाबला करो या मरो की तरह है, क्योंकि टीम 10 मैचों में 8 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखने के लिए उसे बाकी 4 मैच जीतने होंगे। वहीं 8वें नंबर पर मौजूद KKR को अगले दौर में पहुंचने के लिए अपने सभी 5 मैच जीतने होंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक 34 मैच खेले गए। दिल्ली कैपिटल्स ने 14 और KKR ने 19 मैच जीते हैं। डायमंड्स ऑक्शन हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहती है। ऐसा ही एक ऑक्शन है सोटबिस स्प्रिंग्स ऑक्शन, जिसमें इस बार एक दुर्लभ ब्लू डायमंड नीलामी के लिए रखा गया है। अपनी चमक और कीमत की वजह से यह हीरा सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।
2: डायमंड और उसकी कीमत ने हमेशा ही दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरी है और लोगों को हैरान किया है। इस बार सोटबिस की स्प्रिंग ऑक्शन भी दुर्लभ ब्लू डायमंड के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिनेवा में होने वाली इस ऑक्शन में इस बार एक फैंसी विविध ब्लू ग्रेड हीरा शामिल किया गया है और उम्मीद है कि इसकी नीलामी $12 मिलियन यानी 1,20,00,000 रुपए तक जा सकती है। यह हीरा दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक कुलिनन हीरा खदान में से निकला है। यह अनमोल हीरा 6 कैरेट का है और रंगीन हीरो में से दुर्लभ वैरायटी में से एक है। यह हीरा अंदर से पूरी तरह बेदाग है और ना ही इसमें कोई अशुद्धि है, जिसकी वजह से यह विशेष रूप से दुर्लभ पत्थरों में शुमार है। इस हीरे के साथ सोटबिस की स्प्रिंग ऑक्शन में सिंगर रिहाना का एक बेशकीमती मल्टी पीस सेट डिजाइन सेट भी शुमार है। ये सेट मशहूर स्विस लग्जरी ब्रांड चोपार्ड के सहयोग से डिजाइन किया गया है। इसे पहली बार 2017 में कांस रेड कार्पेट पर पेश किया गया था। ये सेट चमकीले रंग के कीमती पत्थरों का मिश्रण है, कलाकार की कैरेबियन जड़ों से प्रेरित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: किसी प्रदेश की पहचान उसकी संस्कृति के साथ साथ वहां के स्वाद और व्यंजन में भी छिपी होती है। अब इसी पारंपरिक पहचान को वैश्विक स्तर तक ले जाने का बीड़ा उठाया है योगी सरकार ने। जी हां, उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है एक जिला एक व्यंजन योजना और इस लिस्ट में प्रदेश के सभी 75 जिलों की अपनी खास स्वादिष्ट पहचान मौजूद है।
1: पचहत्तर जिलों से मिलकर बना राज्य उत्तर प्रदेश और हर जिले का अपना एक अलग जायका। आगरा के पेठे की मिठास से लेकर अयोध्या की चटपटी कचौड़ी तक हर एक व्यंजन अपना एक अलग स्वाद छोड़ कर जाता है। राज्य के हर जिले के इसी स्वाद को एक अलग पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना की सूची जारी की है। इस लजीज लिस्ट में हर जिले की पहचान बताने वाले 208 खास व्यंजनों को जगह दी गई है। इस सूची में आगरा का पेठा और दाल मोट, मथुरा का पेड़ा और खुरचन, अयोध्या की कचौड़ी, मेरठ की रेवड़ी गजक, वाराणसी की ठंडाई लस्सी और बनारसी पान, जौनपुर की इमरती, आजमगढ़ की तहरी और गाजर का हलवा, बलिया का सत्तू, मऊ का लिट्टी चोखा जैसे व्यंजन शामिल है। इसके अलावा सहारनपुर का शहद, मुजफ्फरनगर और शामली के गुड़ आधारित उत्पाद, प्रतापगढ़ का आंवला और प्रयागराज की कचौड़ी, समोसा, रसमलाई जैसी चीजें भी सूची का हिस्सा हैं। इस योजना का मकसद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों और 18 मंडलों में क्षेत्र विशेष के खान पान की परंपराओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है। योजना के तहत पारंपरिक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार के साथ एक खास पैकेजिंग और ब्रांडिंग उपलब्ध कराना है, जिससे स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिलेगी, साथ ही बाजार तक पहुंच भी आसान होगा। इस योजना के लिए सरकार ने बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।

किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। खास बात यह रही कि उद्घाटन के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने जिम में खुद एक्सरसाइज कर फिटनेस का संदेश दिया। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से आप देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों एक साथ कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी दोनों ने फिटनेस का संदेश इसी के साथ लोगों को दिया कि कैसे आपको कसरत जो है वो करते रहनी है। और ओपन जिम की ये तस्वीरें

0: और इंस्टा स्टोरी में आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए दिलनाज ईरानी की फनी इंस्टा स्टोरी।
1: सुनो
2: हाँ?
1: अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार?
2: मैं तो हार पसंद करूंगी।
1: अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो।
2: लेकिन मेरी एक शर्त है।
1: कौन सी शर्त?
2: हार सोने की होनी चाहिए।
3: धीरे धीरे सुन निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए।
4: आज मेरा 1 किलो वेट घट गया।
5: नाखून काटे होंगे तने।
6: बहस करने से रिश्ते कमजोर होते हैं, इसलिए तुरंत झापड़ मार कर रिश्ते मजबूत करें।
0: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: जब तक जानेंगे नहीं मानेंगे नहीं तो कथा क्यों हम सुनाते? कथा इसलिए सुनाते हैं, अभी आप हनुमान जी को मान रहे, अब सुंदर कांड सुनकर के आप जान जाओगे और जान जाओगे तो ज्यादा मान जाओगे।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: खान पान को सुधार कर बृहस्पति को बेहतर कैसे किया जा सकता है? अपने व्यवहार में बदलाव लाकर बृहस्पति को कैसे बेहतर कर सकते हैं? किस देवता की पूजा करके बृहस्पति की समस्याओं को हल कर सकते हैं? क्या है बृहस्पति को मजबूत करने के सरल उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: चारधाम में जोश और उत्साह के साथ यात्रा जारी। अब तक 8,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन पूजन। केदारनाथ और बद्रीनाथ में अब तक सबसे ज्यादा भक्त पहुंचे। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेख, विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश। 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पौड़ी गढ़वाल में सीएम योगी और धामी के बीच दिखा अनोखा कनेक्शन, दोनों एक साथ ओपन जिम में वर्कआउट करते आए नजर। उद्घाटन समारोह में गृह जनपद पहुंचे थे योगी। जिनेवा में 6 कैरेट के दुर्लभ ब्लू डायमंड की होगी नीलामी, 113 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच सकती है इसकी कीमत। हीरे को दिया गया खान के मालिक सर थॉमस कलीनन का नाम। सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म दादी की शादी की दस्तक, फिल्म से रधमा कपूर का डेब्यू, मानीतू कपूर लीड रोल में, नवाजुद्दीन की फिल्म, मैं एक्टर नहीं हूं भी रिलीज।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह मानते हैं और बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में अगर बृहस्पति कमजोर हो जाए तो जीवन की शुभता कम हो जाती है, ईश्वर की कृपा कम हो जाती है। बृहस्पति को किन उपायों के द्वारा आप मजबूत कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 12:21 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 मई 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में और मंगल तथा शनि विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम आपको बता रहे हैं बृहस्पति को मजबूत करने के सरल उपायों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति देव की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। देखिए, बृहस्पति को ग्रहों में गुरु कहा जाता है और बृहस्पति का प्रभाव व्यक्ति को अत्यंत ज्ञानी और गंभीर बना देता है। बृहस्पति व्यक्ति की आयु को, उसके धर्म को और उसके ज्ञान को प्रभावित करता है और बृहस्पति की वजह से व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और दर्शन यानी फिलॉसफी ये प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं होती, या यूं कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं होता। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या अवश्य आती है, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता जाता है। व्यक्ति को मोटापे की, लिवर की, डायबिटीज की
और अहंकार की समस्या हो जाती है। बृहस्पति अगर गड़बड़ हो तो आदमी कुछ जानता हो या न जानता हो, कोई योग्यता हो या ना हो, उसके अंदर अहंकार प्रबल रूप से पाया जाता है। बृहस्पति को लाभकारी बनाने के उपायों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ आपको हो सकता है, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सबसे ज्यादा ग्रहों पर असर पड़ता है हमारे खाने पीने की आदतों का, तो बृहस्पति को खान पान के द्वारा कैसे ठीक करें, बृहस्पति को कैसे अनुकूल बनाएंगे। सिर्फ सात्विक आहार ग्रहण करने का प्रयास करिए, मांस मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए। जब भी आप भोजन करने जा रहे हैं उसके पहले भगवान का आभार व्यक्त करिए, भोजन करने के पहले प्रार्थना जरूर करिए, बेसन जरूर खाइए और थोड़ा सा मीठा खाने की आदत डालिए, ज्यादा मत खाइए। पीले फल और केसर का अपने भोजन में, अपने आहार में प्रयोग करिए। अगर आप अपना खान पान सात्विक बनाते हैं, प्रभु का प्रसाद समझ करके भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका बृहस्पति अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। आप अगर अपने व्यवहार में बदलाव करें, अपने व्यवहार को बेहतर करें तो उससे भी आपका बृहस्पति अनुकूल होगा। बृहस्पति को व्यवहार के द्वारा कैसे ठीक करेंगे? व्यवहार में गंभीरता लाने का प्रयास करें, अपने स्वभाव की, मन की चंचलता को कम करें, दूसरों की सहायता अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार
जरूर करें। नियमित रूप से दोनों समय थोड़ा ही समय निकालकर पूजा उपासना अवश्य करें। कोई स्तुति भगवान की नियमित रूप से करें, मंत्रों का जप करें या भगवान के नाम का निरंतर जप करें। अगर आपने कोई गुरु बनाए हुए हैं तो अपने गुरु से हमेशा जुड़े रहें। बड़े बुजुर्गों की सेवा और सहायता जरूर करें, बड़े बुजुर्गों का अनादर और अपमान ना करें। अपने स्वभाव में जितनी गंभीरता लाएंगे, जितना ठहराव लाएंगे, जितनी पवित्रता लाएंगे, आपका बृहस्पति उतना ही अनुकूल होगा। बृहस्पति पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, कार्य क्षेत्र में विवादों से बचें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो अपने खान पान के द्वारा, अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा आप बृहस्पति को कैसे मजबूत करेंगे ये आपने जान लिया। अन्य किन उपायों से आप बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं? प्रातः काल जल्दी उठने का प्रयास करिए। अगर सूर्योदय के पहले उठते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना जरूर करें, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें, रोज पूजा उपासना करें और अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर जाकर, मंदिर जाकर दर्शन करें और प्रार्थना करें। अपने साथ एक पीला रुमाल रखना आरंभ कर दें और एक पीतल का या सोने का छल्ला
तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें। मुख्य बात समझिए कि अगर आपका आहार और विचार पवित्र होते हैं और आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को बेहतर बना पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति की भूमिका हर व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद की तरह या ईश्वर की कृपा की तरह होती है और महिलाओं के जीवन में बृहस्पति की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो आशीर्वाद और कृपा के अलावा उनके वैवाहिक जीवन को और उनके विवाह को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी महिला के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो तो उनको अपने खान पान को सात्विक कर लेना चाहिए और साथ ही साथ जितना वो भगवान शिव की पूजा करेंगी बृहस्पति उतना अनुकूल होगा और वैवाहिक जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी। तो आज हमने आपको बताया बृहस्पति को मजबूत करने के सरल उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी मानसिक स्थिति चाहते हैं तो रात को सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ रखें तो हमेशा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 8 मई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा।
अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो कथा क्यों हम सुनाते? कथा इसलिए सुनाते हैं, अभी आप हनुमान जी को मान रहे, अब सुंदर कांड सुनकर के आप जान जाओगे, और जान जाओगे तो ज्यादा मान जाओगे।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
11: साधु जी, अरे जरा जोर से तो बोलो, साधु जी कहो कैसे हो, बढ़िया हो, सब बने बने हैं, हाँ तो रहना ही पड़ेगा बने बने, और हम लोग कर भी क्या सकते, जाहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए सीताराम सीताराम सीताराम। रामायण में भी गोस्वामी जी लिख रहे, सबई नचावत राम गोसाई बंधो कीट मर कट की नाई, सबको राम जी नचा रहे, हम लोग नच रहे, भगवान नचा रहे, तो बने बने रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते। पर धन्य है हनुमान जी की माया, गुरु की छत्र छाया, छत्तीसगढ़ महतारी की इस पावन भूमि की रज को स्पर्श करने का हमें बार बार सौभाग्य मिल जाता है। इस भूमि को हम प्रणाम करते हैं, इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। अरे भला छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम क्यों ना करें, ये राम जी का ननिहाल है। और हमने पहले ही दिन कहा था, इस नाते हम तुम्हारे भांचा लगे, हाँ राम जी के नाते तुम्हारे भांचा लगे। पर धन्य है राम जी की महिमा। सुनो, धूल उड़ावत गज फिरत कहो रहीम के ही काज। तुलसीदास जी ने पूछा, धूल उड़ावत गज फिरत कहो रहीम के ही काज। तो रहीम दास जी बोले, या रजते मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। जिस रज से मुनि पत्नी अहिल्या का तरन तारण हो गया, वो रज कौन है? राम जी के चरणों की चरण रज। अच्छा, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य क्यों है? अरे पागलो, जिन राम जी के दर्शन के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तप करते, जप करते, यज्ञ करते, दान करते, पुण्य करते, तब एक झलक मुश्किल से दिखाई पड़ती। धन्य है छत्तीसगढ़ वाले, अपने आप पर गौरव करना चाहिए कि वही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा छत्तीसगढ़ के जंगलों में बन बन डोले हैं। ये भगवान की माया है। राम बन पदगमन के रूप में बन बन डोले यहीं पर। आहा, माता कौशल्या का भी स्थान है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और कल रात तो हम भैया चढ़ गए थे आपके छत्तीसगढ़ की हनुमान गढ़ी पर। कहां? चकचकवा हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। भैया क्या अद्भुत नजारा। आहा, पूरा कट घोरा दिख रहा था। राम जी का बड़ा प्यारा दर्शन हुआ। वो हमने चरण के दर्शन किए जहां जल भरा है। बताओ उतनी ऊंचाई पर जल है? बताओ, हमारे यहां गांव में जमीन पे जल नहीं। प्रभु की माया देखो, यहां पर्वत पे जल है। कितनी अद्भुत माया है। इसी को तो भगवान की माया कहते। भगवान की माया सबको समझ में नहीं आ सकती है। भगवान की लीला सबकी समझ से परे है। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, कहो कहां लगी करो बड़ाई। भगवान की माया की कोई बड़ाई या नाम की बड़ाई कोई कर नहीं सकता। अच्छा, भगवान की माया को समझ कौन सकता? वही जाने जेह देह जनाई, जिसे भगवान जना दे वो जान सकता। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जाने कैसे? बुरा न मानना, हम लोग अभी भगवान को मानते हैं, जानते नहीं है। क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो। मानते हैं, जानते नहीं है। मानना अलग है, जानना अलग है। मान तो किसी को भी लो, पर जानो तो। पर भाई, जैसे तुम बैठे हो, अब तुम्हारे बगल में जो बैठा है, अब वो बार बार पैर लगाए तो क्या कहोगे? ए, किसको? ए, ए, पैर रख, दूर हो, दूर हो, दूर हो। अब नहीं रखना, अब नहीं रखना, दूर हो। इतने में कोई कान में कह दे, मंत्री जी है। अच्छा भाई साहब रख लो, कोई बात नहीं। आ भाई साहब, भाई साहब आ जाओ, भाई साहब आ जाओ, आ जाओ। बताओ, अध्यक्ष जी बैठे यहाँ के, हमारे श्री किरण देव जी भी बैठे हुए हैं, तो उनको हंसी आ गई कि हो सकता उनके साथ कभी ऐसा हुआ हो। तो बगल में कोई बैठा हो और वो पहचानता ना हो तो वो कहे दूर दूर, लेकिन पहचान हो जाए। आजा आजा आजा आजा, हमारे महाराज महाराज। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में, बहुत पुरानी बात है, तब इतने फेमस नहीं थे, इतने टीवी पे नहीं आए थे, मोबाइल पे तो आ रहे थे, इतने टीवी पे नहीं आए। ट्रेन में जा रहे थे, सामान था, बालाजी थे, बैग था, अकेले थे, चेला था नहीं। बैग लिए, ट्रेन पे चढ़े, तो जो सीट नंबर था वो ऊपर का था, स्लीपर। तो नीचे एक सज्जन लेटे थे, अकेले थे, और लीड लगाए मोबाइल चला रहे थे। तो हमने उन्हें इशारा किया, हमका बुरा ना मानो, तो आप ऊपर हो जाओ, हमें ये नीचे वाली सीट दे दो, हम सामान भी पकड़े रहेंगे और उतरने में धोती पहने हैं तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो उन्होंने बोले नहीं कुछ, हमें दो तीन बार देखा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमका कोई बात नहीं, सज्जन आदमी, अपन तो लड़ने वाली कोई बात ही नहीं। हमने उनको सीताराम किया, अपना बैग नीचे रखा, ऊपर चढ़ गए और बैठ के थोड़ा भजन किया, भोजन लाए थे तो भोजन पाया, लेट गए। इतने में उन भाई साहब की लीड खराब हो गई, तो वो लीड निकाली, तो जब वॉल्यूम तेज किया तो वो हमारी कथा सुन रहे थे यूट्यूब पे। आओ, आओ, हमारी कथा सुन रहे थे। अब हम पहचान तो गए कि ये अपनी आवाज है, क्योंकि बांस जैसी फटी हुई हमारी भाषा है। हम पहचान गए कि ये पंचम स्वर हमारा ही है, और हम कुछ बोले नहीं। हम लेटे रहे, वो भी लेटे रहे। इतने में जहां हमें उतरना था, सतना पहुंचे हम। जैसे ही उतरना था तो रेलवे स्टेशन पर जिनके यहां जा रहे थे भगत जी के यहां, वो 20-25 लोग माला लिए दरवाजे पर आ गए। हम नीचे उतरे सीट से, हमने बैग वैग लिया, सोचा कि गाड़ी कम खड़ी होती है तो दरवाजे के पास तक खड़े हो जाएं। तो जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई तो चेलों ने बाहर से जयकारा लगाया, बागेश्वर धाम की। तो वो सज्जन उठे और दौड़े दौड़े दरवाजे पे आके लोगों से पूछ रहे, बागेश्वर धाम है क्या? तो लोगों ने इशारा किया पीछे दे, तो उसने हवाई तरफ देखा, अरे बोले गुरुजी। अरे हमका क्या गुरुजी, रात भर सीट नहीं दी टटरी के भरे। क्या गुरुजी, अच्छा तो आप ही ऊपर थे? अब हमने कहा हम ऊपर थे, तुम भू पर थे। और बाद में उसे बड़ा पछतावा हुआ, अरे क्षमा करो, भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई बात नहीं, अब हो गई। हमने सिर पे हाथ रखा, बढ़िया जो है गाड़ी चलने की हॉर्न बज गया, हम नीचे उतरे आए, लोगों ने सामान लिया, फूलमाला डाली। अब वो फिर जो है बाद में धाम पर मिलने आए। तो जब तक जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो कथा क्यों हम सुनाते? कथा इसलिए सुनाते हैं, अभी आप हनुमान जी को मान रहे, अब सुंदर कांड सुन करके आप जान जाओगे, और जान जाओगे तो ज्यादा मान जाओगे। इसीलिए कथा सुनाई जाती। कथा क्यों सुनाई जाती? ताकि आप मानो। जैसे दो दो रास्ते हैं, कितने रास्ते? दो। कौन कौन? पहला भागना, और दूसरा जागना। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें भागना है या जागना है। भागोगे तो भागते ही रहोगे, जागोगे तो जहां रहोगे वहीं सब पा जाओगे। अच्छा, रामायण में एक जगह और लिखा, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन जाने नहीं होई प्रीति। ऐसी चौपाई, बिन जाने, जाने बिना प्रीति नहीं होती। जब तक जाने ना, तब तक प्रेम हो नहीं सकता। हम जिसके बारे में सुने, भाई कोई किसी से कहे कि अमुक आदमी, अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, लेकिन सामने दिख जाए, बात तो हमने ऐसे ही सुना था, बड़े सुंदर है, लेकिन शरीर सुंदर हो, आचरण खराब। मतलब सोने के बर्तन में जहर हो, तो क्या कोई काम का है? बोलो, कोई काम का है? नहीं है भाई। शरीर सुंदर हो, चित्र सुंदर हो, चरित्र घटिया, तो कोई काम का है क्या? मेरे पागलो, जिसका चित्र भी सुंदर हो और चरित्र भी सुंदर हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा पूजनीय होता है। हमें लगता ऐसे हनुमान जी हैं, जिनका चित्र भी सुंदर है, कंचन वरन विराज सुवेसा, और जिनका चरित्र भी सुंदर है, कि जब राम कथा होती तो हनुमान जी आते हैं, पर हनुमान कथा होती तो राम जी स्वयं सुनने चले आते हैं।

0: जी की जय, बागेश्वर धाम की
1: जय हो,
0: सन्यासी बाबा की
1: जय,
0: सर्व मंगला माता की
1: जय हो,
0: गुरु और गोविंद की
1: जय हो,
0: चकचकवा श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय हो,
0: महिषासुर मंदिरी माता की
1: जय हो,
0: मां सिद्धदात्री माता की
1: जय हो,
0: मां बमलेश्वरी मैया की
1: जय हो,
0: मां दंतेश्वरी मैया की
1: जय
0: हो, चंद्रकुरी वाली कौशल्या मैया की
1: जय हो,
0: नमः पार्वती पते
1: हर हर महारे।
0: आज कथा के पहले भैया हनुमान जी के पिताजी आ गए थे, पवन देवता। हमको सूचना मिली कि बड़ा तेज हनुमान जी के पूज्य पिताजी पवन देवता आए हैं और खूब तेज हवा चल रही है। हमने कहा थोड़ा रुक कर जाएं तो ही ठीक है। देखो ये बात तो पक्की है कि यदि किसी यज्ञ के अंतर्गत जल की वृष्टि हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए यज्ञ की सफलता होगी। द्वापर में जब यज्ञ हुआ करती थी तो गगन में आकाश में घंटा की ध्वनि सुनाई देती थी। त्रेता में जब यज्ञ हुआ करती थी तो यज्ञ कुंड हवन कुंड से देव प्रकट हुआ करते थे। सतयुग में जब यज्ञ सफल हुआ करती थी तो भगवान स्वयं प्रकट हुआ करते थे, और कलयुग में कोई यज्ञ सफल होती है तो जल की वृष्टि हो जाती है। ये सूचक है, तो ये मानना चाहिए कि हम सबकी यह यज्ञ कटघोरा के अंतर्गत इस छोटे से गांव में जो सनातन हिंदुत्व परंपरा को जीवंत रखने के लिए बालाजी महाराज का दिव्य अनुष्ठान हुआ, और आज तो हमें पता लगा 125,000 हनुमान चालीसा का पाठ इस पंडाल से संपन्न हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो।

0: गर्मी में प्यासे को भला पानी के अलावा और क्या चाहिए। ऐसे समय में जबकि जयपुर में भी दोपहरी में सड़कों पर निकले लोग पानी की तलाश करते दिखे तो उन्हें एक शख्स ठंडे पानी की सौगात देते हैं। जयपुर में हवा महल के पास खड़े होकर बुजुर्ग शख्स दिन से शाम तक लोगों को पानी पिलाते हैं। आखिर क्यों वो ऐसा रोजाना करते हैं, चलिए आए जानते हैं।
1: भरी गर्मी के दिनों में गुलाबी नगरी जयपुर में हवा महल के सामने से गुजरते हुए आपको भले ही हवा के झोंकों का एहसास न हो, लेकिन सड़क पर चुल्लू भर पीने का ठंडा पानी मिल जाएगा तो इससे ज्यादा सुकून दे और क्या होगा। ये बुजुर्ग शख्स हवा महल के ठीक नीचे से गुजरने वाले राहगीरों को ठंडा पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब दोपहर के वक्त लोग घरों से निकलने से भी परहेज करते हैं तब ये अपनी सेहत की परवाह किए बगैर आम लोगों को ठंडा पानी पिलाने के लिए खड़े रहते हैं।
2: अंकल आपका नाम क्या है?
3: कैलाश शर्मा।
2: अच्छा, कितने साल से यहाँ पे आप ये लगा रहे हैं?
3: ये 30 साल से लगा रहे हैं।
2: 30 साल से लगा रहे हैं तो कितना पानी आप लेके आते हो घर से?
3: 400 लीटर।
2: 400 लीटर
3: डेली।
2: और कितना उठ जाता है?
3: पूरा उठ जाता है।
2: अच्छा, कभी गिनने की कोशिश की है कि कितने लोगों को करीब करीब आप पानी पिला देते हो?
3: पूरा ही 400 लीटर खत्म हो जाता है, दो बर्फ की शिला खत्म हो जाती है।
1: हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक यानी जिस वक्त गर्मी चरम पर होती है उस वक्त हवा महल के सामने से गुजर रहे आम लोग, ऑटो टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, मजदूर या पर्यटक जो भी चाहे यहाँ रुककर मन

0: मजदूर या पर्यटक जो भी चाहे यहाँ रुककर मन भर ठंडा पानी पी सकते हैं और चाहे तो साथ ले भी जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में।
1: अच्छा, मैंने देखा आपके पास में लोग बॉटल भी लेके आते हैं, पानी भरवा के लेके जाते हैं, तो मतलब किसी को कोई मना ही नहीं है कैसे भी पानी?
2: बिल्कुल मना नहीं है, फ्री सेवा।
1: क्यों शुरू किया आपने
2: ये? हमारे पिताजी ने शुरू किया।
0: अपने पिताजी की ओर से शुरू किए गए पानी पिलाने के इस काम को अब ये अपने बूते जारी रखे हुए हैं। हर साल 6 महीने यानी खास तौर से गर्मियों के दौरान ये यहाँ पर रोजाना इसी तरह से प्याऊ लगाते हैं और लोगों को पानी पिलाते हैं। साथ ही ये इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हैं कि पानी साफ हो ताकि लोगों की सेहत पर बुरा असर न पड़े।
1: देखिए, कॉटन का कपड़ा इन्होंने यहाँ लगा रखा है, बर्फ की सिलिया जैसे ये बता रहे हैं कि 2 सिलिया आती है जिससे ये पानी पूरा ठंडा रहता है। जो भी यहाँ पे आ रहा है पूरे दिन में 400 लीटर पानी ये लेके आते हैं, 400 लीटर पानी की खपत यहाँ पे होती है। इससे पता चलता है कितने लोगों की प्यास जो है वो ये अंकल बुझा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि मेरे सामने ही कम से कम 15 से 20 लीटर पानी वो लोगों को पिला चुके हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा नेकी का काम है। जगह जगह पे हम देखते हैं, कई जगह पे कैंपर्स लगे हुए हैं, कई जगह पे ऐसे ही कुछ लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं। पर अंकल की उम्र करीब 80 साल है और 30 साल से वो लगातार इस जगह पे ऐसे पानी पिलाते आ रहे हैं।
0: तेज गर्मी में जब किसी को यहाँ ठंडा पानी पीने को मिलता है तो उसे काफी राहत का एहसास होता है। खास तौर से गर्मियों में जयपुर घूमने आने वाले सैलानियों और आम लोगों को हवा महल के पास सड़क पर चलते फिरते इस तरह पीने का ठंडा पानी मिल जाता है तो उनके चेहरे पर तरावट आ जाती है।
3: फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक राजस्थान मेरा फर्स्ट टाइम है और यहाँ पे जो हर जगह, लाइक मैं बस स्टैंड पे भी उतरी थी तो वहाँ पे भी ऐसे पानी पिला रहे थे और यहाँ पे भी पिला रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। यहाँ के
4: पानी पिला के मतलब हम पब्लिक का सेवा कर रही है, बहुत अच्छा मतलब काम है, क्योंकि पब्लिक हम दूर से आते हैं, धूप में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, प्यास लगी होती है और ठंडा पानी बहुत साफ होता है तो पीने में सुकून आता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। मतलब ये सेवा करना बहुत अच्छी बात है।
0: हवा महल के आसपास कारोबार करने वाले दुकानदार भी इसके परोपकारी सेवा भाव और इंसानियत की सराहना करते हैं।
2: धर्मेन का कहना है, सेवा के रूप में पानी पिलाते हैं, लोगों से खूब पुण्य कमाते हैं जल पिलाकर। दुकानों को पानी पिलाते, दुकान वाले बोतल लेके आते हैं, ठंडा पानी उनको भी पिलाते हैं, सभी को ठंडा पानी पिलाते हैं। सेवा का काम करते, सेवा का कार्य करते, बढ़िया है, सभी के लिए पुण्य का कार्य करते हैं।
5: बहुत अच्छी बात है, गर्मी के अंदर सेवा भी कर रहे हैं, बहुत धर्म का काम है, बहुत अच्छा काम है।
0: निस्वार्थ और निष्ठा काम भाव से लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे इन बुजुर्ग को अपने काम के प्रचार की चाह नहीं है। प्यास सबको लगती है और पानी जरूर पिलाना चाहिए, बस यही सोच इन्हें प्रेरित करती है। लिहाजा अपनी उम्र ज्यादा होने के बावजूद ये हर दिन लोगों की प्यास बुझाने में लगे रहते हैं और प्याऊ की परंपरा को इसी तरह से जिंदा रखे हुए हैं ताकि जयपुर जैसे शहर में गर्मी में हर प्यासे व्यक्ति को पानी जरूर मिले, कम से कम उसे पानी के लिए भटकना ना पड़े। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, ऐसे वीडियोस हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे, कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जो आपको गुदगुदाएंगे और हैरान भी कर देंगे।
7: हर बात बोलकर नहीं सिखाई जाती, कभी कभी एक्शन भी बहुत काम करता है। यहाँ देखिए, मामा को पता था पिटिया रानी ऐसे नहीं खाने वाली, सो आसान सा तरीका ढूंढ लाई। और देखिए, प्रयोग भले ही कहीं और हुआ है लेकिन असर सीधा वहीं हुआ जहाँ चाहिए था। बच्ची जिस फुर्ती के साथ चम्मच मुंह में लेती है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं, और जिस तरह से वो अपने पिता को सांत्वना दे रही है वो देखना तो और भी दिलचस्प है।

इनकी कलाबाजियां, आत्मविश्वास और बैलेंसिंग सब देखने लायक है। बच्चों के डांस का ये वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है, लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

कमाल है, बस यही कहेंगे आप और नजर हटाना मुश्किल हो जाएगा। इनका ये धमाकेदार डांस देखते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हैरानी बढ़ती जाएगी।

थोड़ा सीखा है अभी, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूबकर। देखिए जरा अंदाज इनका। लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब, और अब यहाँ प्रार्थना हो रही है इनकी। पर इस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

बस जीत के लक्ष्य तक पहुंचना है चाहे जैसे भी हो। इन्होंने भी यही कोशिश की थी लेकिन एक ही रेस में दो बार हार गए। देखिए बच्चे ने रेस तो लगाई थी लेकिन सब बहुत आगे निकल गए, इतने कि रेस में शामिल होना मुश्किल था। सो लॉर्ड तिवारी के साथ बोली लेकिन ये भी ना हो सका इनसे, पर फिर भी खुश बहुत है। आखिर कोशिश में कोई कमी तो नहीं रखी ना इन्होंने।

0: माँ तो बस माँ है, उसके बराबरी भला कोई कहाँ कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। लोग कह रहे हैं माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
4: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
3: to live sports action.
5: To the near side corner, to wrap around, he scores!
3: And your favorite music.
6: You and I stargazing.
3: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
15: डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी गाइडेड हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बम भी सटीकता से लगा सकेंगे निशाना। चारधाम में जोश और उत्साह के साथ यात्रा जारी, अब तक 8,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन पूजन। केदारनाथ और बद्रीनाथ में अब तक सबसे ज्यादा भक्त पहुंचे। केदारनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा लेख, विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश। 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पौड़ी गढ़वाल में सीएम योगी और धामी के बीच दिखा अनोखा कनेक्शन, दोनों एक साथ ओपन जिम में वर्कआउट करते नजर आए। उद्घाटन समारोह में गृह जनपद पहुंचे थे योगी। संगीत की दुनिया में भारत की बेटी नियति ने रच दिया इतिहास, एक मिनट में की 75 वाद्य यंत्रों की पहचान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के दीवानों के लिए खुशखबरी आई सामने, को प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने दिए संकेत, इस साल के अंत में आ सकती है धुरंधर फ्रेंचाइजी की एक और फिल्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव, और इस वक्त की शानदार खबर आपको बता दें, भारत की रक्षा ताकत को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट पर स्वदेशी गाइड हथियार प्रणाली तारा का सफल परीक्षण कर दिया है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। तारा की अगर हम बात करें तो तारा एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो अनगाइडेड वॉरहेड्स को सटीक गाइडेड हथियार में बदल देती है। अत्याधुनिक और कम लागत से ये बन करके तैयार हुई है। आपको बता दें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट के पास अपना पहला स्वदेशी गाइडेड वेपन तारा का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के तट से सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तापक स्वदेशी गाइडेड हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, जो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ये एक स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो अनगाइडेड बमों को सटीकता से निशाना लगाने वाले स्मार्ट हथियारों में बदल देती है। ये गाइडेड हथियार सतह से हवा में या हवा से सतह का काम करता है। इसमें अत्याधुनिक लो कॉस्ट सिस्टम का उपयोग किया गया है जिसे मुख्य रूप से हैदराबाद में RCI ने विकसित किया है। तो ये शानदार खबर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं GNT एक्सप्रेस।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए चरम पर है श्रद्धालुओं का उत्साह, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में उमड़ रहे सबसे ज्यादा श्रद्धालु, कल 17,575 यात्री पहुंचे धाम। इस साल अब तक 3,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं पंजीकरण। GMVN के विश्राम गृहों में अब तक 9 करोड़ के हो चुके हैं बुकिंग। 50 साल से अधिक आयु वाले श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर पर जांच करना जरूरी, तीर्थयात्रियों से धामों में स्वच्छता बनाने में सहयोग करने का किया गया आग्रह। बद्रीनाथ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं 21 दिनों की साधना, इस दौरान एकांतवास में रहेंगे बाबा बागेश्वर। ऋषि गंगा अलकनंदा के तट पर 10,279 फीट की ऊंचाई पर बाबा बागेश्वर कर रहे हैं ध्यान, प्राचीन हनुमान मंदिर खाक चौक आश्रम में साधना। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद बाबा बागेश्वर ने शुरू की साधना, 26 मई तक चलेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का योग ध्यान। फिलहाल एक वक्त के फलाहार पर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर की साधना के वक्त सिर्फ उनका एक सेवादार रहेगा। पिछले 12 सालों में यह पहला मौका है जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार और कथा वाचन पर लगाया है विराम, कर सकते हैं आत्मचिंतन। जम्मू क्षेत्र में श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियां तेज, पहला जत्था 2 जुलाई को होगा रवाना। तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 आवास केंद्र चिन्हित किए गए हैं, पेयजल बिजली आवास जैसी सुविधाओं को किया जा रहा है दुरुस्त। अधिकारियों को दिया गया निर्देश, सभी बुनियादी सुविधाओं सहित पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उनका स्वागत। पंचूर गांव के यामकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे इस दौरान मौजूद। श्रीनगर में देखने को मिल रही है फूलों की बहार, बागवानी विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पौधे बांटने की शुरुआत की। जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की पहल से श्रीनगर में रंग बिरंगे फूलों की खेती को मिल रही है नई रफ्तार, लोगों को मुफ्त पौधे देकर किया जा रहा है उन्हें जागरूक। श्रीनगर के बाग बगीचे इन दिनों फूलों से महक उठे हैं, बागवानी विभाग की नई पहल ला रही है रंग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बनाई गई शानदार रंगोली, इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर सेना और सुरक्षा बलों के शौर्य को दी गई सलामी। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर बीएसएफ ने वॉकाथॉन का किया आयोजन, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया इसमें हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर के पहले वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेना को सलाम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बदली डीपी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक चिन्ह लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के अतुलनीय पराक्रम को देश ने किया याद, अलग अलग शहरों में सेना के सम्मान में आयोजित किए गए कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लड़कियों ने सेना के शौर्य को किया सलाम, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई रंगोली। ऑपरेशन सिंदूर के पहली वर्षगांठ सेना ने कहा ऑपरेशन अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा, आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई चलती रहेगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर इंडियन आर्मी ने त्रिशूल में 15,000 फीट की ऊंचाई पर एथलेटिक्स से जुड़ी प्रतियोगिताओं का किया आयोजन, छात्रों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया इसमें हिस्सा। इस पहल ने युवाओं को शारीरिक फिटनेस और सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करने के लिए किया प्रेरित, छात्रों ने दिखाया अपना हुनर। राजस्थान में कोटा के युवा कराटे खिलाड़ी अनुराग ने एक बार फिर शहर का नाम किया रोशन, भोपाल में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे टूर्नामेंट में जीता सिल्वर। ओडिशा के कटक में देश की पहली सुपर फ्लेक्स वेल्ड मेश लाइन का किया गया शुभारंभ, इससे देश में कंस्ट्रक्शन को मिलेगा बढ़ावा। गुजरात के जामनगर में निकली अनोखी बारात, घोड़े की जगह दूल्हे ने की हाथी की सवारी, उत्साह और खुशी से सराबोर नजर आया पूरा इलाका। फिल्मी फ्राइडे पे सिनेमाघरों में कॉमेडियन कपिल शर्मा और नीतू कपूर की फिल्म दादी की शादी ने दी दस्तक, इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर रही है रिधमा कपूर साहनी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं बड़े पर्दे पर हुई रिलीज, रिटायर्ड कश्मीरी बैंकर की कहानी है ये फिल्म। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 के दीवानों के लिए खुशखबरी आई सामने, को प्रोड्यूसर ज्योति देश पांडे ने दिए संकेत, इस साल के अंत में आ सकती है धुरंधर फ्रेंचाइजी की एक और फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का जलवा बरकरार, 150 करोड़ रुपए का फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। सुपरस्टार रितेश देशमुख की लेटेस्ट मराठी फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है अच्छी कमाई, सातवें दिन इस मूवी ने करीब 4 करोड़ रुपए का किया कारोबार। साल 2026 के कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के सितारे बिखेरेंगे चमक, फिल्म समारोह में शामिल होंगे ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट और अदिति राव आइदुरी। ईशान खट्टर पंजाबी अभिनेत्री तानिया के साथ जुगाड़ू में आएंगे नजर, फिल्म का निर्देशन पलाश वासवानी करेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपए 23 पैसे ऊपर चढ़ा, इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 94.26 रुपए हो गई है। अयोध्या में रामलला के साथ ही अपर कोटा कॉरिडोर में भी शुरू हुए दर्शन, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सभी 6 उपमंदिर। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती में तेज हवा के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दोनों रनवे चालू हो गए हैं, मानसून की तैयारियों के लिहाज से कल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मेंटेनेंस के लिए किया गया था इसे बंद। बिहार के मुजफ्फरपुर में झालमुड़ी का बड़ा क्रेज, 5 गुना बड़ी बिक्री, बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी खाने का असर। जयपुर की तपती गर्मी में बुजुर्ग पेश कर रहे हैं इंसानियत की मिसाल। 78 साल के गोपाल दादा 30 साल से बुझा रहे हैं राहगीरों की प्यास। गोपाल दादा हवा महल के पास मटका और सैकड़ों लीटर पानी लेकर बैठते हैं। उनका मकसद है गर्मी में कोई भी प्यासा ना रह जाए। गोपाल दादा कहते हैं प्यास सबको लगती है, पानी जरूर पीना चाहिए। यही सोच उन्हें हर दिन सेवा के लिए कर रहा है प्रेरित। यूपी हरियाणा के करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी आई सामने। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टिकट बुकिंग की हुई शुरुआत। इंडिगो ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टिकटों की बुकिंग कर दी शुरू। आने और दूसरे शहरों में जाने के लिए उड़ानों के टिकटों की बिक्री। DXN NIA कोड इंडिगो के सिस्टम पर दिखना शुरू हो गया है। पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगी। 15 जून को लखनऊ से उड़कर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। एक घंटे में पूरा होगा हवाई सफर। नोएडा एयरपोर्ट को बड़े एविएशन हब के रूप में किया जा रहा है विकसित। दिल्ली NCR और पश्चिमी यूपी के यात्रियों को होगा इससे फायदा। नोएडा एयरपोर्ट पर आधुनिक टर्मिनल, बेहतर संचालन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा। उड़ान शुरू होने से व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के लोगों के लिए गुड न्यूज। रक्सौल से हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
16: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बम भी सटीकता से लगा सकेंगे निशाना। मौसम खराब होने के बाद भी केदारधाम में भक्तों का जोश हाई, अब तक 3.5 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन, हर रोज टोकन सिस्टम से पहुंच रहे 25,000 से अधिक यात्री। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर पीएम मोदी ने लिखा लेख, विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश, 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पौड़ी गढ़वाल में सीएम योगी और धामी के बीच दिखा अनोखा कनेक्शन, दोनों एक साथ ओपन जिम में वर्कआउट करते आए नजर, उद्घाटन समारोह में गृह जनपद पहुंचे थे योगी। हॉरर कॉमेडी भूत बंगला का जलवा बरकरार, 21वें दिन पार किया 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा, साल 2026 की बॉलीवुड की तीसरी बड़ी हिट फिल्म का मिला तमगा।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और हमारे खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आदि कैलाश यात्रा की, जिसका शुभारंभ हो चुका है। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित आदि कैलाश धाम के लिए तीर्थ यात्रा शुरू हो चुकी है। पिथौरागढ़ से यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के जत्थे को 1 मई को ही रवाना किया गया था। वहीं कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा आज हल्द्वानी, धारचूला और टनकपुर से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का एक दल कर धारचूला से, जबकि कल ही एक दल टनकपुर से भी रवाना होगा। टनकपुर से यात्रा 6 दिन में पूरी होगी। आपको ये भी बता दें कि महादेव के प्रमुख धाम यानी कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसकी तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। हालांकि कैलाश मानसरोवर चीनी क्षेत्र में है, इसीलिए कम ही लोगों को वहां जाने का अवसर मिल पाता है। लेकिन बात अगर आदि कैलाश की करें तो आदि कैलाश वो जगह है जहां से माना जाता है कि कैलाश पर्वत के भी दर्शन होते हैं। हालांकि ये दर्शन सीधे नहीं होते हैं। आदि कैलाश यात्रा के दौरान ओम पर्वत के दर्शन होते हैं, जो मुख्य कैलाश का ही एक रूप माना जाता है। तो माना जाता है कि जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर नहीं जा पाते, वो आदि कैलाश से ओम पर्वत के दर्शन करके वहीं पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, पुण्य हासिल कर सकते हैं। वहीं आदि कैलाश को भी भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास माना जाता है और इसका स्थान पंच कैलाश में है, तो इसकी धार्मिक महत्ता भी बहुत ज्यादा है। हम आज आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा से पहले आदि कैलाश यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे, आपको आदि कैलाश की कहानी भी बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और आदि कैलाश की क्या कहानी है वो भी हम आज आपको इस बुलेटिन में बताने वाले हैं। क्यों इसे इतना खास माना जाता है, क्या इसकी महत्ता है, लेकिन उससे पहले तमाम खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत भी बहुत पहले हो चुकी थी, और इसके बाद जो अगला स्टॉप माना जाता है वो है आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर, जिसकी दिव्य तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा से पहले देवभूमि उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। लेकिन देश में महादेव के तो तमाम धाम हैं। पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इसके अलावा केवल उत्तराखंड में ही पंच केदार भी है और पहाड़ों में पंच कैलाश भी है। तो इन सब के बीच आदि कैलाश की महिमा क्या है, महादेव के इस धाम की क्या महत्ता है, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये भी जानना आवश्यक है कि इस तीर्थ यात्रा में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
1: हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित देवाधिदेव महादेव का एक और धाम इन दिनों तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर बुला रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा 22 अप्रैल से चल रही है, जबकि चीन के कब्जे में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा जून से शुरू होने वाली है। उससे पहले उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसे भी भगवान भोले भंडारी से जुड़े प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। आदि कैलाश देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आदि कैलाश को पंच कैलाशों में से एक माना गया है। पंच कैलाश हिमालय में स्थित उन 5 सबसे पवित्र पर्वत शिखरों का एक समूह है, जिनका संबंध महादेव से है और जिन्हें भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। पंच कैलाश में कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड महादेव और मणिमहेश कैलाश को शामिल किया गया है। इनमें से आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसरोवर के पास स्थित मुख्य कैलाश पर्वतों की प्रतिकृति जैसा दिखता है। पंच कैलाश की यात्रा महादेव में गहरी आस्था का प्रतीक है और हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच स्थित होने के कारण ये तीर्थ यात्रा बेहद कठिन भी है। सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए इनका बड़ा महत्व है। हालांकि पंच कैलाश में आदि कैलाश की यात्रा इन दिनों खास तौर से महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यहां से मुख्य कैलाश पर्वत की झलक दिखती है। आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आदि कैलाश को भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास माना गया है। इसे भगवान गणेश और कार्तिकेय का निवास स्थान भी माना जाता है। इसे बाबा कैलाश या जोंगलिंग कोंग चोटी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव से संबंध होने के कारण श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के मन में इस पवित्र स्थान के लिए गहरी आस्था है। महादेव की उपासना का धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव लेने के लिए हर साल श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। माना जाता है कि आदि कैलाश में स्थित पार्वती सरोवर और गौरीकुंड में दिव्य ऊर्जा का वास है। इस स्थान का संबंध शिव पार्वती के विवाह से भी जुड़ा माना जाता है। ये भी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा ली थी। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए आदि कैलाश में ही कठोर तपस्या की थी। उनके अटूट प्रेम और तप के कारण ही शिवजी ने इस स्थान को अपना निवास स्थान चुना। माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां भगवान शिव ने तांडव किया था। मान्यता है कि महादेव ने यहीं पर ऋषि अष्टावक्र को अपना दिव्य रूप दिखाया था। यहाँ प्राकृतिक रूप से ओम जैसा दिखने वाला पर्वत भी है, जिसके कारण इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि आदि कैलाश में शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का निवास है। यहाँ की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले कई भक्त ये अनुभव होने का दावा करते हैं। भक्ति आस्था और रोमांच की वजह से तीर्थ यात्रियों में विशेष उत्साह दिखता है। इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से जुड़ी है। सड़क निर्माण के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पहले से कहीं अधिक सुगम हो गई है। इस धार्मिक यात्रा के दौरान तीर्थयात्री पहले पैदल आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाते थे या घोड़े खच्चरों का सहारा लेते थे, लेकिन अब आदि कैलाश पर्वत के पास मौजूद पवित्र झील पार्वती सरोवर तक गाड़ी चली जाती है। इसके कारण ये तीर्थयात्रा पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है। आदि कैलाश की यात्रा करना हर शिव भक्त का सपना होता है, लेकिन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित इस स्थान पर पहुंचना आसान नहीं है। इस तीर्थ यात्रा के लिए सही प्लानिंग और ठोस तैयारी भी जरूरी है, क्योंकि मौसम के बदलते मिजाज के बीच यहां हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर आप भी इस दिव्य तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बना रही है तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद रहे। आदि कैलाश और ओम पर्वत भारत चीन सीमा के करीब स्थित है, इसलिए यहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना जरूरी है। ये परमिट धारचूला स्थित SDM कार्यालय से बनता है। इसके लिए आपको अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, फोटो और पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। सरकारी अनुमति के बिना गुंजी या उससे आगे क्षेत्रों में नहीं जाया जा सकता। पहाड़ों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। यहाँ के संकरे रास्तों पर ड्राइविंग भी आसान नहीं है, लिहाजा इस यात्रा के लिए 4x4 या ऊंचे बेस वाली मजबूत गाड़ियों पर ही सफर करना चाहिए। साथ ही ड्राइवर ऐसा होना चाहिए जिसे पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने का लंबा अनुभव हो। धारचूला के बाद आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, इसलिए एक्स्ट्रा फ्यूल साथ लेकर चलें। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में नेटवर्क न होने के कारण UPI यानी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम काम नहीं करता। ATM भी हर जगह नहीं होते, इसलिए पर्याप्त कैश साथ होना चाहिए। आदि कैलाश यात्रा धारचूला से शुरू होकर गुंजी के रास्ते से गुजरती है। धारचूला से गुंजी तक अब तक अच्छी सड़क उपलब्ध है, जिससे ये सफर पहले से आसान हो गया है, लेकिन हिमालय का ये क्षेत्र आज भी काफी दुर्गम है, लिहाजा सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। ऊंचाई वाले इलाकों में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इससे एल्टीट्यूड सिकनेस यानी सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द और जी मिचलाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए एक्लेमेटाइजेशन जरूरी है। इसके अलावा अपने साथ जरूरी दवाई रखें और खूब पानी पिएं। अपनी मेडिकल किट में फर्स्ट एड के साथ पेन किलर गोलियां, ORS के पैकेट, सनस्क्रीन और लिप बाम जरूर रखें, ताकि तेज धूप और ठंडी हवाओं से बचा जा सके। पहाड़ों में मौसम जल्द ही बदल जाता है, बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते, गर्म कपड़े, थर्मल इनर जैकेट, दस्ताने और ऊनी जुराबें साथ होनी चाहिए। ऊर्जा बनाए रखने के लिए डार्क चॉकलेट, सूखे मेवे, एनर्जी बार और एक पावर बैंक भी साथ रखें, क्योंकि यहाँ बिजली की किल्लत रहती है। अपने साथ एक छोटी ऑक्सीजन केन और पानी की अच्छी बोतल रखें, ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। इन दुर्गम हालात में लोकल गाइड की भी अहम भूमिका होती है। वे न केवल रास्तों के बारे में जानते हैं, बल्कि आपातकालीन स्थिति में भी उनकी सूझबूझ बहुत काम आती है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए थे। उसके बाद से आदि कैलाश यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखने लगा है, क्योंकि जो लोग कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते वे आदि कैलाश से ही कैलाश पर्वत के दर्शन का पुण्य लाभ कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा जोर शोर से चल रही है और इसी राज्य में अब एक और यात्रा की शुरुआत हुई है, जो कि है आदि कैलाश यात्रा। पिथौरागढ़ में इन दिनों आदि कैलाश यात्रा चल रही है। आदि कैलाश पिथौरागढ़ जिले से लगी चीन सीमा के काफी करीब है। यहां जाने के लिए परमिट काफी जरूरी होता है, तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में आदि कैलाश के दर्शन कराने के साथ ही ये भी बताएंगे कि इस यात्रा पर कैसे जाया जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी जगह है जो आपको इस यात्रा में अद्भुत रोमांच का अनुभव कराएंगी।
2: यह है पिथौरागढ़ में चीनी सीमा पर मौजूद आदि कैलाश पर्वत। आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर का ही दूसरा स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शंकर यहाँ विराजमान हैं और इसीलिए सैलानी भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए आदि कैलाश यात्रा करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं आदि कैलाश की अद्भुत रोमांचक यात्रा पर। यूं तो पिथौरागढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, इसीलिए यहां आना हर पर्यटक की आरजू होती है। खास तौर पर आदि कैलाश आने से सैलानियों की प्राकृतिक सौंदर्य देखने की इच्छा तो पूरी होती ही है, वो भगवान शिव का भी दर्शन कर लेते हैं। आदि कैलाश यात्रा पर जाने के लिए अब स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया है। धारचूला में मेडिकल के बाद यात्री आगे का सफर तय कर सकते हैं। आदि कैलाश पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेन या बस के जरिए काठगोदाम या फिर टनकपुर पहुंचना होगा, जहां से टैक्सी, बस या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी के जरिए आप धारचूला पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी से धारचूला की दूरी 334 किलोमीटर है, तो वहीं टनकपुर से धारचूला की दूरी 236 किलोमीटर है। धारचूला के बाद शुरू होता है हिमालय इलाके का कभी ना भुलाए जाने वाला रोमांचक सफर। धारचूला से नेशनल हाईवे के बीच सफर शुरू होता है। काली नदी के किनारे किनारे चलते हुए धारचूला के बाद पहला पड़ाव पांगला आता है। पांगला के बाद यात्री मालपा पहुंचते हैं, जो कभी मानसरोवर यात्रा का मुख्य पड़ाव हुआ करता था, जिसके बाद यात्री बूंदी पड़ाव पहुँचते हैं। बूंदी के बाद यात्री छिया लेक पहुँचते हैं, जहाँ इस चीन नेपाल बॉर्डर क्षेत्र की इनर लाइन भी है। छिया लेक के बाद यात्रा का मुख्य पड़ाव गुंजी आता है। यहाँ एक रात रुकने के बाद अगले दिन यात्री आदि कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। आदि कैलाश की यात्रा में चीन सीमा पर स्थित भारत का अंतिम गांव पड़ता है कुटी। हिमालय की गोद में बसा खूबसूरत कुटी गांव पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंत में यात्री पहुंचते हैं 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग कांग पे, जहां से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। आदि कैलाश को भगवान शिव का मूल स्थान माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि आदि कैलाश भगवान शिव का प्रिय स्थान भी है। यहाँ वो माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। आदि कैलाश के पास ही पार्वती ताल और गौरी कुंड भी स्थित है। कहा जाता है कि माँ पार्वती यहीं स्नान करने के बाद शिव की पूजा अर्चना करती थी। यात्री यहाँ स्नान कर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Tailgate Top 20.
3: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
2: The Tailgate Top 20.
4: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
3: Try to keep up.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देखिए, आजकल एआई का जमाना है, सवाल पूछो और तुरंत जवाब मिल जाता है। इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है और इसीलिए इंसानी दिमाग की भी अहमियत है। भारत में तो इस फील्ड में बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी कमाल कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के अविराज को ही देख लीजिए, ये नन्हा सा बच्चा अभी 3 साल का भी पूरा नहीं हुआ मगर इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है।
7: विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं?
8: 10।
7: और परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
8: छठे अवतार।
7: और परशुराम के पास क्या होता है?
9: ये नन्हा चैंपियन अविराज है जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर जन्मा एक चमकता सितारा है जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है।
7: रावण कहाँ लेके गया था सीता माता को?
8: अशोक वाटिका।
7: अशोक वाटिका कहाँ है?
8: लंका में।
7: और लंका कौन जला दिया था? लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कैसे, जोर से बोलो, हनुमान जी कैसे लंका जलाए थे?
8: अपनी
7: टेल से।
9: इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे। उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया।
8: टाइगर।
9: ये डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे खतरनाक अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड में फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर सकता है।
7: परशुराम के पास क्या होता है?
8: फरसा।
7: और परशुराम अपने फरसे से किसका टस्क तोड़ दिए थे?
8: गणेश जी का
7: टस्क तोड़ दिए थे। और विष्णु भगवान का पावरफुल वेपन क्या है?
8: सुदर्शन।
9: अविराज अभी 2 साल 11 महीने के हैं। इस उम्र में बच्चे अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाते मगर मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाला ये नन्हा उस्ताद बाकी बच्चों से जुदा है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं क्योंकि इसने अपनी मेमोरी और नॉलेज से सभी को हैरान किया हुआ है। इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और शब्द सुनते ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी अद्भुत प्रतिभा की वजह से अविराज अभी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुका है।
7: इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जीनियस में है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है और इंटरनेशनल है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे करके कई 7-8 रिकॉर्ड्स मतलब हैं।
9: अविराज को जानवर ही नहीं कई पक्षियों के नाम भी याद हैं। वो 42 देशों की राजधानी और 36 देशों के झंडे की पहचान कर सकता है। भारत के कई राज्यों की राजधानी उसे जुबानी याद है जबकि ग्रहों और सोलर सिस्टम की तो उसे पूरी समझ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं के वाहन तक बता सकता है। शास्त्र और पुराण की उसे अच्छी खासी जानकारी है और भगवान विष्णु के सभी अवतार उसे जुबानी याद हैं।
7: हम तीनों लोग, उसके दादाजी, नाना जी और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की कैपिटल से स्टार्ट किया कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, हम हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना की क्या है, तो वो कैपिटल्स बताए। पीएम कौन है हमारे, तो वो भी उसको मतलब ठीक से बता पाया वो।

0: उसके बाद वो तीन स्टेट से हम 52 कंट्रीज़ की भी बता पाता है, 28 स्टेट्स की भी बता पाता है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 8 है उनकी भी कैपिटल्स बता पाता है।
1: अब मध्य प्रदेश से उठी ये चमक विदेश तक रोशनी फैला रही है। ये कहानी सिर्फ अभिराज की नहीं है बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ये ऐसे वीडियोस हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर भी कर देंगे और कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो आपको गुदगुदाएंगे और हैरान भी कर देंगे।
3: हर बात बोलकर नहीं सिखाई जाती, कभी कभी एक्शन भी बहुत काम करता है। यहाँ देखिए, मामा को पता था पिटिया रानी ऐसे नहीं खाने वाली, सो आसान सा तरीका ढूंढ लाई। और देखिए, प्रयोग भले ही कहीं और हुआ है लेकिन असर सीधा वही हुआ जहाँ चाहिए था। बच्ची जिस फुर्ती के साथ चम्मच मुंह में लेती है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं, और जिस तरह से वो अपने पिता को सांत्वना दे रही है वो देखना तो और भी दिलचस्प है।

इनकी कलाबाजियां, आत्मविश्वास और बैलेंसिंग सब देखने लायक है। बच्चों के डांस का ये वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

बनाना सीखा है अभी, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूब कर। देखिए जरा अंदाज इनका। लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब, और अब यहाँ प्रार्थना हो रही है इनकी। पर इस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

जीत के लक्ष्य तक पहुंचना है चाहे जैसे भी। इन्होंने भी यही कोशिश की थी, लेकिन एक ही रेस में दो बार हार गए। देखिए, बच्चे ने रेस तो लगाई थी, लेकिन सब बहुत आगे निकल गए, इतने कि रेस में शामिल होना मुश्किल था। सो लॉर्ड तिवारी के साथ बोली, लेकिन ये भी ना हो सका इनसे, पर फिर भी खुश बहुत है। आखिर कोशिश में कोई कमी तो नहीं रखी ना इन्होंने।

0: माँ तो बस माँ है, उसके बराबरी भला कोई कहाँ कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। लोग कह रहे हैं माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण हुआ। अनगाइडेड बम भी सटीकता से लगा सकेंगे निशाना। मौसम खराब होने के बाद भी केदारधाम में भक्तों का जोश है। अब तक 3.5 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। हर रोज टोकन सिस्टम से पहुंच रहे 25,000 से अधिक यात्री। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेख विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश। 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पौड़ी गढ़वाल में सीएम योगी और धामी के बीच दिखा अनोखा कनेक्शन। दोनों एक साथ ओपन जिम में वर्कआउट करते आए नजर। उद्घाटन समारोह में गृह जनपद पहुंचे थे योगी। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का जलवा बरकरार। 21वें दिन पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा। साल 2026 की बॉलीवुड की तीसरी बड़ी हिट फिल्म का मिला टैग।
5: एनईसीसी संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
6: सज गई है खबरों की पेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: भारत की रक्षा ताकत को मिली एक और बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट पर स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का किया सफल परीक्षण। एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है तारा, जो अनगाइडेड वॉरहेड्स को सटीक गाइडेड हथियार में बदल देती है। भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है तारा, देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को मिली नई मजबूती। तारा के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। उत्तराखंड के पौड़ी से आई शानदार तस्वीर। महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय के ओपन जिम में यूपी के सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम धामी एक साथ जिम करते नजर आए।
7: श्रीनगर में देखने को मिल रही है फूलों की बहार। बागवानी विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पौधे बांटने की शुरू की मुहिम। जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की पहल से श्रीनगर में रंग बिरंगे फूलों की खेती को मिल रही है नई रफ्तार। लोगों को मुफ्त पौधे देकर किया जा रहा है जागरूक। श्रीनगर के बाग बगीचे इन दिनों फूलों से महक छटे हैं और बागवानी विभाग की नई पहल ला रही है एक अनोखा सरन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बनाई गई शानदार रंगोली, इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर सेना और सुरक्षा बलों के शौर्य को दी गई सलाम। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर बीएसएफ ने वॉकथॉन का आयोजन किया, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर इंडियन आर्मी ने चुशूल में 15,000 फीट की ऊंचाई पर एथलेटिक्स से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, छात्रों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इस पहल ने युवाओं को शारीरिक फिटनेस और सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करने के लिए किया प्रेरित, छात्रों ने दिखाया अपना हुनर। राजस्थान में कोटा के युवा कराटे खिलाड़ी अनुराग ने एक बार फिर से शहर का नाम रोशन किया, भोपाल में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे टूर्नामेंट में जीता सिल्वर। ओडिशा के कटक में देश की पहली सुपर फ्लेक्स लाइन का शुभारंभ किया गया, इससे देश में कंस्ट्रक्शन को मिलेगा बढ़ावा। गुजरात के जामनगर में निकली अनोखी बारात, घोड़े की जगह दूल्हे ने की हाथी की सवारी, उत्साह खुशी से सराबोर नजर आया पूरा इलाका। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए चरम पर है श्रद्धालुओं का उत्साह, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में उमड़ रहे सबसे ज्यादा श्रद्धालु, कल 17,575 यात्री पहुंचे धाम। इस साल अब तक 3,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं पंजीकरण, जीएमवीएन के विश्राम गृहों में अब तक 9 करोड़ की हो चुकी है बुकिंग। 50 साल से अधिक आयु वाले श्रद्धालु के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर पर जांच कराना जरूरी है, तीर्थयात्रियों से धामों में स्वच्छता बनाने में सहयोग करने का किया गया आग्रह। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघरों में कॉमेडियन कपिल शर्मा और नीतू कपूर की फिल्म दादी की शादी ने दी दस्तक, इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर रही रिधिमा कपूर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं बड़े पर्दे पर हुई रिलीज, रिटायर्ड कश्मीरी बैंकर की कहानी है ये फिल्म। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 के दीवानों के लिए गुड न्यूज आई है, को प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने दिए संकेत, इस साल के अंत में आ सकते हैं धुरंधर फ्रेंचाइजी की एक और फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का जलवा बरकरार, 150 करोड़ रुपए का फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। सुपरस्टार रितेश देशमुख की लेटेस्ट मराठी फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही, साथ में दिनेश मूवी ने करीब 4 करोड़ का कारोबार किया।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: सच्ची खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
6: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
7: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आधुनिक स्वरूप के 75 साल पूरे होने पर 4 दिनों का विशेष उत्सव, 11 मई को समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी।
6: जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र यात्रा, पूरे यात्रा मार्ग पर इंतजामों में जुटा है प्रशासन।
7: चारधाम यात्रा में 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन, केदारनाथ और बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब।
6: अभी खत्म नहीं हुई धुरंधर रिलीज, को प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने दिए संकेत, इस साल के अंत तक आ सकती है फ्रेंचाइजी की एक और फिल्म।
7: जिनेवा में 6 कैरेट के दुर्लभ ब्लू डायमंड की होगी नीलामी, 113 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच सकती है इसकी कीमत।
6: और चलिए लंच टाइम में आपको सबसे पहले फिल्मी सफर पर लिए चलते हैं, आज फिल्मी फ्राइडे भी है तो बताएंगे वीकेंड पर आप किन किन फिल्मों को सिनेमाघरों में देखकर एंटरटेन हो सकते हैं। लेकिन सबसे बात पहले सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म कर्तव्य की, जिसका ट्रेलर रिलीज के साथ सोशल मीडिया पर छाया है। फिल्म में सैफ पुलिस किरदार में है जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
7: दरअसल फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर 15 मई को रिलीज भी होने वाली है।
8: धर्म करते हैं कर्म छूटता है, कर्म करते हैं धर्म छूटता है, कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुंचती साड़ी।
9: धर्म और कर्म के बीच जब इंसान उलझता है तभी सही मायने में उसके कर्तव्य की परीक्षा होती है। सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म कर्तव्य भी कुछ ऐसे ही ताने बाने में उलझी हुई है, जिसके ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है।
10: जी
8: क्या बात है?
10: मारी बहन प्रीति ने लेके भाग गया तेरा भाई।
9: कर्तव्य एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसमें सैफ अली खान ने पुलिस इंस्पेक्टर पवन की भूमिका निभाई है। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके लिए जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाना उसका फर्ज भी है और कर्तव्य भी।
11: पता कौन है यो? इसने मारा पत्रकार ने।
12: जब पहली बार मैंने वर्दी पहनी थी वो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में पहनी थी और मेरे डायरेक्टर ने कहा प्लीज पुलिस वाले का ऑफिस रोल कभी मत करना, आपको सूट नहीं करेगा क्योंकि आप बच्चे हो। और अगर उसके बाद सेक्रेट गेम्स में और इस फिल्म में मेरे डायरेक्टर्स ने कहा नहीं आपने अच्छा काम किया, तो इसका मतलब कि मैं थोड़ा ग्रो कर चुका हूँ वहाँ से और ये मेरे लिए बहुत बड़ी।
9: ट्रेलर में दिखाया गया है कि पवन को एक पत्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलती है लेकिन उस पत्रकार की हत्या हो जाती है। ऐसे में पवन पर सवाल खड़े होने लगते हैं। दूसरी तरफ वो अपने परिवार की वजह से भी मुश्किलों में फंसा नजर आता है। ऐसे में पवन की पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करती है और मुश्किल की घड़ी में पति का बखूबी साथ निभाती है। पवन की पत्नी की भूमिका फिल्म में रसिका दुग्गल ने निभाई है।
13: महादेव का भक्त हूँ और ऊपर से पुलिस वाला, मैं भी देखता हूँ कि फाड़ लेगा।
14: मेरा कर्तव्य यही है कि जो शायद ये उम्मीद रखती हूँ कि शायद जो हमारी पर्सनल जर्नी है पवन और वर्षा की, जो सैफ के कैरेक्टर है और मेरा कैरेक्टर है, उनसे शायद हम फिल्म की का जो इमोशनल कोर है उसको छुप पाएं। और अक्सर ऐसा होता है कि क्राइम ड्रामा की रफ्तार में ये छोटी छोटी चीज़ें अनदेखी हो जाती हैं और मुझे लगता है कि शायद इमोशनल कोर इन दो कैरेक्टर्स के एक्सचेंजेस से और इनके कॉन्वर्सेशन से और साइलेंसेस से उभर के निकलता है।
9: इंस्पेक्टर पवन ट्रेलर में भले ही अपने फर्ज और परिवार के बीच में उलझे हुए दिख रहे हैं लेकिन इस किरदार में सैफ अली खान काफी दमदार लग रहे हैं। उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ जबरदस्त है। जाहिर है अनुभव के साथ सैफ की अदाकारी काफी परिपक्व हुई है और इस परिपक्वता को फिल्म के डायरेक्टर पुलकित ने अपने सिनेमाई अनुभव से निखारा है।
12: तो हम बहुत लकी हैं, हम सब बहुत लकी हैं कि पुलकित के साथ काम करने को मिला, जो इन्होंने बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है और बहुत अच्छी तरह उसे फिल्माया गया, अच्छी तरह उसे डायरेक्ट किया और इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं मेरे साथ इस फिल्म में। मुझे बहुत मतलब आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी। और जिस तरह से हिंदी बोलते हैं, जिस तरह से भाषा का कंट्रोल है इनके पास, तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने रसिका के साथ पहली बार काम किया, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड मुझे आई एब्सोल्युटली लव द एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई होप ये फिल्म सबको बहुत अच्छी लगे।
9: सैफ अली खान के साथ इस फिल्म में रसिका दुग्गल तो है ही, संजय मिश्रा और जाकिर खान भी अहम किरदार में है।
15: जो मेरा इसमें किरदार है, जो मेरा कर्तव्य है इस फिल्म के अंदर, उसके आसपास अगर खुल के बोलूंगा तो फिर वो रिवील हो जाएगा, जो कि
14: स्पॉइलर हो जाएगा।
15: तो कर्तव्य बहुत कठिन है, मेरा कर्तव्य बहुत कठिन है, मुझे ऐसा लगता है।
14: तो अभी का कर्तव्य कि हम स्पॉइलर ना दें।
15: इतना कठिन कर्तव्य है कि उसमें ये भी फंसते हैं, वो भी फंसते हैं, सबके ऊपर प्रेशर आ जाता है। इतना कठिन कर्तव्य है।
8: धर्म करते हैं कर्म छूटता है, कर्म करते हैं धर्म छूटता है, कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुंचती साड़ी।
9: ट्रेलर सामने आने के बाद सैफ अली खान की कर्तव्य को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट हाई हो गई है। ट्रेलर तो काफी दमदार लग रहा है। अब देखना होगा कि 15 मई को OTT पर रिलीज के बाद फिल्म कैसा कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो सैफ अली खान की तरह ही बॉबी देओल भी करियर में दूसरी पारी खेल रहे हैं और सैफ की तरह बॉबी भी दमदार भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। अपकमिंग फिल्म बंदर में भी बॉबी देओल ने ऐसा ही एक दमदार किरदार निभाया है, एक ऐसा किरदार जिससे आपको मोहब्बत भी हो सकती है और नफरत भी।
16: देखिए, जिसकी झलक बंदर के टीजर में साफ देखी जा सकती है, ये फिल्म 5 जून को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

0: इस धमाकेदार टीजर ने दर्शकों की बेसब्री को और बढ़ा दिया। एक सुपरस्टार का अंदाज और एक रॉक स्टार जैसा स्वैग लिए बॉबी देओल का किरदार इस फिल्म में बेहद जुदा दिख रहा है।
1: समीर मेहरा थाने चल, बुलाया तेरे को।
2: वो लड़की झूठी है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है।
0: अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। लंबे अरसे से फैंस इस फिल्म की एक झलक पाने को बेताब थे। कल बंदर का टीजर रिलीज हुआ तो फिल्म के लिए फैंस का क्रेज और बढ़ गया और इसके साथ ही सामने आ गया है बॉबी देओल का वो वर्सटाइल अंदाज जो उनके करियर की दूसरी पारी में प्रमुखता से नजर आ रहा है।
2: His most naked performance. He just has to be. Has to play a very normal human being. There is no Bobby Deol. Or literally a reference hai is film mein. Ki Bobby Deol tha 25 saal pehle. Ab nahi hai.
0: बंदर के टीजर में बॉबी पुराने जमाने के डिस्को डांसर जैसे लुक में दिख रहे हैं। टीजर की शुरुआत में वो चमचमाती जैकेट में स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं तो टीजर के अगले हिस्से में ही फिल्म में आगे आने वाले ट्विस्ट की झलक भी दिख रही है। टीजर से अंदाजा लग रहा है कि इस फिल्म की कहानी काफी इंटेंस और उलझनों से भरी हुई है। बंदर में बॉबी का किरदार बता रहा है कि वो पर्दे पर हीरो बनकर नहीं एक एक्टर बनकर आ रहे हैं जिसमें एक्टिंग की भूख है। बॉबी की इस भूख को बॉलीवुड ने आश्रम सीरीज के बाद ही पहचानना शुरू कर दिया था जो आने वाली फिल्मों के साथ और बढ़ती चली गई और अब बंदर उनकी इस अदाकारी की भूख की अगली कड़ी है जिसे फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपने अनुभव से और बढ़ा दिया है।
2: बॉबी को ने तो एक बहुत बड़ी बात मेरे को बोली थी कि मैं 40 का था तब पहली बार किसी ने मुझे बोला यार बॉबी तेरे को एक्टिंग सीखनी चाहिए। मुझे किसी ने बचपन से नहीं बोला था कि मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए और फिर उसने वो चीज पे अमल किया। उसने जब आश्रम किया या लव हॉस्टल किया उसने उस तरह के कैरेक्टर के जैसा वो इंसान नहीं है। बोलता कि मैं ऐसा कैरेक्टर करके आ रहा हूं जिससे होता ना जिसको आपको अपने आप से घृणा हो जाए लेकिन मैंने देखा उसको किस तरह से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट किया मेरा फिर कैरेक्टर करने का मन करता है क्योंकि मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जब तक मैं मिला उनसे तब तक काफी प्रकाश झा शंकर जिन्होंने लव हॉस्टल बनाई या क्लास ऑफ 83 अतुल सबरवाल या एनिमल ये से गुजर चुके थे तो मेरे पास एक वो एक्टर आया था जो नया करना चाहता था जो अपने आप के साथ और खेलना चाहता था डिस्कवर करना चाहता था।
0: मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये क्राइम थ्रिलर फिल्म रियल लाइफ घटनाओं और मी टू मूवमेंट से प्रेरित है। इनमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक झूठा आरोप किसी व्यक्ति के पूरे करियर और उसके सम्मान को तबाह कर सकता है। टीजर से साफ झलक रहा है कि बॉबी किसी फेक डेटिंग ऐप के चक्कर में पड़कर जेल पहुंच जाते हैं। अब इन आरोपों को बॉबी कैसे झूठा साबित करते हैं कैसे जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आते हैं यही फिल्म की यूएसपी है। बंदर 5 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है। फिलहाल तो टीजर ने फिल्म में दिखने वाली टेंशन और ड्रामा की झलक दिखाकर दर्शकों की दिलचस्पी तो बढ़ा ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
3: अब देखिए इस फिल्मी फ्राइडे बॉलीवुड की दो फिल्मों ने दस्तक दी है। पहली है नीतू कपूर और कपिल शर्मा स्टारर दादी की शादी जो नाम से ही दिलचस्प और स्टार कास्ट से ह्यूमरस दिखाई दे रही है। इस फैमिली एंटरटेनर से नीतू कपूर की बेटी रिधिमा कपूर बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। खास बात यह है कि मां बेटी की रियल लाइफ जोड़ी रियल लाइफ में इसी किरदार में आपको नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रांगदा की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं जो अपने नाम से ही दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही है।

0: एक बार फिर फ्राइडे आया है और अपने साथ लाया है फिल्मों की वो फेहरिस्त जो आज सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने जा रही हैं। इनमें सबसे पहला नाम है फिल्म दादी की शादी का। इस फिल्म के जरिए कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्ट्रेस नीतू कपूर की जोड़ी बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है जो थिएटर्स में हंसी का डबल डोज देने वाली है। फिल्म में कपिल और नीतू का रिश्ता दादी पोते का है। फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई इस फिल्म में नीतू कपूर एक ऐसी दादी का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला करती है। वहीं कपिल शर्मा उनके पोते के रोल में है, जो इस शादी को लेकर पहले हैरान और फिर पूरी तरह सपोर्टिव नजर आते हैं। इसी अनोखे कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती ये फिल्म हर तरह से हंसी के शौकीनों के लिए उम्दा है। इस फिल्म की हाईलाइट हैं रद्धिमा कपूर, जो फिल्म में भी नीतू कपूर की बेटी बनी हैं और इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। फिल्म में युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भी अहम किरदार में हैं। इसके अलावा सदिया खातिब, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार शरद कुमार समेत कई सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। कुल मिलाकर आशीष आर मोहन के डायरेक्शन में बनी फिल्म दादी की शादी एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें हंसी और मस्ती भरपूर है। इस फैमिली एंटरटेनर के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं। ये फिल्म एक ऐसे बैंकर की कहानी है जो दो देशों भारत और जर्मनी में रहते हुए एक एक्टर से एक्टिंग सीखता है। नवाजुद्दीन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रहने वाले एक 55 साल के रिटायर्ड कश्मीरी बैंकर की भूमिका निभा रहे हैं, जो डिप्रेशन से जूझ रहा है और रिटायरमेंट के बाद जीवन में एक नए मकसद की तलाश में है। नवाजुद्दीन एंग्जायटी की थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वहां पता चलता है कि उन्हें एक्टिंग का शौक है। बस यहीं से शुरू होती है उनकी ट्रेनिंग। इस फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ चित्रांगदा सतरूपा मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म 1.5 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है। अब देखना यह है कि ये दो बजट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका करती है। रिपोर्ट, गुड स्ट्रे।
1: तो वह इंटरनेशनल फैशन इवेंट मेट गाला की बात करते हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बन रहे हैं। जिन सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर वॉक की, उनमें कई ने तो ऐसे ऐसे अतरंगी लिबास पहने हुए थे जिन्हें लेकर खूब मीम्स बनाए जा रहे हैं।
2: लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को देखने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई मजनू भाई की एंट्री मेट गाला में हुई थी, क्या है ये पूरा माजरा, इस पर बात करते हैं और दिखाते हैं आपको।

0: इस तस्वीर को देखने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई मजनू भाई की भी एंट्री मेट गाला में हुई थी। कंफ्यूजन इसलिए भी कि इस तस्वीर को खुद अनिल कपूर ने पोस्ट किया है और उनके कपड़ों पर वही घोड़े वाली पेंटिंग है जो वेलकम मूवी में दिखी थी। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए अनिल कपूर ने लिखा कि जब मेट गाला और मजनू भाई का मिलन हुआ, कला की कोई सीमा नहीं होती। असल में ये तस्वीर पूरी तरह AI जनरेटेड है, यानी अनिल कपूर सच में मेट गाला में इस लुक में नहीं गए थे, लेकिन फोटो इतनी मजेदार और रियल लग रही थी कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। दरअसल ये पेंटिंग 2007 में आई फिल्म वेलकम की कहानी का हिस्सा रही। बाद में ये पेंटिंग इतनी हिट हो गई कि मेम्स का हिस्सा बन गई। जब इस पेंटिंग को AI ने मेट गाला जैसे बड़े फैशन इवेंट से जोड़ दिया तो अनिल कपूर भी खुद को रोक नहीं पाए। मेट गाला में हुई फैशन की परेड पर केवल अनिल कपूर ने ही मजे नहीं लिए, बल्कि मीम्स बनाने वालों ने मेट गाला जैसे बड़े इवेंट को अपनी क्रिएटिविटी से कॉमेडी शो में ही बदल डाला। रेड कार्पेट पर सबसे बड़ा बवाल तब कटा जब सुपर मॉडल हाइडी क्लम एक जिंदा मूर्ति बनकर सामने आई, लेकिन मीम्स बनाने वालों ने इसे भी पकड़ लिया और इसकी तुलना धूम 2 के ऋतिक रोशन वाले उस लुक से कर डाली जब वो मूर्ति बनकर चोरी करने जाते हैं। मेट गाला इवेंट के मजे लेने वालों में कॉमेडियन वीर दास भी शामिल हो गए और उन्होंने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेट गाला में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जिस मजाक ने मीम्स की दुनिया में आग लगा दी वो तस्वीर ये थी। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए यूजर ने लिखा कि ये बिल्कुल जेन ज़ी गांधारी जैसा वाइब दे रही है। मीम्स की इस बहती गंगा में विजय वर्मा ने भी हाथ आजमा लिए। उन्होंने इस लुक के साथ अपनी तस्वीर लगाई और लिखा, कर्टन मार्केट से मेट गाला तक ब्रिज भाटी का स्टाइल चलता है। फिलहाल मेट गाला में तमाम फैशन स्टेटमेंट पर मजे लेने वालों के हाथ मौका लगा और उन्होंने उसे लपक लिया, लेकिन मेट गाला की अपनी ग्लोरी है। मेट यानी न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा म्यूजियम। इस म्यूजियम का एक कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट है। कहते हैं कि यहाँ परफॉर्म करना बड़े बड़े डिजाइनर्स का सपना होता है। यहाँ दिखने का मतलब है दुनिया की नजरों में आना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बात करते हैं बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर की योग साधना की।

चलिए बात बाबा बागेश्वर की ध्यान साधना की। इन दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ में हैं, जहां उनकी ध्यान साधना शुरू हो चुकी है। उनकी ये ध्यान साधना प्राचीन हनुमान मंदिर में 21 दिनों तक चलेगी। इस दौरान वो एकांतवास में रहेंगे, मतलब किसी से नहीं मिलेंगे, ना ही कथा करेंगे। उनके इस ध्यान साधना की चर्चा दुनिया में हो रही है। पूरे 21 दिन तक वो बद्रीनाथ धाम की तपोभूमि पर बिल्कुल अकेले शांत चित्त होकर चिंतन मनन कर रहे हैं, और पूरी साधना होने के बाद वो बद्रीनाथ में हनुमत कथा भी करने वाले हैं।

0: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहाँ जाते हैं सुर्खियाँ बन जाते हैं। बद्रीनाथ में उनकी 21 दिन की साधना शुरू हो चुकी है, जहाँ वे -2 डिग्री से नीचे के तापमान पर साधना कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि 12 साल के बाद वो अपने दिनचर्या से ब्रेक लेकर इस तपस्या के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँचे। धीरेन्द्र शास्त्री के पहुँचने पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है। पिछले 3 सालों से बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पहले वो बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर खाक चौक आश्रम पहुंचते हैं। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां बाबा बागेश्वर आजकल साधना में लीन है। खाक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर ही मौजूद है। जब भी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम जाते हैं, यहीं पर रुकते हैं। फिलहाल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद हैं। हालांकि ऐसी खबर है कि 21 दिनों तक बागेश्वर धाम किसी को भी दर्शन नहीं देंगे और 21 दिनों की साधना के बाद हनुमान कथा का आयोजन करेंगे।
1: बागेश्वर धाम सरकार है, वो जब भी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो बालकनाथ महाराज का जो खाक चौक आश्रम है, यहीं पे हनुमान मंदिर है, पौराणिक हनुमान मंदिर है, यहीं पे वो पहुंचते हैं।
0: असल में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता बहुत है। वे जहाँ भी जाते हैं उनका दिव्य दरबार लग जाता है। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। उनकी एक झलक पाने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में स्थिति अलग है। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जब तक साधना करेंगे, तब तक उनके पास न तो भक्तों की भीड़ होगी और न ही वे प्रवचन करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में धीरेन्द्र शास्त्री की इस एकांत साधना का मकसद बेहद खास है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आत्मचिंतन करने के लिए यहाँ एकांतवास में आए हैं। इस दौरान वे स्वयं को साधेंगे। हिंदू राष्ट्र और सनातन के उत्थान के लिए वे 21 दिनों तक कठिन तप करेंगे। बताया जा रहा है कि इस विशेष साधना के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल अकेले होंगे। उनके पास न तो मोबाइल फोन रहेगा और न टेलीविजन या संचार के दूसरे साधन। धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम की इस तपोभूमि पर बिल्कुल अकेले शांतचित होकर चिंतन मनन करेंगे, ताकि अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए नए सिरे से तैयारी कर सकें, नई ऊर्जा और नए विचार हासिल कर सकें। कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड स्टडे।
2: आज बाबा बागेश्वर की साधना का दूसरा दिन है, तो अभी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ में कहाँ है, कैसे साधना कर रहे हैं, इसी बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमल नयन सिलोड़ी। देखिए उनकी रिपोर्ट।
3: 6 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद वो अपने साधना में लीन हो चुके हैं। फिलहाल अभी तक इधर उधर कहीं भी नहीं गए हैं, यहाँ तक कि बद्री विशाल के दर्शनों को भी नहीं निकले हैं। साधना में लीन है क्योंकि आने वाला जो समय है 15 मई से अधिक मास का हो रहा है। ऐसे अधिक मास में खासकर बद्री विशाल का जब अधिक मास से खास संबंध होता है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है बद्रीनाथ धाम में एक महीना जो अधिक मास का होता है, खासकर जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो इसमें बद्रीनाथ धाम में जब तक पूजा पाठ भागवत कथा अनेकों श्रवण करने का मौका मिलता है। ऐसे में खुद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे हनुमान कथा का आयोजन भी करेंगे। उसके बाद जब 21 दिनों की साधना पूरी हो जाएगी, क्योंकि 21 दिन का जो विशेष महत्व निकाला है वो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विशेष तौर पे बद्रीनाथ धाम में ही निकाला है। ऐसे में वो ऋषि गंगा और अलकनंदा के तट पर विराजमान है और यहीं पे जो नगर पंचायत द्वारा जो साधना कुटी बनाई है उनमें भी उनका हो सकता है कि साधना का कार्यक्रम हो, लेकिन अभी तक वो जो प्राचीन हनुमान मंदिर का जो आश्रम है वहीं पे मौजूद है। और आने वाले धीरे धीरे जो दिन बीतेंगे उसके बाद हनुमान कथा का आयोजन यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार करेंगे। हालांकि लगातार श्रद्धालुओं को जैसे ही पता चल रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार बद्रीनाथ धाम में है, तो हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद उस तरफ की जो खाक चौक आश्रम है वहां का रुख कर रहा है। एक दर्शन के लिए हर कोई वहां पे प्रफुल्लित हो रहा है, उनके दर्शनों के लिए हर कोई पहुंच रहा है, लेकिन वो अपने कमरे में अपनी साधना में लीन है। ऐसे में कब वो बाहर निकलेंगे अभी तक कुछ पता नहीं है। ऐसे में 21 दिनों की जो साधना होनी है वो उसके लिए उन्होंने बद्रीनाथ धाम को चुना है। कमल सिलोरी, बद्रीनाथ, जीएनटी।
2: देखिए, हर दिन के साथ चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उत्साह का आलम यह है कि सिर्फ बद्रीनाथ में 2 हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं।

0: जैसे जैसे बारिश और बर्फबारी की आमद कम हो रही है, चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि बारिश और बर्फबारी के दौरान भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दी और हर रोज 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अगर सिलसिलेवार ढंग से चारों धाम की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम में 7 मई को 9,218 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए और अब तक यमुनोत्री धाम में 1,35,848 श्रद्धालु मां यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं। गंगोत्री धाम में 7 मई को 9,360 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए और अभी तक 1,33,517 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं। केदारनाथ धाम में 7 मई को 17,575 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए और अब तक 3,82,282 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 7 मई को 15,602 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और अभी तक बद्रीनाथ धाम में 2,16,045 श्रद्धालु दर्शन का पुण्य कमा चुके हैं। चार धाम यात्रा में कुल श्रद्धालुओं की बात की जाए तो 8,57,692 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर पुण्य लाभ ले चुके हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले हुए 2 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में 2 सप्ताह में 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं और वहीं हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की कतार तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान बद्री विशाल की आस्था का ये सैलाब मई का महीना शुरू होने के साथ ही बढ़ने लगा है। ऐसे में रोजाना यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तीर्थयात्रियों की भीड़ भी बढ़ेगी और जब बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी तो और अधिक यात्रियों के आने की संभावना है, यानी जून में और अधिक श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि मौसम लगातार चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी हर श्रद्धालु को आसानी से हो रहे हैं।
1: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का उत्साह हर तरफ देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले 2 सप्ताह का समय हो गया है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में अब तक 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं यात्रा मार्गों पर तमाम जितने भी मंदिर हैं, इस समय जोशीमठ का नरसिंह मंदिर में हम मौजूद हैं। यहां भी बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
0: बद्रीनाथ में जिस ओर नजर जाती है उस ओर बस श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। हर श्रद्धालु में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है और हो भी क्यों ना, सरकार और प्रशासन तीर्थयात्रियों का पूरा ख्याल रख रही है।
2: यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। आगे हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। अभी हम जोशीमठ आए, बद्रीनाथ से हम सीधा हरिद्वार और अब बैक टू बैंगलोर।
3: बद्रीनाथ धाम हमारा हो गया, अब यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे भी जा रहे हैं। सो होपफुली गंगोत्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी वो डिसाइड हो रहा है। बस अभी मिसेस से वही बात ही कर रहा था। बाकी व्यवस्था सारी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, रोड्स वगैरह सारी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी सिस्टम ऑर्गेनाइज है। ऊपर बद्रीनाथ धाम पे भी बहुत ऑर्गेनाइज था।
4: यमुनोत्री देखा, गंगोत्री देखा, देन केदारनाथ पूरा। यस्टरडे मैं तुंगनाथ तक जी होके आया, आज हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। फंटास्टिक है, उत्तराखंड हैज डेवलप्ड अ लॉट बट स्टिल देयर आर मोर टू डेवलप, पर्टिकुलरली वॉशरूम्स फॉर सीनियर पीपल हु कम हियर। फंटास्टिक ट्रिप।
0: सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि यात्रा मार्ग के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम भले ही ठंडा हो, बर्फबारी देखने को मिली हो, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह अपार हैं। व्यवस्था से भी श्रद्धालु गदगद दिखाई दे रहे हैं।
5: हम लोग जयपुर से आए हैं, राजस्थान से, और सिर्फ बद्रीनाथ ही जाने के लिए आए थे। अब वापस जा रहे हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा व्यू है और बहुत अच्छा एक देखने लायक सब कुछ, बहुत अच्छा लगा।
0: बाबा केदार के दर्शन के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 3,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं। इन दिनों मौसम भी यात्रियों की परीक्षा ले रहा है, हर रोज बर्फ गिरने के साथ ही बारिश हो रही है। बावजूद इसके भक्तों की आस्था कम नहीं हो रही। केदारनाथ धाम में सुरक्षा के साथ सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। पैदल यात्रा मार्ग पर SDRF, NDRF, पुलिस, होमगार्ड के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। रुद्रप्रयाग के DM और SP लगातार श्रद्धालुओं से मिल रहे हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर समय यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है।
6: हाल के दिनों में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ है और लोगों को मौसम के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ से पूरे रूट की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना है, यदि है तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं जेसीबी इत्यादि वो डिप्लॉयड हैं कि नहीं है। साथ ही जो हमारे ट्रैक रूट है उसको सेक्टर्स में बांटा गया है, वहाँ पर हमारे सेक्टर ऑफिसर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और मंदिर परिसर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी कैमरे के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। हमारी टीम्स भी लगी हुई हैं, सेक्टर ऑफिसर्स वहाँ पर भी डिप्लॉयड हैं। तो जो हमारे चिकित्सा विभाग है, जो हमारे निर्माण विभाग है, वो सभी मिलकर के एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं।
0: मौसम खराब होने पर यात्री बीमार भी हो रहे हैं, ऐसे में यात्रियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जा रही है और हायर सेंटर भेजा जा रहा है। यात्रियों को जल्द बाबा केदार के दर्शन हो इसके लिए टोकन सिस्टम के जरिए दर्शन कराए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण से मोहाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
7: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए अमरनाथ यात्रा की तैयारी अपडेट।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: If teaching is what you're meant to do, WGU is where you can become great at it. Earn your bachelor's or master's in education online on your schedule and with support that's available when you need it. Make your passion your profession. Learn more at WGU.edu.
3: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी कामयाबी, तारा स्वदेशी ग्लाइड हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बम भी सटीकता से लगा सकेंगे निशाना। मौसम खराब होने के बाद भी केदारधाम में भक्तों का जोश हाई, अब तक 3.5 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन, हर रोज टोकन सिस्टम से पहुंच रहे हैं 25,000 से अधिक यात्री। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर पीएम ने लिखा लेख, विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश, 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पौड़ी गढ़वाल में सीएम योगी और धामी के बीच दिखा अनोखा कनेक्शन, दोनों एक साथ ओपन जिम में वर्कआउट करते आए नजर, उद्घाटन समारोह में गृह जनपद पहुंचे थे योगी।
8: हॉरर कॉमेडी भूत बंगला फिल्म का जलवा बरकरार, 21वें दिन पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा, साल 2026 की बॉलीवुड की तीसरी बड़ी हिट फिल्म का मिला टैग।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: चलिए अब बात अमरनाथ यात्रा की, जम्मू के रामबन में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अलियास खान ने बाकी आला अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए अभी से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा के लिए 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तैयारियों के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत, उनकी सुविधाओं और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
9: बनिहाल के सब डिविजन मजिस्ट्रेट बनिहाल मोहम्मद नसीब साहब, जो यात्रा की हम बात करेंगे, जो तैयारियां हैं वो किस तरह से अभी तक हुई हैं और क्या कहेंगे आप?
10: देखिए, डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही एक रिव्यू लिया है और अलॉन्ग विद साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ हमने वहां पे विजिट किया है। जो भी इंस्ट्रक्शंस थी हर डिपार्टमेंट को दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट साहब के थ्रू, और हर डिपार्टमेंट अपने काम में लगा है और स्टिल वी हैव सफिशिएंट टाइम, हमने काम शुरू कर दिया है। चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सैनिटेशन का हो, चाहे अदर वर्क्स हो, तो सारे डिपार्टमेंट उसमें जोर शोर से काम कर रहे हैं और होपफुली वेल इन टाइम सारी तैयारी हम मुकम्मल कर देंगे।
7: तो वहीं चारधाम यात्रा की रौनक और बढ़ने जा रही है। जी हां, भारी बर्फबारी के बीच चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर के कपाट 18 मई को खुलेंगे। यहां आला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस बीच बर्फबारी के बीच बाबा रुद्रनाथ का धाम अपने आप में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो हरे भरे बुग्याल हर किसी को अपनी ओर खींच रहे हैं। आपको बता दें कि रुद्रनाथ धाम चमोली जिले में मौजूद पंच केदारों में से एक है। यहां एकानंद यानी कि भगवान शिव के मुख रूप की पूजा होती है। समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की मौजूदगी में यह धाम प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए भी काफी प्रसिद्ध है।
8: अयोध्या में श्री राम मंदिर की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर की स्थायी सुरक्षा समिति ने पूरे मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए कई अहम फैसले किए हैं। मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। पूरे मंदिर परिसर की AI बेस्ड सिस्टम के साथ निगरानी की जाएगी।

0: अयोध्या में श्री राम मंदिर को एक अभेद सुरक्षा चक्र में महफूज बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मंदिर की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थायी सुरक्षा समिति की एक अहम बैठक में मंदिर के सुरक्षा इंतजामों पर गहन मंथन किया गया। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मंदिर परिसर में AI की मदद से सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस बनाया जाएगा।
1: बैठक में अभी तक पूर्ण हो चुके सभी निर्माण कार्यों का सर्वे निरीक्षण के साथ साथ उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और जो जो उपकरण है जिसको वहां पर संचालित किया जा रहा है उनके बारे में समीक्षा हुई। भविष्य में सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं वहां पर लागू होनी है, किस किस तरह के लेटेस्ट उपकरण वहां पर लगाए जाने हैं, CCTV कैमरास और इत्यादि जो चीजें हैं उनको कैसे वहां पर और सुचारू बनाते हुए उनको फुल प्रूफ मैकेनिज्म वहां पर लागू करना है, AI का जो इंटरवेंशन है और AI को कैसे और यूज किया जा सके, सभी पर मंथन हुआ है और आने वाले दिनों में जो ये चर्चाएं हुई हैं सिक्योरिटी स्कीम के रूप में इसको वहां पर लागू किया जाएगा और मंदिर की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाएगा।
0: मंदिर की सुरक्षा की पहली परत के तौर पर करीब 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस बाउंड्री वॉल का करीब 30% काम पूरा हो चुका है। इस साल दिसंबर तक बाउंड्री का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बाउंड्री वॉल को मजबूत स्तंभों के साथ अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस किया जाएगा। इसमें हाई रेजोल्यूशन वाले CCTV कैमरे, स्मार्ट लाइटिंग के साथ AI आधारित निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा।
2: इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड परिसर के 3.5 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहे हैं। उनका भी कार्य बहुत तीव्रता से चल रहा है। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास के निर्माण कार्य का काम पूरा हो चुका है। अब ऊपर फेंसिंग है, लाइटिंग है, CCTV कैमरा, सुरक्षा के उपकरणों के लगाने की दिशा में वो प्रगति कर रहे हैं।
0: सुरक्षा के आधुनिक इंतजामों से 24 घंटे पूरे मंदिर परिसर की कड़ी निगरानी की जा सकेगी। प्रशासन का दावा है कि नई आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के लागू होने से श्री राम जन्मभूमि परिसर देश के सबसे सुरक्षित धार्मिक स्थलों में शुमार होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: किसी भी प्रदेश की पहचान उसकी संस्कृति के साथ साथ वहां के स्वाद और व्यंजन में भी छिपी होती है। अब इसी पारंपरिक पहचान को वैश्विक स्तर पर ले जाने का बीड़ा उठाया है योगी सरकार ने। उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है एक जिला एक व्यंजन योजना। इस लिस्ट में प्रदेश के सभी 75 जिलों की अपनी खास स्वादिष्ट पहचान मौजूद है।
4: छत्तर जिलों से मिलकर बना राज्य उत्तर प्रदेश और हर जिले का अपना एक अलग जायका। आगरा के पेठे की मिठास से लेकर अयोध्या की चटपटी कचौड़ी तक हर एक व्यंजन अपना एक अलग स्वाद छोड़ कर जाता है। राज्य के हर जिले के इसी स्वाद को एक अलग पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना की सूची जारी की है। इस लगेज लिस्ट में हर जिले की पहचान बताने वाले 208 खास व्यंजनों को जगह दी गई है। इस सूची में आगरा का पेठा और दाल मोठ, मथुरा का पेड़ा और खुरचन, अयोध्या की कचौड़ी, मेरठ की रेवड़ी गजक, वाराणसी की ठंडाई लस्सी और बनारसी पान, जौनपुर की इमरती, आजमगढ़ की तहरी और गाजर का हलवा, बलिया का सत्तू, मऊ का लिट्टी चोखा जैसे व्यंजन शामिल है। इसके अलावा सहारनपुर का शहद, मुजफ्फरनगर और शामली के गुड़ आधारित उत्पाद, प्रतापगढ़ का आंवला और प्रयागराज की कचौड़ी, समोसा, रसमलाई जैसी चीजें भी सूची का हिस्सा हैं। इस योजना का मकसद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों और 18 मंडलों में क्षेत्र विशेष के खान पान की परंपराओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है। योजना के तहत पारंपरिक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार के साथ एक खास पैकेजिंग और ब्रांडिंग उपलब्ध कराना है जिससे स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिलेगी, साथ ही बाजार तक पहुंच भी आसान होगा। इस योजना के लिए सरकार ने बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हालांकि अभी योजना का प्रारंभिक चरण है, जिसे भविष्य में और विस्तारित किया जाएगा। सरकार की इस स्वादिष्ट पहल से न सिर्फ स्थानीय कारीगरों और रसोइयों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के इन लजीज व्यंजनों को दुनिया तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात एआई की करते हैं, क्योंकि आजकल जमाना है एआई का। सवाल पूछो और तुरंत जवाब मिल जाता है। इंसान ने एआई को बनाया है और इसलिए इंसानी दिमाग की अहमियत है। भारत में तो इस फील्ड में बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी कमाल कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के अविराज को ही आप देख लें तो ये नन्हा सा बच्चा अभी 3 साल का भी नहीं हुआ है, मगर इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। इसे कई देशों के नाम, उनकी राजधानी याद है, इंग्लिश के कठिन शब्द आसानी से बोल लेता है, जानवरों और पक्षियों के नाम इसकी जुबान पर रहते हैं, धर्म अध्यात्म का काफी अच्छा नॉलेज इसको है, तभी तो लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं।

0: अवतार है?
1: 10।
0: और परशुराम कौन से अवतार है विष्णु भगवान के?
1: छठे अवतार।
0: छठे अवतार। और परशुराम के पास क्या होता है?
1: फरसा।
2: ये नन्हा चैंपियन अविराज है जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर जन्मा एक चमकता सितारा है जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है।
0: रावण कहाँ लेके गया था सीता माता को?
1: अशोक वाटिका।
0: अशोक वाटिका कहाँ है?
1: लंका में।
0: और लंका कौन जला दिया था? लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कैसे, जोर से बोलो, हनुमान जी कैसे लंका जलाए थे?
1: अपनी
0: टेल से।
2: इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे। उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया।
1: टाइगर।
2: ये डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे खतरनाक अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड में फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर सकता है।
0: परशुराम के पास क्या होता है?
1: फरसा।
0: और परशुराम अपने फरसे से किसका टस्क तोड़ दिए थे?
1: गणेश जी का
0: टस्क तोड़ दिए थे। और विष्णु भगवान का पावरफुल वेपन क्या है?
1: सुदर्शन।
2: अविराज अभी 2 साल 11 महीने के हैं। इस उम्र में बच्चे अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाते, मगर मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाला ये नन्हा उस्ताद बाकी बच्चों से जुदा है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं क्योंकि इसने अपनी मेमोरी और नॉलेज से सभी को हैरान किया हुआ है। इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और शब्द सुनते ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी अद्भुत प्रतिभा की वजह से अविराज अभी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुका है।
0: इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जीनियस में है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और इंटरनेशनल है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे करके कई 7-8 रिकॉर्ड्स मतलब हैं।
2: अविराज को जानवर ही नहीं कई पक्षियों के नाम भी याद हैं। वो 42 देशों की राजधानी और 36 देशों के झंडे की पहचान कर सकता है। भारत के कई राज्यों की राजधानी उसे जुबानी याद है, जबकि ग्रहों और सोलर सिस्टम की तो उसे पूरी समझ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं के वाहन तक बता सकता है। शास्त्र और पुराण की उसे अच्छी खासी जानकारी है और भगवान विष्णु के सभी अवतार उसे जुबानी याद हैं।
0: हम तीनों लोग, उसके दादाजी, नाना जी और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की कैपिटल से स्टार्ट किया कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, हम हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना की क्या है, तो वो कैपिटल्स बताए। पीएम कौन है हमारे, तो वो भी उसको मतलब ठीक से बता पाया वो। फिर उसके बाद वो 3 स्टेट से हम 52 कंट्रीज़ की भी बता पाता है, 28 स्टेट्स की भी बता पाता है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 8 है उनकी भी कैपिटल्स बता पाता है।
2: अब मध्य प्रदेश से उठी ये चमक विदेश तक रोशनी फैला रही है। ये कहानी सिर्फ अविराज की नहीं है, बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: डायमंड्स की ऑक्शन हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहती है। ऐसी ही एक ऑक्शन है सोत बीज स्प्रिंग ऑक्शन, जिसमें इस बार एक दुर्लभ ब्लू डायमंड नीलामी के लिए रखा गया है। अपनी चमक और कीमत की वजह से यह हीरा सभी का ध्यान खींच रहा है।
4: डायमंड और उसकी कीमत ने हमेशा ही दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरी है और लोगों को हैरान किया है। इस बार सोत बीज की स्प्रिंग ऑक्शन भी दुर्लभ ब्लू डायमंड के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिनेवा में होने वाली इस ऑक्शन में इस बार एक फैंसी विविड ब्लू ग्रेड हीरा शामिल किया गया है और उम्मीद है कि इसकी नीलामी 12 मिलियन डॉलर यानी 1,20,00,000 रुपए तक जा सकती है। यह हीरा दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक कुलिनन हीरा खदान में से निकला है। यह अनमोल हीरा 6 कैरेट का है और रंगीन हीरों में से दुर्लभ वेराइटी में से एक है। यह हीरा अंदर से पूरी तरह बेदाग है

0: और ना ही इसमें कोई अशुद्धि है, जिसकी वजह से यह विशेष रूप से दुर्लभ पत्थरों में शुमार है। इस हीरे के साथ सोथबीज की स्प्रिंग ऑक्शन में सिंगर रिहाना का एक बेशकीमती मल्टी पीस सेट डिजाइन सेट भी शुमार है। ये सेट मशहूर स्विस लग्जरी ब्रांड चोपार्ड के सहयोग से डिजाइन किया गया है। इसे पहली बार 2017 में कांस रेड कार्पेट पर पेश किया गया था। ये सेट चमकीले रंग के कीमती पत्थरों का मिश्रण है, कलाकार की कैरेबियन जड़ों से प्रेरित है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffeehouse, and more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: Good news today, इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में मौसम का मिजाज आजकल बदला बदला सा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राज्यों में बारिश का अलर्ट है, तो दिल्ली एनसीआर में आज से तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी।
5: हालांकि उत्तर भारत में 10 मई से एक बार फिर से फुहारे मेहरबान होने वाले हैं, क्योंकि फिर आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ।
0: उत्तर भारत में फिलहाल मौसम पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से बारिश का दौर आने वाला है। उम्मीद है कि 10 से 13 मई के बीच कहीं कहीं छिटपुट गरज चमक, बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी के साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि 11 मई तक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दिख सकती है, लेकिन राहत की बात है कि दूर नहीं चलेगी, क्योंकि एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 11 से 13 मई के दौरान बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी संभव है। मैदानी इलाकों में आंधी और बिजली चमकने के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 10 मई तक बिहार के कई जिलों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। दिन में उमस रहेगी, लेकिन बारिश के चलते तापमान के नीचे गिरने की संभावना है। लू चलने की कोई उम्मीद नहीं है। देश के दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी आने वाले 7 दिनों तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में गरज और बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम मैच के लिए बस इतना ही,
1: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए TNT।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण। अनगार्डेड बम भी सटीकता से लगा सकेंगे निशाना। मौसम खराब होने के बाद भी केदारनाथ धाम में भक्तों का जोश हाई, अब तक 3.5 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। हर रोज टोकन सिस्टम से पहुंच रहे हैं 25,000 से अधिक यात्री। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेख, विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश। 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पौड़ी गढ़वाल में सीएम योगी और धामी के बीच दिखा अनोखा कनेक्शन, दोनों एक साथ ओपन जिम में वर्कआउट करते आए नजर। उद्घाटन समारोह में गृह जनपद पहुंचे थे योगी। हॉरर कॉमेडी भूत बंगला का जलवा बरकरार, 21वें दिन पार के 150 करोड़ का आंकड़ा। साल 2026 की बॉलीवुड की तीसरी बड़ी हिट फिल्म का मिला तमगा।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: भारत की रक्षा ताकत को मिली एक और बड़ी कामयाबी, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट पर स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का किया सफल परीक्षण। एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है तारा, जो अनगाइडेड वॉरहेड्स को सटीक गाइडेड हथियार में देती है बदल। भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है तारा, देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को मिली नई मजबूती। तारा के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई, देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। उत्तराखंड के पौड़ी से आई शानदार तस्वीर, महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय के ओपन जिम में यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी एक साथ जिम करते नजर आए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए चरम पर है श्रद्धालुओं का उत्साह, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में उमड़ रहे हैं सबसे ज्यादा श्रद्धालु, कल 17,575 यात्री पहुंचे धाम। इस साल अब तक 3,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं पंजीकरण। जीएमवीएन के विश्राम गृहों में अब तक 9 करोड़ की हो चुकी है बुकिंग। 50 साल से अधिक आयु वाले श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर पर जांच कराना जरूरी, तीर्थयात्रियों से धामों में स्वच्छता बनाने में सहयोग करने का किया गया आग्रह। बद्रीनाथ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं 21 दिन की साधना, इस दौरान एकांतवास में रहेंगे बाबा बागेश्वर। ऋषिगंगा अलकनंदा के तट पर 10,279 फीट की ऊंचाई पर बाबा बागेश्वर कर रहे हैं ध्यान। प्राचीन हनुमान मंदिर खाक चौक आश्रम में साधना। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद बाबा बागेश्वर ने शुरू की साधना। 26 मई तक चलेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का योग ध्यान। फिलहाल एक वक्त के फलाहार पर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर की साधना के वक्त सिर्फ उनका एक सेवादार रहेगा उनके साथ। पिछले 12 साल में ये पहला मौका है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार और कथा वाचन पर लगा है विराम, कर रहे हैं आत्मचिंतन। जम्मू क्षेत्र में श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियां तेज। पहला जत्था 2 जुलाई को होगा रवाना। यात्रियों के लिए जम्मू में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 आवास केंद्र चिन्हित किए गए। पेयजल, बिजली, आवास जैसी सुविधाओं को किया जा रहा है दुरुस्त। अधिकारियों को दिया गया निर्देश, सभी बुनियादी सुविधाओं सहित पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। पंचूर गांव के यमकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे शांत। श्रीनगर में देखने को मिल रही है फूलों की बहार। बागवानी विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पौधे बांटने की शुरू की मुहिम। जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की पहल से श्रीनगर में रंग बिरंगे फूलों की खेती को मिल रही है नई रफ्तार। लोगों को मुफ्त पौधे देकर किया जा रहा है जागरूक। श्रीनगर के बाग बगीचे इन दिनों फूलों से महक उठे हैं। बागवानी विभाग की नई पहल रंग ला रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बनाई गई शानदार रंगोली, इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर सेना और सुरक्षा बलों के शौर्य को दी गई सलामी। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर बीएसएफ ने वॉकाथॉन का किया आयोजन। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी का सेना को सलाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बदली डीपी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक चिन्ह लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के अतुलनीय पराक्रम को देश ने किया याद। अलग अलग शहरों में सेना के सम्मान में आयोजित किए गए कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लड़कियों ने सेना के शौर्य को किया सलाम। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई रंगोली। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, सेना ने कहा ऑपरेशन अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई चलती रहेगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर इंडियन आर्मी ने चुशूल में 15,000 फीट की ऊंचाई पर एथलेटिक्स से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। छात्रों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पहल ने युवाओं को शारीरिक फिटनेस और सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने दिखाया अपना हुनर। राजस्थान में कोटा के युवा कराटे खिलाड़ी अनुराग ने एक बार फिर शहर का नाम रोशन किया। भोपाल में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे टूर्नामेंट में जीता सिल्वर। ओडिशा के कटक में देश की पहली सुपर फ्लेक्स वेलमेश लाइन का किया गया शुभारंभ, इससे देश में कंस्ट्रक्शन को मिलेगा बढ़ावा। गुजरात के जामनगर में निकली अनोखी बारात, घोड़े की जगह दूल्हे ने की हाथी की सवारी। उत्साह और खुशी से सराबोर नजर आया पूरा इलाका। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर पीएम मोदी ने लिखा लेख, विभाज्य दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश। 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। गर्मी की छुट्टियों में दक्षिण भारत घूमने का शानदार मौका, IRCTC ला रहा है 11 दिन का स्पेशल टूर पैकेज। 26 जून से शुरू होने वाली यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम और कन्याकुमारी के कराए जाएंगे दर्शन। ऋषिकेश से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, यूपी के कई स्टेशन से यात्री कर सकेंगे सफर। IRCTC के नए टूर पैकेज में ट्रेन सफर, होटल और खाने की पूरी सुविधा शामिल, बुकिंग पहले आओ पहले पाओ आधार पर शुरू। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के इच्छुक लोगों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए चलाई विशेष ट्रेन, ऋषिकेश से 12 जून को चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघरों में कॉमेडियन कपिल शर्मा और नीतू कपूर की फिल्म दादी की शादी ने दस्तक दी, इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर रही है रिद्धिमा कपूर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म में एक्टर नहीं हूं बड़े पर्दे पर हुई रिलीज, रिटायर्ड कश्मीरी बैंकर की कहानी है ये फिल्म। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 के दीवानों के लिए खुशखबरी, को प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने दिए संकेत, इस साल के अंत में आ सकती है धुरंधर फ्रेंचाइजी की एक और फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का जलवा बरकरार, 150 करोड़ रुपए का फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। सुपरस्टार रितेश देशमुख की लेटेस्ट मराठी फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है अच्छी कमाई, 7वें दिन इस मूवी ने करीब 4 करोड़ का किया कारोबार। ২০২৬ के कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के सितारे बिखेरेंगे चमक, फिल्म समारोह में शामिल होंगे ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी। ईशान खट्टर पंजाबी अभिनेत्री तानिया के साथ जुगाड़ू में आएंगे नजर, फिल्म का निर्देशन पलाश वासवानी करेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 23 पैसे ऊपर चढ़ा, इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 94.26 रुपए हो गई। अयोध्या में रामलला के साथ ही अब परकोटा कॉरिडोर में भी शुरू हुए दर्शन, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सभी 6 उपमंदिर। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती में तेज हवा के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दोनों रनवे चालू हो गए मानसून की तैयारियों के लिहाज से, कल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मेंटेनेंस के लिए किया गया था बंद। बिहार के मुजफ्फरपुर में झालमुड़ी का बड़ा क्रेज, 5 गुना बड़ी बिक्री, बंगाल में पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने का असर। जयपुर की तपती गर्मी में बुजुर्ग पेश कर रहे इंसानियत की मिसाल, 78 साल के गोपाल दादा 30 साल से बुझा रहे हैं राहगीरों की प्यास। गोपाल दादा हवा महल के पास मटका और सैकड़ों लीटर पानी लेकर बैठते हैं, उनका मकसद है गर्मी में कोई प्यासा ना रहे। गोपाल दादा कहते हैं प्यास सबको लगती है, पानी जरूर पिलाना चाहिए, यही सोच उन्हें हर दिन सेवा के लिए प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश हरियाणा के करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टिकट बुकिंग शुरू। इंडिगो ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टिकट्स की बुकिंग शुरू की, आने और दूसरे शहरों में जाने के लिए उड़ानों के टिकट्स की बिक्री। DXN NIA कोड इंडिगो के सिस्टम पर देखना शुरू हो गया, पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगी। 15 जून को लखनऊ से उड़कर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट, 1 घंटे में पूरा होगा हवाई सफर। नोएडा एयरपोर्ट को बड़े एविएशन हब के रूप में किया जा रहा है विकसित, दिल्ली NCR और पश्चिमी यूपी के यात्रियों को होगा फायदा। नोएडा एयरपोर्ट पर आधुनिक टर्मिनल, बेहतर संचालन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा, उड़ान शुरू होने से व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के लोगों के लिए गुड न्यूज, रक्सौल से हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेज। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा रक्सौल एयरपोर्ट निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया कर दी गई है शुरू। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, द्वारका में 806 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में हर साल एमबीबीएस की 250 सीटें उपलब्ध होंगी, प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। मेक्सिको सिटी की सड़कों पर बीजीएस का जादू, सर चढ़कर बोला, स्टेडियम के बाहर हजारों फैंस हुए जमा। बीजीएस के गाने गाकर माहौल को रंगीन बना रहे थे फैंस, फैंस के नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। बीजीएस फीवर ने मेक्सिको सिटी को पूरी तरह से अपने रंग में रंग दिया, युवा फैंस हाथों में पोस्टर लिए बीजीएस के नाम के नारे लगाते थे। स्टेडियम के बाहर बैगनी रोशनी और म्यूजिक के बीच फैंस लगातार गाने गाते और डांस करते नजर आए। कुछ फैंस के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा मैजिक मोमेंट था। कई फैंस ने अपने पसंदीदा बैंड की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया। बैंगनी रंग के आउटफिट्स और लाइट स्टिक्स के साथ जमा हुए फैंस।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: Order for Jennifer C.
9: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
8: Yeah. Can you handle that much caffeine?
9: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
8: Oh, really? That's great.
9: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
8: Yeah, you just said that.
9: Did you say I just said that?
8: Yeah, I'm cutting you off.
9: I can't have any more? Why not?
10: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
11: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
12: It's your boy,
11: just
12: Jay-Z.
11: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
13: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: विजय थलापति की फिल्म गोट में कार नंबर TN07CM2026 पर खूब चर्चा हो रही है। इसमें TN मतलब तमिलनाडु, CM मतलब मुख्यमंत्री और 2026 का मतलब चुनाव का साल है। इस नंबर को फैंस हालिया चुनाव में थलापति के अच्छे प्रदर्शन से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं इसी नंबर में साथ भी है, जिसके पीछे एक इमोशनल कहानी है जो उनकी बहन से सीधे जुड़ी हुई है। उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है।

0: कुछ लोग इसे संयोग कह रहे हैं तो कुछ ऊपर वाले का सिग्नल, लेकिन हकीकत तो यही है कि तमिलनाडु की सियासत में विजय थलापति के अभूतपूर्व उदय और विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत को एक खास नंबर से जोड़ा जा रहा है। ये नंबर प्लेट एक कार का है जिसे विजय थलापति ने 2024 में रिलीज हुई अपनी फिल्म कोर्ट में इस्तेमाल किया था और अब उसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस नंबर प्लेट पर लिखा है TN07CM2026। TN मतलब तमिलनाडु, CM मतलब मुख्यमंत्री, 2026 यानी चुनाव का साल। विजय थलापति की ये फिल्म 5 सितंबर 2024 को रिलीज हुई थी और इससे कुछ महीने पहले 2 फरवरी को विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी TVK यानी तमिल का वेत्री कजगम की स्थापना की थी और फिर चुनाव प्रचार के दौरान ये वीडियो खूब वायरल हुआ। विजय के फैंस का मानना है कि फिल्म के इस सीन में दिखे कार के नंबर प्लेट ने ही भविष्य में विजय के मुख्यमंत्री बनने का संकेत दे दिया था। हालांकि विजय अभी मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। इस नंबर प्लेट में 7 का नंबर भी लिखा है। 7 से विजय की जिंदगी का संबंध भी काफी पुराना है। विजय अपनी छोटी बहन विद्या से बहुत प्यार करते थे। विद्या का 7 साल की उम्र में गंभीर बीमारी से निधन हो गया। बहन की याद में विजय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम VV क्रिएशंस रखा है, यानी विद्या विजय क्रिएशंस। अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों के लिए भी विजय एक खास नंबर 0277 इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर उनकी बहन विद्या के जन्म के महीने और साल से जुड़ा हुआ है। विद्या के जन्म का साल 1977 था और महीना था फरवरी, यानी साल का दूसरा महीना। तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन बहुमत से फिर भी पीछे है। बावजूद इसके सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की रेस में विजय थलापति सबसे आगे हैं। अब भले ही ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन विजय के फैंस उनकी सियासी जीत को कोर्ट फिल्म के कार की नंबर प्लेट से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Costs shouldn't be a barrier to a teaching career. That's why WGU makes earning a degree in education affordable with flat-rate tuition and scholarship opportunities. Make an investment toward making a difference. Learn more at WGU.edu.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
4: It's your boy,
3: just
4: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: डीआरडीओ भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बम भी सटीकता से लगा सकेंगे निशाना। अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां जोरों पर, यात्रियों के लिए ठहरने और अन्य सुविधाओं को लेकर काम जारी, 3 जुलाई को खुलेंगे मंदिर के कपाट। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेख, विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश, 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आप सबका सास बहू अल्फेटिया के इस नए एपिसोड में। आप सोच रहे होंगे आज हमारे स्टूडियो के ये दोनों स्पेशल मेहमान कौन हैं? ये है सयानी बिल्ली और ये है भोला बिल्लू। आज ये दोनों ही अपने अपने नजरिए से सुनाएंगे हमें एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर कहानी। तो क्या आप हैं तैयार? क्योंकि ये दोनों तो हैं एकदम रेडी। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
9: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, रूहानी का दिखेगा फिल्मी अंदाज, दुल्हन बन बैंड बाजे के साथ करेगी ससुराल में एंट्री। रूही और राध्या करेंगे जासूसी, होगा सच का खुलासा। वसुधा के नंबर वन होने पर वसुधा एंड टीम मनाएगी जश्न, होगा हैप्पी डांस। दिखेगा सूरज और मीका का प्यारा सा बॉन्ड, शुरू होगी नई कहानी।

अचानक का टूटेगा दिल, विक्रांत को मिलेगी दुआ की कस्टडी। महादेव एंड सन्स में आएगा नया ट्विस्ट, बहुरानिया बनेगी जासूस। और एकता कॉल संग करेंगे पैम्परिंग डे आउट, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: हाँ, सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू, देखिए जब तक कहानियों में नहीं आएगा ट्विस्ट तब तक कैसे आएगा एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये ट्विस्ट ही तो लेकर आते हैं कहानी में नए नए मोड़। अब तुम दोनों ही सोचो, अगर हमारी जिंदगी ऐसे ही सीधी साधी चल रही हो, रोजाना हर दिन हो बिल्कुल सेम टू सेम, तो कैसे होगा एक्साइटमेंट। ये तो ये चैलेंजेस ही लेकर आते हैं हमारी जिंदगी में भरपूर एक्साइटमेंट। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको सीधा इश्क जुनूनी के सेट पर और देखते हैं कैसा है यहाँ पर इश्क का जुनून।
1: रूहानी का फिल्मी अंदाज, करीना कपूर की तरह दुल्हन बन गाड़ी पर होकर सवार पहुंच गई अपने ससुराल। लव के लिए कुछ भी करेगी रूहानी। टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आ गया है कहानी में नया ट्विस्ट, जहां रूहानी ने फैसला कर लिया है कि वो गुरु को मना कर ही रहेगी और फिर एक बार अपने ससुराल में जाएगी। इसीलिए तो देखिए कैसे 16 श्रृंगार कर, शादी वाला लाल जोड़ा पहनकर, दुल्हन सी सजकर पहुंच गई है वो अपने ससुराल एकदम थ्री इडियट्स वाले अंदाज में। जी हाँ, लाल कलर की ये स्कूटी, पिंक कलर का हेलमेट और खुद दुल्हन बन इस गाड़ी पर होकर सवार वो पहुंच गई है अपने ससुराल, ताकि वो फिर एक बार गुरु की दिल में और उसके घर में जगह बना सके। भाई इतना ही नहीं, आज तो रूहानी ने ठान लिया है कि वो खुलेआम कर देगी खुलासा, और हाथ में पकड़ लिया है उसने भोपू और चिल्ला चिल्ला कर अपनी कहानी सभी गांव वालों को सुना रही है। और ये सारा तमाशा दूर खड़े देख रहे हैं गुरु के घर वाले, जो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे।
2: सुनो सुनो सुनो सुल्तानपुर वालों, एक कहानी सुनाती हूँ ऊंचे मकान और फीके पकवान की। इतनी बड़ी कोठी है लेकिन एक बिचारी अपना लाने के लिए कोई जगह नहीं है। कहने को तो मैं घर की बहू हूँ लेकिन मुझे घर से निकाल दिया गया। पति ने तो ठुकराया था ही, सासू माँ ने भी साथ नहीं दिया, ना ससुर जी ने, ना जेठ जी ने, ना जेठानी ने, और साथ ही हमारी सर्वशेष संपन्न पूजनीय दादी जी ने भी। ये कहती है रूहानी सहाय, मुझे मेरी जगह दिला दी जाए।
1: ऐसे में वहाँ पर पहुँच जाते हैं गुरु, जो रूहानी के हाथ से भोपू छीन कर उसे नीचे उतारते हैं। अब ऐसे में रूहानी ने तो अपना काम कर दिया, और देखिए कैसे बड़े मजे से वो कूलर की हवा खा रही है। और बिहाइंड द सीन की बात करें, इतनी गर्मी में दुल्हन वाले अवतार में शूट करना आसान नहीं। यहाँ एक तरफ जहाँ रूहानी चिल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरु बैंड बाजे वालों को मार रहा है थप्पड़। ऐसे में देखिए कैसे हो गया मेल जोल बिहाइंड द सीन और एक्चुअल सीन का तालमेल।
3: नहीं छोटा छतरी दे दो वरना
4: बारिश थोड़ी ना हो रही है।
3: अरे अच्छी बारिश हो रही है, क्या करूँ, सेहत ही हो रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्यार यार सब वेस्ट ऑफ गाय की दुल्हन गाय का गुरु चौधरी, मैं अपने घर में रुआए मैं रावा राजेंद्र भी। अरे बैठा था एक तो खुद प्यार प्यार करा, जिद करके मुझे पाने की कोशिश करे, फिर मुझ में प्यार भी जगाया। अब जब प्यार जग गया तो मेरे पे लात मारा।
1: तो भाई बैंड बाजे वालों को चुप कराकर रूहानी के पास गुरु पहुंचते हैं, और ऐसे में दोनों के बीच छिड़ गई है बहस। भाई अब तो गुरु रूहानी से नफरत करने लगे हैं, तो वहीं रूहानी के दिल में गुरु के लिए प्यार जाग उठा है, लेकिन लव हेट स्टोरी अब भी जारी है।
5: यहाँ क्यों आई?
6: नहीं शुरुआत करनी, तुम्हें तो कहा था कि मैं आजाद जैसे चाहूँ वैसे पी सकती हूँ। तुम्हें यहाँ आ गई जहाँ तुमने मुझे छोड़ा है, वहाँ से मेरे मायके का और तुम्हारे ससुराल का डिस्टेंस सेम, तो मैंने ये जगह चुनी मेरी जिंदगी बिताने।
5: चाहे बैंड लेकर आओ या बारात, एक घर का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा, इस घर की दहलीज के उस पार तुम कभी नहीं आ सकती।
1: लेकिन इन सबसे सबसे ज्यादा परेशानी तो घर वालों को हो रही है, जिन्हें रूहानी की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है।
7: सबसे पहले स्कूटर पे आ रही हैं और जैसे इन्होंने बताया
8: और जाल भी कुछ ऐसा बिछाया था कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सोचा था कि अब शायद ये दिन नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकला है कि खुद ही लड़की बारात लेकर के आ गई है और हम सब बौचक्के होके देखी।
7: हालांकि मामा मामी ने भी पूरी कोशिश की कि ऐसा ना हो पाए, लेकिन वो भी चक्कर खा गए कि भाई ये कैसे हो गया। और तामझाम तो वैसे ही, लहंगा भी वही पहना हुआ है ऑलमोस्ट हमने देखा, तो तामझाम तो वही है। और वो बॉपो लेके कोई अनाउंसमेंट कर रही है और सबको ललकार रही है। तो
8: और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार ये हुई है ना कि मतलब जैसे दिखाया गया है कि नागेश्वर जी की अपनी इज्जत, यू नो, बड़ी कोठी और ये वो, तो इस बार रूहानी ने सीधा वहीं पे चोट की है कि हम अपने घरों में हैं और फिर वहाँ पे पड़ोसियों का फोन आ रहा है कि भाई आपके घर के बाहर शोर हो रहा है, आपकी बहू ऐसे ऐसे कर रही है।
1: तो भाई रूहानी को चुप करवाने के लिए देखिए कैसे गुरु गुस्से में उसे अपने घर के अंदर ले आया है और आते ही उसने रूहानी को जमीन पर पटक दिया। रूहानी घर के अंदर तो आ चुकी है, लेकिन अब क्या क्या तमाशे होंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ गुरु अपना पुराना केस ओपन करवा रहा है, जिससे मामा मामी को तकलीफ हो रही है और इसी बात को लेकर घर में बहसबाजी छिड़ गई है।
9: पहले की तरह अब बात दबाना आसान नहीं है जी, पता नहीं जीजा जी का है गुरु करे तो खाने के पीछे पड़ा हुआ।
5: ठंडा पानी पीजिए मामा जी, ये सवाल है बेचैन आप हो रहे हैं। अरे कहा मामी जी, अपनी सात मांगों पे भरोसा नहीं है का? केस हमारा, गुनाह हमारा, तो सजा मिलेगी तो हमें मिलेगी ना।
10: पर क्यों उस चिट्ठी की बिटिया को पहले जाने रोकने के लिए बात कान खोल के सुनो गुरु, उस लड़की के घर में कोई नहीं।
5: दूर रहकर ना प्यार परवान चढ़ता और ना ही नफरत।
1: तो भाई अब देखना होगा कि रूहानी के घर में आने के बाद क्या कुछ होता है, क्या फिर एक बार बन जाएगी गुरु और रूहानी की जोड़ी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: अरे क्या तुम दोनों को भी आ रही है खुशबू? मुझे तो लग रहा है कोई ना कोई नई खिचड़ी पक रही है यहाँ पर पति ब्रह्मचारी के सेट पर। लेकिन देखिए जब भी कुछ नया होता है कहानी में तभी कहानी लेती है एक इंटरेस्टिंग मोड़। तो चलिए फिर पता कर आते हैं ऐसा क्या हो रहा है सूरज और ईशा की जिंदगी में आज। क्या आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज या फिर से आया है कहानी में एक ऐसा
1: फिर ईशा पर भड़के सूरज।
11: मान बच्ची को ऐसे ऑफिस में लाना सही नहीं, बस मजबूरी में ये सब करना पड़ता। पर तुम्हें क्या लगता है मेरी काको ऐसे बुरी तरह डांटना सही था?
1: नन्ही परी मिहिका को देखकर पिघला सूरज का दिल। सूरज और मिहिका की बनी पापा और बेटी जैसी बॉन्डिंग। टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज फिर एक बार सूरज ईशा पर भड़क रहे हैं, क्योंकि ईशा अपनी बेटी मिहिका को ऑफिस में जो ले आई है और ये बात सूरज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। ऐसे में ईशा को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मजबूरी भी मजबूरन उसे मिहिका को ऑफिस लाना पड़ा क्योंकि घर में संभालने के लिए कोई भी नहीं था।
11: मान बच्ची को ऐसे ऑफिस में लाना सही नहीं, बस मजबूरी में ये सब करना पड़ा। पर तुम्हें क्या लगता है मेरी काको ऐसे बुरी तरह डांटना सही था? सूरज थोड़ी तो इंसान है, तुम्हारी बच्ची होती तो भी तुम जब से वो घर से रही है बस उदास है क्योंकि उसकी स्कूल में से।
1: इसी के साथ देखिए कैसे मिहिका ईशा के साथ जिद कर रही है। असल में होने वाला है एक स्पोर्ट्स फंक्शन जिसमें मिहिका को अपने मम्मी पापा संग जाना है, लेकिन आकाश तो मिहिका संग आएंगे नहीं, इसीलिए मिहिका जिद पर अड़ी है और ईशा उसे समझाने की कोशिश कर रही है।
12: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
11: तो मैं प्रिंसिपल को लेटर लिखूंगी, फिर आपको वो कुछ भी नहीं बोलेगा और आपने खुद और आपने स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
12: नहीं, टीचर ने सब बोला था जिनके पेरेंट्स आएंगे उनको ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा।
1: ऐसे में तो देखिए कैसे मिहिका तो जिद पर जिद करे जा रही है। तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं सूरज जो मिहिका को डांट देते हैं और मिहिका रोने लगती है।
11: मिहिका सुनो,
12: नहीं मुझे गेम से निकाल देंगे टीचर।
11: मैं आऊंगी ना आपके साथ, ओके?
12: नहीं मुझे पापा चाहिए स्कूल में।
5: ये क्या नाटक लगा रखा है? ये ऑफिस कोई घर नहीं है, ये चीखना चिल्लाना रोना बंद करो।
1: ऐसे में कुछ देर बाद सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिहिका को मनाने के लिए पहुंच जाता है। भाई पहले तो वो दिखाता है मिहिका को ये जादू वाली ट्रिक जहां उसके कोट में से निकल रही है चॉकलेट्स पर चॉकलेट्स खास मिहिका के लिए। ऐसे में मिहिका रोना धोना छोड़ हंसने लगती है और शुरू हो जाती है इनके बॉन्ड की शुरुआत।
5: मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका, मिहिका,

0: वहीं सूरज को माफ करने के बदले नन्ही परी मिहिका सूरज से डिमांड कर देती है कि उसे पापा बनकर मिहिका के स्कूल आना पड़ेगा और ऐसे में सूरज मान भी जाता है।
1: हमारा सीक्रेट होगा।

0: भाई अब तो मिहिका का ऑफिस में आना जाना लगा हुआ है और देखिए कैसे सूरज और मिहिका की बॉन्डिंग भी एकदम स्ट्रांग होती जा रही है। ऐसे में आज फिर एक बार सूरज और ईशा को मिलने गया रोमांस का बहाना। मिहिका के जाते ही देखिए कैसे सूरज और ईशा करीब आ गए।
1: और वो मिहिका, वो आकाश मिहिका को कहीं घूमने नहीं ले जा रहे ना, इसलिए मिहिका अपने पापा से गुस्सा है ना ईशु की मिशु? बच्चे भी ना आजकल, आकाश कल रात मिहिका के लिए चॉकलेट नहीं लाए तो मिहिका अपने पापा से नाराज। जाओ बाहर जाके बिक करूँ मैं।

0: चलिए अब लेकर चलते हैं आप सबको एंड ऑफ कोर्स हमारी सयानी बिल्ली और भोला बिल्ली को मन अति सुंदर के सेट पर, क्योंकि हमारी जो टीम है ना सास बहू और बेटिया, उन्होंने दिया है अभी अभी हमें इस कहानी का एक फ्रेश अपडेट। और ये फ्रेश अपडेट तो यही बता रहा है कि कहानी में आया है एक इंटरेस्टिंग ड्रामा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज।
1: रूही और राध्या की जासूसी, क्या है निहारिका की मौत का सच,

रवि और राध्या करेंगे सच का खुलासा। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर और मन सुंदर का महासंगम एपिसोड शूट हो रहा है, जहां पर प्रथम तो जेल में है लेकिन उसे बचाने के लिए साथ साथ आ गए हैं रूही और राध्या। असल में वो पहुंचे हैं इस अस्पताल में ये पता लगाने के लिए कि क्या वाकई निहारिका मर चुकी है, और अगर वो मर चुकी है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जरूर होगा। ऐसे में रिसेप्शन पर ये इन्फॉर्मेशन देने से हॉस्पिटल वाले साफ इनकार कर देते हैं। ऐसे में राध्या करती है बेहोशी का नाटक ताकि रूही रिसेप्शन पर जाकर फाइल ढूंढ सके, लेकिन ये प्लान भी इनका हो गया है फेल।

0: हाँ, जैसे कि हमारी स्मार्टनेस दिखाई गई है कि राध्या कितनी स्मार्ट है, रूही कितनी स्मार्ट है। रूही डॉक्टर बन के आ जाती है राध्या को बचाने के लिए, राध्या फाइल ढूंढने के लिए बेहोश हो जाती है। तो दोनों कुछ ना कुछ तरकीबें लगा रहे हैं ताकि वो सच्चाई तक पहुंच सके।
1: लेकिन फिर भी राध्या और रूही हार नहीं मानते। भाई दोनों बहुरानी एकदम टैलेंटेड जो ठहरी, ऐसे में वो पहुंचती है उस रूम के पास जहां पर सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। भाई पहले तो वार्ड बॉय आकर राध्या को रोक लेता है, लेकिन रूही डॉक्टर के भेस में आ जाती है और बहाना कर इस रिकॉर्ड रूम में रूही संग राध्या भी चली जाती है और दोनों ढूंढने लगते हैं रिकॉर्ड्स, जिससे इन्हें पता चले कि निहारिका जिंदा है या मर चुकी है। क्योंकि अगर वो जिंदा है तो प्रथम बच जाएगा।
2: हाँ, क्योंकि मैं एक अर्जेंट केस के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे अपने पेशेंट की फाइल देखनी है और मुझे अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ यहाँ से।
1: तलाश जारी होती ही है कि तभी वहाँ पर असली डॉक्टर आ जाती है। लेकिन ऐसे में राध्या फैसला लेती है कि वो डॉक्टर को सारा सच बताएगी और सच बताने के बाद डॉक्टर भी कर देती है रूही और राध्या की मदद और दे देती है इन्हें रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर तो रूही और राध्या के हाथ एक नहीं बल्कि दो दो चीजें लग गई है, यानी कि लग गया है इनका जैकपॉट। क्योंकि इन्हें ये पता चल चुका है कि निहारिका तो जिंदा है ही, नाहर भी जिंदा है। ऐसे में अब नाहर को फिर से पा लेगी रूही, तो वही प्रथम को छुड़वा लेगी राध्या।
2: डॉक्टर देखिए प्लीज, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने नहीं आए थे। हमें बस एक पेशेंट की जानकारी चाहिए। हमारे पति ना जेल में है, वो फाइल देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज डॉक्टर, हम हाथ छोड़ के आपसे विनती करते हैं, हमारी मदद कर दीजिए।
0: हमेशा की तरह राध्या और रूही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट सो न्यू। और जैसे कि राध्या बहुत परेशान होती है क्योंकि प्रथम जी जेल चले जाते हैं, तो रूही से राध्या की मदद करने आई है हॉस्पिटल। अब आपको राध्या बताएगी हॉस्पिटल में क्या होता है।
3: बस हॉस्पिटल में हम पता करने आए कि एक्चुअली निहारिका मरी है, तो उनकी कुछ ना कुछ फाइल्स होंगी यहाँ पे। तो बहुत सारा सस्पेंस है, बहुत सारे हिट एंड मिस हैं, बट फाइनली हमें पता चल जाता है कि निहारिका जिंदा है। इन्हें पता चल जाता है नाहर जी जिंदा है, तो दोनों के लिए बहुत बड़ा रिविलेशन है। पर निहारिका नाहर को लेकर भाग गई है, तो अब हम समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली सिचुएशन से कैसे टैकल करें, क्योंकि प्रथम जेल में है, नकली नाहर घर पर है, अग्नि घर पर है। तो हम बस
0: पता चल गया कि वो नकली नाहर है।
3: हाँ, तो हम थोड़े परेशान हैं कि कैसे ना कैसे करके ये सारा सच सबके सामने लाना होगा ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सके एक दिन के लिए।
0: Yes.
3: प्रथम सर ने किसी का खून नहीं किया है, तो मैं उन्हें कैसे ना कैसे करके बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। इन्होंने तो सारी उम्मीद खो दी थी नाहर की, पर वो भी मिल जाते हैं, तो आई थिंक बस थोड़े सबूत मिले।
0: मर चुका है। मैं तो मान ही लिया था, बट मुझे नहीं पता था कि नाहर जिंदा है। रूही को नहीं पता था, बट नाहर जिंदा होता है ये सबसे बड़ा शॉकिंग है रूही के लिए, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि नाहर सच में बच गया था।
1: लेकिन इस हॉस्पिटल में भी राध्या और रूही पर पैनी नजर है इस नकाबपोश की, और ये काले कपड़ों में नकाब पहनकर कोई और नहीं बल्कि निहारिका ही है, जो छुप छुपाती फिर रही है और साथ ही रख रही है इन पर नजर। ऐसे में देखिए कैसे वो डॉक्टर पर हमला भी कर देती है। तो भाई अब देखना होगा कि कैसे रूही और राध्या मिलकर सच का खुलासा करेंगे, क्योंकि सच तो इन्हें पता चल चुका है। मुंबई से कुराल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: यहाँ सयानी बिल्ली और भोला पिल्लू मुझसे कह रहे हैं कि इन्हें तो बड़ी अच्छी लगती हैं जगदात्री, स्पेशली जब वो आती हैं अपने सीक्रेट एजेंट के रूप में। ओ माय गॉड, देखे हैं आप दोनों ने उनके स्टंट्स। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जगदात्री और शिवाय के पास और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इनकी कहानी में आज। क्या फिर से आया है इन दोनों के सामने कोई नया चैलेंज, या फिर एज यूजुअल चल रहा है यहाँ पर फैमिली ड्रामा। लेट्स चेक इट आउट।
1: जगदात्री शिवाय का हसीन हादसा शुरू हुई लव स्टोरी। प्यार में में गिरे जगधात्री और शिवाय। जी टीवी के सीरियल जगधात्री में आ गया है मौसम प्यार का, और देखिए कैसे प्यार की चल गई है हवाएं जगधात्री और शिवाय के लिए। यहाँ हवा है, फूल है और है हवा में ढेर सारा प्यार।

0: भाई जहाँ एक तरफ इनका रोमांटिक सीन देखने को मिला तो वही दूसरी तरफ जगधात्री अपने मायके पहुँच गई है, जहाँ हुआ जगधात्री का सामना ढेर सारे तानों से। देखिए कैसे वो अपनी माँ और बाकी घर वालों को खाना बनाकर खिला रही है, लेकिन इसमें भी जगधात्री की मम्मी कोई ना कोई मीन मेक निकाल ही रही है।
1: कैसा बना, मतलब ठीक है?

0: से डर रही है तो वहीं जगधात्री के पापा को मिल गया है जगधात्री का साथ देने का मौका।
1: अपने घर पे भी चैन से बैठ के खाना नहीं खा सकते?
2: क्या तरीका है, छोटी बच्ची है क्या जिसे छड़ी दिखा के डरा रही हैं आप? इतना टाइम हो गया है, अब तो माफ कर दीजिए इसे प्लीज।
3: हवाई जहाज थोड़ी उड़ा रहा है।
2: सारे कपड़े 10 मिनट में ही धो लेती होगी, इसीलिए मेरी नई चमकती हुई शर्ट भी पीली पड़ गई है। और जब जगधात्री मेरी शर्ट धोती थी, मेरे पुराने कपड़े आज भी चमकते हैं।
0: ये सारा नजारा दूर खड़ी जगधात्री देख रही है और काफी खुश हो रही है। ऐसे में वहाँ शिवाय भी आ गए हैं जगधात्री को घर ले जाने के लिए।
4: अब जब आई है तो खाना बनवा के भेजो ना बहनी।
0: तो भाई जगधात्री की मुश्किलें तो कम नहीं होंगी, अब देखना होगा कि कहानी में कौन सा ट्विस्ट आता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अरे माय डियर सयानी बिल्ली एंड माय डियर भोला बिल्लू, तुम दोनों जानते हो इस सेलेब को? अरे हमारे ऑडियंस भी जानते हैं इन्हें, बताइए कौन है? अरे ये है वो। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जहां हमारी टीम ने की है इनसे, जी हाँ इनसे एक खास मुलाकात। फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग डे आउट की ओर।
6: मिली लहरों से खेलती इस लड़की से पहचाना इतने, ये है रिया बहू, वही मेरे अंगने वाली, नाम एकता कौल। जॉब बन गई है मिसेस सुमित व्यास और अब ये एक मम्मी है। लेकिन मम्मी के उस पार है एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने रब से सोना इश्क से लेकर मेरे अंग में जैसे शोज में काम किया, उसके बाद वेब सीरीज तनाव में भी काम किया। लेकिन मदर्स डे के खास मौके पर आज ही निकली है सास बहू और बेटिया संग एक खास डे आउट पे। ये करेंगे समुंदर से बातें,

0: खाएंगी अपना फेवरेट कोला। और फिर सैलून में जाकर खुद को करेंगी पैम्पर और ट्रीट। भाई ये रियल लाइफ मम्मी है और आज इनको सास बहू और बेटियां दे रहा है ये खास मौका खुद के लिए। जी हाँ, चाहे अभिनेत्री हो या हो हाउसवाइफ, सबको जरूरी है अपने लिए एक दिन निकालना। और इसीलिए मदर्स डे के मौके पर ये खास वक्त निकाला है अभिनेत्री एकता कौल ने सास बहू और बेटियां संग। तो सीधा चलते हैं मुंबई के वर्सोवा बीच पर, जहां एक लंबे समय के बाद हमें मिली एकता कौल, जिनके साथ सास बहू और बेटियां का एक पुराना नाता है, और हम करेंगे ये खास डे आउट।
1: 10 साल से आपको जानती हूँ और मेरे हर शो में आप एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप अपने पुराने दोस्त से मिल रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद। बहुत मज़ेदार चल रहा है। बैलेंस तो नहीं हो पाता है, कभी मदरहुड ओवरटेक करता है, कभी एक्टर ओवरटेक करता है, कभी डॉटर ओवरटेक करती है और कभी वाइफ ओवरटेक करती है। बट मज़ेदार है, लाइफ कम्प्लीट लगती है और बहुत मज़ा आ रहा है।
0: एकता ने अपनी शुरुआत की थी जी टीवी के सीरियल रब से सोना इश्क के साथ। उसके बाद वो दिखी मेरे अंगने में और हाल ही में वो दिखी थी वेब सीरीज तनाव में। उनके पति का नाम है सुमित व्यास, जो वेब सीरीज का एक जाना पहचाना चेहरा है। सुमित के साथ शादी करके उन्होंने गृहस्थी बसा ली और अपने बेटे वेद के साथ वो बिजी है अपनी फैमिली लाइफ में। भाई वो रहती है मुंबई के वर्सोवा इलाके में, लेकिन बहुत साल बाद आज वो वर्सोवा बीच पर आई है खुद के लिए सास बहू और बेटे।

0: ऐसा
1: थोड़ा टाइम निकाला है तो फिलहाल जो है बीच का वर्सोवा बीच पे है, तो कितना आना हो पाता है? घर के नजदीक है लेकिन कभी ऐसे आना हो पाता है?
2: वेद के साथ बीच डेज होते हैं जब धूप कम होती है और उसका मन करता है खेलने का, तो हम आते हैं। पहले ज़्यादा आते थे, अब क्योंकि बड़ा हो गया है, स्कूल प्रॉपर हो गया है, तो आना थोड़ा कम होता है, बट हम आते थे, काफ़ी आते थे। आप जिस तरह से मुझे पैम्पर करना चाहते हैं, मैं उस तरह से पैम्पर होना चाहूँगी, और मैं सिर्फ पैम्पर होना चाहती हूँ आज, मुझे कोई काम नहीं करना है, प्लीज़। आई जस्ट वॉन्ट टू बी मी टुडे।
0: मुंबई का वर्सोवा बीच बड़ा ही खूबसूरत है, और देखिए एकता कैसे बिल्कुल बच्ची बन गई और अपनी यादें ताजा की जब वो समुद्र पे आती थी।

0: वैसे मुंबई के बीच पर आए हैं और गोला नहीं खाया, ये कैसे हो सकता है? खासकर गर्मी के मौसम में ये गोला बहुत ही राहत देता है। तो भाई एकता भी अपना फेवरेट स्वाद वाला गोला यहाँ पर खाने वाली है।
1: आइए आइए गोला खाते। हम गोला ट्राई करते हैं। मैं काफी देर के बाद गोला खा रही हूँ, काफी वक्त हो गया है। बट मुझे ये याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरा फेवरेट काला खट्टा था। भैया प्लीज एक काला खट्टा बना दीजिए।

0: भाई मदर्स डे का हफ्ता है, लेकिन वो अपने अंदर के बच्चे को जगा रही है। और देखिए गोला भी किस शानदार स्टाइल में पेश किया गया, और उसके बाद एकता ने उसका स्वाद लिया।
1: बहुत ही क्यूट लग रहा है। थिंक आपने ये हार्ट बनाया, और ये क्या भैया?
2: हार्ट के ऊपर कैप पहना दिया।
1: कैप पहना दिया, ओह वाओ। ताकि इस हार्ट को गर्मी ना लगे हमने ऊपर टोपी पहना दी। ये लीजिए, बहुत अच्छा है।

इसके बाद एकता ने पूरे समुंदर पे वॉक की और साथ साथ अपने सफर को भी बताया, भाई कैसे उन्हें मिला था उनका पहला शो रब से सोना इश्क और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई।

0: बहुत याद आती है क्योंकि वो मेरा पहला शो था और मैं एक्टर नहीं थी. आई वॉज नेवर इन टू एक्टिंग. मुझे सडनली किलरी मैम ने एक चांस दिया कि आप आइए और देखिए ये कैसा होता है. तो वो जो नई मतलब वो सीखने का जो मज़ा होता है ना, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, आपको लाइटिंग का नहीं पता, आपको कैमरा एंगल्स का नहीं पता, आप कॉन्शियस नहीं होते कि मैं कैसे दिख रही हूँ. आपका पूरा फोकस होता है कि मैं ये किस तरह से सीखूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ आता है कैमरा ये है, इस तरह से लुक दी जाती है, इस तरह से मेकअप होता है और इस तरह से लाइन बोली जाती है, इस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करनी चाहिए लाइन पे, इस तरह से आपको फील करना है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो मेरे लिए.
1: एकता कौल ने यूं तो कई शोज में काम किया है, लेकिन सबसे उनका खास और लोकप्रिय शो था मेरे अंगने में, जहां वो बनी थी रिया और इस बहू ने अपनी मजेदार सास के साथ बड़ी ही मजेदार कहानी पेश की थी. तो ये बन जाता है रिया का बहुत ही लोकप्रिय शो.
2: आप क्यों नहीं नाच रहे?

हाल ही में एकता ने कमबैक किया था एक वेब सीरीज तनाव के साथ, जहां वो बनी थी एक डॉक्टर। तो ये दो किरदार हैं, उनके दिल के बहुत खास हैं। तो आइए उनसे जानते हैं इन दो शोज के बारे में।

0: दो रोल्स एक्चुअली मेरे बहुत दिल के करीब हैं, एक रिया श्रीवास्तव मेरे अंगने में और दूसरा डॉक्टर फारा तनाव। दोनों बहुत स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। जब हम रिया की बात करें तो उसको एक्सप्लोर करते करते करते करते मतलब एक टाइम आता है जब वो कैरेक्टर आप बन जाते हो और वो कैरेक्टर पूरी तरह से आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी सिंक में आ जाती है। आई थिंक रिया के साथ वो हुआ और फिर वो सेम चीज़ हुई डॉक्टर फारा के साथ। डॉक्टर फारा जो ट्रांजिशन था टीवी से मेरा वेब शो की तरफ विद दिस कैरेक्टर वॉज वेरी ऑर्गेनिक। मैं नई नई माँ बनी थी, मेरा बच्चा वेद 5 महीने का था और किस तरह से उसको 5 महीने के बच्चे को साथ लेके मैंने वो शो किया था, उसकी वर्कशॉप्स की थी, उस कैरेक्टर को समझा था। आई थिंक ये दो कैरेक्टर्स बहुत ही क्लोज हैं मेरी लाइफ में। तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि मैनेज कर लें। इफ़ आई एम शूटिंग तो सुमित घर पर रहेंगे, अगर सुमित शूट कर रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर रहूँ। बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है शूट करना, मतलब 10 घंटे के बाद आपको लगता है कि अब पैकअप हो जाए और मैं घर जाऊं, क्योंकि जब हम जनरली शूट करते हैं तो 12 घंटे की शिफ्ट होती है और बाय द टाइम आप निकलते हैं और बाय द टाइम आप घर आते हैं तो आप बच्चे को सोता हुआ छोड़ के जाते हैं और जब वापस आते हो तो वो सो रहा होता है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है मदरहुड का।
1: एकता कॉल के इस डे आउट में समुंदर का मजा तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अब करते हैं कुछ अलग हटके। भैया आज खुद का दिन है तो वक्त है पैम्परिंग का।
0: गोला खा के मेरी आत्मा तृप्त हो गई है और अब मेरा मन कर रहा है कि स्किन के लिए कुछ किया जाए। दिन में 1 घंटा खुद के लिए निकालना कभी मुश्किल होता है, बट मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा निकालूं और निकाल पाती हूँ।
1: तो एकता सवार होली गाड़ी में और उनके साथ है सास बहू और बेटियां।
0: स्किन केयर सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम अपनी आत्मा के लिए केयर करते हैं उसी तरह अपनी बॉडी के लिए भी केयर करना उतना ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज प्रॉपर करना ताकि आप फिट रहें, अपनी स्किन का ध्यान रखना ताकि ये हेल्दी रहे, बहुत ज़रूरी है। और अपनी स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम ये क्लिनिक जा रहे हैं और हम डॉक्टर से पूछेंगे कि वो क्या प्लान करते हैं मेरी स्किन के लिए।

0: और मुंबई की चिलचिलाती गर्मी को चीरते हुए वो पहुंची स्कूट सैलो में, जहां आज वो करेंगी एक पैम्परिंग डे आउट सास बहू और बेटियां संग। वैसे अपने स्किन केयर को लेकर काफी एक्टिव है। वैसे एकता रहने वाली है जम्मू और कश्मीर की, और अपनी स्किन को मेंटेन करने वो कभी नहीं भूलती। और आज उनका प्लान है कि अपनी स्किन को अच्छे से नरिश किया जाए।
1: तो मदर्स डे सेलिब्रेट करने और खुद को पैम्पर करने हम आ चुके हैं स्कूची क्लिनिक में। आइए मिलते हैं यहाँ के स्टाफ से। हाय,
2: वेलकम टू स्कूची।
1: थैंक यू, गुड आफ्टरनून। मैं मैम से मिल सकती हूँ?
2: यस
1: जी,
2: आई विल गाइड यू।

उन्हें एकता सबसे पहले मिली यहाँ की डॉक्टर से और उन्होंने उनको दी बहुत सारी स्किन केयर टिप्स। और अब वक्त है उस ट्रीटमेंट का जो एकता को देने वाला है रिलैक्सेशन। जी हाँ, ये खास तरह का एक फेशियल है जो बहुत ही साइंटिफिकली किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि एकता आखिर कौन सा स्किन ट्रीटमेंट ले रही है इस क्लिनिक में।

0: तो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है और मैं क्विकली चेंज करके आप लोगों से मिलती हूँ. बाय.
1: सो फर्स्ट मैं फेस क्लेंस करूँगी बिकॉज यू वेयर सनस्क्रीन और मेकअप, उसके लिए आई हैव टू या मैं रिमूव करूँगी. सो फर्स्ट क्लेंजिंग प्रोसेस होगा. आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद द एक्सपोलिएशन. एक्सपोलिएशन से आपके जो भी डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है. सो वील यूज दैट फॉर द एक्सपोलिएशन. आफ्टर दैट वी यूज द एक्सट्रैक्शन थिंग. जो भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स या जो भी डेड स्किन या जो है वील रिमूव दैट. आफ्टर दैट वील पुट द बूस्टर. इट्स अ सीरम विच हैज द हैलुरोनिक एंड द ग्लाइको ऑल्सो ग्लाइकोलिक एसिड. या इट्स फॉर द मॉइस्चराइजेशन फॉर द हाइड्रेशन. राइट. सो वी जस्ट पेनिट्रेट दैट.

0: एकता रैनी है अपने पैम्परिंग सेशन के लिए और अब खुद डॉक्टर आई हैं उनको ये ट्रीटमेंट देने और शुरू हुआ उनका ये ट्रीटमेंट।
1: आपको इमीडिएट बेसिस पे भी थोड़ा लिफ्टिंग मिलता है एंड लॉन्गर टाइम में आपका बॉडी अपने आप कोलेजन बनाना शुरू करता है। तो पहले के टाइम में बिफोर द ऐसी मशीन्स आए उसके पहले लोग कोलेजन बूस्टर्स करते थे, प्रोफाइलो जैसे ट्रीटमेंट्स करते थे या कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स करते थे जिससे स्किन बूस्टिंग मिलती थी, कोलेजन फॉर्म होता था। अब ये ट्रीटमेंट से आपका कोलेजन आपकी बॉडी खुद बनाने वाला है। सो इजंट इट अ वेरी एक्साइटिंग ट्रीटमेंट? तो लेट्स गो अहेड विद द ट्रीटमेंट।

0: और देखिए फाइनली कैसे आया उनका ग्लो। आइए देखते हैं फाइनल रिजल्ट।
1: तो हमारा स्किन पैम्परिंग सेशन खत्म हो चुका है, हमने हाइड्राफेशियल अभी अभी कंप्लीट किया है और ट्रीटमेंट के ख़त्म होते ही मुझे मेरी स्किन सॉफ्ट लग रही है और बहुत हाइड्रेटेड लग रही है एंड आई थिंक थोड़ा सा स्किन ग्लो भी वापस आया है। आप मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है।
0: तो फाइनली एकता का ये पैम्परिंग सेशन हुआ खत्म और अब वो तरोताजा होकर अपने काम में जुड़ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि एकता कॉल जल्द ही अपना कमबैक कर रही हैं और आज मदर्स डे के इस खास हफ्ते पर उनका ये सेशन उनके आने वाले शो की एक झलक है जिसे जल्दी बताएगा सास बहू और बेटियां।
1: मैंने खुद को पैम्पर कर लिया है, मेरा सेशन खत्म हो चुका है और मेरी स्किन बहुत फ्रेश फील कर रही है, रिजुविनेटेड फील कर रही है। तो आप जब भी फ्री हो, आपके पास समय हो या समय निकाल के प्लीज़ जाएं, खुद को सेलिब्रेट कीजिए, मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए, मदरहुड सेलिब्रेट कीजिए, वुमनहुड सेलिब्रेट कीजिए और प्लीज़ गो पैम्पर योरसेल्फ, बी फिट, बी फाइन, बी हेल्दी एंड मैं आपसे बहुत जल्दी वापस मिलूंगी। प्लीज़ टेक केयर, बाय।
0: तो ये थी एकता कॉल सास बहू बेटिया की खास मेहमान जिन्होंने आज पूरा एक दिन बिताया सास बहू और बेटिया संग, क्योंकि भले ही वो मम्मी बन गई हो लेकिन उनके अंदर की वो लड़की अभी भी जिंदा है और आज उसे ही जगाने की हमने कोशिश की। तो एकता की तरह आप भी जाइए और इस खास दिन खुद के लिए रखिए। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: हमारे भोला बिल्लू तो मुझसे कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में भी आ गया था ट्विस्ट जब सयानी बिल्ली खा गई उनका सारा खाना। सयानी बिल्ली ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। वैसे कुछ ऐसे ही ट्विस्ट आते हैं हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में जो कभी कभी लगा देते हैं उन पे फुल स्टॉप, लेकिन कभी कभी बढ़ा देते हैं उन कहानियों का पेस। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ये तमाम ट्विस्ट वो भी एक साथ।
3: पेश है टेलीविजन की ट्विस्ट भरी खबरें, तो आइए देखते हैं कौन से सीरियल में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जहां पर होने वाली है तुलसी और मिहिर की शादी यानी कि इनका पुनर्विवाह। और इस शादी में अंश का बेटा रियो आकर लगाएगा ट्विस्ट का तड़का। देख लीजिए इसकी एक झलक।
4: परिधि वीरानी, आपको रणविजय के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है।
5: क्या शांति निकेतन की खुशियों को फिर से लग जाएगी किसी की नजर।
3: दंगल टीवी पर शुरू होने जा रहा है नया शो जिसका नाम है 30 के पार जब मिला प्यार, जिसमें है अनोखी लव स्टोरी। देख लीजिए इसकी एक एडवांस झलक, क्योंकि इस अजब गजब लव स्टोरी में भी विलन तो है ही।
6: ये है तन्वी पाटिल, घर की जिम्मेदार, उम्र 32 पार। दुनिया के अनुसार
7: तेरी तो उम्र निकल गई, जो लिखा होगा वो एक ना एक दिन टकराएगा।
6: ये है युग सरपोदार, बेफिक्र मस्त मौला 24 के।
8: बड़े घर में पैदा होना, स्पोर्ट्स कार में ड्राइव करना, ये सब किस्मत लिखवा के लाया हूँ।
6: इनमें स्टेटस, सोच, एज कुछ भी नहीं मिलता।
7: दोबारा मत मिलना,
8: तुम भी।
6: तो जुदा है जिनके उम्र और सोच के तार, क्या उनमें भी हो सकता है प्यार?
9: नहीं, ये नहीं हो सकता। विषय संभला।
3: कलर्स के सीरियल नागिन 7 में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर नागरानी लौट आई है। अब कहानी लेगी नया मोड़।
10: कहाना को मैंने मारा है, तूने मेरी नागरानी को मार दिया। वो जिंदा है, वो लौटेंगी और महाकाल की तरह तेरा काल बनकर आएंगी।
11: इतनी भारी मशीन मैंने अकेले कैसे उठा ली।
3: मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में हो रहा है मदर्स डे का सेलिब्रेशन, ऐसे में अंजलि करती है फोन मिस्टर परशुराम को बधाइयां देने के लिए। ऐसे में मिस्टर परशुराम को पता चलेगा शालिनी का सच।
12: अंजलि अवस्थी।
13: पता था मुझे कि आज आपका फोन पक्का आएगा।
12: हैप्पी मदर्स डे।
14: थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरी पत्नी को बचा लिया।
12: मैंने बचाया था मतलब?
14: और नहीं तो क्या।
12: अरे आपकी पत्नी ने तो कमाल की फाइट की थी, एक को किक मारा, एक को मुक्का मारा।
14: शालिनी और फाइट।
3: कलर्स टीवी के सीरियल शहर में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जहां पर शहर की ढाल बनकर खड़ा होगा माहिद।
15: हमने कहा था ना खालाजान और शहर से दूर रहना, आज आप दोनों हमारे साथ रहेंगे।
16: तुमने खानदान के रिवाजों के साथ में धोखा किया है।
17: अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अपनी पढ़ाई की कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी देनी, कुर्बानी
3: देनी। नजर डालते हैं गंगा माई की बिटिया के नए प्रोमो पर, जहां पर स्नेहा किसी और की होने जा रही है।
18: किसी भी परिस्थिति में उससे झूठ नहीं बोलेगा। समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
3: तो वहीं सिद्धू बहा रहा है आंसू, तो क्या इनकी जोड़ी टूट जाएगी?

0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में हो गई है ललित की री एंट्री, यानी कि वो लौट आया है। ऐसे में देखिए आते ही वो कर रहा है अपराजिता पर अत्याचार।
1: क्या कहना चाहती हो अपने परिवार? क्या चिट्ठी चिट्ठी लगा रखी थी नीचे ना?
2: बुआ ने कहा मेरे आने से पहले आपने फोन किया था, आपने ऐसे क्या कह दिया कि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं देना? माँ तो ऐसे बर्ताव कर रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाली हूँ?
3: मेरी अप्पू की ऐसी कोई पता नहीं जो उसके
1: ललित को पता नहीं। तुम्हें तो ललित चिट्ठी लिखने का शौक सिर्फ तुम्हें ही, मुझे नहीं।
0: लेकिन अब अपराजिता ने ठान लिया है कि वो ललित को सबक सिखाएगी।
4: तुम तो डर गई।
1: बस दरवाजे तो बंद किए, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। भोपाल से भागकर यहाँ तो आ गई, यहाँ से भागकर कहाँ जाओगी? यहाँ आ जाना।
5: जब कुछ बहुत बुरी तरह चाहिए होता है ना, तो उसके लिए आउट ऑफ कैरेक्टर जाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है।
2: बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहूंगी।
6: मैंने कहा कि मेरे पॉप्स का नाम कोई पर्दा नहीं है जिसके पीछे छुप के आप जो मन चाहे करती रहे।
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते पर उठ रहे हैं सवाल। ऐसे में राही कोई भी कसर नहीं छोड़ रही अनुपमा को खरी खोटी सुनाने में। ऐसे में घर में शुरू हो गया है तमाशा।
6: पर आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी, इसीलिए आपसे करती हूँ। आपसे पहली बार मिलकर मुझे लगा था कि आप भले इंसान हैं, लेकिन अब लगता है मैं सिर्फ अपनों को ही नहीं अनजानों को भी पहचानने की गलती कर जाती हूँ। वैसे आपने मेरी माँ से ये दोस्ती करने से पहले सोचा क्यों नहीं? या फिर आपने जो कुछ भी किया, ये सब कुछ अपने जानबूझ के किया है कि अकेली औरत मिली तो आपको लगा कि अपने फायदे के लिए इसे यूज किया जाए?
7: अनुपमा बेन सब कुछ बता चुकी है ना राही, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? एक ही सवाल बार बार पूछ के तुम क्या जानना चाहती
6: हो? मैं जानना चाहती हूँ कि इनके इरादे क्या है, ये मेरी मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं?
8: राही बहुत ज्यादा बोल रही है तू।
6: वैसे आपको देख के तो लगता है कि आप बहुत समझदार है, तो फिर अब इनकी बातों में कैसे आ गए? तो क्या सारी दुनिया की तरह इन्होंने आपको भी इंप्रेस कर दिया? अरे ये सिर्फ कहती है कि इन्हें कोई सहारा नहीं चाहिए, लेकिन हर थोड़े दिन में इनके साथ कोई ना कोई नया दोस्त जरूर होता है। आप ना तो पहले हैं और ना तो आप आखिरी होंगे।
3: राही
0: लेकिन अनुपमा ने भी ठान लिया है कि वो इस बार चुप नहीं बैठेगी और सबको करारा जवाब देगी।
6: कोई ध्यान नहीं देता है तो ये बाहर जाकर सबका ध्यान खींचती है, और अगर ध्यान देने वाला कोई मर्द हो तो बस इनकी तो लाइफ बन जाती है।
3: राही तुम अपनी माँ से बात कर रही हो?
6: मैं अपनी माँ पे चिल्लाई तो आपको इतना बुरा क्यों लग गया? वाह मम्मी, लगता है आपने पॉप को इनसे रिप्लेस कर ही दिया।
8: सबक भुला कर इतनी घटिया सोच रखने वाली।

0: देखिए देखिए, जैसे ही मैंने इन दोनों को बताया कि अब लेकर चल रहे हैं हम आप सबको वसुधा के सेट पर, ये दोनों हो गए हैं सुपर एक्साइटेड, क्योंकि बड़ी अच्छी लगती है इन्हें वसुधा की ये कहानी। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको भी वसुधा और देवांश के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में। आज दिखाते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स।
1: वसुधा ने किया हैप्पी डांस, झूम कर नाची दादी, सेट पर हुआ सेलिब्रेशन,

सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है जी टीवी के सीरियल वसुधा के सेट पर और यहां पर जोरों शोरों से सेलिब्रेशन चल रहा है। भाई खुशी का मौका जो है, क्योंकि सीरियल नंबर वन जो हो गया है, ऐसे में सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। तो देखिए क्या दादी क्या वसुधा, सभी लोग आज झूम रहे हैं, हैप्पी डांस कर रहे हैं और कर रहे हैं सेलिब्रेशन, क्योंकि इनकी मेहनत रंग जो ले आई है और शो बन गया है नंबर वन।

0: 땡땡땡 약간 얼핏에 라지산 게 호텁에 라지산 게면 예. 말이 구마르체 나 그라이레 마 오메 구마르란 나다 메자사 예 비아나 모반
1: पर शूटिंग के बीच से टाइम निकाल कर देखिए कैसे सभी केक कटिंग कर रहे हैं और छोटा सा जश्न मना रहे हैं अपने नंबर वन होने की खुशी मनाने के लिए।

0: सीरियल में आए नए ट्विस्ट, प्रभात की मित्तल बनकर वापसी, वसुधा देव की मुश्किलें लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। इसीलिए तो दर्शकों ने सीरियल को नंबर वन बना दिया है।
1: से मिलने से पहले तक मुझे लगता था कि चौहानों के सबसे बड़े दुश्मन मैं हूँ।
2: क्या चाहिए?
1: एक डील।
3: मैंने कहा ना, मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं।
4: बड़े हुक्म की नकली दाढ़ी निकल रही है, करिश्मा ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे।
5: देव, वो ठीक हो जाएगी ना मुझे देख के? जब आप मासा के सामने होंगे तो वो पहले जैसी हो जाएंगे। पापा चलिए प्लीज, करिश्मा को अगर शक हुआ तो वो यहाँ आ जाएगी और फिर सब खराब हो जाएगा। देखो मैं लौट आया हूँ चंदा, एक बार मुझे सा कहकर पुकारो ना।
0: तो वसुधा यानी कि प्रिया ठाकुर की खुशी देखने लायक है, तो आइए हम करते हैं इनसे बातें, यानी कि वसुधा, देव, दादी और प्रभात से, जो बता रहे हैं नंबर वन होने पर इन्हें कितनी खुशी हो रही है।
6: मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज्यादा खुश थी जब मुझे पता चला, तो मुझे एकदम ऐसे झटका लग गया कि इज इट ट्रू और नॉट। फिर मैंने पता नहीं क्यों लंबी सांसें ली और फिर उसके बाद मैंने देखा तो सच में हम टीआरपी चार्ट पे नंबर वन पे थे ऑन द टॉप। और मतलब होप तो होती है जब हम कंटिन्यू 3-4 हफ्तों से सेकंड नंबर पे हैं चार्ट पे, तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि इस बार वन। और फाइनली हमने वो क्रैक कर लिया, हम नंबर वन पे हो गए हैं। तो सब लोग बहुत खुश है, हमारी टीम बहुत खुश है, जी टीवी बहुत खुश है, और ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, आप लोगों का प्यार है, और हम इतना सोच पाए, हम इतना आगे बढ़ पाए इसकी वजह से सिर्फ आप लोग। यूएसपी और वसुधा, आई थिंक द जेन्युइन कंटेंट आई गेस, क्योंकि पीपल फाइंड इट रिलेटेबल एंड सम हाउ आर राइटर्स मैनेज टू डू इट। और कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं होता है, बहुत जेन्युइन कैरेक्टर्स हैं, एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर है, एंड मोस्टली दिस शो इज नॉट ओनली अबाउट वसुधा, हर किसी का ट्रैक है, हर किसी की इम्पोर्टेंस है, एंड दैट्स द मेन थिंग। आज वसुधा क्या कर रही है? आज तो पहले तो मैंने सेलिब्रेशन कर चुकी हूँ, मेरे लिए मेजर सेलिब्रेशन ही होता है। अपने पेरेंट्स को कॉल कर लिया, अपनी फ्रेंड्स को कॉल कर लिया, द पीपल हु आर हैप्पी फॉर मी उनको मैंने कॉल कर लिया, और बस ही कर ली तो बस मेरे लिए वो सेलिब्रेशन हो गया, क्योंकि खैर इतना ही टाइम मिल पाता है। इसके बाद पैकअप हो जाता है तो रात हो जाती है, सारे कैफे रेस्टोरेंट गई जाना हो तो वो भी नहीं जा पाती हूँ, और अगर जाओ चली भी जाओ तो एक स्ट्रेस रहता है कि कल का कॉल टाइम है, तो मेरे लिए मैक्सिमम सेलिब्रेशन है।
7: जॉब
6: करने तुम्हें स्ट्रांग हो चुके हैं एक्चुअली। मतलब जब नंबर वन पे आते हो ना, तो मुझे एक तो खुशी तो होती ही है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि नाउ यू हैव टू सस्टेन इट। एक बार आ जाना इज नॉट द थिंग, इसको मेंटेन कर पाना इज द थिंग। तो बस ये आशा करती हूँ कि हम मेंटेन कर पाए अच्छे से, क्योंकि अगर हम आ गए हैं तो हम टिकेंगे।
7: फीलिंग्स से पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे ऑडियंस का, जिन्होंने इतना प्यार दिया, जिनकी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और नंबर से ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट द हार्ड वर्क, इट्स अबाउट द एफर्ट्स पूरी टीम ने जो लगाए हैं उसमें, कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन द शो, लाइक टू ऑल द एक्टर्स। एंड ये लाइक आई वुड लाइक टू टेक अ पॉज एंड यू नो ट्राई टू प्रोसेस दिस, एंड पूरी यूनिट की तरफ से सभी दर्शकों को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। एंड बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत बहुत वर्किंग आवर्स लगते हैं टू रीच समवेयर, एंड आई हैड नेवर इमेजिन्ड जब व्हेन वी स्टार्टेड द शो कि लाइक वी वुड रीच एट अ पॉइंट वेयर आई वुड बी गिविंग एन इंटरव्यू, जहाँ पे कोई मुझसे पूछेगा कि आप नंबर वन शो बन गया है।
8: तो ये हम कह सकते हैं कि आज वो सपना पूरा हो गया है अभिषेक का?
7: सपने तो बहुत बड़े हैं, बट लेकिन हाँ उन सपनों में से एक सपना पूरा हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दैट आई वुड बी अ पार्ट ऑफ अ शो विच वुड टॉप द चार्ट, एंड इट्स अ वेरी कंफर्टिंग फीलिंग। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ हाउ डू आई से इट, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, बट इट कीप्स यू मोटिवेटेड कि अभी और मेहनत करनी है, एंड यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। काम पर पहुंचना एक आप बोल सकते हैं कि वहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंच के बरकरार करना वो और टफ पार्ट होता है, तो अभी उसके लिए और मेहनत की जाएगी। और मैं आई थिंक हम क्रेडिट जाता है हमारे राइटर्स को, जिस तरीके से वो राइटिंग को और शोज की स्क्रिप्ट को जिस तरह से वो घुमाते हैं, और जिस तरह से इतना इंटेंस हमारा हर एपिसोड होता है, एंड टू ऑल द डायरेक्शन और एवरी वन, फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू लाइटिंग, एंड मैं बार बार टीम की इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि जो बैक स्टेज पे बैक ऑफ द कैमरा बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसमें. आई मीन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट, लाइटिंग करना, सेटअप करना. सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग आई वुड से.
2: संतोष सिंह चौहान का नमस्ते सबको. मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब सच में जैसी सुबह ये खबर मिली हमें तो सारा सेट, मतलब यूनिट का हर मेंबर जंप कर रहा था, सबका नाचने का मन कर रहा था. वो अलग बात है कि हम नाच नहीं पाए क्योंकि टाइम इतना कम होता है और दिन में क्योंकि 32 मिनट का एपिसोड जा रहा है तो बहुत फुटेज निकालनी होती है तो काम खत्म भी करना है, लोकेशन की प्रॉब्लम रहती है तो. लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं है, बीच बीच में जब जब जिसको टाइम मिल रहा है एवरीबॉडी इज हगिंग ईच अदर. और मेरे जो कैरेक्टर की बात है, मैं तो केमियो के लिए आई थी इस शो में. जब मुझे ऑडिशन के लिए कहा गया तो सिर्फ एक 20-25 दिन का केमियो था जिसमें मुझे मर जाना था, लेकिन उसके बाद लोगों को इतना कैरेक्टर पसंद आया, लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे और सेट पे भी सब लोगों को अच्छा लगा तो उन्होंने बोला अब हम आपको जाने नहीं देंगे. तो मैं रुक गई, ये मेरा थर्ड मंथ है यहाँ पर और आई एम एंजॉयिंग द शो, आई एम एंजॉयिंग. और ये वाला मोमेंट मेरी जिंदगी में एक्चुअली दूसरी बार आया है. एक बार पहले जब मैं ये मोहब्बत ही करती थी तब भी वो नंबर
9: वन कहने वाले थे कि आपने तो ये पढ़ाओ काफी बार देखे तो एक बार फिर से ये पढ़ाओ और ये मोमेंट जो है एंजॉय करने मिल रहा है आपको.
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ उसको और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस नंबर वन ही रहे. वो अलग बात है कि सबको मौका मिलना चाहिए और हमें बहुत टाइम के बाद मिला है तो रहेंगे हम लोग डट के.
7: सबसे पहले तो सचिन बोलना चाहेगा क्योंकि इतने सालों से टेलीविजन कंटिन्यूअसली करते जा रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली करते जा रहा हूँ और जब यू नो जो हमारा हार्डवर्क है वो जब पे ऑफ होता है इस तरह से कि ऑफकोर्स वसुधा को 2 साल होने आए हैं, 550 एपिसोड खत्म होने हो गए हैं तो इसमें नंबर वन तक पहुंच जाना टोटल इंडियन टेलीविजन की रेटिंग्स में, टीआरपी रेटिंग्स में इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एंड वी आर रियली ग्लैड, एवरीवन इज ग्लैड. और खुशी मुझे इसलिए ज्यादा हो रही है कि जैसे मैंने कहा कि इतने सालों की मेहनत जो है वो लास्ट 2-3 महीने में जिस तरह से लोगों का प्यार मुझे मिला है स्पेशली मेरे डेथ सीक्वेंस के बाद और उसके बाद जो 5th-6th नंबर पे चल रही थी टेलीविजन की रेटिंग्स वसुधा की वो तुरंत ही 2 नंबर पर आकर खड़ी हो गई. जी टीवी पे तो नंबर 1 था ही वसुधा लास्ट 3-4 हफ्तों से, इनफैक्ट ज्यादा ही. और अब ये जो री एंट्री हुई है प्रभात की और जब पता चला वसुधा की पूरे जवान परिवार को कि प्रभात जिंदा है तो जो ये री एंट्री हुई है और उससे लोगों का प्यार, फैंस और हमारे व्यूअर्स को जो खुशी मिली है कि हमारे प्रभात सिंह चौहान कहीं नहीं जा सकते हैं, वो हमारे साथ ही है तो ये एक बहुत बड़ा हाई पॉइंट बन गया है शो का एंड वो नंबर्स पे भी दिखने शुरू हो गए हैं. सो आई एम रियली ग्लैड दैट आई बिकेम इंस्ट्रूमेंटल फॉर यू नो मेकिंग दिस पॉसिबल बट ऑफकोर्स आई एम बिकेम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंटल पार्ट ऑफ इट. जो सबसे बड़ी बात है जो श्रेय जाता है वो हमारे मेकर्स को, राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को, पूरी टीम को जाता है क्योंकि प्रभात को प्रभात बनाने के लिए और प्रभात को अब मित्तल बनाने के लिए.
0: तो भाई हम तो यही कहेंगे, आप यूं ही अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहिए और दर्शकों का प्यार तो आपको मिलेगा ही. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.

0: हमारी सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू को तो बहुत ही पसंद है मन्नत और विक्रांत की ये जोड़ी। वैसे ये जोड़ी किसे पसंद नहीं है, कितने अच्छे लगते हैं ये एक दूसरे के साथ। लेकिन जब ये आते हैं एक दूसरे के साथ, यही बात तो सहन नहीं होती है शो के नेगेटिव कैरेक्टर्स से। और देखिए, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं शो में। मन्नत, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
1: मन्नत का हंसता खेलता परिवार, विक्रांत को मिली दुआ की कस्टडी, नीतू पर फूटा मन्नत का गुस्सा, कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में आज कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर दुआ की कस्टडी के लिए मन्नत और विक्रांत कोर्ट में लड़ रहे थे। लेकिन यहां पर तो बाजी तब पलट गई जब जज ने सुना दिया अपना फैसला और दुआ की कस्टडी दे दी विक्रांत को, क्योंकि नीतू ने चाल चल कर धैर्य पर कुछ इल्जाम लगाए थे, जिस वजह से दुआ की कस्टडी अब विक्रांत को मिल गई है। ऐसे में मन्नत का दिल पूरी तरह से टूट चुका है और देखिए कैसे वो जज के सामने गुहार लगा रही है कि वो अपना फैसला बदल ले, लेकिन जज उनके सुनने को तैयार नहीं। तभी वहाँ पर पहुँच जाती है दुआ, जिसे ये सच कुछ इस तरह से पता चला है और ऐसे में उसका तो दिल ही टूट गया। वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि धैर्य उसके पापा नहीं है। देखिए कैसे वो धैर्य के गले जा लगी, जिसके बाद अब मन्नत का गुस्सा नीतू पर फूटा है, क्योंकि नीतू की ही वजह से ये सब कुछ हुआ है और धैर्य, मन्नत और दुआ का हंसता खेलता परिवार भी बिखर चुका है।
2: तुम क्या करोगे?
1: में मन्नत क्या करेगी, क्या वाकई दुआ विक्रांत के पास रहने चली जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। या हो सकता है विक्रांत का इरादा बदल जाए और वो दुआ को मन्नत को सौंप दे, लेकिन ये सब तो देखना होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू ने मुझे अभी भी बताया है कि अभीरा और अदमान तो हैं इन दोनों की फेवरेट जोड़ी। अरे आप दोनों की ही नहीं, हम सबकी भी। तो चलिए फिर पता कर आते हैं ऐसा क्या हो रहा है इन दोनों की जिंदगी में आज। क्या फिर आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट, या फिर कोई नई सिचुएशन, या फिर कहानी ले रही है एक नया मोड। लेकर चलते हैं आप सबको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर।
1: मायरा और मुक्ति का अभीरा को सरप्राइज। मदर्स डे का सेलिब्रेशन। माँ और बेटियां हुई इमोशनल। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज मायरा और मुक्ति ने मदर्स डे के खास मौके पर अभीरा को सरप्राइज देने का प्लान किया है, जिसके लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये कठपुतली शो। खास इस दिन के लिए रात को 12 बजे दोनों ही इतनी मेहनत कर रही हैं और देखिए कैसे ये पपेट शो उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसे देखकर अभीरा काफी खुश हो जाती है। भाई पपेट शो ही नहीं, आज तो मायरा और मुक्ति लेकर आए हैं अभीरा के लिए ये प्यारा सा गिफ्ट।

जिसे देखकर अभिरा काफी इमोशनल हो गई है। वैसे ये मदर्स डे अभिरा और मायरा के लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि मायरा 8 साल बाद मदर्स डे सेलिब्रेट करेगी, वो भी अभिरा संग। ऐसे में देखिए कैसे अभिरा और मायरा हो गए हैं इमोशनल, और इसमें इनको ज्वाइन कर लिया मुक्ति ने भी। यहाँ पर देखने को मिली ये तिकड़ी, जहाँ सभी लोग काफी इमोशनल होकर आंसू बहा रहे हैं। भाई यही तो है माँ और बेटियों का प्यार। वैसे दूर खड़े ये नजारा देख रहे हैं अरमान, जो मन ही मन काफी खुश हो रहे हैं

0: समय पूरी हो चुकी है इनकी ये हैप्पी फैमिली, जहाँ पर अरमान और अभीरा के रिश्ते भी सुधर रहे हैं और इनकी बेटियाँ भी इनके करीब आ चुकी है।
1: तो 8 साल बाद मायरा बना रही है, तो वो बता सकती है ये चीज़।
2: हाँ, तो मतलब इतने टाइम मैं मम्मा के साथ नहीं थी, पीछे से बहुत कुछ हुआ एंड अब फाइनली जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुई हैं, मैंने मम्मा को सॉरी बोला और हमारे बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हुए प्यार वाले वैसे सब। तो अब हाँ मतलब प्यार बहुत इमोशनल सीन्स, रोना धोना, हगिंग एंड ऑल, वो सब बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हुए। हाँ मैं उनके पैर में गिर जाती हूँ, वो सब हुआ तो बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हुए। फिर अब फाइनली जाके मैं 8 साल बाद अपनी मम्मा के लिए मम्मा के साथ मदर्स डे मना रही हूँ। पीछे 8 सालों में मदर्स डे पे बहुत सैड होती होगी मायरा ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी मम्मा नहीं है उसके पास। तो अभी फाइनली आठ साल से मना रही थी उनके साथ, तो मे बी हम दोनों का मिल के प्लान है कि कुछ तो ऐसा सरप्राइज देते हैं उनको एंड हम पपेट शो कर रहे हैं।
1: तो मेरे लिए तो ऐसा है, मुक्ति के लिए ऐसा है कि वो तो 8 साल से माँ के साथ है, बट मेरे लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि मायरा 8 साल से नहीं रही है माँ के साथ। तो जब वो हक भी करते हैं तीनों साथ में, तो मैं पीछे हट जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मतलब मायरा तेरे पास 8 साल से तू मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी, तो तू थोड़ी देर और हक कर ले। और फिर मैं बहुत अडोर करती हूँ दोनों को। फिर उसके बाद मैं स्टेप बैक होने वाली होती हूँ, तो उतने में अबीरा मेरा हाथ पुल कर लेती है, बोलती है कि हक कर ले वगैरह वगैरह। फिर हमारा वो ईयरिंग का चलता है। तो बेसिकली हम उनके लिए एक स्वीट सा प्यारा सा 12 बजे रात के मदर्स डे के स्पेशल शो रखे हैं, पपेट शो, एंड साथ में उन्हें गिफ्ट भी देते हैं ईयरिंग पॉकेट मनी बचा के।
0: तो वहीं दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति अभीरा और अरमान को टीज कर रहे हैं। असल में ये दोनों घर ले आए हैं ये बलून, जो कि दिया है इनकी थेरेपिस्ट ने इनके रिश्ते सुधारने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बच्चियाँ अपने मम्मी पापा को छेड़ रही हैं और चल रही है इनकी मस्ती।
1: तो कबाब में हड्डी तो हम डेफिनेटली बन रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि दोनों मिल जाए बट जब दोनों मिलने वाले होते हैं हम बीच में आ जाते हैं और हमें खुद ऐसा लगता है कि हम बीच में क्यों नहीं आते।
2: और सारा लाइक हमें सीन से पहले हम सीन देख रहे होते हैं उन दोनों,
1: हमें ऐसा लगता है कि क्यों आ गए हम बीच में। तो वो हमारा चल रहा है। अब बलून्स वाला हुआ, तो बलून्स तो थेरेपिस्ट ने दिया है दोनों को, और हम दोनों को मतलब मायरा और मुक्ति को ये बात नहीं पता है कि उसने थेरेपिस्ट ने दिया है वो बलून दोनों को साथ में रखने के लिए। फिर जब हम एज ए मायरा मुक्ति जब हम देखते हैं कि दोनों के हाथ में बलून क्यों है, इनकी तो बलून के साथ खेलने की कोई एज नहीं है, तो हमें वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि अरे यार इनके पास बलून क्यों है। और बलून क्यों है वो देखने के बाद हमारा वो छेड़ने वाला भी जाता है कि यार किस बच्चे से चुरा के ले आए बलून,
2: क्योंकि आप दोनों की एज थोड़ी है बलून के साथ खेलने की, और वो बोलते हैं कि हम बहुत यंग है, तो हम बस ऐसा थोड़ी
1: तो मतलब फिर
2: वो यंग के बाल अभी कलर कर रहे थे वगैरह,
1: फिर मतलब डाइजेशन खराब हो गया था राजमा खा के वगैरह वगैरह हमारा सब चल रहा था, हम छेड़ रहे थे उन्हें बेसिकली, तो उस पे ऊपर हमें मार भी पड़ सकती थी बट हम बच के निकल गए।
0: तो भाई रिश्ते तो सुधर रहे हैं, अब देखना होगा सीरियल में कौन सा नया ट्विस्ट आता है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सयानी बिल्ली और भोला पिल्लू अभी अभी मुझसे कह रहे हैं कि इन्हें तो लग रहा है डर, बताइए किससे? भानु से, क्योंकि ये जो भानु है ना यही तो लेकर आती है इस कहानी में धड़कता भड़कता ड्रामा। एक्चुअली ये भी नहीं लेती हैं चैन की सांस, मुझे तो ऐसा लग रहा है इनकी जिंदगी में कोई भी क्वाइट मोमेंट नहीं है, क्योंकि इन्हें तो हर चीज से दिक्कत है। महादेव जी किस तरह करते हैं आप इस भानु का सामना? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको महादेव एंड सन्स के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज, क्योंकि कहानी में फिर आया है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट।
0: जग्गा जासूस बने रज्जी और नर्मदा, बहुरानिया बनी बहरूपिया, होगा मोगरा का खुलासा।
4: हमारी जो बड़ी बेटी है ना मोगरा, उसकी शादी करोड़पति घर में होने वाली है।
0: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में आज रची और नर्मदा ने ये ठान लिया है कि वो मोगरा के एक परिवार का और मोगरा के सच का पता लगा कर ही रहेंगे। ऐसे में उन्हें एक सुराग भी हाथ लगा है। उन्हें ये पता चला है कि मोगरा के पापा असल में चाय वाले हैं, इसीलिए उन्होंने बदल लिया है अपना भेस। जी हाँ, क्या आपने इन्हें पहचाना? अजीब कलर के बाल, आँखों पर चश्मा, टोपी और रॉकस्टार वाले कपड़े पहनकर नर्मदा और रज्जी बन गए हैं लड़का और पहुंच गए हैं इस जगह करने मोगरा के सच का खुलासा।
5: रेडी माइकल,
6: रेडी रासन।

0: Đó, ít nó đi đó kêu à.
1: Bro, one English bottle.
2: ये है गर्वित,
1: बाहर जा रहे हैं हम.
2: ये है गर्वित और ये है नेह.
1: नेह
2: तो मजबूरी
1: है, भाभी बताएंगे.
3: संस्कारी बहू बार बार में नहीं जाती हैं, तो अभी हमारे डायरेक्टर सर बुला रहे हैं और अभी हमें संस्कारी बच्चों की तरह वहाँ जाके अपना शॉट देना है. थैंक यू सो मच.
2: बता देते हैं, जल्दी से बता देते हैं, अच्छे घर की बहुएं नहीं जाती हैं, पर अच्छे घर के मर्द बाहर ज़रूर जाते हैं. तो हम बाहर में जा रहे हैं दो डूड्स की तरह और बहुत मज़े आने वाले हैं. आपको ज़रूर देखना चाहिए रज्जी का ये रूप.
4: तो बताइए रज्जी और नर्मदा, आखिरकार ये भेस लेकर आप क्या पता लगाने जा रही हैं और कैसा लगा आपको ये अपना नया लुक?
3: जो भी हो लेकिन मजे बड़े आ रहे हैं.
2: मजे बहुत आ रहे.
3: मजबूरी यही है कि भाई जो मोगरा आ रही है हमारे घर में, उसने जो कलेश किए है हमारी लाइफ में
2: उसके चक्कर में,
3: हाँ उसके चक्कर में हम कभी उसके घर में किसी बहाने से जा रहे हैं, कभी उसके पापा का पीछा कर रहे हैं. सो फाइनली हमें पता लगा कि शायद वो चाय वाले हैं और देखो आज हमें बाहर आना पड़ा, वो भी इस लुक में.
2: उसकी बहुएं पहुंची बाहर में, वो भी
3: एक्चुअली महादेव एंड स्पाई बहूज होना चाहिए.
2: तो आज हम महादेव के

Ah.

0: की पसीने छूट गए हैं।
1: बस आप लोग हंसना मत, जो कुछ भी हमारे साथ अंदर हुआ,
0: हंसना
1: हमारे साथ इवेंचुअली जो कुछ भी हुआ, प्लीज
0: बाद में मत हंसना, पर बार वाले में आपको हंसी जरूर आएगी, क्योंकि हम ऐसे नमूने लग रहे हैं, जब हम रेडी हुए थे हम खुद ही नहीं एक दूसरे
1: पे हंसने लग पा रहे। जो हमने सिंगिंग की है आपको मजा आ जाएगा हमारी सिंगिंग सुन के।
0: क्या करती है तू, करके दिखा ना वो माइकल वाला। मेरी माइकल लाल और मैं हूँ जय किशन।
2: तो भाई अब देखना होगा रज्जी और नर्मदा कैसे मोगरा का खुलासा करती है और शादी को रुकवाती है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हमारी सयानी बिल्ली को तो दूध पीना बहुत पसंद है और ये तो है इनकी सेहत के लिए रॉकिंग, लेकिन कल पी गई है गरम गरम दूध और जल गई इनकी जीभ, हो गया ना शॉकिंग। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं सीरियल वसुधा की। खबरों की माने तो सीरियल वसुधा में जल्द होने वाली है परिचय शर्मा की एंट्री, जो कहानी में नया ट्विस्ट लाएंगे। खबरों की माने तो नागिन 7 के फिनाले एपिसोड में स्पेशल अपीयरेंस देने पहुंचेंगी तेजस्वी प्रकाश। इसी के साथ एकता कपूर ने किया है अनाउंसमेंट नागिन सीजन 8 का, जो अगले साल आएगा। जल्दी सीरियल तारा ऑफ एयर होने वाला है और ऐसे में हुआ इसका लास्ट डे शूट। भाई अभी अभी तो ये शो आया था, लेकिन कम टीआरपी की वजह से शो बंद हो गया है, जिसमें जोड़ी बनी थी कृषा लहूजा और कनिका कपूर की। तो आइए देखते हैं सीरियल के लास्ट डे ये नज़ारे। शगुन शर्मा जल्द ही खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में जाएंगी, ऐसे में उन्होंने खतरों से खेलने की तैयारी शुरू कर दी है और देख लीजिए कैसे वो अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान दे रही है और कर रही है ये स्पेशल वाली ट्रेनिंग।

0: rework on this right now.
1: अभिषेक कुमार और शाइनी दोषी का इश्क दम और इडली रसम का टीजर सामने आया है, जो कि 11 मई से YouTube पर नजर आएगा। आप ही डाल लीजिए इस टीजर पर एक नजर।
2: आगे भी ऐसे ही चलेगा।
3: मैम, वो हिटलर ठाकुर इस जगह को आबाद नहीं बर्बाद करने आया है।
4: इतना बड़ा बिजनेसमैन और हमारे इस छोटे से रेस्टोरेंट में इतना इंटरेस्ट।
5: रील में कितने काम और कंपोज्ड है और रियलिटी में
6: तो कैसे लगे आपको हमारे ये स्पेशल मेहमान सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू? अब तो ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट के जरिया से।

हर अपडेट। और आप सब तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है, आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as it can. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: रुद्रप्रयाग से श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ से जुड़ी हुई अच्छी खबर। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का सीएम धामी ने किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा फायदा। बद्रीनाथ में आईटीबीपी ने चलाया स्वच्छता अभियान, तप्त कुंड से ब्रह्म कपाल तक की गई सफाई, अब तक 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बम भी सटीकता से लगा सकेंगे निशाना। कोलकाता दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, मां से लिया आशीर्वाद। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेख, विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश। 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पौड़ी गढ़वाल में सीएम योगी और धामी के बीच में दिखा अनोखा कनेक्शन, दोनों एक साथ ओपन जिम में वर्कआउट करते नजर आए। उद्घाटन समारोह में गृह जनपद पहुंचे थे योगी। क्रिकेट मैदान के बाहर भी महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया रिकॉर्ड, बिहार झारखंड के नंबर वन टैक्स पेयर बने, आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए चरम पर है श्रद्धालुओं का उत्साह, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में उमड़ रहे सबसे ज्यादा श्रद्धालु, कल 17,575 यात्री पहुंचे धाम। इस साल अब तक 3,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी पहुंच रहे। चारधाम की यात्रा में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं पंजीकरण, जीएमवीएन के विश्राम गृहों में अब तक 9 करोड़ की हो चुकी बुकिंग। 50 साल से ज्यादा आयु वाले श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर पर जांच करवाना जरूरी, तीर्थयात्रियों से धामों में स्वच्छता बनाने में सहयोग करने का आग्रह। केदारनाथ धाम में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अस्पताल का लोकार्पण किया, श्रद्धालुओं स्थानीय लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ लैस इस अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दी जा रही प्राथमिकता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया अस्पताल का उद्घाटन, बाबा केदार के दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना भी की। चारधाम यात्रा के बीच में बद्रीनाथ धाम से सफाई अभियान में जुटे आईटीबीपी के जवान, तप्त कुंड से लेकर ब्रह्म कपाट तक अलकनंदा नदी के तटों की हो रही यहां पर साफ सफाई। कोलकाता के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा अर्चना, मां से लिया आशीर्वाद। जम्मू क्षेत्र में श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियां तेज, पहला जत्था 2 जुलाई को होगा रवाना। तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 आवास केंद्र चिन्हित किए गए, पेयजल बिजली आवास जैसी सुविधाओं को किया जा रहा दुरुस्त। अधिकारियों को दिया गया निर्देश, सभी बुनियादी सुविधाओं समेत पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि तीर्थयात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उनका स्वागत। पंचूर गांव के यमकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे साथ में। भारत की रक्षा ताकत को मिली एक और बड़ी कामयाबी, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट पर स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का किया सफल परीक्षण। एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है तारा, जो अनगाइडेड वॉरहेड्स को सटीक गाइडेड हथियार में बदल देती है। भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है तारा, देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को मिली नई मजबूती। तारा के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी, देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। उत्तराखंड के पौड़ी से आई शानदार तस्वीर, महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य के महाविद्यालय के ओपन जिम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम धामी एक साथ जिम करते नजर आए। श्रीनगर में देखने को मिल रही फूलों की बहार, बागवानी विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पौधे बांटने की शुरू की मुहिम। जम्मू और कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की पहल से श्रीनगर में रंग बिरंगे फूलों की खेती को मिल रही नई रफ्तार, लोगों को मुफ्त में पौधे देकर किया जा रहा जागरूक। श्रीनगर के बाग बगीचे इन दिनों फूलों से महक उठे हैं, बागवानी विभाग की नई पहल ला रही रंग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बनाई गई शानदार रंगोली, इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर सेना और सुरक्षा बलों के शौर्य को दी गई सलामी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर बीएसएफ ने वॉकाथॉन का किया आयोजन, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी का सेना को सलाम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बदली डीपी। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक चिन्ह लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के अतुलनीय पराक्रम को देश ने किया याद। अलग अलग शहरों में सेना के सम्मान को लेकर आयोजित किए गए तमाम कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लड़कियों ने सेना के शौर्य को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई रंगोली। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, सेना ने कहा ऑपरेशन अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई चलती रहेगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर इंडियन आर्मी ने चुशूल में 15,000 फीट की ऊंचाई पर एथलेटिक्स से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। छात्र छात्राओं ने और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस पहल ने युवाओं को शारीरिक फिटनेस और सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करने के लिए किया प्रेरित। छात्रों ने दिखाया अपना हुनर। राजस्थान में कोटा के युवा कराटे खिलाड़ी अनुराग ने फिर से शहर का नाम रोशन किया। भोपाल में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे टूर्नामेंट में जीता सिल्वर। ओडिशा के कटक में देश की पहली सुपर फ्लेक्स लाइन का शुभारंभ किया। इससे देश में कंस्ट्रक्शन को मिलेगा बढ़ावा। गुजरात के जामनगर में निकली अनोखी बारात। घोड़े की जगह दूल्हे ने की हाथी की सवारी। उत्साह और खुशी से सारा बोर नजर आया पूरा इलाका। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर पीएम मोदी ने लिखा लेख। विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश। 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। गर्मी की छुट्टियों में दक्षिण भारत घूमने का शानदार मौका। IRCTC ला रहा 11 दिन का स्पेशल टूर पैकेज। 26 जून से शुरू होने वाली यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम और कन्याकुमारी के लिए करवाए जाएंगे दर्शन। ऋषिकेश से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। IRCTC के नए टूर पैकेज में ट्रेन सफर, होटल, खाने की पूरी सुविधाएं शामिल हैं। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के इच्छुक लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। रेलवे ने 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए चलाई है विशेष ट्रेन। ऋषिकेश से 12 जून को चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। अगले 48 घंटों में 12 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। वहीं राजस्थान में 13 मई तक लू चलने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगह बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली NCR में अब दिन के समय होगी गर्मी महसूस। 40 डिग्री के करीब पहुंच सकता है पारा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 8 से 13 मई के दौरान आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। ये बदलाव नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आएगा। पश्चिमी और पूर्वी यूपी ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं तेज हवाएं। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, बरेली में आंधी के साथ हल्की बारिश।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
12: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
13: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली, और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद। यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
7: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: Costs shouldn't be a barrier to a teaching career. That's why WGU makes earning a degree in education affordable with flat rate tuition and scholarship opportunities. Make an investment toward making a difference. Learn more at WGU.edu.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop check fan on this station. Out. Ready to find your flow?
14: It's your boy,
3: just
14: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
15: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
16: Jack, come home. It's supper time.
17: I can't go down. That's the way I'm home.
15: upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
14: Hey Jack, could you play that one song with the words?
15: Jack FM, playing what we want.
6: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
15: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 घोषित, 92.09% छात्र हुए पास, अकोला में सफल हुए बच्चों ने जमकर किया डांस। रुद्रप्रयाग से श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ से जुड़ी अच्छी खबर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का सीएम धामी ने किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को मिलेगा इसका सीधा फायदा। बद्रीनाथ में आईटीबीपी ने चलाया स्वच्छता अभियान, तप्त कुंड से ब्रह्म कपाल तक की गई सफाई, अब तक 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बम भी सटीकता से लगा सकेंगे निशाना। कोलकाता के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा अर्चना, मां से लिया आशीर्वाद। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर पीएम मोदी ने लिखा, लेख विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश, 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्रिकेट मैदान के बाहर भी महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया रिकॉर्ड, बिहार झारखंड के नंबर 1 टैक्स पेयर बने, आयकर विभाग की ओर से दी गई है ये जानकारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, मैं हूं आपके साथ पूजा। कितना अच्छा हो अगर जीवन में कोई परेशानी ही ना हो, लोगों को कोई बीमारी ही ना हो। कहा भी जाता है सुखी जीवन का आधार है निरोगी काया। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली बीमारियों का संबंध कहीं ना कहीं ग्रहों से होता है। जानकार बताते हैं कि आपकी राशि में कुंडली की चाल और आपकी राशि के कमजोर ग्रह आपको बीमार भी कर देते हैं। आज हम आप अपनी इस खास पेशकश में जानेंगे ज्योतिष का बीमारियों से क्या संबंध है और क्या है जीवन में आने वाली छोटी मोटी बीमारियों का ज्योतिषी समाधान। तो चलिए करते हैं आज के शो का श्री गणेश।

0: आखिर जीवन में क्यों आती है बीमारी, ग्रहों की कमजोरी से होती है दुश्वारी, कमजोर ग्रह आपको कर सकते हैं बेहाल, बलवान ग्रहों से सेहत हरदम करेगी कमाल। जी हाँ, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ग्रहों की अशुभ स्थितियों से जीवन में बीमारियां घर कर लेती हैं और शुभ ग्रहों से बीमारियां कोसों दूर हो जाती हैं।
1: खाली बीमारी नहीं, जीवन के हर क्रियाकलाप ग्रहों के अधीन है। ये शब्द आया है, ये चराचर जगत ही ग्रहों के अधीन है। हम कहते हैं कि काला रंग शनि का, नीला रंग राहु का, अर्थात रंग भी देवताओं और ग्रहों के हैं। इस प्रकार से शरीर में होने वाले जितने भी रोग हैं या उपद्रव हैं, वो ग्रहों की जब बैलेंस खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि जैसे किसी चीज की कहते हैं कि इम्यूनिटी खराब हो जाना, तो वो ग्रहों का बुरा प्रभाव ही व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न करता है।
0: आज हम आपको बताएंगे ग्रहों का आपकी बीमारी से सरोकार। ज्योतिष मानते हैं आपके जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे ग्रहों की ही युति होती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं नवग्रहों से जीवन पर असर पड़ता है, इसलिए नवग्रहों के पूजन का भी विधान बताया गया है। चलिए सबसे पहले आपको ज्योतिष के नजरिए से बताते हैं कि किस ग्रह के कमजोर होने से कौन सी बीमारी का संकट आ सकता है।
1: किसी भी बीमारी को होने से कौन कौन सी बीमारी है, वो अलग अलग ग्रहों के ऊपर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति को अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार से असर डाल सकते हैं, पर मुख्यतः हमने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को स्किन, चर्म से या पेट से संबंधित रोग है, तो वो सूर्य या शुक्र के कारण से होता है।
0: ग्रह बीमारी और समाधान। सूर्य सिरदर्द, बुखार, हृदय रोग। चंद्रमा मानसिक रोग, अनिद्रा, चिंता, सर्दी जुखाम। मंगल रक्तचाप, संक्रमण, दुर्घटना। बुध तंत्रिका तंत्र, त्वचा रोग, फेफड़े संबंधी रोग। बृहस्पति मधुमेह, मोटापा और लिवर की समस्या। शुक्र त्वचा रोग, प्रजनन संबंधी रोग, हार्मोनल असंतुलन। शनि हड्डियों से जुड़े रोग, गठिया, पुरानी बीमारियां। राहु केतु असाध्य रोग, पेट की समस्या, मानसिक तनाव। तो देखा आपने इन ग्रहों की कमजोरी से कितने सारे रोगों का वास्ता माना गया है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि नवग्रह की संपूर्ण खुशहाली और परेशानी का आधार है। इन ग्रहों के कमजोर या बलवान होने से साधक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आज हम जान रहे हैं ज्योतिष का बीमारियों से संबंध और उनके निदान के बारे में। इन बीमारियों से बचने का ज्योतिष उपाय हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि अगर आपको सर्दी या जुकाम रहता है तो ज्योतिष में इससे बचने के लिए कौन सा उपाय बताया गया है, चलिए जानते हैं।
1: किसी भी व्यक्ति के शरीर में जल तत्व का कारक ग्रह है चंद्रमा। यदि चंद्रमा किसी प्रकार से खराब हो, कुपित हो, तो व्यक्ति को लगातार व्यक्ति को नजला जुखाम जैसी बीमारियां देता है। और व्यक्ति को अगर किसी प्रकार से और गंभीर इससे बिगड़ी हुई बीमारी आ रही है, तो राहु देख लें व्यक्ति का। राहु चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं संबंध बना रहा होगा, इसी कारण से व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस जैसे रोग होते हैं, या उसका है ना नजला जुखाम इतना बिगड़ जाता है कि डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है।
0: सर्दी, जुकाम, खांसी और ग्रह आमतौर पर ये तुरंत होने वाली समस्याएं चंद्रमा और कभी कभी मंगल से संबंध रखती हैं। जिन भी लोगों को ये समस्याएं नियमित रूप से रहती हैं, ऐसे लोगों को देर रात्रि तक जागने से और देर तक सोने से बचना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पिए या पीने के पानी के पात्र में एक चांदी का सिक्का डालकर रखें। तो देखा आपने इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप सर्दी, खांसी जैसी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। माना जाता है कि त्वचा संबंधी विकार बुध की कमजोरी के कारण होते हैं, जिसे दूर करने के लिए सूर्य उपासना की भी सलाह ज्योतिष देते हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए कौन सा महा उपाय बताया गया है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं।
1: किसी व्यक्ति के अगर चर्म रोग चला आ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को पेट भी गड़बड़ हो रहा होगा, इन दोनों स्थितियों में करने के लिए सूर्य की उपासना करें, गायत्री मंत्र का जाप करना, प्रातः काल सुबह उठकर सूर्य को जल देना और कम नमक का खाना उस व्यक्ति को रोग मुक्त करने में अधिक महत्व देता है। ऐसे व्यक्ति को अगर शुक्र के कारण से चर्म रोग हो रहा है तो दही से स्नान करना और दही में कुछ हल्का सा चीनी या कुछ मीठी चीज डाल के खाना व्यक्ति को उसको चर्म रोगों से मुक्ति दे देगा।
0: त्वचा की समस्या और ग्रह। मुख्य रूप से समस्या बुध और आंशिक रूप से मंगल और सूर्य की है। बुध से त्वचा की समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। ऐसी समस्या वाले लोगों को नियमित रूप से उगते सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। कांसे का एक छल्ला बुधवार को साय कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। स्वस्थ शरीर को सुखी जीवन का आधार माना गया है। माना जाता है कि कई घरेलू नुस्खों की मदद से आप न सिर्फ छोटी छोटी बीमारियों को दूर कर सकते हैं बल्कि अपने ग्रहों को बलवान करके खुशहाल और संकट मुक्त जीवन भी जी सकते हैं। आगे हम आपको कुछ दूसरी बीमारियों और उससे जुड़े ग्रहों की जानकारी देंगे, साथ ही इससे बचने का महा उपाय भी बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: हम सभी चाहते हैं कि घर परिवार और आसपास का माहौल हमेशा खुशनुमा बना रहे, लेकिन अगर शरीर में कोई भी विकार हो तो जीवन भी अशांत रहने लगता है। अभी आपने जाना सर्दी जुखाम और त्वचा के रोगों का ज्योतिषी कारण। चलिए अब आपको बताते हैं, अगर जीवन में आंखों की समस्या ने डेरा डाल रखा हो या फिर हड्डियों का दर्द हो या बना रहता है सर में दर्द, तो इसके लिए ज्योतिष में कौन से कारण बताए गए हैं और क्या है इस बाधा का निवारण, देखिए।

0: अगर आपके नेत्र हैं कमजोर तो सूर्य और चंद्रमा को बनाएं सिरमौर। अगर आपको है हड्डियों से संबंधित विकार तो सूर्य और शनि से चल रही है आपकी तकरार। कहते हैं बोया पेट बबूल का, तो आम कहां से होए, या फिर यूं कहें कि जैसा करोगे कर्म तो वैसा ही आपको फल मिलेगा। इन पंक्तियों को हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जीवन में सब अच्छा ही होगा। ज्योतिष शास्त्र मानता है सौर मंडल के 9 ग्रह ही आपके जीवन में मचने वाली उथल पुथल का कारण है। आज हम आपको ग्रहों का आपकी बीमारियों से संबंध और उसके ज्योतिष उपाय बता रहे हैं। शरीर का सबसे अनमोल भाग है आँखें। आँखें जो हमें इस दुनिया का दीदार करवाती हैं। अगर आँखें ही किसी रोग से ग्रस्त हो जाए या फिर कमजोर हो जाए तो दुनिया वीरान सी लगने लग जाएगी। लेकिन फिर भी किसी न किसी को आँखों से संबंधित समस्या रहती ही है। हालांकि मेडिकल साइंस में इन बीमारियों का उपचार है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि आपकी दाहिनी आंख के कमजोर होने का कारण सूर्य से संबंधित समस्या है, जबकि बाईं आंख में खराबी कमजोर चंद्रमा के कारण होती है। ज्योतिष ये भी मानते हैं कि कमजोर शुक्र भी आंखों में चश्मा लगने या फिर एक आंख की रोशनी जाने का कारण हो सकता है। चलिए जानते हैं कि आंखों की समस्या से संबंधित लोगों के लिए ज्योतिष में कौन सा महा उपाय बताया गया है।
1: किसी व्यक्ति की आंखों की ज्योति लगातार कम हो रही हो, ऐसा व्यक्ति सादा जल पीना बंद कर दे। जल में हमेशा चीनी का दाना, नींबू के रस की एक बूंद आदि डाले तो नेत्र पीड़ा ठीक होने लगती है। और चाक्षुषी उपनिषद में स्पष्ट वर्णन है, चाक्षुषी विद्या में स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य को जल देना, और सूर्य का जल देने के पश्चात जो जमीन पे जल गिरा वो ऐसे अपने माथे पे आंखों पे लगा देने वाले व्यक्ति की नेत्र पीड़ा दूर होने लगती है। यदि किसी एक आंख में दिक्कत आ रही हो तो शुक्र के मंत्रों का जाप करना, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना उसकी एक नेत्र की पीड़ा को होने वाली को शांत कर देगा।
0: आंखों की समस्या और ग्रह। आंखों की समस्या मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है, कभी कभी इसका संबंध शुक्र से भी होता है। आंखों की रोशनी की समस्या हो तो प्रातः काल नंगे पैर घास पर चलना चाहिए तथा नाखून नहीं जमाने चाहिए। आंखों से पानी गिरने की समस्या हो तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा का आधार है सूर्य, जिनसे सारी सृष्टि संचालित है। माना जाता है कि हम सभी के शरीर में विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं। माना जाता है कि इसके लिए हमें नियमित सूर्य की साधना करनी चाहिए। मान्यता ये भी है कि शनि की स्थिति खराब होने के कारण भी लंबे समय तक जोड़ों, घुटनों और कमर में दर्द रह सकता है। चलिए जानते हैं कि हड्डियों की पीड़ा को दूर करने के ज्योतिष उपाय कौन से हैं।
1: अगर लगातार सिर में दर्द चल रहा है तो शनि की पीड़ा देखें और राहु की पीड़ा देखें। हड्डियों में दर्द रहने वाला या शरीर में पीड़ा होने वाला, हड्डियों का दर्द वो भी सूर्य और गुरु से देता है, साथ में अगर शरीर में पीड़ा है तो शनि राहु की स्थिति देखनी अधिक जरूरी होती है। ऐसे व्यक्ति को गरीब लोगों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। स्नान के जल में कच्चा दूध मिलाना चाहिए और अपनी जब तब नजर जरूर उतारते रहने चाहिए। कई बार ऐसे लोगों का चंद्रमा अधिक कमजोर होता है, शरीर में शनि की पीड़ा अधिक बढ़ जाती है तो नजर बहुत जल्दी लग जाती है। आटे के चौमुखी दीपक से नजर उतारना शरीर में पीड़ा को दूर कर देगा।
0: हड्डियों का दर्द और ग्रह, ये समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हालांकि अन्य जगहों के लिए इसमें विभिन्न ग्रहों का योगदान भी है। अगर हड्डियों में दर्द की समस्या हो तो पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करें। अन्य दर्द के लिए कनिष्ठिका अंगुली के नीचे के हिस्से को 5 मिनट तक दबाने से दर्द से राहत मिलती है। तो आपने अभी जाने बीमारियों का ज्योतिष संबंध और इनका निवारण। इसके अलावा यदि आप हर शनिवार को सरसों के तेल का छायादान करें, साथ ही रोज सुबह हनुमान बाहु का पाठ करें, तो ऐसा करने से भी आपको हड्डियों से संबंधित बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है।
2: चलिए अब आपको वो समस्या बताते हैं जो कि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी होती ही है, वो है पेट की समस्या। दरअसल विज्ञान भी मानता है कि अगर पेट स्वस्थ है तो शरीर तंदुरुस्त है। चलिए जानते हैं कि कौन से ग्रहों की बाधा के कारण हमारा पेट खराब रहता है और अगर हमें लगातार बुखार बना रहता हो तो उसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है।

0: मेडिकल साइंस कहता है कि जब होते हैं बीमार तो डॉक्टर करते हैं उपचार, लेकिन ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जब हमें आता है बुखार तो ग्रहों की कमजोरी से हालात होते हैं लाचार। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के ग्रहों, राशियों और भावों, विशेषकर छठवां, आठवां, बारवां की स्थिति शरीर की बीमारियों को निर्धारित करती है। आज हम जान रहे हैं शरीर की व्याधियों से ग्रहों का संबंध। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको आए दिन बुखार रहता है तो निश्चित ही आपको डॉक्टरी इलाज की जरूरत है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र मानता है कि इसके पीछे कमजोर ग्रहों की छाया हो सकती है। बुखार का ग्रह कनेक्शन। शरीर में कहीं भी ज्यादा गड़बड़ी हो तो बुखार के रूप में सामने आता है। वास्तव में बुखार कोई बीमारी नहीं है। अगर बुखार नियमित रूप से रहता हो तो शरीर को विष मुक्त करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हर रविवार को बिना अन्न का उपवास रखें, साथ ही नित्य प्रातः खाली पेट तुलसी के पत्ते खाएं। आयुर्वेद मानता है कि अगर आपका पेट तंदुरुस्त है तो आपकी सेहत एकदम मस्त है, क्योंकि पेट से ही सारे शरीर का संतुलन जुड़ा है। चलिए जानते हैं कि अगर किसी का पेट लगातार खराब रहता हो तो ज्योतिष में इसका कौन सा कारण और इसका निवारण बताया गया है।
1: किसी व्यक्ति को पेट संबंधी रोग चल रहे हो तो हमेशा पानी उबाल के ठंडा करके पिए। विशेष तौर पे कोई भी सफेद रंग की वस्तु न खाएं, और सफेद वस्तु खानी है तो रंग परिवर्तन करके अर्थात थोड़ी सी हल्दी उसमें मिलाकर प्रयोग करें। आपको निश्चित पेट संबंधी रोग, बुखार संबंधी पीड़ाओं से तुरंत मुक्तता मिल जाएगी। साथ में पानी का रोग बुध के साथ बढ़ जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को छोटी इलायची का बुधवार के दिन दान करना और इलायची का पानी पीना आपको रोग मुक्त करेगा।
0: पेट की समस्याएं और ग्रह। बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र और पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। तांबे के बर्तन का पानी पिएं या तांबे के गिलास से पानी पिएं। साथ ही नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। आज हमने आपको बीमारी और उससे जुड़े ज्योतिष समाधान बताए। चलिए आपको इन ग्रहों की शांति से संबंधित कुछ महा उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इन ग्रह जनित संकटों से मुक्त हो सकते हैं। बीमारियों से बचने के उपाय। महामृत्युंजय मंत्र, रोग और मृत्यु भय से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक और मंत्र का जाप करें। ग्रह शांति, पीड़ित ग्रह से संबंधित पूजा, दान और रत्न धारण करें। खान पान और जीवन शैली को संतुलित रखें। राहु केतु के लिए शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। काले तिल और तेल का दान करना भी उत्तम होगा। शनि की शांति के लिए ओम शं शनेश्वराय नमः का जाप करें। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन उपायों को अपनाकर अपने ग्रहों से संबंधित पीड़ा का अंत कर सकते हैं और सेहतमंद जीवन गुजार सकते हैं।
2: इसी के साथ प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। सच्ची और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनिए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। ये ऐसे वीडियोस हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे, कुछ ऐसे भी वीडियो हैं जो आपको गुदगुदाएंगे भी।
2: हर बात बोलकर नहीं सिखाई जाती, कभी कभी एक्शन भी बहुत काम करता है। यहाँ देखिए, मामा को पता था पिटिया रानी ऐसे नहीं खाने वाली, सो आसान सा तरीका ढूंढ लाई। और देखिए, प्रयोग भले ही कहीं और हुआ है लेकिन असर सीधा वही हुआ जहाँ चाहिए था। बच्ची जिस फुर्ती के साथ चम्मच मुंह में लेती है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं, और जिस तरह से वो अपने पिता को सांत्वना दे रही है वो देखना तो और भी दिलचस्प है।

कमाल है, बस यही कहेंगे आप और नजर हटाना मुश्किल हो जाएगा। इनका ये धमाकेदार डांस देखते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हैरानी बढ़ती जाएगी।

इनकी कलाबाजियां, आत्मविश्वास और बैलेंसिंग सब देखने लायक है। बच्चों के डांस का ये वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

गुनगुनाना सीखा है अभी, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूबकर। देखिए इस अंदाज इनका।

लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब, और अब यहाँ प्रार्थना हो रही है इनकी। पर इस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

बस जीत के लक्ष्य तक पहुंचना है चाहे जैसे भी। इन्होंने भी यही कोशिश की थी लेकिन एक ही रेस में दो बार हार गए। देखिए बच्चे ने रेस तो लगाई थी लेकिन सब बहुत आगे निकल गए, इतने कि रेस में शामिल होना मुश्किल था। सो लॉर्ड तिवारी के साथ बोली लेकिन ये भी ना हो सका इनसे, पर फिर भी खुश बहुत है। आखिर कोशिश में कोई कमी तो नहीं रखी ना इन्होंने।

0: माँ तो बस माँ है, उसके बराबरी भला कोई कहाँ कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। लोग कह रहे हैं माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं।
1: अब बात उत्तराखंड से आई एक शानदार खुशनुमा तस्वीर की करते हैं, जिसने सोशल मीडिया पर भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ओपन जिम में कसरत करते हुए नजर आए। दरअसल योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। खास बात यह रही कि उद्घाटन के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने जिम में खुद एक्सरसाइज कर फिटनेस का संदेश दिया। देखिए, डायमंड्स की ऑक्शन हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहती है। एक ऐसा ही ऑक्शन है सोथ बीच स्प्रिंग ऑक्शन, जिसमें इस बार दुर्लभ ब्लू डायमंड नीलामी के लिए रखा गया। अपनी चमक और अपनी कीमत की वजह से यह हीरा सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है।
2: डायमंड और उसकी कीमत ने हमेशा ही दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरी है और लोगों को हैरान किया है। इस बार सोथ बीच की स्प्रिंग ऑक्शन भी दुर्लभ ब्लू डायमंड के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिनेवा में होने वाली इस ऑक्शन में इस बार एक फैंसी विविड ब्लू ग्रेड हीरा शामिल किया गया है और उम्मीद है कि इसकी नीलामी $12 मिलियन यानी $1,20,00,000 रुपए तक जा सकती है। यह हीरा दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक कुलिनन हीरा खदान में से निकला है। यह अनमोल हीरा 6 कैरेट का है और रंगीन हीरों में से दुर्लभ वैरायटी में से एक है। यह हीरा अंदर से पूरी तरह बेदाग है और ना ही इसमें कोई अशुद्धि है, जिसकी वजह से यह विशेष रूप से दुर्लभ पत्थरों में शुमार है। इस हीरे के साथ सोथबीच की स्प्रिंग ऑक्शन में सिंगर रिहाना का एक बेशकीमती मल्टी पीस सेट डिजाइन सेट भी शुमार है। ये सेट मशहूर स्विस लग्जरी ब्रांड चोपार्ड के सहयोग से डिजाइन किया गया है। इसे पहली बार 2017 में कांस रेड कारपेट पर पेश किया गया था। ये सेट चमकीले रंग के कीमती पत्थरों का मिश्रण है, कलाकार की कैरेबियन जड़ों से प्रेरित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: चलिए अब आपको दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग की तस्वीरें दिखाते हैं। मई दिवस की छुट्टियों के दौरान एक बेहद शानदार ड्रोन लाइट शो यहां पर आयोजित किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान पूरा का पूरा शहर, उसके आसमान को एक अद्भुत कैनवस में तब्दील कर दिया गया। इस शो में हजारों की तादाद में ड्रोन्स ने आसमान में 3D फॉर्मेशंस और शहर का शानदार नजारा पेश किया। चोंगकिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले भी 11,000 से ज्यादा ड्रोन्स के साथ विश्व रिकॉर्ड कई बार बना चुका है, जो AI और GPS तकनीक का उपयोग करते हैं। इस शानदार लाइटिंग शो के गवाह हजारों शहरवासियों के साथ पर्यटक भी बने। विज्ञान से लेकर प्रकृति तक हर क्षेत्र की प्रतिकृतियां ड्रोन के माध्यम से आसमान में उकेरी गई। शो के आखिर में ड्रोन ने आसमान में

0: चमकता हुआ लाल अनार भी बनाया जो चीन के सभी जातीय समूहों के बीच में एकता और आपसी सहयोग का प्रतीक था।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
8: खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र मजबूत हो जाए, किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, क्या हैं शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: महाराष्ट्र बोर्ड ने घोषित किए 10वीं की परीक्षा के परिणाम। 92.09% स्टूडेंट्स ने मारी बाजी, कोंकण डिवीजन का पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा।

आज से श्रद्धालुओं के हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर। सीएम धामी ने किया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का लोकार्पण, स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ। बद्रीनाथ में आईटीबीपी ने चलाया स्वच्छता अभियान। तपकुंड में ब्रह्म कपाल तक की गई सफाई। अब तक 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। डीआरडीओ के साथ भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता। तारा स्वदेशी ग्लाइड वेपन का पहला सफल उड़ान परीक्षण। अनगाइडेड बमों पर भी होगा सटीक निशाना। कोलकाता पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह की शक्ति साधना। प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा अर्चना। देश में सुख समृद्धि के लिए कामना की। सोमनाथ मंदिर लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री का लेख। विभाजित दुनिया को सोमनाथ का संदेश। 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्रिकेट मैदान के बाहर भी महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार झारखंड के नंबर 1 टेस्ट प्लेयर बने माही। आयकर विभाग की ओर से जानकारी दी गई।

उत्सव सोमनाथ का भारत के स्वाभिमान का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा आज हम इसी को लेकर करेंगे क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं अमृत महोत्सव में। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और इस अमृत महोत्सव को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। हम आपको सोमनाथ धाम में होने वाले उत्सव से जुड़ी हर जानकारी देंगे। क्यों शिव का सबसे चमत्कारी धाम कहा जाता है सोमनाथ को? सोमनाथ स्वाभिमान के 75 साल आस्था का धाम कैसे बना? भारत का मान 12 ज्योतिर्लिंगों में क्यों प्रथम पूज्य है सोमनाथ? और क्या है चंद्रदेव का सोमनाथ से कनेक्शन? इन तमाम सवालों और पहलुओं पर होगी आज चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने इतिहासकार और ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे। तो करीब 5 महीने बाद एक बार फिर से सोमनाथ धाम में बड़ा उत्सव हो रहा है। 11 मई यानी कि इसी सोमवार को सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर ये बड़ा आयोजन हो रहा है और इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।

0: सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित आस्था का ऐसा धाम जो भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, महादेव का ऐसा मंदिर जो भारत की अविनाशी और शाश्वत आध्यात्मिक संस्कृति के 1000 सालों का अडिग इतिहास खुद में समेटे है। भारतीय सनातन संस्कृति में शिव के इस धाम का विशेष महत्व रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैभव का प्रतीक सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का गौरवशाली उत्सव बना रहा है, जिसे भारत स्वाभिमान का नाम दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महा उत्सव का हिस्सा बनेंगे। इसी से पहले प्रधानमंत्री ने शब्दों के माध्यम से ऐतिहासिक पौराणिक सोमनाथ को लेकर अपनी भावनाएं एक लेख के माध्यम से जताई थी। उन्होंने लिखा,
1: सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितना भी विकराल क्यों ना हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। ये सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष के बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे फिर से एक बार सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार ये यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर से जीने जा रहा हूँ जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था।
0: सोमनाथ देश के स्वाभिमान का भी प्रतीक रहा है, यानी अगले हफ्ते 11 मई को सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण यानी अपने वर्तमान स्वरूप के 75 साल पूरा कर रहा है। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया था। सोमनाथ मंदिर की 1000 साल से भी ज्यादा के इतिहास विनाश अटूट आस्था और पुनरुत्थान की अद्भुत गाथा है। मुगल शासन में इस मंदिर पर बार बार हमले किए गए, लेकिन हर बार अविनाशी का ये धाम नई चमक नई आस्था के साथ उठ खड़ा हुआ है। लिहाजा ये सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र भर नहीं, भारत के स्वाभिमान का भी प्रतीक है। धार्मिक नजरिए से भी इस स्थान का विशेष महत्व है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी अतुलनीय है। एक ओर अरब सागर की लहरें हैं, तो पास ही गीर के जंगलों का सौंदर्य, एक ऐसा पावन स्थान जहां हिरण कपिला और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। धर्म संस्कृति और स्वाभिमान की अद्भुत गाथा समेटे शिव का ऐसा निवास जहां आकर साधक का मन ही नहीं आत्मा भी पवित्र पावन हो जाती है। सोमनाथ धाम का वर्णन ऋग्वेद श्रीमद् भगवद गीता शिव पुराण स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसे शिव के पहले ज्योतिर्लिंग का स्थान प्राप्त है। जाहिर है इस धाम से भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी है। पौराणिक ग्रंथों में इसके चंद्रदेव से जुड़ी कथा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों में से रोहिणी से अधिक प्रेम करने के कारण चंद्रदेव को कमजोर होने का श्राप दिया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने शिव जी की तपस्या की और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। इसी तप से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए और चंद्रदेव को वरदान दिया। इसलिए शिव के इस धाम का नाम सोमनाथ पड़ा और 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान मिला। सोमनाथ धाम को मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ पूजा उपासना करने से चंद्रदेव की विशेष कृपा मिलती है और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। मंदिर के आसपास की कुदरती सुंदरता तो कमाल है ही, मंदिर की बनावट और शिल्प भी बेमिसाल है। जानकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर को चालुक्य शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण के लिए पीले बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। इसका शिखर करीब 155 फीट ऊंचा है। वहीं सोने का कलश और विशाल मंडपम इसका आकर्षण और बढ़ा देते हैं। हर लिहाज से सोमनाथ धाम अद्भुत है, अतुलनीय है, क्योंकि शिव का ये धाम महज आस्था भक्ति विश्वास का केंद्र नहीं है, इससे भारतीय सनातन संस्कृति का स्वाभिमान भी जुड़ा है। इसलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के जरिए पूरे संसार को विनाश पर सृजन और आस्था की विजय का संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ धाम में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस खास आयोजन का हिस्सा बनने 11 तारीख को सुबह 10 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमनाथ धाम पहुंचेंगे और इस खास पल के साक्षी बनेंगे। 4 दिन के महोत्सव के समापन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे और साथ ही साथ हेलीपैड से मंदिर परिसर तक उनका एक रोड शो भी होने वाला है। तो प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सोमनाथ धाम में तैयारियां कैसी हैं और ये उत्सव किस तरीके से इसकी शुरुआत हो चुकी है और कौन कौन लोग पहुंचने वाले हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप मोरी।
2: देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 11 मई को यहां पर पहुंचने वाले हैं। जामनगर से सीधे सोमनाथ हेलीपैड पर प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और इसके बाद यही जो वो रास्ता है जो 1 किलोमीटर का, यहीं पर प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। दोनों तरफ लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन और पूजा करेंगे महादेव की। इसके अलावा यहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया है, जो पहली बार सोमनाथ मंदिर में इस एयर शो का आयोजन किया गया है। सूर्य की जो पहली किरण पड़ेगी इस वक्त प्रधानमंत्री जी यहाँ जब पहुंचेंगे तब एयर शो का भी आयोजन किया गया। यहीं से आगे 2 किलोमीटर दूर सद्भावना ग्राउंड है, वहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर एक सभा का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री बड़ौदा जाने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। दिलीप मोरी, गुड न्यूज टुडे, सोमनाथ।
0: वैसे पर्व और ये पल केवल गुजरात के लोगों के लिए या फिर महादेव के भक्तों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए स्वाभिमान का पल होगा, इसीलिए इसको खास बनाने की कोशिश हो रही है। सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान भी होने हैं और इसके लिए मंदिर प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं।
3: सोमनाथ मंदिर में लिंग की प्राण प्रतिष्ठा को 75 साल 11 मई को पूरे हो रहे हैं। वो दिन अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की, जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, वो आएंगे और पूजा करेंगे और आज तारीख 8 से लेकर 11 तक के 4 दिनों में वहाँ यज्ञ होगा, मंत्रोच्चार होगा, मंत्र लेखन होगा, कई लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। इस तरह धार्मिक एवं अन्य तरीके से ये अमृत महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं।
0: तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। आचार्य बद्रीशी महाराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ रवि भट्ट जी हिस्टोरियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में चंद्रांशु जी महाराज कथावाचक भी हमारे साथ जुड़ने वाले। मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी रवि भट्ट जी, आप इतिहासकार भी हैं, एक समृद्ध इतिहास, और देखिए आज की तारीख में जो संदेश यहां से जाने वाला है स्वाभिमान पर्व की, जिसकी बात हो रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, आज की तारीख में दुनिया में जितनी उथल पुथल है, जिस तरीके के हालात हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोमनाथ मंदिर एक बहुत बड़ा संदेश है। ये दिखाता है पूरी दुनिया को कि किस तरीके से बार बार गिराने के बाद भी स्वाभिमान के साथ मंदिर खड़ा है। रवि भट्ट जी,
4: हेलो
0: जी।
4: जी हाँ, आपने आपने जैसा कहा ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो जो सनातन धर्म है उसका ये उसकी ये प्रतीक है, उसकी उसकी आस्था का प्रतीक है, उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। और आप ये देखिए, और ये खाली कहने से शब्दों पे मत जाइए कि कोई आदमी ऐसे ही बोल रहा है, आप इस बात पे जाइए कि इसका आप इतिहास देखिए। इसका इतिहास है, ईसा पूर्व मंदिर बना हुआ था, जिसका स्कंद पुराण वगैरह के अंदर भी इसका जिक्र आता है, हम लोग के रीच में जो स्क्रिप्चर्स उसके अंदर बहुत एक्सटेंसिवली इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद में जब 649 के अंदर इसको पहली बार ये एक योजनापूर्वक ढंग से बनाया जाता है, मैत्रिक राजाओं ने इसको बनाया, उसको बनने के बाद इसके ऊपर पहला अटैक जो हो जाता है 725 के अंदर हो जाता है, सिंध के जो सूबेदार था जुनैन, उसने इस पर अटैक कर दिया, उस पर खत्म किया। वो पहला सबसे बड़ा कहना चाहिए इसके ऊपर जो था आक्रमण था, जिससे कि हिंदू की आस्था पर चोट करने का प्रयास किया मुस्लिम शासकों ने किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके फौरन बाद ही जो 815 के अंदर जो प्रतिहार राजा नागभट्ट थे उन्होंने इसको बनवा दिया। उसके ये बनने के बाद में इसके फिर ये अपनी पुरानी प्रतिष्ठा इसको मिली और पुराना गौरव इसको मिला। उसके बाद में फिर लेकिन ज़्यादा दिन तक लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर जो है और इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा हुआ करता है जैसा हम सब लोग जानते हैं। तो 1024 के अंदर जो होता है महमूद गजनी ने इस पर 5,000 आदमियों के साथ अटैक कर दिया और इसका सारा सामान, इसका जितना भी मतलब वो बहुत लंबी कहानी है कि ब्राह्मणों पर कितना और जो वहाँ पर जो भक्त लोग थे उन पर कैसा अत्याचार करा गया, और अपने आप में विश्व के अंदर किसी भी धार्मिक स्थल को विध्वंस करने की और उसको लूटने की ये सबसे भयानक जो घटना थी वो यहां पर 1024 में घटी महमूद गजनी के द्वारा, जो कि हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के अंदर और लिखा गया है
5: जी।
4: वो इसके ऊपर पूरी पूरी किताब लिखी जा सकती है। उसके बाद में यहां पर यह अंत नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर कहना चाहिए इस मंदिर को यहाँ के जो जो इसके जो आस्थावान लोग थे जिनका इसके ऊपर श्रद्धा और आस्था थी उन लोगों ने इसको फिर से बनाया। इसको बनाने के बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका जो सेनापति था एक, उसने इसको 1297 के अंदर जाके इस पर फिर से अटैक करा और इसको तहस नहस कर दिया। इसके बाद में दोबारा फिर जब ये बन के तैयार हुआ तो उसके बाद में आप इसको जो सिंध का जो अमीर था उसने इसको दोबारा इसमें 13th century के अंदर इसको करा, फिर 14th century के उसके बेटे ने इसको करा, और ये अंत नहीं था। आप ये देखिए कि जैसे ही गद्दी पे औरंगजेब बैठता है, बैठने के शुरू के सालों में 1665 के अंदर इसको फिर से इसका विध्वंस कर देता है, और यही अंत नहीं है, मरने के एक साल पहले वो फिर दोबारा करना चाहिए इसके ऊपर अटैक करता है। 1707 के अंदर उसकी डेथ होती है और 1706 के अंदर उसके अंदर मतलब फौज भेज के इसके अंदर मतलब कहना इसको विध्वंस करता है, कत्लेआम करता है और एक टुकड़ी छोड़ देता है कि यहाँ पर किसी तरह की पूजा पाठ नहीं होना चाहिए।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लौटती हूँ आपके पास राजमिश्रा जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर राजमिश्रा जी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने बकायदा एक लेख लिखा है। चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, आपके पास लौटूंगी। पहले राजमिश्रा जी आपसे एक लेख लिखा है, उसकी लाइनें देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है और यहां से संदेश जो सनातन हो या भारतीय संस्कृति हो या हमारे मंदिरों किस तरीके से पूरी दुनिया को दे रहे। दो लाइनें, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है, इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है और इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों ना हो मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। ये शायद हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है जो हमें इतनी शक्ति इतनी ताकत देती है कि हजार साल बाद भी वही सोमनाथ है और वही संदेश पूरी दुनिया को यहां से जा रहा है।
6: एक अटल बिहारी वाजपेयी ने नवजोत जी एक शब्द कहा था, मुझे पूरी लाइन याद है, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सर पर बरसें ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं नवजोत जी, ये सिखाता है एक्चुअली सोमनाथ हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ ही वो मंदिर है जो हमें सिखाता है कि आप सनातन पर कितना भी प्रहार करें लेकिन सनातन हर बार उठ करके खड़ा होता है। सनातन को नष्ट नहीं किया जा सकता, सनातन को खत्म नहीं किया जा सकता, सनातन को थोड़े दिन के लिए प्रभावित तो किया जा सकता है, परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ भारतीय है, ये सिर्फ भारत है जिसकी हौसलाओं को जिसके जज्बा को तोड़ा नहीं जा सकता। अभी जब हम बात कर रहे थे आप डिस्कस कर रहे थे कितनी बार प्रयास किया गया महमूद गजनी से लेकर के औरंगजेब तक, अनेक लोगों ने आकर के उसको विध्वंस करने का प्रयास किया, उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हाँ हर बार सनातनियों की ऊर्जा ने सनातनियों की आस्था ने इस भारत की संस्कृति ने दोबारा उसको तैयार किया दोबारा उसको बनाया। तो एक तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हम भारतीय हार नहीं मानते हैं, हम भारतीय हर बार उठ करके खड़े होते हैं और अपने धर्म के प्रति हम जागृत रहते हैं और अपने जीवन के प्रति जागृत रहते हैं। उसी प्रकार ये एक साधारण मानव के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, इस बात को ध्यान रखना होगा नवजोत जी कि जीवन में कई बार आपको प्रॉब्लम्स आती हैं और आप सोचते हैं कि मतलब अब तो मेरे पास कुछ नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब आपको इस सोमनाथ मंदिर से प्रेरणा, इस द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पहला ज्योतिर्लिंग है उससे आपको ये प्रेरणा लेनी होगी कि देखिए इतने प्रहार के बाद भी इतने प्रभाव के बाद भी आज वो मंदिर सनातन का सुंदर प्रतीक दिख रहा है, आज वहां एक सुंदरता दिख रही है। बार बार उसका जीर्णोद्धार हुआ, बार बार तैयार किया, लोगों ने नष्ट करने का प्रयास किया। इसी प्रकार आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन यदि आपकी इच्छा शक्ति मौजूद है तो आप परास्त नहीं हो सकते।
5: बिल्कुल,
6: इच्छा शक्ति और अगर मजबूत है तो आप फिर दोबारा उठ करके खड़े होंगे। तो इसलिए सोमनाथ मंदिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हम सनातनियों को, हम लोगों को अपनी ऊर्जा को कायम रखने की जो मदद है वो करता है, हमें अपने आप को जागृत रखने में जो मदद है वो करता है नवजोत जी। तो इसलिए कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहा है ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके साथ हम सभी लोगों के लिए इस मंदिर से प्रेरणा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति हमारी कितनी मजबूत है, कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी अडिग है, ये शायद हम इस मंदिर से सीख सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये शब्द कहा है, मुझे लगता है।
5: चंद्रांशु जी महाराज, आज दुनिया की स्थिति आप देख लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट हो, रूस यूक्रेन युद्ध हो, हर जगह पर टेंशन तनाव बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं, और हम इधर भारत की बात करें तो यहां हम स्वाभिमान पर्व, हम क्योंकि इसका नाम दिया गया है, कहीं ना कहीं भारत क्या एक संदेश और क्या एक रास्ता दिखा सकता है दुनिया को? क्या हमारा धर्म, हमारी संस्कृति दुनिया को ये रास्ता दिखा सकती है कि कितने भी आक्रमण, कितने भी हमले ना हो जाए, लेकिन हौसला अगर आपका है तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता।
7: बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज जयंती चर्चा कर रहे, देश को एक ऐसे विषय की ओर ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सोमनाथ हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की और देश के अंदर जो भी लोग थे उनकी मना स्थिति भूत भवन भोलेनाथ के प्रति जो भी थी, सनातन धर्म में जो वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रति विशेष स्थान रहता है। जैसा भी थोड़ी देर पहले राज जी कह रहे थे कि सोमनाथ प्रथम है, प्रथम शिवलिंग है और उसमें प्रभासक क्षेत्र भी है। द्वारिकाधीश भगवान ने इसी क्षेत्र से अपनी लीला को संवरण किया हुआ है। चंद्र देवता ने यहाँ बहुत वर्षों तक तपस्या किया है। दक्ष की पत्नियां आपस में एक रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते थे, बाकी को नहीं, तो सब कहीं जाकर के शिकायत किया उन्होंने दक्ष प्रजापति को, और उन्होंने क्षय रोग से ग्रसित होने का इनको श्राप दिया। फिर इन्होंने, चंद्रदेव ने बड़ी तपस्या किया और शंकर भगवान प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया था वहां पर। सोमनाथ का एक अपना अलग महत्व रखता है। अब जैसे आपने एक बात बहुत और भी महत्वपूर्ण कहा कि क्या भारत पूरे विश्व को कोई रास्ता दिखा सकता है, मैं निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत ही एकमात्र विश्व के अंदर देश है जो सभी जितने भी विश्व को कहीं ना कहीं शांति के लिए, शाश्वत शांति के लिए, उसके जीवन में कहीं सुख शांति मिल जाए वो भारत ही दे सकता है। क्योंकि अभी तक लोग मंगल ग्रह तक पहुंच गए, पर जीवन में मंगल कैसे आएगा ये बात किसी को भी नहीं पता है। अगर जीवन में मंगल कैसे आएगा इसका किसी के पास सूत्र है तो एकमात्र भारत देश के पास में सूत्र है और कहीं नहीं है। और जहां तक इसे सोमनाथ मंदिर की बात कहें तो इसको चंद्रदेव ने स्वर्ण से बनवाया, रावण ने इसी मंदिर को चांदी से बनवाया, राजा भीमसेन ने इसको पत्थर से बनवाया। तो ये सोमनाथ जो मंदिर है, रावण उसके पास सोने की लंका है, उसके पास क्या वैभव नहीं है, उसके पास देश विदेश क्या, विश्व की स्वर्ग की सारी सुंदरियां हैं, स्वर्ग के सारे सुखोभोग की वस्तु है। पर वो रावण भी जब भोलेनाथ के दरबार में जाता है, भोले बाबा की स्तुति करता है, उसने शिव तांडव स्त्रोत्र में कहा शिवेति मंत्र मुच्चरत सदा सुखी भाव्यम, हे भोले बाबा दुनिया के सारे सुख सामग्री मिलकर के भी हमको सुखी नहीं बना पाती, जब हम आपके दरबार पर भोले बाबा आते हैं और आपका जलाभिषेक करके झूम करके जब शिव तांडव स्त्रोत्र गाते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं, आपका नाम संकीर्तन करते हैं ओम नमः शिवाय का, तभी हमको सुख शांति मिलती है। तो निश्चित तौर पर भौतिक विकास चाहे जितना हो जाए, भौतिक सामग्री जितनी आ जाए, पर उनका परिणाम दुखद ही है। आजकल गर्मी भयंकर है पर एसी में ज्यादा रहने के कारण तमाम बीमारी आ जाती है, एलोपैथिक दवाइयां ही खाने पर तमाम बीमारी आ जाती है। तो हम जितना भी भौतिक विकास कर रहे हैं साइंस के द्वारा, उसका परिणाम कहीं ना कहीं विनाश की ओर ले जाता है। एक अध्यात्म ही ऐसा रास्ता है, एक केवल ये भगवान का भजन, भगवान का सत्संग, ये भगवान का जो आराधना, जो अध्यात्म है, मेडिटेशन है, इसी में शांति है। और इसीलिए आज भी लोग अपने मन की शांति के लिए, हृदय की शांति के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मचिंतन आत्ममनन के लिए लगातार लोग मेडिटेशन करते हैं, लगातार उपासना करते हैं, और उपासना करके कहीं ना कहीं अपने को शांति सुखद अनुभूत महसूस करते हैं। लोग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठ करके ही मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। उसको पता है कि मेडिटेशन से कहीं ना कहीं उनका बौद्धिक विकास होता है, अध्यात्म की यात्रा उनकी पुष्ट होती है। तो निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा विश्व को मार्गदर्शन देने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो एकमात्र भारत देश में है। और मैं फिर एक बड़ी जिम्मेदारी कहता हूं कि जैसे अपना देश सोने की चिड़िया था, निश्चित तौर पर भौतिक जगत में सोने की चिड़िया था, पर विश्व गुरु भारत पहले जो था आज भी है, क्योंकि विश्व को मार्गदर्शन करने का किसी में सामर्थ है वो हमारे देश के पास है, भारत देश के पास है। इसलिए निश्चित तौर पर भारत ही विश्व को कहीं ना कहीं दिशा और दशा दे
5: बिल्कुल,
7: सकता
5: बिल्कुल। चलिए बद्री जी महाराज आपके पास आना चाहूंगी, चंद्रदेव से क्या इसका कनेक्शन है जरा वो हमें समझाइए, शास्त्रों में क्या कुछ इसका वर्णन किया गया है।
8: चंद्रदेव सौम्य देवताएं, शांति के प्रतीक है, आनंद के प्रतीक है। चंद्रदेव सभी देवों में सूर्य देव और चंद्रदेव प्रकाश के देवता माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ज्योतिष शास्त्र जिस आधार पर टिका हुआ है वो 27 नक्षत्र हैं और ये उनके स्वामी हैं। जैसा कि हमारे चंद्रांशु जी महाराज अभी संकेत कर रहे थे, तो दक्ष की 60 पुत्रियां हुई, उनमें से उन्होंने 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में किया, लेकिन वो रोहिणी नाम की पत्नी से कुछ अधिक प्रेम करने लगे। धीरे धीरे ये शिकायत बहुत परेशान होकर के उनकी सभी पुत्रियों ने अपने पिता से की, और बार बार समझाने पर भी जब चंद्रदेव नहीं माने तब उन्होंने इनको क्षय रोग का शाप दे दिया। क्षय रोग माने जैसे टीबी होती थी पहले, तो उस राजयक्षणा रोग से वो ग्रस्त हो गए। फिर उन्होंने जाकर के अपने जो ससुर दक्ष थे उनकी शरण ली, उनकी प्रार्थना की भविष्य में ऐसी त्रुटि ना हो, ऐसा उन्होंने वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम जाकर के भगवान भूतवावन भोलेनाथ की तपस्या करो, क्योंकि भोले बाबा का जो नाम है वो शिव, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। यद्व अक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघ आसु हंति तक, स्वयं सती माता ने कहा है जिन शिव का दो अक्षर का नाम है शिव, जिसका अर्थ ही होता है कल्याण, जिसका नाम स्मरण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, सकृत प्रसंगाद अग मासु हंति तक। तो उन्होंने जाकर के फिर प्रभास क्षेत्र में जहाँ पर भगवान का श्री कृष्ण का स्मरण क्षेत्र भी रहा, बहुत घोर तपस्या की, और उस महान तपस्या से भूतवावन भोलेनाथ परम प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आपके मन में जो इच्छा हो भाई आप वरदान प्राप्त करें। उन्होंने कहा भगवान एक तो मेरा ये रोग दूर हो जाए, और दूसरा मैं चाहता हूँ जितने दिन मैंने आपका आराधन इस पवित्र स्थल पर किया है यहाँ पर आप अपने दिव्य रूप में स्थापित हों। तो भूतवावन भोलेनाथ जो हमारे परम आराध्य और आस्था के केंद्र द्वादश ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, उनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सौराष्ट्र सोमनाथ चौक इस सौराष्ट्र प्रांत में और सोमनाथ के नाम से भूतवावन भगवान वहां पर व्यक्त हुए, और उनका इतना पूरे विश्व में जितने भी आराधक थे उनका केंद्र रहा, इतनी आस्था रही, सोमनाथ को सर्वोपरि शिवलिंगों में माना गया। और इसीलिए इसी बात से आहत होकर के चिढ़ करके जितने भी विधर्मी थे आक्रांता थे उन्होंने हमारी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए बार बार सोमनाथ को ही चुना। जैसा हमारे रवि भट्ट जी ने इतिहास में बताया कितने लोगों ने आकर के उसको विध्वंस किया, नष्ट किया। तो ये जो आसुरी शक्तियां हैं ये सतयुग से ही हमारे साथ में रही हैं। आसुरी शक्ति और दैवीय शक्तियों का बराबर संतुलन बनाने के लिए बीच बीच में इस प्रकार के घटनाक्रम होते रहे, परंतु जब बार बार आक्रमण हुए तो हमारी आस्था के केंद्र संपूर्ण भारतवासियों ने संपूर्ण सनातनियों ने उस पर जाकर अपनी आस्था को व्यक्त किया, और जो सक्षम राजा लोग थे उन लोगों ने जा करके वहां पर उस मंदिर को जितनी बार ध्वंस हुआ उतनी बार उसका पुनर्निर्माण किया, जितनी बार लूटा गया उससे भी ज्यादा उसको दिव्य और भव्य रूप धारण उन्होंने प्रदान कराया। हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी जाकर के जितने देवालय थे उनके साथ साथ सोमनाथ का भी उन्होंने जीर्णोद्धार किया। तो हमारी आस्था का केंद्र है, क्योंकि भगवान भूतवावन भोलेनाथ जो है वो हस्ते क्षमाला हाथ में रुद्राक्ष की माला रखते हैं, और हृदय कृष्ण तत्व हृदय में कृष्ण तत्व उनके विराजमान रहता है, और जीवाग्र भागे मर राम मंत्रम उनके जीवाग्र भाग पर हमेशा राम मंत्र विद्यमान रहता है, और यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम जिनके मस्तक पर भगवान की चरण से निकली हुई गंगा विराजमान रहती है, ऐसे शिवम महाभागवतन नमामि, ऐसे उन महाभागवत भक्तों में महान भक्त भूत बावन भोलेनाथ भगवान श्री शिव को ये सारा विश्व नमन करता है, वंदन करता है। और जब जब उन पर कोई भी यदि इस प्रकार का आघात हुआ है, हमारे आस्थावानों ने जाकर के उसको फिर वही पुनः पूर्व रूप प्रदान किया। तो चंद्रमा के तपोभूमि को और भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि को बहुत महत्व तो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, लगभग वेदों में भी और शास्त्रों में भी, पुराणों में सभी जगह इसका वर्णन है। ऐसे उस सोमनाथ मंदिर को आज हमारे प्रधानमंत्री उसके 75 वर्ष होने पर और जो उसको स्वरूप दे रहे हैं, उस पर लेख लिख रहे हैं, स्वयं जाकर के उनका आराधन कर रहे हैं, इसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं। आज सारे भारतवासी उनके साथ, जय भोलेनाथ।
5: जी बिल्कुल। तो स्वाभिमान उत्सव से अमृत उत्सव तक सोमनाथ के इतिहास को भी जानेंगे, साथ ही साथ इसके धार्मिक महत्व पर भी आगे बात करेंगे और कैसे ये पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है, स्वाभिमान का संदेश देता है, हौसले और हिम्मत की कहानी, ये सब आगे बताएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक मिनट।

0: खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र मजबूत हो जाए, किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, क्या हैं शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.

0: उत्सव सोमनाथ का भारत के स्वाभिमान का इसी को लेकर आज चर्चा कर रहे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए इतिहासकार रवि भट्टजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ब्रेक पर जाने से पहले रवि जी चर्चा की कि देखिए किस तरीके से आक्रांताओं ने बार बार हमला किया और वापस से हजार साल बाद भी सोमनाथ वैसे ही स्वाभिमान के साथ खड़ा है। हौसले स्वाभिमान की बात हुई, लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके शिल्प की बात करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल हमें आगे बताइए।
1: देखिए ये जगह पर जो भारत की ये बहुत ही पवन धरा हुआ करती है, भारत का वो हिस्सा है जिसको कि यू नो दैट मैथोलॉजिकली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द इंडियंस जहाँ पर ये है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि अभी हमारे सबसे पहले लोग बता रहे थे, इसका धर्म के साथ धर्म की विशेष बात होती है कि धर्म को अक्सर स्थान विशेष और स्थान विशेष में भी एक प्रतीक जो होता है उससे ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि सारे धर्मों के कुछ प्रतीकात्मक स्थान होते हैं, स्थल होते हैं और कुछ प्रतीक्स होते हैं जिसके के अंदर आदमी जो आम श्रद्धालु होते हैं उनकी बहुत जो श्रद्धा होती है। और यही बात यहाँ पर भी इस एरिया की भी है। ये जो आपके भारतवर्ष के अंदर हिंदू धर्मावलंबी जितने भी हैं उनके लिए जो ये चार जो आपके चार धाम हैं इनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो स्थान इन्हीं का वो आपका जो मंदिर है सोमनाथ का वही हुआ करता था। और हिस्टोरिकली आप जो इसके ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, अटैक होने के पीछे भी दो रीज़न थे। एक तो रीज़न ये था और आपको सुन के बहुत शायद आपके दर्शकों को सुन के अजीब सा लगेगा कि अधिकतर जो ये हुए हैं ये विदेशी आक्रांताओं ने लूटने के लिए किए थे। उन्होंने आया लूटा, लेकिन अब प्रश्न ये उठता उन्होंने मंदिर को क्यों तोड़ा। तो मंदिर को तोड़ने का है कि दुनिया के जितने भी शासक होते हैं वो और स्पेशली इन द मिडिल पीरियड वो दे हैड नेवर बीन बी रिलीजियस। अगर वो धार्मिक होते शासक लोग तो दूसरे देश पर आक्रमण कभी नहीं करते, दूसरे की टेरिटरी पर जाके उनका धन लूट के नहीं लाते। लेकिन वो अपने एक गलत अन्यायपूर्ण मूव को, अन्यायपूर्ण अपने कार्य को जस्टिफाई करने के लिए अपनी जनता की निगाहों में उन्होंने हमेशा धर्म का सहारा लिया, जिसकी वजह से क्या है कि मोहम्मद गजनी भी जो था, महमूद गजनी, उसने भी यही करा। उसने जो आज आप फारसी के जितने भी हिस्टोरियंस को पढ़ लीजिए वहां पर, तो फारसी के हिस्टोरियन ने हमेशा उसको लिखा है कि वो धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक था। उन्होंने कभी ये नहीं लिखा कि वो लूटने के लिए वहां पर गया था। और यही वो जो महमूद गजनी चाहता था, वो चाहता था कि मैं लोगों को लगे कि मैं अपने धर्म प्रचार के लिए जा रहा हूँ और मैं मूर्ति भंजक हो गया हूँ। पर फैक्ट ये था कि वहां पर वो पैसा लूटना चाहता था और पैसा लूटने के चक्कर में ही हैज टेकन द कवर ऑफ बीइंग अ रिलीजियस पर्सन। ये कितना विडंबना है, कितनी बड़ी ये आयरनी है। और वहाँ पर फारस के लोग अभी भी समझते हैं, जब भी वहाँ का इतिहास पढ़ते हैं इसका महमूद गजनी का, तो उनको लगता है तो धर्म का बहुत प्रचारक था। और खाली फारस ही नहीं, जो मुस्लिम देश हैं उनके मुस्लिम धर्मावलंबी जो है उनकी निगाह के अंदर तो वो एक बहुत बड़ा मसीहा बन गया। यही बात औरंगजेब के साथ भी थी, औरंगजेब ने भी वही करा। उसने धर्म का सहारा लेके आदमी का क्या करा, औरंगजेब के दो काम थे। औरंगजेब ने हिंदुओं का मनोबल तोड़ने का प्रयास करा, क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी की आस्था कहाँ होती है अपने किसी भी धर्मावलंबी के, अपने धर्म के अंदर होती है। रोटी कपड़ा मकान के बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है आम आदमी के लिए वो होता है उसका धर्म। उसके जब धर्म पे ही अगर आप चोट कर देंगे तो उसका मनोबल टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा तो उसके ऊपर शासन करना बहुत आसान हो जाएगा। यही बात अंग्रेजों ने भी करी, उन्होंने दूसरे ढंग से यहाँ मनोबल तोड़ा के लिख देते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। लिखने का मतलब भी था कि तुम कुत्ते के समान हो। तो तुमको जब एज वी ऑल नो कि डीमोरलाइज फोर्सेस नेवर विन अ बैटल, डीमोरलाइज आदमी क्या क्या लड़ेगा बताइए, लड़ने के पहले जब उसको अपने ऊपर शक हो गया तो लड़ने के लिए जाएगा। तो ये जो था ये रणनीति हुआ करती थी उस समय के शासकों के अंदर कि डीमोरलाइज करने के लिए वो आपके धन पे अटैक करते थे हमेशा। धन को अटैक करेंगे तो घर को अटैक करेंगे तो आप डिमोलाइज जाएंगे।
0: लेकिन उसका नतीजा देखिए सर, धर्म पे अटैक किया लेकिन आज वो स्वाभिमान के साथ खड़ा है। एक बार राजमिश्रा जी आपके पास आते हैं, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जब हम बात करते हैं सोमनाथ की केवल मंदिर केवल ज्योतिर्लिंग के तौर पर नहीं, हमारे देश के स्वाभिमान के तौर पर देखा जाता है इसको, कहां कहां शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है?
2: देखिए मैं एक बात सबसे पहले कह दूं कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के बिना तो कोई शास्त्र ही नहीं है। सबसे पहले बड़ा स्पष्ट कह दूं जितने शास्त्रों का नवजोत जी आज तक वैसे उल्लेख है, मैं श्री रामचरित मानस से लेकर के श्रीमद भागवत तक की अगर चर्चा करूं या अन्य की चर्चा करूं, जितनी कथाएं हमें प्राप्त होती हैं, सारी कथाएं भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया है और वही कथाएं फिर लोक में आकर के प्रचलित हुई हैं, हम सब लोगों को गायन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन जब हम शास्त्रोक्त विषय पर जाकर के सोमनाथ की बात करते हैं तो श्रीमद भागवत के अंतर्गत श्यामांतक मणि से जो जुड़ी हुई कथा है वो भगवान सोमनाथ की प्राप्त होती। चंद्रांशु जी महाराज बात भी कर रहे थे कि वही जो भगवान का जब समय रहा, जब बहेलिया जो कि पिछले जन्म में बली होता है, राजा बाली होता है, वो बहेलिया सुग्रीव का जो भाई होता है उसको भगवान राम कहते हैं कि जब वो कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन्ना तो मैं मारा, आपने मुझे क्यों मारा, तो कहते कि ठीक है मैंने तुम्हें इस बार छुप करके बाण मारा है, अगले जन्म में तुम मुझे छुप करके मारोगे। और कृष्णा अवतार में वही क्षेत्र है जहां पर छुप करके वो बहेलिया के रूप में बाली जो है वो भगवान कृष्ण को उनके पैर में बाण मारता है। तो श्रीमद भागवत के अंतर्गत इस कथा का बड़ा शानदार रूप में वर्णन है। अगर आप शिवपुराण के अंतर्गत जाएंगे तो शिवपुराण में भी इस कथा का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। शिवपुराण के अंतर्गत तो भगवान सोमनाथ के टोटल उत्पत्ति से लेकर के और सभी परिस्थितियों का, चंद्रदेव की उस परिस्थिति का भी वर्णन मिलता है जिस कथा को शायद पहले चर्चा की जा चुकी है इसलिए मैं उसको बहुत लंबा नहीं लेना चाहूंगा, जहां पर उनकी जो 27 नक्षत्र हैं उनके पत्नियों के स्वरूप में है, रोहिणी से उनका विशेष प्रेम है, जहां पर उनके ससुर जो महाराज दक्ष हैं उनको श्राप दे देते हैं और वहां बैठ करके वो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। श्रीमद भगवत गीता के अंतर्गत देखा जाए तो वहां भी जाकर के उनका सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। अगर स्कंद पुराण के अंतर्गत भी आप जाएंगे तो स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अध्याय 83 में प्रभास क्षेत्र सोमनाथ का जो पवित्र दर्शन इत्यादि वहां का वर्णन है। एक और वहां पर कपिला और हिरण करके आपने उसका वर्णन स्टार्टिंग में भी किया था और इसका वर्णन भगवान कपिल जो कि कर्दम ऋषि और माता देवहूति के पुत्र माने जाते हैं, देवहूति को जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया था वो वहीं से प्राप्त हुआ था। माता देवहूति को जो सांख्य शास्त्र जिसका आज हम चर्चा करते हैं, सांख्य शास्त्र का जो वर्णन आता है वो भगवान कपिल के द्वारा आता है, भगवान के अवतार माने जाते हैं वो, तो उनके द्वारा सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया गया। तो जितने भी शास्त्रों का, ऋग्वेद के अंतर्गत वर्णन आता ही है, तो जितने भी शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे हर जगह पर द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्पष्ट वर्णन आता है और उस द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है वो भगवान शंकर का है, जो सोमनाथ का स्थान है उसका वर्णन आता है और यह हर जगह वर्णन आता है। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लिखा कि जो तप करें कुमार तुम्हारी भाभी मेट सके त्रिपुरारी, अक्षित फल बिन इच्छित फल बिन शिव और राधे और लहाई न जोग यज्ञ जब साधे। इस संसार में अगर इच्छा के अनुसार कोई फल प्रदान करने वाला कोई स्थान है तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का स्थान है और उसमें से जो सोमनाथ, भगवान सोमनाथ का जो ये ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, वो शायद सबसे पहला ऐसा स्थान है जहां पर शिव की विशेष अनुभूति होती है, जहां आकर के दर्शन करने से और आपके समस्त पाप मिटते हैं। जिस प्रकार नवजोत जी कहा जाता है कि आप शिव शाश्वत है, शिव को कभी नष्ट नहीं किया, न जायते न मृते कदाचिन्या, गीता के अंदर एक श्लोक आता है कि सनातन का ना जन्म हुआ है ना सनातन की मृत्यु हो सकती है, सनातन था है और रहेगा। सनातन जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी जो आत्मा है वो सनातन है, उस आत्मा पर हम काली पट्टी चढ़ा करके उसको कुछ भी धूमिल करने का, उसको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करें वो संभव है, लेकिन उसी प्रकार से जो सोमनाथ भगवान शिव का ये स्थल है उसी प्रकार वो सदैव था, चंद्र के समय से था और अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो शास्त्र में जितने भी पुराणों की बात की जाए, वेदों की बात की जाए, जितने भी चीजों की बात की जाए वहां पर इनका बहुत स्पष्ट वर्णन है। जी नौजी
0: बिल्कुल। चंद्रांशु जी महाराज, स्वयमान उत्सव से अमृत उत्सव तक देखिए बार बार प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, और आपने जिक्र किया था कि जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो यहां से कहीं ना कहीं भारत के लिए संदेश भी जाता है, उसमें खुद प्रधानमंत्री, चाहे वो इससे पहले जो स्वयमान उत्सव हुआ या फिर अभी की अगर हम अमृत उत्सव की बात करें, प्रधानमंत्री ने न केवल लेख लिखा बल्कि वो वहां पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाते हैं, संदेश देते हैं वहां से।
3: नवजोत जी, निश्चित तौर पर श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से ले लें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर उनकी आस्था के केंद्र सोमनाथ भगवान पहले से ही रहे हैं। मुख्यमंत्री होते हुए भी, प्रचारक होते हुए रहते हुए भी कहीं ना कहीं सोमनाथ भगवान का आशीर्वाद लेते रहे हैं। हम सब भी जितने सनातनी हैं समय समय पर सोमनाथ भगवान के चरणों में जाते हैं, अर्चन पूजन करके अपने जीवन लाभ के आध्यात्मिक यात्रा के लिए हम लोग लगातार प्रयास रहते हैं। अब दूसरी बात, जहां तक है जो द्योतक है, जिसका परिचायक है सोमनाथ मंदिर, हम सब ने एक स्लोगन पढ़ा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, और इसी अवधारणा को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का एक दृश्य उपस्थित हुआ है, और वो दृश्य है जिस समय रावण युद्ध करने के लिए आता है। रावण के पास तमाम संसाधन है, पुष्पक विमान है, उसके पास तमाम सेनाएं हैं, असुरों की बड़ी लंबी छल छद्म करने वाले हैं, कूटनीतिक है, सारी व्यवस्थाएं हैं। दूसरी तरफ भगवान राम के पास कोई व्यवस्था नहीं है, वह वन में गए हैं और वनवासी लोगों को इकट्ठा करके, वहां बानर भालुओं की एक बड़ी सेना है, सेना को लेकर के भगवान रावण को युद्ध करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। विभीषण जी जो रावण के भाई हैं वह आकर के राम जी के पास मिल गए। जब रावण युद्ध करने के लिए आए तो विभीषण जी के मन में एक प्रश्न उठता है, कहीं भी जीता वीर बलवाना, ये रावण इतना बड़ा बलवान है, जिसने नारायण को संतुष्ट किया, चक्र को अपने शरीर पर झेला है, जिसने इंद्र के मान को मर्दन किया हुआ है, ऐसे इतने बड़े वीर को आप कैसे जीत पाएंगे। तो उस समय भगवान राम ने बड़ी अद्भुत बात कही और वो प्रेरणा दिया कि आत्मबल अगर नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, तो व्यक्ति सारे संसाधनों को लेकर के भी कुछ नहीं कर सकता है, पर कुछ करने का अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है और वो सत्य के मार्ग पर चल रहा है तो उसको विजय निश्चित तौर पर मिलेगी ही मिलेगी। और उन्होंने धर्मरथ का
0: बिल्कुल
3: एक एक शब्द केवल एक शब्द उन्होंने कहा, महा अजय संसार रिपु जीत सकै सोई वीर, जाके अस दृढ़ होई रथ है सुनो सखा मत धीर। जिसके पास धर्म रूपी रथ है वह निश्चित तौर पर विजय प्राप्त करेगा ही करेगा, और इसीलिए लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं किया, रामेश्वर में रामेश्वर नाथ भगवान की ही पूजा किया, क्योंकि यह साहस संकल्प किसी कोई देता तो भगवान भोलेनाथ ही देते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ की आराधना।
0: चलिए वक्त अभी इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ में हैं, जहां उनकी ध्यान साधना शुरू हो चुकी है और इसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। पूरे 21 दिन तक वो बद्रीनाथ धाम की तपोभूमि पर बिल्कुल अकेले शांतचित्त होकर चिंतन मनन करेंगे, ताकि अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए नए सिरे से तैयारी कर सके, नई ऊर्जा और विचार हासिल कर सकें।

0: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहाँ जाते हैं सुर्खियां बन जाते हैं। बद्रीनाथ में उनकी 21 दिन की साधना शुरू हो चुकी है, जहाँ वे -2 डिग्री से नीचे के तापमान पर साधना कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि 12 साल के बाद वो अपने दिनचर्या से ब्रेक लेकर इस तपस्या के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँचे। धीरेन्द्र शास्त्री के पहुँचने पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है। पिछले 3 सालों से बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। पहले वो बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर खाक चौक आश्रम पहुँचते हैं। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहाँ बाबा बागेश्वर आजकल साधना में लीन है। खाक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर ही मौजूद है। जब भी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम जाते हैं, यहीं पर रुकते हैं। फिलहाल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद हैं। हालांकि ऐसी खबर है कि 21 दिनों तक बागेश्वर धाम किसी को भी दर्शन नहीं देंगे और 21 दिनों की साधना के बाद हनुमान कथा का आयोजन करेंगे।
1: बागेश्वर धाम सरकार है, वो जब भी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो बालकनाथ महाराज का जो खाक चौक आश्रम है, यहीं पे हनुमान मंदिर है, पौराणिक हनुमान मंदिर है, यहीं पे वो पहुंचते हैं।
0: असल में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता बहुत है। वे जहाँ भी जाते हैं उनका दिव्य दरबार लग जाता है। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। उनकी एक झलक पाने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में स्थिति अलग है। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जब तक साधना करेंगे, तब तक उनके पास न तो भक्तों की भीड़ होगी और न ही वे प्रवचन करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में धीरेन्द्र शास्त्री की इस एकांत साधना का मकसद बेहद खास है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आत्मचिंतन करने के लिए यहाँ एकांतवास में आए हैं। इस दौरान वे स्वयं को साधेंगे। हिंदू राष्ट्र और सनातन के उत्थान के लिए वे 21 दिनों तक कठिन तप करेंगे। बताया जा रहा है कि इस विशेष साधना के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल अकेले होंगे। उनके पास न तो मोबाइल फोन रहेगा और न टेलीविजन या संचार के दूसरे साधन। धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम की इस तपोभूमि पर बिल्कुल अकेले शांतचित होकर चिंतन मनन करेंगे, ताकि अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए नए सिरे से तैयारी कर सकें, नई ऊर्जा और नए विचार हासिल कर सकें। कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
3: हर बात बोलकर नहीं सिखाई जाती, कभी कभी एक्शन भी बहुत काम करता है। यहाँ देखिए, मामा को पता था पिटिया रानी ऐसे नहीं खाने वाली, सो आसान सा तरीका ढूंढ लाई और देखिए प्रयोग।

गुनगुनाना सीखा है अभी, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूब कर। देखिए जरा अंदाज इनका। लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब, और अब यहाँ प्रार्थना हो रही है इनकी। पर इस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

बस जीत के लक्ष्य तक पहुंचना है चाहे जैसे भी। इन्होंने भी यही कोशिश की थी लेकिन एक ही रेस में दो बार हार गए। देखिए बच्चे ने रेस तो लगाई थी लेकिन सब बहुत आगे निकल गए, इतने कि रेस में शामिल होना मुश्किल था। सो लौट तिपारी के साथ बोली लेकिन ये भी ना हो सका इनसे, पर फिर भी खुश बहुत है। आखिर कोशिश में कोई कमी तो नहीं रखी ना इन्होंने।

0: माँ तो बस माँ है, उसके बराबरी भला कोई कहाँ कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। लोग कह रहे हैं, माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्लोज योर आईज, फोकस, लिसन टू वर्क गेटिंग डन विद monday.com। रिलैक्स एज एआई डज द मैनुअल वर्क व्हाइल योर टीम्स आर अलाइंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। फील द सेंसेशन ऑफ एन एआई वर्क प्लेटफॉर्म, सो फ्लेक्सिबल एंड इंटुइटिव, इट फील्स लाइक इट वाज बिल्ट जस्ट फॉर यू। नोटिस You're limitless. Now open your eyes. Go to monday.com. Start for free and finally, breathe.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

0: चक्र मजबूत हो जाए। किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है? क्या है शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: स्वागत है आपका जयपुर चर्चा में, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज सबसे पहले बात हम करेंगे धुरंधर की, जिसकी आंधी सिनेमा में सुनामी बनकर छा गई धुरंधर पार्ट टू के बाद। अब सवाल ये है कि क्या धुरंधर का तीसरा पार्ट भी आएगा? अब इस सवाल पर फिल्म की को प्रोड्यूसर ने चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आगे बताएंगे।
6: नमस्कार, मैं हूं श्वेता था। देखिए आगे बात उस वैदिक घड़ी की हम करेंगे जिसकी चर्चा इन दिनों जोर शोर से हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी की स्थापना के बाद अब देश के दूसरे मंदिरों में भी इसे लगाने की तैयारी हो रही है। इस खबर पर भी आगे विस्तार से हम बात करेंगे।
5: नमस्कार, मैं शिकुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात यूपी के उस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होगी जहां से उड़ान की तैयारी पूरी है। पहली फ्लाइट की फुल डिटेल भी आ चुकी है, तो नोएडा से आप कहां कहां उड़ान भर पाएंगे इसकी पूरी डिटेल आपको थोड़ी देर में देंगे।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए आगे बात मध्य प्रदेश के उस शहर की भी करेंगे जिसे फुटबॉल की नर्सरी के नाम से पुकारा जा रहा है। फुटबॉल का जुनून यहां एक महाक्रांति में बदल चुका है, तो कैसे एक खेल से बदल रही है मध्य प्रदेश के शहडोल की पहचान, ये भी जानेंगे।
8: नमस्कार, मैं हूं खुशी गुप्ता। बात बीसीसीआई की उस एडवाइजरी की भी करेंगे जहां पर आईपीएल प्लेयर्स और फ्रेंचाइज के लिए काफी सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, क्या रही वजह और क्यों इन्हें मानना है जरूरी, इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर प्रवास पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नव निर्मित श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में की शिरकत, गांव वालों से की मुलाकात। रुद्रप्रयाग से आए श्रद्धालुओं के हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर, सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। बद्रीनाथ में आईटीबीपी ने चलाया स्वच्छता अभियान, तप्त कुंड से ब्रह्म कपाल तक की गई सफाई, अब तक 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। डीआरडीओ के साथ भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड वेपन का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बमों पर भी होगा सटीक निशाना। पहुंचे अमित शाह की शक्ति साधना, प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा अर्चना, देश में सुख समृद्धि के लिए कामना। क्रिकेट मैदान के बाहर भी महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार झारखंड के नंबर वन टैक्स पेयर बने माही। आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फ्राइडे है तो फ्राइडे सिनेमा का डे होता है ना, गुड फ्राइडे। और आज बात होती है फिल्मों की अमूमन, yes. लेकिन धुरंधर जैसी फिल्में जब आती है तो हम पूरे महीने बात करते हैं, पूरे महीने
8: चर्चा
6: चलती है।
7: हम कई महीनों से इनफैक्ट यही चर्चा कर रहे हैं,
6: है ना। तो चलिए पहले कुछ फैक्ट्स बता देते हैं, फिर हम चर्चा कर लेते हैं शगुफ्ता, है ना। तो देखिए जो कुछ फैक्ट्स है वो आपको बता दें। इस साल बड़े पर्दे पर उतरी फिल्म धुरंधर 2 ने अभी तक 1700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, लेकिन इस फिल्म की कहानी जिस जगह खत्म हुई है उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि आदित्य धर अब धुरंधर 3 भी लेकर आएंगे। हाल ही में धुरंधर के प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने संकेत दिए हैं कि साल के अंत में धुरंधर के फैंस को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। शगुफ्ता आपसे शुरू करते हुए, तू तो हमने से सबसे पहले आपने देख लिया।
7: मैंने तो प्रीपेड ही कर डाला। हाँ। मैंने कहा मैं देखने नहीं दूंगी, मैं सबसे पहले जाऊंगी।
6: एग्जैक्टली अब बात हो रही है धुरंधर 3 भी आ सकती है, आनी ही चाहिए या क्या?
7: नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मतलब इट वाज डेड एंड जहां पे सेकंड पार्ट आपने देखा, मुझे लगता है कि अभी तक नहीं देखा। उसके बाद आप बहुत ज्यादा खिंच जाएंगे, अब स्ट्रेच बहुत हो जाएगा। आई थिंक एक स्टोरी का अंत प्रॉपर हो जाता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब अननेसेसरी टचेस मुझे लगता है,
6: बहुत अच्छी बात आपने कही है,
7: नहीं करना चाहिए।
6: हाँ, कि जो चीज एक अच्छी मेमोरी लोगों के पास है वो रहने देनी चाहिए। खुशी आप क्या बोल रहे
8: हैं, पर मुझे लगता है अगर आएगी तो एक्साइटमेंट पूरी रहेगी, फिर चर्चा उसी पर होगी और फिर सब यही बात करेंगे कि धुरंधर 3 अब कितने ड्यूरेशन की है, 5 घंटे 5.5 घंटे। तो मतलब आए ना आए, मुझे लगता है कि अगर आएगी तो सबसे पहले मैं देखने जाऊंगी जरूर।
7: मुझे लगता है कि जैसे हम बाकी फिल्मों का सीक्वेंस देखते हैं ना, 1-2, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा गोलमाल आप ले लीजिए, उसमें ना कॉमेडी होती है, उसमें स्टोरी क्रिएट की जाती है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स के साथ स्टोरी बनाई गई है, या तो आप उन फैक्ट्स के साथ इसको आगे लेकर जाइए, अगर नहीं है तो फिर नहीं बनानी चाहिए। फिर मैं शगुफ्ता आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल अग्री करूंगी।
11: देखिए मुझे नहीं पता आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी या नहीं, कि कुछ दिनों पहले आदित्य धर ने कहा था कि उनके पास जो कुछ भी देने के लिए था ना वो धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में दे चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। तो मुझे यही लग रहा था कि धुरंधर 3 तो नहीं आएगी। खैर अब ये जो खबर सामने आ रही है, मुझे लग रहा है कि इट कैन बी अ स्पिन ऑफ, मतलब पूरी फिल्म नहीं होगी लेकिन उसी फिल्मों के कुछ चीजों को जोड़कर, अंशों को जोड़ करके हो सकता है एक नई फिल्म बना दी जाए, तो उसके लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा।
6: बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शगुफ्ता के साथ ज्यादा ये करती हूँ, मुझे लगता है कि रिलेट करती हूँ कि जो अच्छी चीज आ चुकी है 1 और 2 में हम सबने देख लिया है उसको रहने देना चाहिए। लेकिन हाँ, इससे कुछ बढ़ के कुछ नया कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यू नेवर नो, अगर उनके दिमाग में है तो वो भी आए तो मोस्ट वेलकम। लेकिन फिलहाल जाकर के देखिए, अभी भी धमाल मचाई रही है धुरंधर।

खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र

0: क्या बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी धुरंधर 3? बनेगी पारंपरिक फिल्म या बड़े पर्दे पर होगा नया एक्सपेरिमेंट? कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनती, इतिहास बनाने के लिए बनाई जाती हैं। आदित्य धर की धुरंधर ऐसी ही एक फिल्म है जिसकी फ्रेंचाइजी मतलब धुरंधर के दोनों पार्ट ने 3000 करोड़ की कमाई कर भारतीय सिनेमा के इतिहास में कमाई का कीर्तिमान स्थापित किया है। बड़ी बात यह है कि धुरंधर फ्रेंचाइजी का सफर यही खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये कि धुरंधर 3 को लेकर संभावना अभी बनी हुई है। माना जा रहा है कि साल के आखिर में धुरंधर के फैंस को बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। धुरंधर की प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभी धुरंधर खत्म नहीं हुई है, हम ऑडियंस के लिए इस साल के आखिर तक में एक सरप्राइज लेकर आएंगे, हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद ही धुरंधर 3 को लेकर चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि मेकर्स इस बार सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि पूरा स्पाई यूनिवर्स तैयार करने की प्लानिंग में है और धुरंधर 3 में हमजा की कहानी को एक बड़े लेवल पर दिखाया जा सकता है। हालांकि ज्योति देशपांडे ने ये नहीं बताया कि फिल्म का तीसरा पार्ट आएगा या कोई स्पिन ऑफ फिल्म होगी और असली पेच यहीं पर फंसा है। दरअसल इससे पहले खबर आई थी कि धुरंधर फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर आदित्य धर इस फ्रेंचाइजी को एक नए और अनोखे अंदाज में आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। ये अंदाज कुछ वैसा ही है जैसा आप कभी कभी फिल्मों के आखिर में देखते हैं, मतलब फिल्म का BTS वीडियो यानी फिल्म मेकिंग का बिहाइंड द सीन वीडियो। बताया गया कि अब धुरंधर और धुरंधर 2 के इन अनदेखे BTS वीडियो को फिल्म का रूप देते हुए रिलीज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म की पूरी टीम अब धुरंधर यूनिवर्स की मेकिंग पर आधारित एक खास फिल्म तैयार कर रही है। इस फिल्म में शूटिंग के दौरान के खास पलों को, पर्दे के पीछे की झलकियों और कलाकारों के इंटरव्यू को शामिल किया जाएगा। इसे एक फुल लेंथ फीचर फिल्म की तरह थिएटर में रिलीज किया जाएगा जो इस साल के आखिर तक दर्शकों के सामने आ सकती है। इस खास प्रोजेक्ट में दर्शकों को फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया करीब से देखने का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि दर्शकों को इस साल के आखिर में सरप्राइज क्या मिलता है, एक नई फिल्म के रूप में धुरंधर 3 या फिर BTS वीडियो और इंटरव्यूज को मिलाकर बनी एक नई एक्सपेरिमेंटल डॉक्यूमेंट्री। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हम ना धुरंधर की कहानी की बात कर रहे थे कि 3 आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप इनके किरदारों की बात देखिए जिसमें बहुत से ऐसे किरदार हैं, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अपनी दूसरी पारी खेल रहे हैं, जैसे अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल। तो ऐसे में हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अभी करियर की सेकेंड इनिंग वो लोग।
2: संजय दत्त,
1: हाँ
2: संजय दत्त ने बहुत लंबा,
3: बॉबी देओल, बताओ उन्होंने इतना ज्यादा संघर्ष किया ना शगुफ्ता, इतनी रील्स हैं कि उन्होंने बोला एक टाइम था जब उन्हें कोई भी काम देने को तैयार नहीं था, बट यस एनिमल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज करियर। एनिमल की सफलता के बाद अब वो अपनी सेकंड इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है।
1: आश्रम
3: बोल रहे हैं
4: वो ठीक है, लेकिन जब आश्रम ही आई ना तो उन्होंने अपने आप को जिस तरह से उसमें पोर्ट्रे किया एंड ही वाज द लीड आश्रम में, तो वो एस्टैब्लिश कर गया उसके बाद एनिमल के लिए। तो क्या नहीं कहने,
2: किसी भी कैरेक्टर के साथ अगर आपको प्यार या नफरत हो जाती है ना तो वो सक्सेसफुल हो जाता है ना उस पे। उसके बाद तो नफरत हो गई थी भाई देख के।
1: नहीं वो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि किस्मत कैसे पलटती है इसको, इस नजरिए से देखिए। नीना गुप्ता, उनके पास काम नहीं था, उन्होंने कहा, और उसके बाद देखिए बैक टू बैक उनकी सारी हिट। तो किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा नहीं है कि जवाने में आपका करियर बहुत सक्सेसफुल होगा। होप लूज नहीं करनी चाहिए और करियर की सेकंड इनिंग भी आपको बहुत कुछ दे जाएगी।
3: और खबर क्या है ये भी बता दीजिए नवजोत, तो आपको बता दें कि हम सेकंड इनिंग्स के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बॉबी देओल की नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है बंदर। अनुराग कश्यप की ये फिल्म है, अगर इसका टीजर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए क्योंकि एकदम एज अप्रोप्रिएट वो किरदार इसमें निभा रहे हैं, बेहतरीन ये फिल्म है, देखिए इसमें क्या कुछ खास है।

0: इस धमाकेदार टीजर ने दर्शकों की बेसब्री को और बढ़ा दिया। एक सुपरस्टार का अंदाज और एक रॉक स्टार जैसा स्वैग लिए बॉबी देओल का किरदार इस फिल्म में बेहद जुदा दिख रहा है।
1: समीर मेहरा, थाने चल, बुलाया तेरे को।
2: वो लड़की झूठी है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है।
0: अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। लंबे अरसे से फैंस इस फिल्म की एक झलक पाने को बेताब थे। कल बंदर का टीजर रिलीज हुआ तो फिल्म के लिए फैंस का क्रेज और बढ़ गया और इसके साथ ही सामने आ गया है बॉबी देओल का वो वर्सटाइल अंदाज जो उनके करियर की दूसरी पारी में प्रमुखता से नजर आ रहा है।
2: His most naked performance. He just has to be. Has to play a very normal human being. There's no Bobby Deol. और लिटरली वो रेफरेंस है इस फिल्म में कि बॉबी देओल था 25 साल पहले, अब नहीं है।
0: बंदर के टीजर में बॉबी पुराने जमाने के डिस्को डांसर जैसे लुक में दिख रहे हैं। टीजर की शुरुआत में वो चमचमाती जैकेट में स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं तो टीजर के अगले हिस्से में ही फिल्म में आगे आने वाले ट्विस्ट की झलक भी दिख रही है। टीजर से अंदाजा लग रहा है कि इस फिल्म की कहानी काफी इंटेंस और उलझनों से भरी हुई है। बंदर में बॉबी का किरदार बता रहा है कि वह पर्दे पर हीरो बनकर नहीं एक एक्टर बनकर आ रहे हैं जिसमें एक्टिंग की भूख है। बॉबी की इस भूख को बॉलीवुड ने आश्रम सीरीज के बाद ही पहचानना शुरू कर दिया था जो आने वाली फिल्मों के साथ और बढ़ती चली गई और अब बंदर उनकी इस अदाकारी की भूख की अगली कड़ी है जिसे फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपने अनुभव से और बढ़ा दिया है।
2: बॉबी को ने तो एक बहुत बड़ी बात मेरे को बोली थी कि मैं 40 का था तब पहली बार किसी ने मुझे बोला यार बॉबी तेरे को एक्टिंग सीखनी चाहिए। मुझे किसी ने बचपन से नहीं बोला था कि मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए और फिर उसने वो चीज पे अमल किया। उसने जब आश्रम किया या लव हॉस्टल गया उसने उस तरह के कैरेक्टर के जैसा वो इंसान नहीं है। बोलता है कि मैं ऐसा कैरेक्टर करके आ रहा हूं जिससे होता ना जिसको आपको अपने आप से घृणा हो जाए लेकिन मैंने देखा उसको किस तरह से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट किया मेरा फिर कैरेक्टर करने का मन करता है क्योंकि मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जब तक मैं मिला उनसे तब तक काफी प्रकाश झा शंकर जिन्होंने लव हॉस्टल बनाई या क्लास ऑफ 83 अतुल सबरवाल या एनिमल ये इससे गुजर चुके थे तो मेरे पास एक वो एक्टर आया था जो नया करना चाहता था जो अपने आप के साथ और खेलना चाहता था डिस्कवर करना चाहता था।
0: मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये क्राइम थ्रिलर फिल्म रियल लाइफ घटनाओं और मी टू मूवमेंट से प्रेरित है। इनमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक झूठा आरोप किसी व्यक्ति के पूरे करियर और उसके सम्मान को तबाह कर सकता है। टीजर से साफ झलक रहा है कि बॉबी किसी फेक डेटिंग ऐप के चक्कर में पड़कर जेल पहुंच जाते हैं। अब इन आरोपों को बॉबी कैसे झूठा साबित करते हैं कैसे जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आते हैं यही फिल्म की यूएसपी है। बंदर 5 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है। फिलहाल तो टीजर ने फिल्म में दिखने वाली टेंशन और ड्रामा की झलक दिखाकर दर्शकों की दिलचस्पी तो बढ़ा ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए अक्सर कहा जाता है कि वक्त बड़ा कीमती है, घड़ी देखकर हर काम किया जाता है और अगर घड़ी की सुइयां थम जाए तो सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। अभी के दौर में जो घड़ी हमें सिर्फ वक्त बताती है मगर इस वैदिक घड़ी की भी आपको बताते हैं जहां पर वो वक्त नहीं बल्कि मुहूर्त तिथि वार और नक्षत्र सब कुछ बताती है।
4: यही इसकी खासियत है। कई खूबियों वाली ऐसी एक घड़ी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में लगाई गई है। अब इस तरह की वैदिक घड़ियां द्वादश ज्योतिर्लिंग में भी लगेंगी। अयोध्या के राम मंदिर में वैदिक घड़ी स्थापित करने की भी प्लानिंग है। वैदिक घड़ी लगने का मतलब हर शुभ घड़ी की जानकारी पहले से होगी, हर शुभ मुहूर्त का पता चलता रहेगा। इन्हीं खूबियों की वजह से वैदिक घड़ी को सनातन संस्कृति और खगोलीय ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है।

0: ये वैदिक घड़ी सिर्फ समय बताने का यंत्र नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और खगोलीय ज्ञान का प्रतीक है। हाल ही में बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी स्थापित की गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी भी वैदिक घड़ी को देखने पहुंचे थे। अब काशी की तरह पूरे देश के मंदिरों में वैदिक घड़ी लगाने की योजना है। ये विक्रमादित्य काल की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश है, क्योंकि ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये वैदिक घड़ी सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक की समय गणना करती है और एक दिन को 30 मुहूर्त में बांटती है। प्रत्येक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है, साथ ही नक्षत्र और तिथि जैसी जानकारी भी देती है। दुनिया जानती है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में संसार की पहली वैद्यशाला है। पश्चिमी देशों से पहले उज्जैन से ही समय की गणना होती थी। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं। काल की गणना की वजह से उन्हें महाकाल कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर देश भर के मंदिरों में वैदिक घड़ी लगाने का काम हो रहा है। इसी के तहत वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी स्थापित की गई, जिसका वजन लगभग 700 किलोग्राम है। अब सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में वैदिक घड़ी लगाने की योजना है। इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर में भी वैदिक घड़ी लगेगी। देश के सभी बड़े मंदिरों में ऐसी ही वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी। भविष्य में जब पूरे मंदिरों में ये वैदिक घड़ी बजेगी, तो हर घंटी के साथ सनातन का संदेश घर घर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की।
2: जेवर के
1: मतलब ये नाम ही लेके एक अलग फील आता है ना कि हमारे नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है।
2: थोड़ा पर मुझे
3: इंटरनेशनल फील ही आ रहा है ना वैसे।
2: एक ऑप्शन के तौर पर बड़ा अच्छा दिया है कि हमें एटलीस्ट गुरुग्राम तक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ये कि यहाँ जाना कितना इजी होगा, ट्रैफिक तो उतना ही है। अगर
3: टाइम तो लगेगा ही,
2: टाइम लगेगा,
1: डिस्टेंस देखना होगा।
4: पर ये देखिए ना, आप डेवलपमेंट के तौर पर एक और हमारा आ गया है एयरपोर्ट। अब दिल्ली वालों के लिए तो ऑप्शन है, गुड़गांव की तरफ जाना है या फिर नोएडा की तरफ जाना
2: है। हम देखेंगे कौन सी, लेकिन उससे पहले तो टिकट बुक करनी होगी।
5: दिल्ली मिल जाए पर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, मुझे लग रहा है उसे कम करना जरूरी था। लेकिन जैसे एक दिन आप बोल भी रहे थे ना, जिस दिन इसका उद्घाटन होना था, कि यहाँ से मैं देख रही हूँ टाइम सेम ही दिखा रहा है।
1: लेकिन इसको अगर हमें ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर नहीं, इसको कार्गो हब के तौर पर भी बनाया जा रहा है और एशिया का शायद सबसे बड़ा हब बन रहा है। तो उस तरह से भी देखना होगा। तो आपको बता दें कि बस इसकी शुरुआत होने वाली है। जो पहली फ्लाइट है, हमने खबर भी दिखा दी, लखनऊ से दिल्ली आई, इंडिगो की होने वाली है।
4: देखिए प्रॉफिट उनको होने वाला है जिन्होंने वो जगह है ना वहाँ पर अच्छे से लैंड वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया था, तो एयरपोर्ट बन गया है तो प्रॉफिट
2: लेट हो गया। एंगल भी जोड़ दिया।
1: लेकिन फिलहाल फ्लाइट्स की बात हो रही है तो आपको बता दें, लखनऊ से दिल्ली मतलब नोएडा एयरपोर्ट आएगी पहली फ्लाइट, इंडिगो की होगी, एक घंटे में पहुंच जाएगी ये भी है। और जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब ये खुल रहा है, तो थोड़ा प्रेशर भी कम यहां पर पड़ेगा। और कुछ देखिए क्या कुछ खबरें हैं इससे रिलेटेड।
6: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आम लोगों के सफर का सपना साकार होने जा रहा है। आखिरकार इस नए नवेले एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के परवान भरने में अब बहुत देर नहीं है। इसके लिए एयरलाइन तैयार है और एक तरह से कहें तो फ्लाइट्स का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि वो तारीख तय हो चुकी है जब पहली कमर्शियल फ्लाइट यहाँ लैंड करेगी और फिर टेक ऑफ भी करेगी। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCS की ओर से एरोड्रोम सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी मिलने के बाद ये तय किया गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून से कमर्शियल उड़ान शुरू हो जाएगी। इसके लिए अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस एयरपोर्ट के लिए DXN कोड निर्धारित किया गया है। आप ये भी जरूर जानना चाहते होंगे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कहां कहां किन शहरों के लिए उड़ानें संचालित होंगी, तो आपको बता दें इस एयरपोर्ट पर 15 जून को पहली कमर्शियल फ्लाइट लखनऊ से नोएडा आएगी। नोएडा एयरपोर्ट से वही फ्लाइट बेंगलुरु जाएगी। इसके लिए विमान सुबह 7:05 पर लखनऊ से उड़ान भरेगा और लखनऊ से उड़ान सुबह 8:05 पर नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 8:35 पर उड़ान बेंगलुरु रवाना होगी और सुबह 11:05 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। पहले ही दिन नोएडा से हैदराबाद होते हुए बेंगलोर के लिए कई उड़ानें शेड्यूल की गई हैं। नोएडा से बेंगलुरु के लिए किराया कम से कम 7,721 रुपए होगा। नोएडा और हैदराबाद के बीच किराया करीब 7,000 रुपए हो सकता है, जबकि लखनऊ और नोएडा के बीच किराया लगभग 6,000 से 7,000 रुपए के बीच होगा। इस तरह नोएडा से फिलहाल तो लखनऊ, बेंगलुरु और हैदराबाद की उड़ानें कंफर्म है। जल्द ही यहां से देश के दूसरे शहरों के लिए भी फ्लाइट्स मिलने लगेंगी। इसकी पूरी उम्मीद है। आपको ये भी जानने की उत्सुकता होगी कि फिलहाल किन एयरलाइंस की फ्लाइट्स नोएडा एयरपोर्ट से मिलेंगी, तो ये भी जान लीजिए। शुरुआत में कुछ समय तक इंडिगो एयरलाइंस ही अपनी उड़ानें यहां से संचालित करेगी। इसके बाद जल्द ही अकासा एयर और एयर इंडिया की भी उड़ानें चालू होने की संभावना है। पिछले दिनों यहां से 17 शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव मिला था, जिस पर जल्दी ही फैसला लिया जा सकता है और अपडेट भी आ सकता है। इस बीच एयर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट ने यहां विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता बढ़ाने पर भी काम शुरू कर दिया है। अभी इस एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर हर घंटे 12 विमान टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही इसे बढ़ाकर 20 विमान प्रति घंटा करने की योजना है। आपको बता दें कि पहले चरण में 1334 हेक्टेयर एरिया में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है, साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग और एटीसी टावर भी है। वहीं इस एयरपोर्ट पर 30 एकड़ में कार्गो हब भी बनाया गया है। इस एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 1,20,00,000 यात्रियों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। अब वो घड़ी नजदीक आ रही है जब यहां से घरेलू और कार्गो फ्लाइट शुरू हो जाएंगी और NCR से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच कुछ इलाकों के लोगों को फ्लाइट होने के लिए दिल्ली के IJI एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका समय भी बचेगा और सफर की सहूलियत भी पड़ेगी। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: हम लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, शेर किस किस को नजर आया है? मेरे अलावा नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहा था। और अरमान तो जाहिर सी बात है होगा देखने हाँ, का।
5: मैं वही कह रही हूँ, मुझे तो कान ही दिखाते हैं हर बार, वो पीछे से दिखा देते हैं कि दो कान खड़े और ये। जब बात हो रही थी ना किस किस ने देखा है, तो आपने बोला था कि बस देखने को नहीं मिलते उसके पैरों के निशान।
1: पदचिन्ह हमेशा बताते बस यहीं से गया था।
2: नहीं आपने
1: लेकिन कहते ना जब आप ग्रुप में जाते हैं तो कौन सुनता है आपकी। हाँ, सबको देखना था टाइगर। जब आप पहुंचे तो बताया गया कि दो बच्चे वो आज सुबह इसी जगह से गए थे, तो यही इंतजार करिए, वो यही आएंगे। अरे कहाँ लिखा है कि वो यही आएंगे, और हम इंतजार करते रहे, वो नहीं आए।
2: अब आप अपना लक ट्राई कीजिए अरुणाचल प्रदेश से ही, क्योंकि वहां पर बंगाल टाइगर नजर आया है। तो हो सकता है कि जिन लोगों को जिम कॉर्बेट, रणथंबोर में नहीं दिखा है टाइगर, अगर उनको देखना है तो आप ट्राई कर सकते हैं अरुणाचल में भी।
7: बंगाल टाइगर की इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। दशकों बाद रॉयल बंगाल टाइगर के दर्शन अरुणाचल के जंगलों में हुए हैं। ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि दो दशकों से अरुणाचल में बंगाल टाइगर नहीं देखे गए थे और चिंता जताई जा रही थी कि क्या जंगल के बदले मिजाज ने रॉयल बंगाल टाइगर्स को अरुणाचल के घने जंगलों से दूर कर दिया है। अरुणाचल के जंगल में ये तस्वीर उस वक्त खींची गई जब डंपर ट्रक ड्राइवर्स ने पुराने कोमली घाट रोड पर बंगाल टाइगर को चहलकदमी करते देखा। यही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने बंगाल टाइगर को सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ों की छांव में आराम करते हुए भी देखा। लोगों के अनुसार कुछ देर दिखने के बाद टाइगर वापस जंगल की तरफ चला गया, लेकिन ये तस्वीर सुकून का पक्का सबूत बन गई। कुछ दिन पहले अरुणाचल के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर के पंजे देखे गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब बंगाल टाइगर को इतने पास से देखा गया और उसका वीडियो बनाया गया है। फिलहाल टाइगर के इस दीदार के बाद से अरुणाचल का वन विभाग खुश है। यह बंगाल टाइगर की मौजूदगी इस बात का भी सबूत है कि अरुणाचल के डियरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के जंगलों का इकोसिस्टम अब बेहद हेल्दी है। अरुणाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंगाल टाइगर का दिखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंचुरी 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। ये जंगल लुप्त प्राय बंगाल फ्लोरिकन का भी ठिकाना है, लेकिन करीब 2 दशक बाद यहाँ बंगाल टाइगर का होना इस बात की गारंटी बन गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी के लिए यहाँ पर्याप्त शिकार मौजूद है। अरुणाचल की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जश्न है, लेकिन एक डर भी है, वो ये कि कहीं ये टाइगर आसपास के गांवों पर हमला बोल लाना शुरू कर दे। अरुणाचल के इस इलाके में बंगाल टाइगर की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत सामने आने के बाद वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से रात के समय जंगल की ओर ना जाने की अपील की गई है। रॉयल बंगाल टाइगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। भारत में अभी 3,680 जंगली बाघ हैं, जो दुनिया की कुल बाघ आबादी का करीब 75% माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: चलिए यूपी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूपी के गोंडा जिले में आज मौत और जिंदगी के बीच में एक अनोखी जंग चली। एक गंगा डॉल्फिन भटकते भटकते नहर में जा फंसी, लेकिन तभी उम्मीद बनकर पहुंची एनएमसीजी की डॉल्फिन एम्बुलेंस। यूपी वन विभाग और टीएसए इंडिया की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। डॉल्फिन का ये बचाव आसान नहीं था। 13 घंटे तक लगातार चले ऑपरेशन में टीम ने पानी, कीचड़, समय तीनों से लड़ाई लड़ी और आखिरकार डॉल्फिन को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर उसकी मेडिकल जांच हुई और फिर उसे उसके असली घर राप्ती नदी में दोबारा छोड़ दिया गया।
1: आपको बता दें, इस मिशन में सबकी नजरें डॉल्फिन एम्बुलेंस पर पड़ी। दरअसल ये पानी के जीवों के लिए चलता फिरता आईसीयू है। जनवरी 2026 में ये अनोखी पहल हुई, जिसके तहत अब तक 8 गंगा डॉल्फिन्स की जान बचाकर उन्हें दोबारा नदी में लौटाया गया है। एम्बुलेंस में हर जरूरी उपकरण मौजूद है ताकि रेस्क्यू के दौरान एक भी पल बर्बाद ना हो। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देश में इनकी संख्या बहुत कम है, करीब 6,324 डॉल्फिन ही बची है, इसलिए हर डॉल्फिन की जान बेहद अहम है।
8: फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे मध्य प्रदेश के शहडोल में चल रही है फुटबॉल क्रांति।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र मजबूत हो जाए, किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, क्या हैं शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत Connection.
11: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
12: Jack, come home. It's supper time.
11: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
13: Hey Jack, could you play that one song with the words?
11: Jack FM, playing what we want.
14: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop Check fan on this station. Out. Ready to find your flow?
15: It's your boy,
14: Just
15: Jay-Z.
14: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें
15: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर प्रवास पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ नवनिर्मित श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में की शिरकत, गांव वालों से की मुलाकात। रुद्रप्रयाग से आए श्रद्धालुओं के हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा इसका लाभ। बद्रीनाथ में आईटीबीपी ने चलाया स्वच्छता अभियान, तप्त कुंड से ब्रह्म कपाल तक की गई सफाई, अब तक 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। डीआरडीओ के साथ भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड वेपन का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बमों पर भी होगी सटीक निशान। कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की शक्ति साधना, प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा अर्चना, देश में सुख समृद्धि के लिए की कामना। क्रिकेट मैदान के बाहर भी महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया रिकॉर्ड, बिहार झारखंड के नंबर 1 टैक्स पेयर बने माही, आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए अब एक ऐसे खेल के पनपने की कहानी आपको दिखाएंगे जो एक गांव से शुरू हुई, जहां न केवल फुटबॉल खेल को संस्कृति माना गया बल्कि वो इस गांव में सामाजिक बदलाव की मिसाल बन गया है। ये मध्य प्रदेश का बिचारपुर गाँव है, जहाँ एक तरफ फुटबॉल बच्चों को नशे से दूर रखने में कामयाबी हासिल कर रहा है, तो वहीं इस दौरान सरकारी मदद से इस गांव के 6 हुनरमंद बच्चों को जर्मनी जाने का मौका मिला। ये अपने आप में बेस्ट बात है।
4: 5 हुनरमंद बच्चे,
1: 5
4: 6 नहीं, 5 बच्चे हैं जो अभी फिलहाल जर्मनी जा रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
1: ऐसी मूवी भी, आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ द मूवी, बट देयर इज अ मूवी जहां पर सॉफ्ट बॉल का पूरा कॉम्पिटिशन देश में होता है, फिर वहां से बच्चे चुनकर गांव के बाहर भेजे जाते हैं, उनको बाकायदा ट्रेन किया जाता है। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट।
4: और अच्छी बात यह है कि फुटबॉल
5: बात तो नहीं कर रही,
1: नहीं मैदान नहीं, इट्स इंग्लिश मूवी।
4: अच्छी बात यह है कि फुटबॉल स्पोर्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया फुटबॉल में उतना आगे नहीं बढ़ पाया है, काफी सारे प्लेयर सुनील छेत्री जैसे प्लेयर आए लेकिन फुटबॉल अभी भी उस मुकाम पे पहुंचेगा, तो ऐसे बच्चे अगर फुटबॉल को लेकर आगे बढ़े तो क्या पता इंडिया।
6: हम तो इंडियन फुटबॉल प्लेयर के नाम पे सिर्फ बाईचुंग भूटिया को जानते
3: हैं। स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस गाँव की अगर हम बात करें, शहडोल का जो गाँव है, तो कहते हैं कि नशे में चूर थे ये बच्चे, लेकिन स्पोर्ट्स ने जो काम करके दिखाया है कि अब मिसाल पेश कर दी है इन बच्चों ने।
5: लेकिन एक और चीज देखनी होगी, एक तरह से आपने कहा ना अभी कि फुटबॉल हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में अभी भी उतना लोकप्रिय नहीं है जितना क्रिकेट है। क्रिकेट
4: लोकप्रिय नहीं, शायद प्लेयर्स उतनी हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे,
5: दोनों बातें फैसिलिटीज नहीं है, ओवरऑल उस लेवल पे खेला भी नहीं है। तो दो नाम जानेंगे पुराने लोग, जैसे बाईचुंग भूटिया हम लोग जानते हैं, सुनील छेत्री हाल में अगर देखें तो वो सबसे बड़ा नाम है, वो हम जानते हैं। लेकिन एक और बात खुशी, अगर आप सोशल मीडिया इन दिनों देख लें, दिल्ली एनसीआर और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अकेडमीज में जाके झांके, तो इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं।
4: बैंगलोर
5: दे आर मैड अबाउट इट,
4: गली गली छोटे छोटे से ग्राउंड्स में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं
5: और हर कोई रोनाल्डो या फिर मेसी बनना चाह रहा है।
4: मैं तो मेसी इवेंट कवर करने गई थी, इतने लोग आए, इतना पागलपन, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा कभी देखा ही नहीं, जिस तरह का फुटबॉल को प्यार मिल रहा
5: था। यंग क्राउड इज गोइंग टुवर्ड्स फुटबॉल, ये मानना होगा, इसलिए सरकार को भी आने वाले समय में कुछ करना होगा फुटबॉल के लिए।
4: चलिए फिलहाल आपको ये खबर दिखाते हैं।
7: हिंदुस्तान के नक्शे पर राज्य मध्य प्रदेश, जहां शहडोल का बिचारपुर गांव कभी नशे जैसी एक सामाजिक बुराई के लिए कुख्यात रहा, लेकिन आज यही जगह इन उत्साही युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की वजह से देश जहां में मशहूर हो रही है। बिचारपुर में आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां फुटबॉल खिलाड़ी ना हो, लड़के हों या लड़कियां सुबह शाम मैदान में पसीना बहाते हैं और यही जुनून अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भी ले गया।
8: मध्य प्रदेश का एक छोटा सा इलाका बिचारपुर, जहां पर सबसे ज्यादा नशे का काम होता था, इसलिए वो बदनाम था। लेकिन आज इन बच्चों ने उस जगह का नाम रोशन कर दिया है, पूरी देश दुनिया इन बच्चों को जान रही है, बिचारपुर का नाम जान रही है और जरिया बना है फुटबॉल।
7: दरअसल बिचारपुर में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि इसके पीछे एक लेगेसी है जो पिछली 3-4 पीढ़ी होते हुए इन युवाओं तक पहुंची है और इन्हें सही दिशा में ले जाने का काम रईस अहमद नाम के ये कोच कर रहे हैं। रईस भी कभी फुटबॉल खिलाड़ी रहे लेकिन इस खेल की बेसिक जरूरतों से वो महरूम रहे। ऐसे में वो शिद्दत से चाहते थे कि इन बच्चों की भी प्रतिभा दुनिया के सामने आए, वो सब इनको नसीब हो जो उन्हें नहीं मिल पाया।
9: मैं खुद भी राष्ट्रीय खिलाड़ी था, फिर उसके बाद जब मैंने NIS की ट्रेनिंग लिया तो मुझे लगा कि एक कोच की अहमियत क्या होती है और कुछ मुझे करना है बच्चों के लिए। फिर जो कि हम लोग को उस तरह से कोचिंग नहीं मिल पाई जिससे हम लोगों ने उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, तो मैं ऐसे गांव के बच्चों को तैयार करने की ठानी और वहां पर फिर मैंने 2002 से इनको कोचिंग देना शुरू किया। फिर फुटबॉल के लिए इनको टेक्निकल की जरूरत थी, फिजिकली ये तो ठीक थे, तो टेक्निकल मैंने डेवलप किया इनको ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सकें और फिर इनके छोटे छोटे 5वीं 6वीं के बच्चे लेकर के मैंने काम किया।
7: मिनी ब्राजील नाम से मशहूर बिजारपुर के इन युवाओं को कभी खेल संसाधनों के अभाव से भी जूझना पड़ा लेकिन फुटबॉल को लेकर इन यंगस्टर्स की दीवानगी कभी कम नहीं हुई। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी की जानकारी में जब बिजारपुर की तस्वीर सामने आई तो उन्होंने भी मन की बात कार्यक्रम में इस जगह को फुटबॉल नर्सरी बताया।
10: फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है।
7: इसके बाद ही जर्मन फुटबॉल एक्सपर्ट डाइटमार बेयर्सडॉर्फ ने इन बच्चों को ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया तो कोच की देखरेख में मेहनत, लगन और सरकारी सपोर्ट से 5 हुनरमंद बच्चे जर्मनी से फुटबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर लौटे। इनमें किसी ने स्ट्राइकर, किसी ने डिफेंडर, तो कोई गोलकीपर, कोई मिडफील्डर बनने की ट्रेनिंग लेकर आया। ये सफर इन युवाओं के लिए उनका सपना पूरा होने जैसा रहा।
11: ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते थे तो ये भी नहीं सोच सकते थे कि हम फ्लाइट में कभी जाएंगे। हमें तो ट्रेन में जाने का भी मौका कभी कभार मिलता था और फिर हम फर्स्ट टाइम फ्लाइट पर गए तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम इतने दूर जा रहे हैं, वो भी अपने छोटे से गाँव से, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी वहाँ जाकर।
12: अच्छा लगता है कि हम लोग इतने दूर गए खेलने और हम लोग का नाम इतना चल रहा है मिनी ब्राज़ील, तो फैमिली और गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं कि हम लोग का इतना डेवलपमेंट हुआ वहाँ, मिनी ब्राज़ील को PM मोदी जी ने हमारा नाम इतना वो किया, तो अच्छा लगता है सबको।
13: पहले दिन गए तो हम लोग सर से जो हमारे मेन थे उनसे अब मुलाकात की है, फिर उसके हमारे दूसरे दिन हमारे ट्रेनिंग हुआ, फिर मैं एक डिफेंडर हूँ, फिर हमको डिफेंडिंग जो कैसे करना है और कैसे बॉल बचाना है तो वो सिखा रहे थे।
14: स्टार्टिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, फिर हो गया, अब खेलना था तो खेलना है, तो भले ही शूज नहीं थे लेकिन खेलने चले जाते थे।
7: आज फुटबॉल की ये खेल संस्कृति बिचारपुर गाँव से आगे निकलते हुए पूरे शहडोल में ही कई फुटबॉल क्लब्स के रूप में बढ़ रही है। कभी जिस गांव की पहचान एक बुराई को लेकर थी, आज वही फुटबॉल उम्मीद की नई कहानी लिख रहा है। बिचारपुर गांव के ये बच्चे साबित कर रहे हैं कि जुनून और मेहनत के साथ गांव की मिट्टी से भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल सकते हैं। यकीनन देश में क्रिकेट और हॉकी जुनून के बीच फुटबॉल का ऐसा क्रेज दूसरे प्रदेशों के युवाओं को भी बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित कर रहा है।
8: इन बच्चों को निहार लीजिए, इनके साथ खड़े इनके कोचेस, इनकी टीम के कोऑर्डिनेटर, सबको देख लीजिए, इन चेहरों को याद कर लीजिए। ये चेहरे, ये बच्चे आज पूरी देश के लिए प्रेरणा हैं। ये बताते हैं कि अगर हम उस जगह से आके, जो जगह कभी नशे के लिए मशहूर थी, वो जगह आज उसको लोग मिनी ब्राज़ील बोलते हैं, इन बच्चों की वजह से ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा जैसे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
1: चलिए, ये जो न्यूज़ इस वक्त हम आपको स्पोर्ट्स से जुड़े ही बताने जा रहे हैं ना, इस न्यूज़ में दो तरह के पर्सपेक्टिव ना हमेशा से फॉलो किए गए हैं। खुशी, आई एम श्योर कि आप अग्री करेंगी। BCCI ने IPL को लेकर रूल्स जारी किए हैं। एक तो इसमें ये है कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए लोग आते हैं स्टेडियम में, है ना। दूसरा ये है कि उनको डाइवर्ट करने के लिए भी लोग आते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोनों पर्सपेक्टिव फॉलो करते हैं। एक उसको सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, व्हाट डू यू हैव टू से?
4: बिल्कुल वो तो रहता ही है, लेकिन क्योंकि स्टेडियम में आने में कोई दिक्कत नहीं है. अब जो बीसीसीआई के रूल्स आए हैं वो आपको बता दें, एक एडवाइजरी जारी की गई है जहां पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं फ्रेंचाइज पर और जो प्लेयर्स पर. अब इसकी वजह क्या रही, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि प्लेयर्स से आकर टीम होटल्स में मिलते थे, उनसे लगातार मिलते थे, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन एक तरीके का क्रिएट करता है. जिसके बाद बीसीसीआई देवजीत साइकिया है सेक्रेटरी, उन्होंने आकर ये कहा कि अगर आपको किसी प्लेयर से मिलना है तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन वो देनी होगी टीम आपका जो मैनेजर है उनको, या फिर आपको सिक्योरिटी लाइसेंस ऑफिसर है जिनसे जाकर परमिशन लेनी होगी, उनको पहले ही बताना होगा, लिखित में देना होगा कि हम इस वजह से मिलना चाहते हैं. और ये भी बताया गया है कि जी अगर आपको मिलना है प्लेयर से तो आप जो है वो सिर्फ ओपन एरियाज में यानी कि होटल लॉबी में ही जाकर मिलेंगे. तो ये फ्रेंचाइज और आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं उन पर ये लागू होगी ये एडवाइजरी जो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने बताई है. पूरी खबर क्या है आप लोग देख लीजिए.
1: हाँ, और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कोई भी बिना अनुमति होटल रूम तक अब नहीं जाएगा. मेहमान सिर्फ होटल लॉबी या फिर पब्लिक एरिया में ही मुलाकात कर पाएंगे. बीसीसीआई की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, टीम मैनेजर की अनुमति के बिना निजी कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत अब नहीं मिलेगी. बीसीसीआई को सुरक्षा, एंटी करप्शन से जुड़े हुए खतरे का अंदेशा था, जिसके चलते ये नई एडवाइजरी जारी की गई है.
5: आपको बता दें होटल छोड़ने से पहले सिक्योरिटी ऑफिसर की मंजूरी जरूरी होगी. बाहर जाने से पहले सिक्योरिटी ऑफिसर को बताना भी आपको होगा, यानी कि अगर प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं तो उन्हें बताना होगा. टीम से जुड़े हर सदस्य के हर मूवमेंट का रिकॉर्ड होगा तैयार, तो यानी तमाम जानकारी वहां मैनेजर को होनी जरूरी है. आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सभी चीजें.
3: संगीत की दुनिया में एक भारतीय बेटी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. देखिए, बहुत ही कम उम्र में 44 वाद्य यंत्र बजाने वाली नियति ने इतिहास रच दिया है.
4: बिल्कुल, आपको बता दें 44 वाद्य यंत्रों को बजाने वाली नियति ने इसी के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कर लिया है. उन्होंने महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों की पहचान कर प्ले किया है.

0: संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है।
1: instruments याद किए along with their basics and last में जाके second November 2025 पर मैंने 1 minute के अंदर randomize करके 74 instruments recognize किए।
2: 74 musical instruments को उन्होंने पहचाना है सिर्फ 1 minute के भीतर। सिर्फ पहचाना नहीं है बल्कि उनके बेसिक्स भी बताए हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए होता है, कैसे बजता है, कैसे काम करता है।
0: नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी माँ ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्त्रोत बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया।
3: उठती हूँ और 4 बजे से लेके मेरे पास पूरे दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि नियति को स्कूल छोड़ना, लेके आना इसकी म्यूजिक क्लासेस के लिए, फिर और इसके प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं उसमें सब में, और मेरा अपना ऑफिस का वर्क भी रहता है और घर की जिम्मेवारियां तो हैं ही हैं, तो उसमें मेरे को पूरे दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कुछ इसके बियॉन्ड मैं सोच पाऊँ मेरे पास समय नहीं है। संघर्ष साकार होते वो नजर आ रहा है कि मतलब मैंने जो इतना एफर्ट्स किए हैं कि नियति कुछ बन पाए, अपनी जगह समाज में बना पाए, उसके लिए मैंने पूरे एफर्ट्स किए थे। और आज लग रहा है जब लोग आके हमसे पूछते हैं कि आपने, आपके बच्चे ने इतना अचीव किया, तो बहुत खुशी होती है।
0: संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही है।
1: प्रिंट आउट लेके स्कूल में जाके याद करती थी और मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को बहुत इनकरेज किया एंड हेल्प किया सब कुछ याद करने में, बेसिक्स याद करने में। एंड एग्ज़ाम्स थे तो पढ़ाई भी थी, तो उसके साथ पढ़ाई को भी अच्छे से समय देना था।
2: गिनीज का रिकॉर्ड भी आ गया, स्कूल का रिजल्ट भी आ गया। कितने परसेंट मार्क्स है?
1: 96% इन क्लास 9th।
2: 96% मार्क्स आए हैं, उसके साथ गिनीज का रिकॉर्ड आया है। आप सोचिए कि नियति कितनी टैलेंटेड है और कितनी डेडिकेटेड है उस काम के लिए जिस काम को वो करती है।
0: बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे।
4: चलिए हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे मेट गाला के बाद दिखा पेट गाला का जलवा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: देखिए, डायमंड्स के ऑक्शन हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहती है। ऐसे ही एक ऑक्शन है सोदबीज स्प्रिंग ऑक्शन।
8: जी देखिए, अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि इस ऑक्शन के दौरान इस बार एक रेयर ब्लू डायमंड नीलामी के लिए रखा गया। अपनी चमक और कीमत की वजह से ये हीरा सभी का ध्यान खींच रहा है।
9: डायमंड और उसकी कीमत ने हमेशा ही दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरी है और लोगों को हैरान किया है। इस बार सोथबीच की स्प्रिंग ऑक्शन भी दुर्लभ ब्लू डायमंड के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिनेवा में होने वाली इस ऑक्शन में इस बार एक फैंसी विविड ब्लू ग्रेड हीरा शामिल किया गया है और उम्मीद है कि इसकी नीलामी 12 मिलियन डॉलर यानी 1,20,00,000 रुपए तक जा सकती है। यह हीरा दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक कुलिनन हीरा खदान में से निकला है। यह अनमोल हीरा 6 कैरेट का है और रंगीन हीरो में से दुर्लभ वेराइटी में से एक है। यह हीरा अंदर से पूरी तरह बेदाग है और न ही इसमें कोई अशुद्धि है, जिसकी वजह से ये विशेष रूप से दुर्लभ पत्थरों में शुमार है। इस हीरे के साथ सोथबीच की स्प्रिंग ऑक्शन में सिंगर रिहाना का एक बेशकीमती मल्टी पीस सेट डिजाइन सेट भी शुमार है। ये सेट मशहूर स्विस लग्जरी ब्रांड चोपार्ड के सहयोग से डिजाइन किया गया है। इसे पहली बार 2017 में कांस रेड कार्पेट पर पेश किया गया था। ये सेट चमकीले रंग के कीमती पत्थरों का मिश्रण है, कलाकार की कैरेबियन जड़ों से प्रेरित है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: चलिए आपको दो ऐसी बहनों से मिलवाते हैं जिनके लिए उम्र महज एक नंबर है। 70 साल से ऊपर की ये महिलाएं जिन्होंने हाल ही में केदारनाथ यात्रा को बेहद उत्साह के साथ पूरा किया है। इससे पहले ये दोनों बहनें हिमाचल प्रदेश में किन्नौर कैलाश की कठिन यात्रा कर चुकी हैं। इनके सपने को सोशल मीडिया पर लोग सलाम कर रहे हैं।
4: बिल्कुल, आपको बता दें कि इन दोनों बहनों से मैं भी मिल चुकी हूँ यहाँ पर केदारनाथ यात्रा के दौरान। और आपको क्या बताएं, इन लोगों ने खुद ही मुझे बताया कि माउंटेनियरिंग, यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। बकायदा इनका सपना था और ये एक बार नहीं केदारनाथ, ये पहली बार पहले भी आ चुकी हैं। और जितने भी पीक्स हैं इनको दूर दूर जाना, पूरे दुनिया में घूमना, इसका बड़ा शौक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, इनसे मिलने के बाद, इनको देखने के बाद मुझे भी लगा था कि आज के समय में हम 2 कदम चलते हैं, कई लोग सांस फूलने लगती है, दिक्कत होती है, बट दे वेयर सो फिट। ये इतनी फिट थी थ्रू आउट, मैंने इनको देखा, गौरीकुंड में इनसे मुलाकात हुई और उसके बाद जो पूरी चढ़ाई है, इन लोगों ने कोई हेलीकॉप्टर नहीं किया था, कोई चॉपर नहीं किया था, बकायदा 15 से 16 किलोमीटर का ट्रैक जो कि खड़ी चढ़ाई होती है सीधे केदारनाथ के लिए, ये दोनों बहनें इसी तरह से मुस्कुराती हुई चलती हुई वहां पहुंची थी।
8: फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी बाकी हैं।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: देखिए, आपने हाल ही में मेट गाला देखा, इंस्टा वाला मेट गाला भी देखा होगा, अब आपको दिखाते हैं पेट गाला। या ये भी इंटरेस्टिंग है, इस फैशन इवेंट ने फिलहाल तो इंटरनेट पर धूम मचा दी है, जिसमें अलग अलग ब्रीड के डॉग्स और कैट्स की फैशन परेड यहाँ पर निकाली गई।
3: बिल्कुल, मेट गाला जहाँ फैशनेबल अंदाज में तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं वो नजर आए, वहीं कुछ ऐसा ही फैशन फील लिए पेट गाला भी आपको खूब एंटरटेन करेगा।
2: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर वीकेंड। मंडे मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
3: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
2: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
4: You're listening to MSNBC.
2: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
5: खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र मजबूत हो जाए, किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, क्या हैं शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर प्रवास पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, नवनिर्मित श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में की शिरकत, गांव वालों के साथ की मुलाकात। रुद्रप्रयाग से आई श्रद्धालुओं के हेल्थ केयर से जुड़ी हुई अच्छी खबर, सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का लोकार्पण किया, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा इसका फायदा। बद्रीनाथ में आईटीबीपी ने चलाया स्वच्छता अभियान, तप्त कुंड से ब्रह्म कपाल तक की गई सफाई, अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। डीआरडीओ के साथ भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड वेपन का किया सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बमों पर भी होगा सटीक निशाना। कोलकाता पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह की शक्ति साधना, प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर

0: काली मंदिर में की पूजा अर्चना, देश में सुख समृद्धि के लिए कामना की। क्रिकेट मैदान के बाहर भी महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया रिकॉर्ड, बिहार झारखंड के नंबर वन टैक्स पेयर बने माही, आयकर विभाग की ओर से दी गई ये तमाम जानकारी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे भारत के भव्य इतिहास का वो अध्याय जिसे आज से 75 साल पहले लिखा गया था, वो अध्याय जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो गौरवशाली अध्याय ना मिटा ना हल्का हुआ। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसके लोकार्पण को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के बाद आई पहली दीपावली के मौके पर सरदार पटेल ने सोमनाथ में सागर तट पर खड़े होकर मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी। जल्द ही ये प्रतिज्ञा फलीभूत हुई, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 4 साल में मंदिर बनकर तैयार हो गया। आखिरकार 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। वो तारीख थी 11 मई 1951 की। आने वाली 11 मई यानी सोमवार के दिन उस भव्य उत्सव को 75 साल पूरे हो जाएंगे और उसी की याद में सोमनाथ में एक बार फिर से अमृत उत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसका हिस्सा 11 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे और सोमनाथ धाम में आस्था रखने वाले असंख्य शिव भक्त भी।

0: हडेगास था और सनातन स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम में सोमनाथ अमृत महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सोमनाथ धाम में भव्य और दिव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 2026 का साल सोमनाथ मंदिर के इतिहास में कई अहम पड़ाव लेकर आया है। पहले इसी वर्ष जनवरी महीने में इस पवित्र मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण और उसके बाद भी मंदिर के अडिग रहने को 1000 साल पूरे हुए और अब सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे होने का अवसर आ रहा है। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण हुआ था। 2026 की 11 मई यानी आने वाले सोमवार को भगवान सोमेश्वर के वर्तमान स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे हो जाएंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैभव का प्रतीक ये धाम अपने पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का गौरवशाली उत्सव मना रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। 11 तारीख को मुख्य उत्सव से पहले मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है।
1: सोमनाथ मंदिर में लिंग की प्राण प्रतिष्ठा को 75 साल 11 मई को पूरे हो रहे हैं। वो दिन अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की, जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, वो आएंगे और पूजा करेंगे। और आज तारीख 8 से लेकर 11 तक के 4 दिनों में वहाँ यज्ञ होगा, मंत्रोच्चार होगा, मंत्र लेखन होगा, कई लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। इस तरह धार्मिक एवं अन्य तरीके से ये अमृत महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं।
0: तय कार्यक्रम के अनुसार 11 मई को सुबह 10 बजे पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां पर हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और विशेष पूजा करेंगे। फिर मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। पूजा और यात्रा के बाद पीएम मोदी सोमनाथ धाम क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ के पुनर्निर्माण के इतिहास पर बात करेंगे।
2: यही जो वो रास्ता है जो 1 किलोमीटर का, यहीं पर प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। दोनों तरफ लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो देश के नृत्य है वो डांस का आयोजन भी किया गया है। बंगाली परिवार है वो भी प्रधानमंत्री का इसी रोड शो में स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन और पूजा करेंगे महादेव की। इसके अलावा यहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया है, जो पहली बार सोमनाथ मंदिर में इस एयर शो का आयोजन किया गया है।
0: 1000 साल की यात्रा में ये एक और मील का पत्थर है। सोमनाथ मंदिर का अमृत उत्सव उन लोगों के लिए और भी खास है, जो मंदिर निर्माण से लेकर इसके पुनरुत्थान की यात्रा का साक्षी प्रथम पंक्ति से रहे हैं। नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों में से एक हैं। वे देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। मंदिर के लोकार्पण की स्वर्ण जयंती के समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री के तौर पर वे अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। इस अवसर पर एक लेख के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार ये यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूँ, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। वास्तव में सोमनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी 1000 साल से भी ज्यादा का इतिहास, विनाश, अटूट आस्था और पुनरुत्थान की अद्भुत गाथा है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप की भव्यता अद्भुत है, लेकिन और भी अनोखी है मंदिर के स्वरूप में ढलने तक की यात्रा। इस यात्रा को दशकों से करीब से देखते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार भास्कर वेद अब 85 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो दिन उनकी स्मृतियों में आज भी ताजा है जब 10 साल की उम्र में वो पिता की उंगली पकड़कर मंदिर के लोकार्पण उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे।
3: जब मंदिर पुराना मंदिर था जिसका फोटोग्राफ अवेलेबल है, उस समय मैं अपने फादर के साथ एक गांव में एक उत्सव मनाता, इसी दिखाते के लिए मुझे उंगली पकड़ कर ले आए थे, और मैं उस मंदिर के पुराना मंदिर जो फोटोग्राफ में देखते हैं वहाँ उसकी जगह पर सिर्फ खाड़ा था, गड्ढा था जिसमें कोई मूर्ति मूर्ति थी नहीं, पर हरेक स्थल उस जगह पर भी कुछ पानी चढ़ाकर, कुछ चंदन चढ़ाकर, कुछ गलाल छांट कर भगवान उसमें ही ऐसा महसूस कर उसकी पूजा तो करते ही थे।
0: एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज सोमनाथ धाम के स्वर्ण मंडित गर्भगृह में पूरी शान से विराजे हैं सोमेश्वर महादेव। कभी जिस मंदिर की दुर्दशा देखकर सागर का खारा जल सरदार पटेल की आंखों में उतर आया था, आज मंदिर को इस रूप में देख पाते तो शायद भावों के अतिरेक में आज एक बार फिर उनकी आंखें भीग जाती।
3: अब तो 75 साल हो गए मंदिर को पूर्ण हुए, तो इतना बदलाव है, तो जिसने मंदिर की पुनरुद्धार किया उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे ड्रीम से भी पार कोई अच्छा मंदिर बन गया, जिसे राष्ट्र के सम्माननीय व्यक्तियों उसके साथ जुड़ी है, श्रद्धालु व्यक्ति जुड़ी हुए, और देश विदेश से विदेश में से भी आने वाले जुड़ते हैं, साधु संत जुड़ते हैं।
0: आज सोमनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 125 करोड़ को पार कर चुकी है। कभी जो चढ़ावे की रकम लाखों में गिनी जाती थी आज 1 अरब के आंकड़े को छू चुकी है।
1: आज से 15 साल पहले मंदिर की आमदनी 8 करोड़ थी, आज 118 करोड़ है। तब 25 लाख लोग आते थे, आज 125 करोड़ लोग सालाना आ रहे हैं। तो अभी जो 75 साल आए हैं ये एक ऐसा लैंडमार्क है जिसके सेलिब्रेशन से सारे विश्व में एक नया संदेश जाएगा।
0: सोमनाथ धाम के निर्माण की इसी यात्रा को मनाने का पर्व है अमृत महोत्सव। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि सोमनाथ धाम की वर्तमान भव्यता को देखते हुए आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अमृत महोत्सव के अवसर पर अगले 50 सालों के लिए मंदिर में सुरक्षा और सुविधा से जुड़े इंतजामों को बेहतर बनाने की योजना पर भी काम किया जाएगा।
1: आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद, और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था, और आज 1500 से ज्यादा कलश हैं, वो सब सुवर्ण मंडित होने से एक नए प्रकार की एक भव्यता और दिव्यता का लोगों को एहसास करा रहा है। इसलिए 75 साल पे जो ये काम हो रहा है उसमें यात्रियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा एवं मंदिर की सुरक्षा हर पहलू को ध्यान में लेते हुए अगले 50 साल में जो भी हो सकता है वो अभी से उसके करने की शुरुआत कर रहे हैं।
0: एक सहस्राब्दी का इतिहास गवाह है कि हर विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ, ये संदेश देते हुए कि महादेव की आस्था अमर है, सनातन अडिग है, सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष और अमृत महोत्सव उसी आस्था का भव्य उत्सव है जिसमें सारा सोमनाथ क्षेत्र एक बार फिर से मगन दिख रहा है। सोमनाथ से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारत के गौरवशाली इतिहास में दर्ज आस्था की अनुपम धरोहर है सोमनाथ मंदिर। एक ऐसी धरोहर जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। लेकिन इतिहास से परे सनातन धर्म में सोमनाथ मंदिर का अलग ही महत्व है। इसकी कहानी जुड़ी है सोमदेव यानी चंद्रमा से, जिनके नाम पर महादेव स्वयं यहाँ सोमनाथ कहलाते हैं। एक ऐसा वैभवशाली और अद्वितीय मंदिर जिसकी भव्यता के किस्से विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों को भारत तक खींच लाए।

0: सौराष्ट्र के प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर के तट पर आस्था की लहरों के बीच शान से विराजमान हैं सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से लगाव था। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के श्राप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और श्राप से मुक्ति पाई। श्राप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ वहीं रह जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। अपने निर्माण से लेकर कई शताब्दियों तक प्रभास तीर्थ क्षेत्र में शान से सर उठाए खड़ा रहा सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर। अपने अद्भुत वैभव और अकूत संपदा के साथ अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता का वर्णन विस्तार से किया है। लेकिन फिर आई 11वीं सदी। उस दौर में समय की आंखों ने वो मंजर देखा जो भारत की पावन धरती पर कभी नहीं देखा गया था। विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया सोमनाथ के वैभव का वर्णन गजनवी जैसे लुटेरों को हिंदुस्तान की चौखट तक खींच लाया था।
1: प्रथम विध्वंस के आक्रमण के पहले ये भव्य शिवालय की बहुत दूर देशों तक प्रसिद्धि थी, क्योंकि उनकी मंदिर की जो घंटियां थी उनमें सबसे बड़ी घंटी थी उनका वजन 2 मन 40 किलो था। उनकी जो सांकड़ तंबी थी वो करीबन 4000 किलो सोने से बनी सांकड़ थी। तो इतना वैभव इस सोमनाथ मंदिर के पास था। तो विध्वंसकारी आक्रमणकारी वर्ग सोचा कि इतना धन हमारे पास हो तो को केवल इसी धन की पिपासा ने उन लोगों ने इस मंदिर पे आक्रमण करने की योजना बनाई।
0: पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच, क्रूरता और रक्तपात से सोमनाथ क्षेत्र का सीना छलनी होने वाला था। जो सोमनाथ मंदिर 11वीं सदी तक भारत की भूमि पर सागर के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, सन 1026 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। उस घटना को 1000 साल बीत चुके हैं। गजनवी ने न केवल मंदिर को तहस नहस किया बल्कि गजनवी मंदिर में मौजूद सोनी चांदी का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेता गया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया गया, पहले से भव्य, पहले से दिव्य।

इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए हैं।

आज सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र का विस्तार कर इसे विराट रूप दे दिया गया है। मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में करीब 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई के बनाए प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का भी पुनर्निर्माण करवाया है।

0: आज यदि आप सोमनाथ मंदिर के प्रांगण को देखें, तो यकीन नहीं कर पाएंगे। विध्वंसक इतिहास के थपेड़ों का एक भी निशान यहाँ आज बाकी नहीं दिखता। सोमनाथ मंदिर अगर दिन में सोने सा दमकता है, तो रात में लाइट एंड साउंड शो के दौरान मंदिर की छटा और भी अद्भुत हो जाती है। यानी एक प्रमुख धर्मस्थल होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर अब पर्यटन, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा संगम बन गया है। सोमनाथ प्रांगण में दूर से ही दिखाई दे जाती है मंदिर को निहारते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार पटेल ने ही आखिरी बार मंदिर को फिर से बनवाने की शुरुआत की थी। आज मौजूद सोमनाथ मंदिर देश को उन्हीं की देन है। मंदिर का ये स्वरूप कभी साकार न हो पाता अगर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन वो प्रतिज्ञा न ली होती। 13 नवंबर 1947 को एक विशेष ट्रेन के कोच में सवार होकर पहले जूनागढ़ और फिर वहां से सोमनाथ पहुंचे थे सरदार पटेल। आजादी के बाद वो पहले बड़े नेता थे जो मंदिर की उस खस्ता हालत को देखने पहुंचे थे। मंदिर की हालत देखकर सरदार पटेल को बेहद ठेस पहुंची थी। उसी दिन मंदिर के पीछे समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर लौह पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण होकर रहेगा। सरदार पटेल मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। गांधी जी ने मंदिर के लिए जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया और देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के दादा पद्मश्री प्रभा शंकर सोमपुरा को मंदिर का आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया और 1951 में चालुक्य वास्तुकला शैली में बनकर तैयार हुआ भव्य सोमनाथ मंदिर। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर ने फिर से अपनी भव्यता को प्राप्त कर लिया। वो समारोह ऐतिहासिक था जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि बनने और मिटने के इस सदियों पुराने सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति और इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुंचते रहे। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के वार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं, बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ। गिर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज के हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी है, देखते रहिए जीएनटी।
2: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams, Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
4: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे

0: खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र मजबूत हो जाए, किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, क्या हैं शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Your Saturday nights will never be the same.
3: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
4: The Tailgate Block Party.
2: The Tailgate Block Party.
3: 6 hours non-stop. Non-stop.
4: The best DJs from around the world.
2: The Tailgate Block Party.
3: Saturday night.
2: 8 p.m. Eastern.
4: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
3: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर प्रवास पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। नवनिर्मित श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में की शिरकत, गांव वालों के साथ की मुलाकात। रुद्रप्रयाग से आई श्रद्धालुओं के हेल्थ केयर से जुड़ी हुई अच्छी खबर, सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा फायदा। बद्रीनाथ में आईटीबीपी ने चलाया स्वच्छता का अभियान, तप्तकुंड से ब्रह्म कपाल तक की गई सफाई, अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। डीआरडीओ के साथ भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड वेपन का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बमों पर भी होगा सटीक निशाना। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक, बीड की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से स्वागत, 500 में से 500 नंबर लाकर बढ़ाया मान। क्रिकेट मैदान के बाहर भी महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया रिकॉर्ड, बिहार झारखंड के नंबर 1 टैक्स पेयर बने माही, आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए चरम पर है श्रद्धालुओं का उत्साह, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में उमड़ रहे सबसे ज्यादा श्रद्धालु, कल 17,575 यात्री पहुंचे धाम। इस साल अब तक 3,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी। चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके पंजीकरण, जीएमवीएन के विश्राम गृहों में अब तक 9 करोड़ की हो चुकी बुकिंग। 50 साल से ज्यादा आयु वाले श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर पर जांच करवाना जरूरी, तीर्थयात्रियों से धामों में स्वच्छता बनाने में सहयोग करने पर आग्रह। केदारनाथ धाम में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अस्पताल का किया लोकार्पण, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को मिलेंगी सुविधाएं, ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में उमड़ रहे सबसे ज्यादा श्रद्धालु, कल 17,575 यात्री पहुंचे धाम। इस साल अब तक 3,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी। चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके पंजीकरण, जीएमवीएन के विश्राम गृहों में अब तक 9 करोड़ की हो चुकी बुकिंग। 50 साल से ज्यादा आयु वाले श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर पर जांच करवाना जरूरी। तीर्थयात्रियों से धामों में स्वच्छता बनाने में सहयोग करने पर आग्रह। केदारनाथ धाम में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अस्पताल का किया लोकार्पण। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को मिलेंगी सुविधाएं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस इस अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती। केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित सुगम बनाना इसका मकसद है। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, लेख विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश। गर्मी की छुट्टियों में दक्षिण भारत घूमने का शानदार मौका। IRCTC ला रहा 11 दिन का स्पेशल टूर पैकेज। 26 जून से शुरू होने वाली यात्रा में तिरुपति रामेश्वरम कन्याकुमारी के करवाए जाएंगे दर्शन। ऋषिकेश से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। IRCTC के नए टूर पैकेज में ट्रेन सफर होटल और खाने की पूरी सुविधा शामिल है। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के इच्छुक लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। रेलवे ने 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए चलाई विशेष ट्रेन। 12 जून को चलेगी ये ट्रेन। भारत की रक्षा ताकत को मिली एक और बड़ी कामयाबी। DRDO और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट पर स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का सफल परीक्षण किया। एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है तारा, जो अनगाइडेड वॉरहेड्स को सटीक गाइडेड हथियार में बदल देती है। भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है तारा। देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को मिली नई मजबूती। तारा के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। उत्तराखंड की पौड़ी से आई शानदार तस्वीर। महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य के महाविद्यालय के ओपन जिम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम साथ में जिम करते नजर आए। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी। 92% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास। महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में लड़कियों ने मारी बाजी। अकोला में ढोल नगाड़े पर झूमे विद्यार्थी। महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड परीक्षा में बीट की बेटी का कमाल सिद्धि ने 10वीं में हासिल किए 100% अंक। सिद्धि के घर में जश्न का माहौल। लोगों ने बिटिया पर बरसाए फूल मिठाई खिलाई। गाजियाबाद में पंडित गोपाल पुजारी की सराहनीय पहल। श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 1 रुपए में करवा रहे भोजन। उत्तराखंड के दौरे पर अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। विष्णु मंदिर

0: में की पूजा अर्चना। वैदिक मंत्रों के साथ गुंजा हरि विष्णु पंचदेव मंदिर परिसर। मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान गणेश, महादेव, आदिशक्ति मां दुर्गा, संकट मोचन हनुमान की मूर्तियां एक साथ। पंजोर में सीएम योगी ने बच्चों के साथ की मुलाकात, अपनों, परिजनों और ग्रामीणों के साथ की मुलाकात। जयपुर में सेना का महामंथन, नई डोमेन में सैनिक क्षमता बैठक की थीम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी पहुंचे। ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कॉग्निटिव वॉरफेयर और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जमकर मंथन हुआ। दिल्ली के स्कूलों का सीएम रेखा गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ पानी को लेकर अधिकारियों को निर्देश। क्लासरूम में सीएम रेखा ने बच्चों के साथ की बातचीत, साफ पानी से लेकर साफ सफाई के आदेश। गुजरात के गांधीनगर में इंडिया एयरक्राफ्ट लेजेंड और फाइनेंसिंग समिट 2.0 का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे। अखरू घाट के सौंदर्यकरण के लिए करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी, घाट पर बनेंगे प्लेटफॉर्म, सीढ़ियां समेत कई आधुनिक चीजें। मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं, इस घाट का होगा कायाकल्प। श्रीनगर में देखने को मिल रही फूलों की बहार, बागवानी विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पौधे बांटने की मुहिम शुरू की। जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की पहल से श्रीनगर में रंग बिरंगे फूलों की खेती को मिल रही नई रफ्तार, लोगों को मुफ्त में पौधे दिए जा रहे। श्रीनगर के बाग बगीचे इन दिनों फूलों के साथ महक उठे, बागवानी विभाग की नई पहल रंग ला रही। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बनाई गई शानदार रंगोली, इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर सेना सुरक्षा बलों के शौर्य को सलामी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने पर बीएसएफ ने वॉकेथॉन का आयोजन किया, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर इंडियन आर्मी ने चुशूल में 15,000 फीट की ऊंचाई पर एथलेटिक्स से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, युवाओं ने हिस्सा लिया। इस पहल ने युवाओं को शारीरिक फिटनेस, सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करने का प्रेरित किया, छात्रों ने दिखाया अपना हुनर। राजस्थान में कोटा के युवा कराटे खिलाड़ी अनुराग ने एक बार फिर से शहर का नाम रोशन किया, भोपाल में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे टूर्नामेंट में जीता सिल्वर। ओडिशा के कटक में देश की पहली सुपरफ्लेक्स लाइन का शुभारंभ हुआ, इससे देश में कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के जामनगर में निकली अनोखी बारात, घोड़े की जगह दूल्हे ने की हाथी की सवारी। अगले 48 घंटों में 12 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, वहीं राजस्थान में 13 मई तक लू चलने की संभावना। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में अब दिन के समय होगी गर्मी महसूस, 40 डिग्री के करीब पहुंच सकता है पारा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 8 से 13 मई के दौरान आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, ये बदलाव नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का संकेत। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा और जगह पर बारिश की संभावना। फिल्म फ्राइडे पर सिनेमाघरों में कॉमेडियन कपिल शर्मा और नीतू कपूर की फिल्म दादी की शादी ने दी दस्तक, इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर रही वृद्धिमा कपूर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म में एक्टर नहीं हूं बड़े पर्दे पर हुई रिलीज, रिटायर्ड कश्मीरी बैंकर की कहानी है ये। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर धुरंधर 2 के दीवानों के लिए गुड न्यूज आई है, को प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने दिए संकेत, इस साल के एंड में आ सकती है धुरंधर फ्रेंचाइजी की एक और फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का जलवा बरकरार, 150 करोड़ रुपए का फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। सुपरस्टार रितेश देशमुख की लेटेस्ट मराठी फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर कर रही अच्छी कमाई, सातवें दिन इस मूवी ने करीब 4 करोड़ का कलेक्शन किया। एक्टर संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल का धमाकेदार ट्रेलर आउट, विवादित मुद्दों को उठाती है ये फिल्म, 15 मई को रिलीज होगी। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन का पोस्टर जारी, सुपर हीरो दादा के किरदार में अभिनेता जैकी श्रॉफ, फिल्म 29 मई को आएगी। आशा भावनाओं से भरपूर कृष्णा और चिट्ठी का टीजर और दर्शकों के दिलों को छू गया ये टीजर। 3 जून को होगा एक्टर रामचरण स्टार स्पोर्ट्स ड्रामा पेड्डी का प्रीमियर। फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एक्ट्रेस जानवी कपूर नजर आएंगी। माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम ने थिएटर्स में छोड़ी छाप। भव्यता पर भारी पड़े भाव। भगवान कृष्ण के रूप में सिद्धार्थ गुप्ता की एक्टिंग की तारीफ। इमरान हाशमी दिशा पाटनी स्टार आवारापन 2 पर बड़ा अपडेट। पेन मधुर ने खरीदे आवारापन 2 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। कांस फिल्म फेस्टिवल में फिर दिखेगा बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन आलिया भट्ट अदिति राव हाइड्री रेड कार्पेट पर नजर आएंगी। बोले धुरंधर 2 के एक्टर सुविंदर विक्की 20 साल पहले ओटीटी होता तो मैं आज हीरो होता। और 2026 टूर में अपने गीतों से जलवा बिखेर रहे सिंगर दिलजीत दोसांझ सोशल मीडिया पर वीडियो किया पोस्ट। फैंस को कहा थैंक यू। दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप बनी डेजर्ट वॉरियर। 1400 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने सिर्फ 6 करोड़ कमाए। जिनेवा में क्रिस्टीज में होने जा रही ऐतिहासिक नीलामी। द ओशन ड्रीम नाम का हीरा बना आकर्षण का केंद्र। करीब 100 करोड़ रुपए तक है ब्लू डायमंड की नीलामी की कीमत। इस ब्लू ग्रीन डायमंड को बताया जा रहा दुर्लभ। हीरे की नीलामी में टूट सकता है साल 2014 का रिकॉर्ड। 80 करोड़ रुपए से ज्यादा लगी थी उस वक्त बोली। ऑक्शन में संगीत की दुनिया के दिग्गज क्विंसी जॉन्स के निजी कलेक्शन को भी किया जाएगा पेश। उनकी विरासत से जुड़ी चीजें भी नीलाम होंगी। स्प्रिंग ऑक्शन में देखेगी ऐतिहासिक घड़ी। साल 1981 की डिजाइनर वॉच बनेगी लोगों के आकर्षण का केंद्र। मेक्सिको सिटी की सड़कों पर बीटीएस का जादू सिर चढ़कर बोला। स्टेडियम के बाहर हजारों फैंस लगे। बीटीएस के गाने गाकर माहौल को रंगीन बना रहे थे फैंस। फैंस के नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। बीटीएस फीवर ने मैक्सिको सिटी को पूरी तरह से अपने रंग में रंग दिया। युवा फैंस हाथों में पोस्टर लिए बीटीएस के रंग में रंगे नजर आए। स्टेडियम के बाहर बैंगनी रोशनी और म्यूजिक के बीच में फैंस लगातार गाने गाते डांस करते हुए दिखाई दिए। कुछ फैंस के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा म्यूजिकल मोमेंट। कई फैंस ने अपने पसंदीदा बैंड की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया। बैंगनी रंग के आउटफिट और लाइट स्टिक्स के साथ जमा हुए फैंस। कैलिफोर्निया में फ्री पेट्रोल के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी। विजिट लास वेगस ने 100 लोगों को $100 तक का फ्यूल और गिफ्ट कार्ड्स दिए। लॉस वेगस टूरिज्म बढ़ाने के लिए अनोखा प्रमोशन शुरू कर दिया है। समर सीजन में लोगों को कार से वेगस आने के लिए फ्री गैस ऑफर की गई। अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर लॉस वेगस में 8 हफ्तों तक आतिशबाजी होगी। ये शानदार शो 6 जून से लगातार होगा। बढ़ती फ्यूल कीमतें यात्रियों के लिए बड़ी चिंता। इसी वजह से लोगों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त पेट्रोल कैंपेन चलाया गया। महंगे पेट्रोल के दौर में ये मदद लोगों के लिए बड़ी राहत, साथ ही शानदार आतिशबाजी देखने का मौका भी। बैंक्सी की मशहूर म्यूरल माइग्रेंट चाइल्ड का पूरा हो गया रेस्टोरेशन। वेनिस की नहर किनारे बनी एक कला नमी और बाढ़ से हो रही थी खराब। इटली के वेनिस में शरणार्थी बच्चे को दिखाने वाली म्यूरल फिर से लोगों के सामने लाई गई। ये पेंटिंग गुलाबी डिस्ट्रेस फ्लेयर उठाए बच्चे की तस्वीर दिखाती है। वेनिस के ऐतिहासिक इमारत में बनी बैंक्सी की म्यूरल को नया जीवन मिला। इमारत की मरम्मत का काम मशहूर ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स ने संभाला। 8 और 9 मई को ये रिस्टोर की गई म्यूरल नाव के जरिए वेनिस की शहरों में और नहरों में घुमाई जाएगी ताकि शहर के लोग इसे करीब से देख पाएं। پلازو سین پینٹالون کی مرمت 2027 تک پورے ہونے کی امید. اس کے بعد عمارت کو آرٹ اور سنسکرتی کے ملٹی فنکشنل سینٹر کے روپ میں کھولا جائے گا. چین میں مے ڈے ہالیڈے کے دوران پریٹن میں زبردست بڑھوتری درج کی گئی. 5 دن میں 32.5 کروڑ گھریلو یاترائیں ہوئیں جو پچھلے سال سے 3.6% زیادہ رہیں. مے ڈے ہالیڈے پر پریٹکوں نے چین میں 185.49 بلین یوان خرچ کیے. پریٹک خرچ میں سالانہ آدھا پر 9.9% کی بڑھوتری. چھٹیوں کے دوران دیش بھر میں 49,000 سے زیادہ سانسکرتک کاریکرم آیوجت کیے گئے. ان آیوجنوں میں قریب کروڑوں کی سنکھیا میں پریٹک پہنچے. چین میں نائٹ ٹوریزم کا کریز بھی بڑھا دکھائی دیا. مکھیہ نائٹ ٹوریزم سینٹر پر 8 کروڑ سے زیادہ وزٹرز پہنچے. مے ڈے ہالیڈے میں ودیشی یاتریوں کی آواجاہی میں اچھال آیا. قریب 12.6 لاکھ ودیشی یاترائیں ہوئیں. فلسطین میں ایک بار پھر سے لوٹی رونق. لمبے انتظار کے بعد فلسطین میراتھن کا آیوجن. ویسٹ بینک کی سڑکوں پر امڑا جن سیلاب. بڑی سنکھیا میں لوگوں نے میراتھن میں حصہ لیا. فلسطین میراتھن میں شامل ہوئے ریٹائرڈ 13,000 پرتیبھاگی. ودیشوں سے بھی پہنچے لوگ. اٹلی میں پوپلیو کا بھویہ روڈ شو. پومپئی شہر میں امڑا جن سیلاب. کیتھولک چرچ کے پرمکھ کے روپ میں پوپلیو نے پورا کیا 1 سال. پومپئی میں بچوں کے ساتھ کی ملاقات. ہالی ووڈ واک آف فیم پر ٹیڈ ٹرنر کو شردھانجلی دی گئی. فینز اور راہگیروں نے ان کے سٹار کے سامنے پھول چڑھائے. ٹیڈ ٹرنر کو ٹیلی ویژنری کہا جاتا ہے. ٹائم میگزین نے 1991 میں انہیں مین آف دا ایئر چنا تھا. میڈیا جگت کے دگج ٹیڈ ٹرنر کا 87 سال کی عمر میں ندھن ہو گیا تھا. 24 گھنٹے کی نیوز پرسارن کی شروعات کر انہوں نے میڈیا کی دنیا بدل دی. فوربس کے مطابق ٹیڈ ٹرنر کی سمپتی قریب 2.8 بلین ڈالر تھی. انہوں نے میڈیا انڈسٹری میں ایک وشال سامراجیہ کھڑا کیا تھا. ٹیڈ ٹرنر نے لائیو نیوز کوریج کا نیا دور شروع کیا. ان کی سوچ نے 150 سے زیادہ دیشوں کے درشکوں کو اتہاس کا گواہ بنایا.
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا اس خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے. کم سے کم لوگوں کو
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अक्सर ये कहा जाता है, आपने सुना होगा कि वक्त बहुत कीमती है, घड़ी देखकर हर काम किया जाता है, घड़ी की सुइयां थम जाएं तो सब गड़बड़ होने लगता है। अभी के दौर में जो घड़ी हम देखते हैं वो सिर्फ वक्त ही बताती है, मगर एक वैदिक घड़ी भी है जो वक्त, मुहूर्त, तिथि, वार, नक्षत्र सब बता सकती है। कई खूबियों वाली ऐसी एक घड़ी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में लगाई गई है। अब इस तरह की वैदिक घड़ियां द्वादश ज्योतिर्लिंग में भी लगेंगी। अयोध्या के राम मंदिर में वैदिक घड़ी स्थापित करने की भी प्लानिंग है।

0: ये वैदिक घड़ी सिर्फ समय बताने का यंत्र नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और खगोलीय ज्ञान का प्रतीक है। हाल ही में बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी स्थापित की गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी भी वैदिक घड़ी को देखने पहुंचे थे। अब काशी की तरह पूरे देश के मंदिरों में वैदिक घड़ी लगाने की योजना है। ये विक्रमादित्य काल की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश है, क्योंकि ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये वैदिक घड़ी सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक की समय गणना करती है और एक दिन को 30 मुहूर्त में बांटती है। प्रत्येक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है, साथ ही नक्षत्र और तिथि जैसी जानकारी भी देती है। दुनिया जानती है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में संसार की पहली वैद्यशाला है। पश्चिमी देशों से पहले उज्जैन से ही समय की गणना होती थी। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं। काल की गणना की वजह से उन्हें महाकाल कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर देश भर के मंदिरों में वैदिक घड़ी लगाने का काम हो रहा है। इसी के तहत वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी स्थापित की गई, जिसका वजन लगभग 700 किलोग्राम है। अब सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में वैदिक घड़ी लगाने की योजना है। इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर में भी वैदिक घड़ी लगेगी। देश के सभी बड़े मंदिरों में ऐसी ही वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी। भविष्य में जब पूरे मंदिरों में ये वैदिक घड़ी बजेगी, तो हर घंटी के साथ सनातन का संदेश घर घर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की करते हैं, जहां से फ्लाइट शुरू होने की तारीख आखिरकार सामने आ चुकी है। टिकटों की बुकिंग भी चल रही है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस नए एयरपोर्ट से पहले कहां की फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी और कितना किराया होगा, ये सब जानकारी यहां से लीजिए आप।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आम लोगों के सफर का सपना अब साकार होने जा रहा है। आखिरकार इस नए नवेले एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के परवान भरने में अब बहुत देर नहीं है। इसके लिए एयरलाइन तैयार है और एक तरह से कहें तो फ्लाइट्स का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि वो तारीख तय हो चुकी है जब पहली कमर्शियल फ्लाइट यहाँ लैंड करेगी और फिर टेक ऑफ भी करेगी। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCS की ओर से एरोड्रोम सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी मिलने के बाद ये तय किया गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून से कमर्शियल उड़ान शुरू हो जाएगी। इसके लिए अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस एयरपोर्ट के लिए DXN कोड निर्धारित किया गया है। आप ये भी जरूर जानना चाहते होंगे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कहां कहां किन शहरों के लिए उड़ानें संचालित होंगी, तो आपको बता दें इस एयरपोर्ट पर 15 जून को पहली कमर्शियल फ्लाइट लखनऊ से नोएडा आएगी। नोएडा एयरपोर्ट से वही फ्लाइट बेंगलुरु जाएगी। इसके लिए विमान सुबह 7:05 पर लखनऊ से उड़ान भरेगा और लखनऊ से उड़ान सुबह 8:05 पर नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 8:35 पर उड़ान बेंगलुरु रवाना होगी और सुबह 11:05 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। पहले ही दिन नोएडा से हैदराबाद होते हुए बेंगलोर के लिए कई उड़ानें शेड्यूल की गई हैं। नोएडा से बेंगलुरु के लिए किराया कम से कम 7,721 रुपए होगा। नोएडा और हैदराबाद के बीच किराया करीब 7,000 रुपए हो सकता है, जबकि लखनऊ और नोएडा के बीच किराया लगभग 6,000 से 7,000 रुपए के बीच होगा। इस तरह नोएडा से फिलहाल तो लखनऊ, बेंगलुरु और हैदराबाद की उड़ानें कंफर्म है। जल्द ही यहां से देश के दूसरे शहरों के लिए भी फ्लाइट्स मिलने लगेंगी। इसकी पूरी उम्मीद है। आपको ये भी जानने की उत्सुकता होगी कि फिलहाल किन एयरलाइंस की फ्लाइट्स नोएडा एयरपोर्ट से मिलेंगी, तो ये भी जान लीजिए। शुरुआत में कुछ समय तक इंडिगो एयरलाइंस ही अपनी उड़ानें यहां से संचालित करेगी। इसके बाद जल्द ही अकासा एयर और एयर इंडिया की

0: पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच कुछ इलाकों के लोगों को फ्लाइट होने के लिए दिल्ली के IJI एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका समय भी बचेगा और सफर की सहूलियत भी पड़ेगी। नोएडा से अरुण त्यागी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: सड़क पर पुलिस के जवानों का डांस, बीजेपी की प्रचंड जीत से झूम उठी बंगाल पुलिस, ईरानी सेना ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराया, बनारस की घाट पर विदेशी ने सिखाया असली धर्म, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: भारत का स्वाभिमान सोमनाथ, सनातन उत्सव के 75 साल, बद्री विशाल के दर पर बाबा बागेश्वर, 14 की उम्र 74 वाद्य यंत्रों पर महारत, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
4: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by Monster News and Reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts. Yuck, yuck, yuck, yuck.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: उत्तराखंड में अपने पैतृक

0: गांव पंचूर प्रवास पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, नव निर्मित श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में की शिरकत, गांव वालों से की मुलाकात। रुद्रप्रयाग से आए श्रद्धालुओं के हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर, सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। बद्रीनाथ में आईटीबीपी ने चलाया स्वच्छता अभियान, तप्त कुंड से ब्रह्म कपाल की गई सफाई, अब तक 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। डीआरडीओ के साथ भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड वेपन का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बमों पर भी होगा सटीक निशाना। महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक, बीट की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत, 500 में 500 नंबर लाकर बढ़ाया मान। क्रिकेट के मैदान के बाहर भी महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया रिकॉर्ड, बिहार झारखंड के नंबर वन टैक्स पेयर बने माही, आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज आपको बता दें, बाबा बर्फानी के दर्शन की तैयारी, बिल्कुल 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है और इस पवित्र यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन की सुविधा, लंगर, ठहरने की व्यवस्था और हेल्प सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। वहीं इस बार यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, अब तक 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, यानी कि इस बार की यात्रा में शिव भक्ति की ऊर्जा कश्मीर घाटी को पूरी तरह से भक्तिमय बनाने वाली है।
3: बाबा बर्फानी की भव्य और दिव्य अमरनाथ यात्रा, जहां आस्था बर्फीली वादियों से होकर शिव भक्ति के दिव्य स्वर में गूंज उठती है और इस श्रद्धा के शिखर तक जाने के लिए तैयारी तेज हो गई है। कश्मीर घाटी में शिव भक्तों के लिए सुरक्षा से लेकर सुविधा तक सभी व्यवस्थाओं पर फोकस किया जा रहा है।
4: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। हालांकि यात्रा शुरू होने में अभी समय है, लेकिन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड हो या दूसरी सरकारी एजेंसियां हो, सभी तैयारियों में जुट चुके हैं। अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू जिला हो, उधमपुर जिला हो, रामबन जिला हो या बाकी जिले हों, सभी जिलों में जो हैं तैयारियां जोर शोर से चल रही है और प्राथमिकता यही है कि जो श्रद्धालु देश भर से यहां जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे उनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।
3: देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह के साथ कश्मीर घाटी पहुँचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए कश्मीर घाटी में तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप तक हर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
4: तस्वीरें आप देखिए, ये है यात्री निवास भवन जो कि जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और अगर हम इस यात्री निवास भवन की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि इसी यात्री निवास भवन के बाहर से प्रतिदिन जब ये यात्रा शुरू होती है तो यात्रियों का जत्था यहीं से रवाना होता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए, ये जो मेरी दाई और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये पार्किंग स्पेस है और यहीं से जो है श्रद्धालुओं का जो है जत्था प्रतिदिन यहां से रवाना होता है।
3: प्रशासन के साथ साथ साधु संत से लेकर आम लोगों में अमरनाथ यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: इस बार मौसम काफी अच्छा है, अभी तक बर्फ गिर रही है, तो उम्मीद है कि बाबा इस बार भक्तों को बहुत लंबे समय तक अपने दर्शन देंगे और बाबा का जो शिवलिंग है बहुत भव्य रूप में हम लोग उसके दर्शन कर पाएंगे।
3: करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, सकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह ऐसा है कि अब तक 4,00,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और ये केवल आंकड़े नहीं, ये प्रमाण है आस्था का, विश्वास का। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल भारी संख्या में लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे।
5: डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही एक रिव्यू लिया है और अलॉन्ग विद साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ हमने वहां पे विजिट किया है। जो भी इंस्ट्रक्शंस थी हर डिपार्टमेंट को दी गई है डिस्ट साहब के थ्रू और हर डिपार्टमेंट अपने काम में लगा है।
3: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, ऐसे में इस पवित्र यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन सुविधा, लंगर, ठहरने की व्यवस्था और हेल्प सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देवभूमि उत्तराखंड में आस्था, भक्ति और विश्वास की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। चार धाम यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु देवभूमि पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है आस्था और अटूट विश्वास की चार धाम यात्रा। आपको बता दें कि यात्रा के इस महोत्सव में उत्तराखंड का मौसम खूब साथ दे रहा है। साफ आसमान, ठंडी हवाएं और मनमोहक वादियां यात्रियों के सफर को और भी आसान बना रहे हैं।
3: आस्था, भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच शिव भक्ति के रंग, श्रद्धालु की भरमार, पहाड़ों की बदली रंगत। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के साथ पूरा हिमालयी क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं।
6: हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ।
3: श्रद्धालुओं की आस्था ने इस यात्रा को एक महोत्सव में बदल दिया है और खास बात यह है कि इस बार उत्तराखंड का मौसम भी श्रद्धालुओं का पूरा साथ देता नजर आ रहा है। साफ आसमान, ठंडी हवाएं और मनमोहक वादियां यात्रियों के सफर को और भी सुखद बना रही हैं।
7: वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत ठंडा है केदारनाथ में, तो बहुत अच्छा है। 12 डेज का यात्रा है, वेरी गुड, वेरी नाइस।
3: आंकड़ों की बात करें तो हर रोज 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यमुनोत्री धाम में 1,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु माँ यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में 1,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु माँ गंगोत्री धाम पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं और केदारनाथ धाम में करीब 4,00,000 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में 2,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन का पुण्य कमा चुके हैं। चार धाम यात्रा में कुल श्रद्धालुओं की बात की जाए तो करीब 9,00,000 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं।
8: उत्तराखंड में इस समय चार धाम यात्रा का उत्साह हर तरफ देखने को मिल रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 2 सप्ताह का समय हो चुका है, 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। जहां 2 सप्ताह का समय हो चुका है वहीं अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या 17,000 के पार होने लगी है।
3: केदारनाथ में भक्तों में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के दो बार दर्शन कर चुके हैं और आज जब सीएम केदार धाम पहुंचे तो वहां उन्होंने पहले बाबा केदार के दर्शन किए, पूजा पाठ किया और फिर यात्रियों के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का लोकार्पण किया। रुद्रप्रयाग में यात्रा मार्ग पर अस्पताल बनने से काफी मदद मिलेगी। दरअसल यात्रा मार्ग पर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य जांच केंद्रों, ऑक्सीजन सुविधाओं एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
9: प्रत्येक दिन 20,000 से कम श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँचे। लगभग मुझे लगता है कि 22 तारीख को कपाट खुले थे और 22 तारीख से लगभग 4,00,000 का ये आंकड़ा हमारा यहाँ पहुँचने वाला है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
3: जाहिर है देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों आस्था अपने चरम पर है। हरिद्वार से लेकर केदार घाटी तक हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें हैं तो वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरी वादियां भक्तिमय माहौल में डूबी हुई हैं और ये उत्सव केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं स्थानीय लोगों के लिए भी खुशियों की सौगात लेकर आया है। बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से स्थानीय लोगों का कारोबार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: मध्य प्रदेश का गांव बिचारपुर, जिसे प्रधानमंत्री मोदी भी मिनी ब्राजील कह चुके हैं, वहां के बच्चे फुटबॉल में अपना और अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। यहां के 5 प्रतिभाशाली बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने का मौका मिला, जहां से वो प्रोफेशनल गेम कल्चरल की ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। ऐसे में हमारी आज की जो अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। शहडोल के बच्चों को जर्मनी में फुटबॉल की ट्रेनिंग। देखिए, बिचारपुर गांव में बच्चों को नशे से दूर रखने की कोशिश में उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद इस गाँव के 5 बच्चों को ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने का मौका मिला। अब ये बच्चे फुटबॉल की आधुनिक तकनीक, फिटनेस और टीम वर्क की ट्रेनिंग लेकर वापस लौटे हैं।
10: हिंदुस्तान के नक्शे पर राज्य मध्य प्रदेश, जहां शहडोल का बिचारपुर गांव कभी नशे जैसी एक सामाजिक बुराई के लिए कुख्यात रहा, लेकिन आज यही जगह इन उत्साही युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की वजह से देश जहां में मशहूर हो रही है। बिचारपुर में आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां फुटबॉल खिलाड़ी ना हो। लड़के हो या लड़कियां, सुबह शाम मैदान में पसीना बहाते हैं और यही जुनून अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भी ले गया।
11: मध्य प्रदेश का एक छोटा सा इलाका बिचारपुर, जहां पर सबसे ज़्यादा नशे का काम होता था, इसलिए वो बदनाम था, लेकिन आज इन बच्चों ने उस जगह का नाम रोशन कर दिया है। पूरी देश दुनिया इन बच्चों को जान रही है, बिचारपुर का नाम जान रही है और जरिया बना है फुटबॉल।
10: दरअसल बिचारपुर में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि इसके पीछे एक लेगेसी है जो पिछली 3-4 पीढ़ी होते हुए इन युवाओं तक पहुंची है और इन्हें सही दिशा में ले जाने का काम रईस अहमद नाम के ये कोच कर रहे हैं। रईस भी कभी फुटबॉल खिलाड़ी रहे लेकिन इस खेल की बेसिक जरूरतों से वो महरूम रहे।
12: मैं खुद भी राष्ट्रीय खिलाड़ी था, फिर उसके बाद जब मैंने NIS की ट्रेनिंग लिया तो मुझे लगा कि एक कोच की अहमियत क्या होती है और कुछ मुझे करना है बच्चों के लिए, फिर जो कि हम लोग को उस तरह से कोचिंग नहीं मिल पाई जिससे हम लोगों ने उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, तो मैं ऐसे गांव के बच्चों को तैयार करने की ठानी और वहां पर फिर मैंने 2002 से इनको कोचिंग देना शुरू किया।
10: प्रधानमंत्री मोदी की जानकारी में जब बिचारपुर की तस्वीर सामने आई तो उन्होंने भी मन की बात कार्यक्रम में इस जगह को फुटबॉल नर्सरी बताया।
13: फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है।
10: इसके बाद ही जर्मन फुटबॉल एक्सपर्ट डाइटमार बेयर्सडॉर्फ ने इन बच्चों को ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया। तो कोच की देखरेख में मेहनत, लगन और सरकारी सपोर्ट से 5 हुनरमंद बच्चे जर्मनी से फुटबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर लौटे।
14: ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, तो ये भी नहीं सोच सकते थे कि हम फ्लाइट में कभी जाएंगे।
10: बिचारपुर गांव के ये बच्चे साबित कर रहे हैं कि जुनून और मेहनत के साथ गांव की मिट्टी से भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल सकते हैं।
11: ये बच्चे आज पूरी देश के लिए प्रेरणा है। ये बताते हैं कि अगर हम उस जगह से आके, जो जगह कभी नशे के लिए मशहूर थी, वो जगह आज उसको लोग मिनी ब्राजील बोलते हैं, इन बच्चों की वजह से ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा जैसे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स की नीति लागू की है। इस नीति के तहत लोगों को मेट्रो कोच और मेट्रो स्टेशन पर इवेंट्स करने की इजाजत मिलेगी। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है एमपी मेट्रो में उत्सव की करो तैयारी। यानी कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों को यादगार अनुभव देने के लिए खास पहल शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत लोगों को मेट्रो के अंदर और मेट्रो परिसर के भीतर सेलिब्रेशन करने की अनुमति मिलेगी। इस नई व्यवस्था का नाम सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स रखा गया है। इसके अंतर्गत अब मेट्रो और स्टेशन परिसर में जन्मदिन, प्री वेडिंग शूट समेत अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा सकेंगे। इससे मेट्रो केवल यात्रा का साधन नहीं बल्कि खास पलों को सेलिब्रेट करने का मंच भी बनेगा। सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स की पहल मेट्रो को आम लोगों के और करीब लाने का प्रयास करेगी, जिसमें आम लोग अपने खास पलों को सुरक्षित और आधुनिक तरीके से मना सकेंगे।
15: इस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई पॉलिसी लागू की है सेलिब्रेशन ऑन व्हील, यात्रियों को सुखद और अविस्मरणीय और अनोखा अनुभव कराने के लिए। इसमें अब हम जो है चलित और गतिशील दोनों कोचेस में बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज, फोटोशूट, प्रीवेड शूट, इनका लाभ जो है यात्री या इच्छुक व्यक्ति ले पाएंगे। पॉलिसी तैयार की गई है, एक निर्धारित प्रारूप है जिसको भर करके कार्यालयों में जमा करना होगा, सुबह इंदौर में भी और भोपाल में भी, और या फिर ऑनलाइन भी हम अनुमति प्राप्त की जा सकती है। इसके अनडेकोरेटेड कोच का, स्थिर कोच का जो है 5,000 रुपये प्रति घंटे चार्ज है, और जो गतिशील है उसका 7,000 रुपये प्रति घंटे चार्ज है। ये बर्थडे पार्टी के लिए है, किटी पार्टीज के लिए है, फोटोशूट के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए है, शॉर्ट फिल्म में और भी वो इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर जो है धूम्रपान वर्जित है, शराब का सेवन नहीं किया जा सकता, धारदार हथियार नहीं ले जा सकते, ये पॉलिसी में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस।
0: एक ऐसा मंच जहां दुनिया की सबसे अनोखी और असाधारण प्रतिभाओं को पहचान मिलती है, उसका नाम है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और अब इस प्रतिष्ठित रिकॉर्ड्स की सूची में शामिल हो गया है भारत की बेटी नियति का नाम, जिन्होंने महज 60 सेकंड में 74 वाद्य यंत्रों की पहचान की है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है 74 वाद्य यंत्रों को 1 मिनट में पहचानने का रिकॉर्ड। संगीत के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने वाली नियति न केवल वाद्य यंत्रों को पहचानती है बल्कि वो 44 वाद्य यंत्रों को बजाना भी जानती है।

0: संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। महज 14 साल की उम्र में नियति का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। नियति ने केवल एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों की पहचान कर इतिहास रच दिया है। नियति की ये उपलब्धि उनके असाधारण ज्ञान और अद्भुत याददाश्त का प्रमाण है।
1: कीबोर्ड, यूकुलेले, ओकरीना, ट्यूबा, गिटारियन, चिरकी,
2: डफ, हरिद्वाई, सितार, मोहनी। उम्र महज 14 साल। काबिलियत कि वो 44 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती है। उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने अपना नाम दर्ज करवा लिया।
0: लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती हैं। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है।
3: मैंने 550 इंस्ट्रूमेंट्स याद किए अलॉन्ग विद द बेसिक्स एंड लास्ट में जाके नवंबर 2025 पर मैंने 1 मिनट के अंदर रैंडमाइज करके 74 इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज किए।
2: 74 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने पहचाना है सिर्फ 1 मिनट के भीतर। सिर्फ पहचाना नहीं है बल्कि उनके बेसिक्स भी बताए हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए होता है, कैसे बजता है, कैसे काम करता है।
0: नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी माँ ने हर कदम पर सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में ही पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी माँ ने कीबोर्ड और ज़ाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने पियानो सीखना शुरू किया, फिर एक एक कर उन्होंने तमाम वाद्य यंत्रों पर काबिलियत हासिल कर ली। छोटी सी उम्र में घंटों रियाज करना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। 2024 में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्तोत्र बजाया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। वहीं 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि ने उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया।
4: मेरा संघर्ष साकार होते हुए नजर आ रहा है कि मतलब मैंने जो इतना एफर्ट्स किए हैं कि नियति कुछ बन पाए, अपनी जगह समाज में बना पाए, उसके लिए मैंने पूरे एफर्ट्स किए थे। और आज लग रहा है जब लोग आके हमसे पूछते हैं कि आपके बच्चे ने इतना अचीव किया तो बहुत खुशी होती है।
0: संगीत के साथ नियति म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर हैं। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान भी मिल चुका है। खास बात यह है कि संगीत में रुचि के बावजूद नियति ने पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा है। वो लगातार 90% अंकों के साथ परीक्षा पास करती रही है। बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: योग जिससे न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जा से भरा रहता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग एक ऐसी शक्ति बनकर उभर रहा है जो लोगों को तनाव से दूर रखकर मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मणिपुर सरकार ने इम्फाल के खुमान लंपक इंडोर स्टेडियम में 11वें राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड 2026 का आयोजन किया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 6ठी गुड न्यूज है और वो है मणिपुर में योग ओलंपियाड का शुभारंभ। इम्फाल के खुमान में आपको बता दें कि लंपक इंडोर स्टेडियम में 11वें राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड 2026 का भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों से आए छात्रों और प्रतिभागियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। इस योग ओलंपियाड के जरिए युवाओं को फिटनेस, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और शानदार योग प्रदर्शनों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि बेहतर जीवन जीने की कला है जो कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को मजबूत बनाती है। आने वाले दिनों में योग ओलंपियाड के तहत विभिन्न प्रतियोगी श्रेणियों और योग प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य युवा पीढ़ी को योग को अपनी डेली लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। पूरी दुनिया मेट गाला के ग्लैमरस फैशन डिजाइनर कपड़ों और सेलिब्रिटीज लुक्स की चर्चा में डूबी है। वहीं सोशल मीडिया पर एक अलग ही शो लोगों का दिल जीत रहा है। ये शो था पेट गाला का, जिसमें कुत्ते और बिल्लियां शानदार फैशन आउटफिट्स पहनकर रैंप पर चलते नजर आए। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, मेट गाला के बाद अब पेट गाला की धूम। जी हाँ, पेट गाला के वीडियो इंटरनेट यूजर्स को काफी पसंद आ रही है। वीडियो में कई पालतू जानवरों को बेहद खूबसूरत और फैशनेबल कपड़ों में सजाया गया था। किसी ने चमकदार गाउन पहना था तो कोई मोतियों के गहनों और स्टाइलिश कैप में नजर आया। कुछ कुत्ते टक्सीडो, बोटाई और छोटी छोटी टोपियां पहनकर किसी बड़े फैशन स्टार की तरह चलते हुए दिखाई दिए। वहीं बिल्लियां भी किसी से कम नहीं, वे भी सुंदर ड्रेस और आकर्षक एक्सेसरीज में कैमरे के सामने पोज देती नजर आई। अलग अलग ब्रीड के डॉग्स और कैट्स की फैशन परेड असली मेट गाला से भी ज्यादा मजेदार और स्टाइलिश दिखाई दी।

0: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
2: The Tailgate Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of The Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
3: The Tailgate Top 20.
4: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
2: Try to keep up.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

भारत का स्वाभिमान सोमनाथ। सनातन उत्सव के 75 साल। बद्री विशाल के दर पर बाबा बागेश्वर। 14 की उम्र 74 वाद्य यंत्रों पर महरत। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।

0: खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र मजबूत हो जाए, किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, क्या हैं शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
2: It's my music and it's my station.
1: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंजूर प्रवास पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ नवनिर्मित श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, गांव वालों से की मुलाकात। रुद्रप्रयाग से आई श्रद्धालु की हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर, सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। बद्रीनाथ में आईटीबीपी ने चलाया स्वच्छता अभियान, तप्तकुंड से ब्रह्म कपाल तक की गई सफाई, अब तक 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। लोग बिना सोचे समझे से सच मान लेते हैं और इसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है अफवाहों का दौर। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं हर खबर की सटीक पड़ताल और आपको बताते सही और सच्ची खबर। आज इन दो खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करेंगे आगे। हमारी अगली खबर उस वायरल तस्वीर से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया, सच्चाई क्या आगे बताएंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और
2: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पहली बार सत्ता हासिल की, बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वाले बीजेपी के चुनावी गाने पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करने वाले कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां बीजेपी के जीतने के बाद पुलिस वाले भी इस तरह से जश्न मनाते नजर आए। लेकिन वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर अपनी मुहर लगा दी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम नागरिक सड़क पर नाचते झूमते हुए जश्न मना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। इसे शेयर करने वाले कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां बीजेपी के जीतने के बाद पुलिस वाले इस तरह से जश्न मना रहे हैं। कुछ ने सवाल भी किया कि एक लोकतांत्रिक देश में इसकी इजाजत कैसे हो सकती है। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले और ईवीएम हैक की दुहाई लगाने वाले जरा मुझे ये बताएं कि इन पुलिस वालों को किसने हैक किया है जो बीजेपी के जीतने पर इतना खुश है जैसे आज देश आजाद हुआ हो। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सड़क पर डांस करते पुलिस कर्मियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम नागरिक सड़क पर नाचते झूमते जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही कुछ दुकानों की नेम प्लेट पर गया और जब हमने इसे जूम करके देखा तो यह सामने आया कि नाम मराठी में है। अब वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर यहां पर मराठी शब्द क्यों नजर आएंगे, यह हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो फिर ये मीडिया की नजरों से कैसे बच सकती थी। कहीं ना कहीं किसी अखबार में या किसी मीडिया आउटलेट पर ये सुर्खियां जरूर बनती, लिहाजा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसके बाद हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
3: फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान एक रेडिट पोस्ट में ये वीडियो मिला, जिसे 13 सितंबर 2022 को पोस्ट किया गया था। पोस्ट में इसे भारत में गणेश विसर्जन के दौरान का बताया गया है। पोस्ट में मौजूद कमेंट्स को पढ़ने पर पता चला कि कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताया है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो मिला। यहाँ इसे 10 सितंबर 2022 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो जाती है कि ये वीडियो काफी पुराना है और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से संबंधित नहीं हो सकता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है और इसमें नजर आ रहे पुलिस वाले गणपति विसर्जन के समय नाच गा रहे थे। इस वीडियो में बीजेपी का वो कैंपेन सॉन्ग भी नहीं है जो वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा है। साफ है कि वायरल वीडियो में ये गाना अलग से जोड़ा गया है। सर्च के दौरान हमें एक और मिलता जुलता वीडियो मिला। वीडियो में एक दुकान का नाम नजर आता है, पार्वती ट्रेडर्स। सर्च करने पर पता चला कि ये दुकान कोल्हापुर के पापाजी टीकाटी इलाके में गंगावेश रोड पर स्थित है। हमें गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू पर भी हूबहू यही जगह मिल गई। स्ट्रीट व्यू में वायरल वीडियो में नजर आ रही तीनों दुकानें, पार्वती ट्रेडर्स, श्री कृष्ण एजेंसी और भिवसे सैनिटरी वेयर्स देखी जा सकती हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साबित हो जाता है कि ये 2022 का महाराष्ट्र के कोल्हापुर का वीडियो है, न कि पश्चिम बंगाल का। उस वक्त कोल्हापुर में गणेश विसर्जन के दौरान झूमते पुलिस वालों के कई और वीडियो और न्यूज रिपोर्ट्स भी सामने आए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और तस्वीर में हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ईरानी झंडा लिए सैनिकों को देखा जा सकता है। कुछ लोग इस तस्वीर के जरिए ईरानी सैनिकों के शौर्य का महिमामंडन करते नजर आ रहे हैं। दावा ये कर रहे हैं कि सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
4: सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है और उसके मलबे के पास ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। इस तस्वीर को अलग अलग दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। एक फेसबुक पेज ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि रेगिस्तान की इस तस्वीर में गिरे हुए हेलीकॉप्टर के मलबे के बीच खड़े सैनिक और उनके हाथों में लहराता ईरान का झंडा, ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि जंग के बीच दिए जा रहे एक बड़े संदेश की झलक है। हम जंग जीत रहे हैं, ईशा अल्लाह जैसे नारे इस तस्वीर को और ज्यादा चर्चा में ला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई जंग सिर्फ जीत की कहानी होती है? जहां एक तरफ जीत के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह मलबा उस नुकसान की याद दिलाता है जो हर युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है। टूटे हुए हेलीकॉप्टर के हिस्से, धूल में बिखरी चीजें और हथियारों के बीच खड़े सैनिक, यह सब मिलकर एक ऐसी हकीकत दिखाते हैं जो अक्सर नारों और दावों के पीछे छिप जाती है। ईरान का झंडा इस तस्वीर को एक अलग ही राजनीतिक और वैश्विक संदर्भ दे रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ऐसी तस्वीरें सिर्फ जमीन पर हो रही घटनाओं को नहीं दिखाती बल्कि यह भी बताती हैं कि हर पक्ष अपने तरीके से दुनिया को एक संदेश देना चाहता है, ताकत, नियंत्रण और मनोबल का। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे जीत और साहस का प्रतीक मान रहे हैं तो कुछ इसे युद्ध के प्रचार का हिस्सा बता रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच इस तस्वीर को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और उसके मलबे के पास ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। ईरानी सैनिकों के शौर्य का बखान करते हुए इसे लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई को जानने के लिए हमने सबसे पहले इंटरनेट को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें वायरल तस्वीर किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली, क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं खबर जरूर होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे में हमें वायरल दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल तस्वीर को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड तस्वीर को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? अब देखिए सच और झूठ क्या है।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की जांच में जुटी। सर्च करने पर हमें वायरल तस्वीर किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की भरमार थी, ऐसे में हमें वायरल तस्वीर के फेक होने का शक हुआ, इसलिए हमने इस तस्वीर को सिंथ आईडी डिटेक्टर की मदद से चेक किया। सिंथ आईडी के एनालिसिस ने इस तस्वीर के गूगल एआई की मदद से बनाए जाने की पुष्टि की। इसके एनालिसिस के मुताबिक इस तस्वीर में सिंथ आईडी के डिटेक्ट होने की पुष्टि होती है। जांच को आगे बढ़ाते हुए फैक्ट चेक टीम ने इस तस्वीर को एक दूसरे डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस भी इस तस्वीर को 99.9% एआई निर्मित बताती है। इस तरह हमारी पड़ताल से साबित हो गया कि हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ईरानी झंडा लिए सैनिकों की इस तस्वीर को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
6: I'm in the game, why should I join with this G23?
5: Today's hits will keep the party going 24/7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
7: में पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
9: छोटे बच्चों को खाना खिलाना अक्सर माता पिता के लिए मुश्किल बन जाता है। इसी से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची के पास एक शख्स बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे लोग बच्ची का पिता बता रहे हैं। माँ पहले उस शख्स को खाना खिलाने का नाटक करती है। जैसे ही वो आदमी बच्ची की तरह मुंह बनाकर खाना खाने से मना करता है, तभी महिला उसे हल्का सा थप्पड़ मार देती है। ये दृश्य देखकर बच्ची तुरंत चौकन्नी हो जाती है। उसे शायद लगता है कि अगर उसने भी खाना खाने में आनाकानी की तो उसका भी वही हाल हो सकता है। इसके बाद बच्ची बिना किसी जिद के आराम से खाना खाने लगती है। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है। जब बच्ची खाना खा लेती है तो वो अपने पास बैठे उस शख्स को बेहद मासूम अंदाज से सांत्वना देती नजर आती है। बच्ची का ये क्यूट रिएक्शन लोगों का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं।
11: स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, रेड डॉट
12: इसको बंद करके।
11: हाँ, तो जब हो गई रिकॉर्डिंग तो ये दबाना है,
12: फिनिश प्रेस रेड बटन। हाँ
11: ठीक है।
12: हाँ,
11: फिर ये
12: रुको फिर एक मिनट, ये ऐसे है।
9: हाँ। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है। ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से, जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था। दादी नानी आज भी वैसी ही सीखती हैं। एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर खूब धूम मचाया हुआ है। वीडियो में नानी सीख रही है और नातिन सिखा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात ये है कि नानी सिर्फ सीख ही नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी। इसीलिए तो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन ही तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
11: जैसे आपने रेड डॉट दबाई
12: तो ये आ गया, तो इसको दबा देना है।
11: इसको दबाइए,
12: प्रेस ये रेड,
11: दबा दूं
12: जो एक मिनट रेड। हाँ
11: ठीक है, दबाइए। हाँ
12: तो ये
11: सेव टू फोटो आ गया, टिक भी आ गया।
12: हाँ तो इसका मतलब हो गया।
9: रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा गढ़ देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही विश्वास न कर सकने वाली रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतनी सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये 20 फुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटे में बनाई थी। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठकर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरते दिखाई दे रही हैं, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनकी आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं। दरअसल ये जापानी महिला की आकृति है जो पारंपरिक किमोनो पहने हुए है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है।

बनारस के घाट सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का प्रतीक भी माने जाते हैं। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान करने और पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं। लेकिन कई बार लोग भक्ति तो करते हैं, मगर सफाई जैसी जरूरी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो में एक विदेशी युवक बनारस के घाटों पर फैला कूड़ा अपने हाथों से साफ करता नजर आ रहा है। विदेशी युवक बिना किसी दिखावे के लगातार घाट को साफ करता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो एक शादी के दौरान का है, जिसमें देखा जा सकता है कि शादी के बाद एक दुल्हन की विदाई हो रही है। विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। बेटी की विदाई पर रो रही माँ इस रस्म को बहुत ही दुखी होकर निभा रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी हुआ उसे देख किसी के लिए भी अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है, तो उसमें से कुछ दाने उछलकर उसकी माँ के मुंह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुंह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। इस वक्त कैमरे का फोकस दुल्हन की माँ के मुंह पर होता है, जहाँ दुल्हन की माँ का ये रिएक्शन देख लोगों की हंसी छूट जाती है। जब पारा आसमान छूने लगे और सूरज आग उगलने लगे, तो अच्छे अच्छों की बारात निकालने की हिम्मत नहीं होती, मगर इंडिया में जुगाड़ का सिक्का चलता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाए। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बाराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटी सी ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में एक पोर्टेबल जनरेटर भी फिट किया गया है। मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है, ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ ही चल रहा है। देश को समर्पित कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलते हैं, जहां भारतवासियों की देशभक्ति लोगों को प्रेरणा देने का काम करती है। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक लोको पायलट की देशभक्ति को पूरा इंटरनेट सलाम कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लोको पायलट अपनी ट्रेन की यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन पर लगे तिरंगे को बड़े ही सम्मान के साथ साफ करते हुए नजर आया। लोको पायलट ट्रेन के अगले हिस्से पर लगे तिरंगे को ट्रेन के ऊपर खड़े होकर वाइपर और पानी से धोते हुए नजर आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन के इंजन पर लगे तिरंगे को बिल्कुल साफ कर देता है, तब जाकर वो अपनी ट्रेन लेकर कहीं आगे बढ़ता है। भले ही ये काम लोगों को छोटा सा लगे, लेकिन इसके पीछे उस लोको पायलट की भावना बहुत ही गहरी है। देशभक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े आयोजन कर अपनी देशभक्ति को साबित करें। लोगों के ऐसे रोज की छोटी छोटी जिम्मेदारियों के पीछे भी देशभक्ति झलकती है।

0: माने, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मारकर हवा में उछाल दिया। हालांकि 3-4 शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे। जब लगा कि अब भैंसा थक जाएगा, तभी जो हुआ वो देखने लायक था। अचानक दूर से धूल का गुब्बार उठा और भैंस के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने न आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसें शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ में आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, खिसक लेने में ही भलाई है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे 11 मई को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन के 75 साल पूरे हो जाएंगे, सभ्यता के इस अटूट संकल्प के उत्सव की तैयारी और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बद्री विशाल के दर पर बाबा बागेश्वर 21 दिनों की गुप्त साधना का आरंभ हो चुका है। 14 साल की उम्र में 74 वाद्य यंत्रों पर महारत हासिल, 60 सेकंड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, किसने दिखाएंगे आपको। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर प्रवास पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नव निर्मित श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की, गांव वालों से भी मुलाकात की। रुद्रप्रयाग से आई श्रद्धालु के लिए हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर, सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी ने चलाया स्वच्छता अभियान, तपकुंड से ब्रह्मकपाल तक की गई सफाई, अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। यात्रियों के साथ भारतीय वायुसेना को एक और बड़ी सफलता, तारा स्वदेशी ग्लाइड वेपन का पहला सफल उड़ान परीक्षण, अनगाइडेड बमों पर भी होगा सटीक निशाना। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में 189 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक, बीड की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत, 500 में से 500 अंक लाकर मान बढ़ाया। क्रिकेट के मैदान के बाहर भी महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया रिकॉर्ड, बिहार झारखंड के नंबर 1 टैक्स पेयर बने माही, आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी। बात करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की, बात सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिसके पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो रहे हैं और जिसके चलते 11 मई को एक कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ने आज एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर के इतिहास का जिक्र करते हुए कई जरूरी बातें भी लिखी और ये बताया कि वो 11 मई को फिर से सोमनाथ जा रहे हैं ताकि 75 साल पूरे होने का जश्न मना सकें।

0: द्वादश ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ मंदिर, जिसके पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके पर 11 मई को सोमनाथ में उत्सव होने वाला है, लिहाजा इस उत्सव से जुड़ी तैयारियां भगवान सोमनाथ की धरती पर शुरू हो चुकी हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। इसी सिलसिले में आज उन्होंने एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंतकाल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों ना हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। ये सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार ये यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का उद्घाटन किया था।
1: तारीख 8 से लेकर 11 तक के 4 दिनों में वहां यज्ञ होगा, मंत्रोच्चार होगा, मंत्र लेखन होगा, कई लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। इस तरह धार्मिक एवं अन्य तरीके से ये अमृत महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं। और जब अध्यक्ष सोमनाथ ट्रस्ट और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से सारे देश का ध्यान ये सोमनाथ ट्रस्ट की अमृत महोत्सव के प्रति जाएगा।
2: जामनगर से सीधे सोमनाथ हेलीपैड पर प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और इसके बाद यही जो वो रास्ता है जो 1 किलोमीटर का, यहीं पर प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। दोनों तरफ लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो देश के नृत्य है वो डांस का आयोजन भी किया गया है। बंगाली परिवार है वो भी प्रधानमंत्री का इसी रोड शो में स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन और पूजा करेंगे महादेव की। इसके अलावा यहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया है, जो पहली बार सोमनाथ मंदिर में इस एयर शो का आयोजन किया गया है।
0: सौराष्ट्र के समुद्र तट पर मौजूद ये मंदिर भारत की आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक है। इसका इतिहास और पौराणिक मान्यता दोनों ही बहुत रोचक है। पहले बात इतिहास की कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि कुल मिलाकर इस मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया और हर बार हिंदू राजाओं और शासकों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। आजादी के बाद 1947 में सरदार पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था, लेकिन जीते जी सरदार पटेल अपने सपने को साकार होते ना देख सके। हालांकि 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया, जिसकी 75वीं वर्षगांठ 11 मई को मनाई जाने वाली है।
1: निशंक रूप से 75 साल पूरा करना एक लैंडमार्क अवश्य है, किंतु सोमनाथ के हजारों वर्ष के इतिहास में ये जो महत्व है वो इसलिए सबसे ज्यादा है कि इतनी बार टूटने के बाद इनका नवसर्जन हुआ। मगर 13 नवंबर 1947 के दिन सरदार साहब ने जो संकल्प किया था, वो संकल्प के हिसाब से आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद, और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज़्यादा कलश हैं, वो सब सुवर्ण मंडित होने से एक नए प्रकार की एक भव्यता और दिव्यता का लोगों को एहसास करा रहा है।
0: देवाधिदेव महादेव के इस धाम का जिक्र प्रमुख रूप से ऋग्वेद और स्कंद पुराण में मिलता है, जहां इसे 12 ज्योतिर्लिंग में पहला माना गया है। इतना ही नहीं, इसका जिक्र महाभारत, श्रीमद् भगवत पुराण और शिव पुराण में भी किया गया है। मान्यता है कि चंद्रदेव को जब श्राप मिला और उनका तेज खत्म होने लगा। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी। इसी कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही प्रबल मानी गई है।
2: तीर्थ पुरोहित सोमप्रा ब्राह्मण समाज के पूर्वजों को लाया ही यहाँ चंद्रमा की ओर से गया था। जब ही उन्होंने ये प्रतिष्ठा की सोमनाथ जी की और अपना अनुष्ठान पूर्ण किया, तो यहाँ पे उन्होंने हमारे पुरखों को लाए और यहाँ हमारे पुरखों ने ही उनको ये अनुष्ठान का समापन करवाया था। और तभी से हमें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि आप यहीं रहो, आने वाले यात्रियों को पूजा पाठ करा के आप अपना योगक्षेम चलाओ।
0: सोमनाथ मंदिर न केवल देश के प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में एक है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता की अटूट आस्था और पुनरुत्थान का भी प्रतीक है। आक्रमणकारी आए और गए, लेकिन मंदिर और शिवलिंग की महिमा आज भी अजर और अमर है। सोमनाथ से दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी है, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार धीरेन्द्र शास्त्री अपने किसी बयान या फिर अपने किसी दावे को लेकर सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार वो 21 दिन की विशेष साधना को लेकर चर्चा में है। इस साधना के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ पहुंचे हैं, जहां वो अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के तट पर मौजूद खांचौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में कठिन साधना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो 26 से 30 मई तक बद्रीनाथ धाम में ही श्रद्धालुओं को कथा भी सुनाएंगे।

0: करके।
1: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और जाने माने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में हैं, जहां 21 दिनों की कठिन साधना कर रहे हैं। उनकी ये आध्यात्मिक साधना अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के तट पर मौजूद खाक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में हो रही है। बताया जा रहा है कि साधना के दौरान उनके साथ कुछ चुनिंदा सेवादार ही रहेंगे और साधना स्थल को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
2: आने वाला जो समय है 15 मई से अधिक मास का हो रहा है, ऐसे अधिक मास में खासकर बद्री विशाल का जब अधिक मास से खास संबंध होता है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है बद्रीनाथ धाम में एक महीना जो अधिक मास का होता है, खासकर जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो इसमें बद्रीनाथ धाम में जब तक पूजा पाठ भागवत कथा अनेकों श्रवण करने का मौका मिलता है। ऐसे में खुद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे हनुमान कथा का आयोजन भी करेंगे।
1: पिछले 3 सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, जहां पहले वो भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर कांच चौक आश्रम पहुंचते हैं। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां वो इन दिनों साधना में लीन है। ये पहली बार है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने लगातार 12 साल तक कथा, दिव्य दरबार और धार्मिक आयोजनों के बाद इतना लंबा ब्रेक लिया है, और वो भी 21 दिनों की कठिन साधना के लिए। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि 17 मई से अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हो रही है। इस दौरान ईश्वर की साधना बहुत फलदायी मानी जाती है।
3: भगवान के सानिध्य हो जाना पुरुषोत्तम मास में बहुत लाभ की बात होती है। भगवान की कथा सुन लेना पुरुषोत्तम मास की, भागवत की या शिव पुराण की ये कथा सुन लेना बड़े लाभ की बात समझते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य ये पौराणिक है, पुराणों से निकला है, स्कंद पुराण का हिस्सा है, इसे पढ़ना चाहिए। न पढ़े तो अपने इष्ट मंत्र जो भी आपका ओम नमो भगवते वासुदेवाय है या जो भी मंत्र आपका है, तो उस मंत्र का जप करना चाहिए। ये बहुत गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि भगवान ने इसे पुरुषोत्तम कहा है, अपने शरण दी है, ये पुरुषोत्तम मास है। इसमें किए हुए धर्म कर्म अनंताय प्रकल्पते लंबे समय तक लाभकारी होते हैं।
1: पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की देवभूमि में मौजूदगी से उनके समर्थक और अनुयायी बेहद उत्साहित हैं। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब वो हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, तो उनके स्वागत में कई लोग पहुंचे। इनमें से किसी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, किसी ने दंडवत होकर प्रणाम किया और किसी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

0: श्रद्धालु इनके भक्त जो हैं वहाँ पर स्वागत के लिए पहुँचे। वहीं जो खाक चौक आश्रम है बद्रीनाथ धाम में, हमेशा से जो बागेश्वर धाम सरकार है वो जब भी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो बालकनाथ महाराज का जो खाक चौक आश्रम है यहीं पे हनुमान मंदिर है, पौराणिक हनुमान मंदिर है, यहीं पे वो पहुंचते हैं। हर कोई जो स्थानीय लोग हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचा है, हर कोई दर्शनों के लिए आया है, भजन कीर्तन जो स्वागत है, हर कोई बाबा की एक झलक पाने के लिए यहाँ पे बेताब दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बालकनाथ महाराज जो है, जो खाक चौक के महाराज हैं, उन्हीं के साथ वो वहाँ पे मौजूद है, वहीं पे दर्शन सबको दे रहे हैं।
1: भगवान बद्री विशाल की पवित्र भूमि पर इस आध्यात्मिक साधना के अलावा वो कथा और प्रवचनों के जरिए विश्व कल्याण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संदेश भी देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 21 दिनों की साधना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिव्य कथा सुनाएंगे, जो 26 से 30 मई तक चलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबर भारत की उस बेटी की जिसने संगीत की दुनिया में ऐसा चमत्कार कर दिया है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। महज 14 साल की उम्र है और 74 वाद्य यंत्रों पर इन्हें महारत हासिल है। एक मिनट यानी कि 60 सेकंड में अपनी इस उपलब्धि की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे अनोखी और असाधारण प्रतिभाओं को पहचान मिलती है। उसमें रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर नियति का नाम शामिल होना उनकी माँ के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संगीत की नियति बदलने वाली इस चित्रांश से भी आपको मिलवाते हैं।

प्रतिभा और योग्यता कभी उम्र की मोहताज नहीं होती, ये बात इस बार भी साबित हुई है। महज 14 साल की उम्र और 74 वाद्य यंत्रों को पहचानने का हुनर, सोचिए इस बेटी को फलक पर चमकने से कौन रोक सकता है।

वाद्य यंत्रों के बिना संगीत गायन यहाँ तक कि नृत्य भी अधूरा है। वाद्य यंत्रों के बिना ताल और सुर के बीच सामंजस्य बैठना मुश्किल है।

0: भारत की इस बेटी ने संगीत की दुनिया में वो कर दिखाया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। महज एक मिनट यानी 60 सेकंड में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर संगीत की इस उपासक ने इतिहास रच दिया है। दिल्ली की रहने वाली नियति चित्रांश ने महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों की पहचान कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है।
1: उम्र महज 14 साल, काबिलियत कि वो 44 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती है, उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। आइए मिलवाते हैं आपको नियति से और सुनाते हैं उसके सफर की शानदार कहानी।
0: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे अनोखी और असाधारण प्रतिभाओं को पहचान मिलती है, उसमें रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर नियति का नाम शामिल होना उनके परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है।
1: नियति और उनकी माँ दिव्या मेरे साथ में है। पिछली बार जब हम मिले थे तो मुझे बताया गया था कि फ्यूचर प्लान ये है कि PhD करनी है नियति को। ये बीच में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ से आया, इसकी तैयारी कब से कर रहे थे?
2: इसकी तैयारी हम अराउंड अगस्त 2025 से कर रहे हैं एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत सारा फाइलिंग एंड मेल चेंज लगते हैं, तो इसलिए अब जाके मेरा गिनीज बुक का फाइनल हुआ है।
0: संगीत वाद्य यंत्रों की दुनिया बेहद बड़ी है जिसमें पारंपरिक, शास्त्रीय और आधुनिक यंत्र का समावेश है। उसमें पियानो, कीबोर्ड, तबला, बांसुरी के अलावा सितार, सरोद, वीणा, वायलिन, तबला, ढोलक, मृदंग, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों को पेशेवर तरीके से बजाने के साथ पहचानना भी बड़ी बात है।
2: जैसे ही उनका कंफर्मेशन आया, मैंने 550 इंस्ट्रूमेंट्स याद किए अलोंग विद देयर बेसिक्स एंड लास्ट में जाके सेकेंड नवंबर 2025 पर मैंने 1 मिनट के अंदर रैंडमाइज करके 74 इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज किए।
0: नियति की संगीत यात्रा किसी सपने से कम नहीं है। महज 6 महीने की उम्र में उनकी माँ ने उन्हें कीबोर्ड और ज़ाइलोफ़ोन के जरिए संगीत से परिचित कराया। खेल खेल में शुरू हुआ सफर धीरे धीरे संगीत के जुनून में बदल गया।
2: खुशी तो देखिए जरूर है क्योंकि गिनीज बुक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत समय से सपना था मेरा, पर अभी भी बहुत आगे जाना है और बहुत सारी अचीवमेंट्स लानी है।
0: प्रतिभाशाली युवा संगीतकार नियति के पास 44 वाद्य यंत्र बजाने का भी हुनर है, खासकर पियानो, ड्रम्स, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम और जेम्बे जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर उनकी पकड़ देखने और सुनने लायक है।
1: 44 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नियति प्ले कर लेती हैं। कौन कौन से, उनमें से कुछ नाम बता दो हमारे व्यूवर्स को।
2: पियानो, तबला, यूक्लेले, मेलोडिका, कलम्बा, कजू, हारमोनियम, गिटार और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स।
0: संगीत के शानदार सफर पर निकलने से पहले नियति ने सिर्फ 4 साल की उम्र में ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के जरिए पियानो की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इसके बाद छोटी सी उम्र में घंटों रियाज करना उनकी दिनचर्या में शामिल है। 14 साल की नियति 10th क्लास की छात्रा है।
2: इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स याद करना वैसे ही बहुत बड़ी बात है। मैं प्रिंट आउट लेके स्कूल में जाके याद करती थी। दिन में कम से कम 2 या 3 घंटे इसकी तैयारी में जाते थे और फिर मेरे को बाकी इंस्ट्रूमेंट्स अपने डेली प्रैक्टिस भी करनी होती थी अलोंग विद माय स्टडीज एंड स्कूल।
1: गिनीज का रिकॉर्ड भी आ गया, स्कूल का रिजल्ट भी आ गया। कितने परसेंट मार्क्स है?
2: 96% इन क्लास 9th।
1: 96% मार्क्स आए हैं, उसके साथ गिनीज का रिकॉर्ड आया है। आप सोचिए कि नियति कितनी टैलेंटेड है और कितनी डेडिकेटेड है उस काम के लिए जिस काम को वो करती है।
0: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। साल 2024 में उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर शिव तांडव स्त्रोत को पियानो पर गाते और बजाते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई। वहीं 2023 में सिर्फ 65 सेकंड में 15 अलग अलग वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया था। नियति की अच्छी परवरिश अकेले उनकी माँ कर रही हैं, जिसमें प्यार, अनुशासन और सही मार्गदर्शन का संतुलन शामिल है।
3: मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 4 बजे से लेके मेरे पास पूरे दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि नियति को स्कूल छोड़ना, लेके आना, इसकी म्यूजिक क्लासेस के लिए, फिर और इसके प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं उसमें सब में, और मेरा अपना ऑफिस का वर्क भी रहता है और घर की जिम्मेवारियां तो है ही है, तो उसमें मेरे को पूरे दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कुछ इसके बियॉन्ड मैं सोच पाऊँ मेरे पास समय नहीं है। मेरा संघर्ष साकार होते हुए नजर आ रहा है कि मतलब मैंने जो इतना एफर्ट्स किए हैं कि नियति कुछ बच पाए, अपनी जगह समाज में बना पाए, उसके लिए मैंने पूरे एफर्ट्स किए थे। और आज लग रहा है जब लोग आके हमसे पूछते हैं कि आपने, आपके बच्चे ने इतना अचीव किया, तो बहुत खुशी होती है। नियति छोटी थी तो डेफिनेटली कई बार ना बच्चे आपस में जब खेलते हैं ना तो सवाल उठता है कि तेरे पापा कहाँ हैं, जो बहुत जनरल क्वेश्चन है। आई कार्ड पे बच्चे आपस में एक दूसरे का आई कार्ड देखते हैं, उसमें फादर्स नेम की जगह जब नॉट एप्लीकेबल लिखा होता है ना, तो वो एक सवाल बहुत बड़ा होता है। और वो नियति ने बहुत फेस किया है, वो नियति ने बचपन में फेस किया, लेकिन इसको इसकी नरिश उस तरीके से मेंटली नरिशमेंट ऐसे की कि अगर मेरे पापा नहीं है तो मेरी मम्मी ने वो सब काम करके दिखाए हैं जो पापा कर सकते हैं। तो वो इसको मेंटली, हमने 5-5.5 साल की थी तो इसको बैठा के समझाया कि बेटा तुम्हारे पापा किस वजह से छोड़ के गए और हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। तो आज भी एक जो पेरेंट्स के लिए बच्चों में ग्रैटिट्यूड खत्म हो जाता है, नियति में ग्रैटिट्यूड है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो मेरे को भी उनके लिए करके दिखाना है। वो ग्रैटिट्यूड ही है जो मैं अगर इसको कुछ कहती हूं ना कि बेटा तुम्हें ये अचीव करना है, तो वो अचीव करके दिखा देती है, वो अपने पूरे एफर्ट्स लगा देती है।
0: नियति सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है, वो साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविता और गीत लिखने वाली नियति को 17 देशों से सम्मान मिल चुका है। पढ़ाई लिखाई में बेहद अच्छी नियति की इच्छा संस्कृत भाषा में ग्रेजुएशन करने की है।
4: नियति ने तय कर लिया है उसे क्या करना है। फिलहाल गिनीज की खुशियां इस घर में गूंज रही हैं, लेकिन हम आगे, हम ये जानते हैं कि हमारी शुभकामनाओं की शायद ज़रूरत नहीं है, नहीं, ये माँ बेटी इतना स्ट्रांग है, लेकिन हम यही प्रेयर करते हैं कि बार बार हम नियति के पास आएं, दिव्या जी के पास आएं, उसकी सफलता की ऐसी बहुत सारी कहानियां हम सुने और आप लोगों को सुनाएं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। कैमरामैन संजीव के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
5: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
7: खान पान में बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने व्यवहार में क्या सुधार करें कि शुक्र मजबूत हो जाए, किस देवी देवता की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, क्या हैं शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: Tailgate Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
9: The Tailgate Top 20.
10: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
8: Try to keep up.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
12: अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कुंडली के, अपने जीवन के शुक्र को सरल उपायों से कैसे बेहतर बना सकते हैं। शुक्र कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में और उसको मजबूत कैसे बनाया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 2:02 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 11:24 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में और मंगल तथा शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप किन छोटे छोटे उपायों से, किन सरल तरीकों से शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, जैसे बृहस्पति को देव गुरु कहते हैं, वैसे ही शुक्र को दैत्य गुरु कहा जाता है। शुक्र को गुरु और मंत्री का दर्जा प्राप्त है। शुक्र का संबंध जीवन में सुख, वैभव और विलासिता से होता है। शुक्र व्यक्ति के जीवन में आनंद लाता है, खुशियां लाता है, चकाचौंध लाता है, ग्लैमर लाता है। शुक्र से व्यक्ति को ज्ञान भी मिलता है और खुशियां भी मिलती हैं। अगर शुक्र कुंडली में कमजोर हो जाए तो व्यक्ति जीवन में तमाम प्रयास करने के बावजूद सुखी नहीं होता, या तो विवाह होता नहीं या उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद और सुख
व्यक्ति को नहीं मिलता अगर उसकी कुंडली में शुक्र अनुकूल नहीं है। व्यक्ति को आंखों की, मन की और भावनाओं की समस्या परेशान करती है। तो एक लाइन में ये समझिए कि अगर आप जीवन में चैन से रहना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली के शुक्र को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे मजबूत करेंगे उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन आसानी से मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, व्यक्ति के जीवन में उसके ग्रहों पर, उसकी सोच पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है उसके खान पान का। तो अपने खान पान के द्वारा, उसमें बदलाव के द्वारा आप अपने शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं? स्वच्छ और सुंदर खाद्य पदार्थ खाइए, जो खाना साफ हो और अच्छा दिखाई भी दे, ऐसा भोजन ग्रहण करिए। भोजन में कच्चे फल और सलाद का प्रयोग करिए, अच्छा रहेगा। भोजन में दही का प्रयोग जरूर करें, खास तौर से दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा ठंडा पानी, बहुत लोगों को चिल्ड पानी पीने की आदत होती है, तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। कांच के गिलास से जल पीने का प्रयास करिए। कांच के गिलास से अगर पानी पिएंगे तो बहुत अच्छा होगा। खान पान के अलावा आप अपने व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं, और अपने व्यवहार में बदलाव के द्वारा
आप शुक्र को बेहतर बना सकते हैं। तो अपने व्यवहार के द्वारा शुक्र को कैसे ठीक करेंगे? अपने व्यवहार को मधुर और कोमल बनाइए, प्रेम से अच्छी तरह से बात करिए, चीखना चिल्लाना गाली देना ये सब बंद करिए, बड़े प्रेम से मिठास से बात करिए, स्त्रियों का विशेष सम्मान करिए, चाहे आपके घर की स्त्रियां हों चाहे बाहर की स्त्रियां हों। नियमित रूप से सुगंध का प्रयोग करिए, रोज सुबह स्नान करने के बाद सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होगा। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे आपके जूते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, अपने प्रेजेंटेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करिए, रोज शाम के समय में थोड़ा समय निकाल करके माता लक्ष्मी की उपासना करें। कुछ नहीं कर सकते तो शाम को लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाकर उनकी आरती करिएगा। अपने गुरु की अवहेलना मत करिए, अपने गुरु की बात मानिए और उनके निर्देशों का पालन करिए। शुक्र को मजबूत करने के कुछ और उपायों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कर्ज की समस्याओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, चिंताओं से राहत मिलेगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अपने खान पान में, अपने व्यवहार में, अपने तौर तरीकों में आप बदलाव करके शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। कुछ और उपायों की भी बात करते हैं जिनसे आप शुक्र को मजबूत बना सकते हैं। रात के समय में उपासना या ध्यान करना शुरू करिए।
सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, अच्छी बात है, वो करिए, लेकिन रात के समय में 2-4 मिनट 10 मिनट उपासना करिए या रात के समय में ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, लाभ होगा। नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करें, खास तौर से संध्या काल में या रात के समय में माता लक्ष्मी की उपासना बहुत बेहतर होगी। नियमित रूप से रोज सुबह स्नान के बाद सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा, माथे पर, कंठ पर सफेद चंदन का तिलक लगाना अच्छा होगा। सप्ताह में एक बार किसी भी देवी के मंदिर में जाइए, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी या माता काली के मंदिर में जाएं। अपने साथ हमेशा क्रीम रंग का रुमाल रखिएगा, एक सफेद रंग के स्फटिक की माला अपने गले में अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, मन आपका शांत होगा, चिंताएं आपकी दूर होंगी और शुक्र आपका मजबूत होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, आर्थिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने शुक्र को मजबूत करने के सरल उपायों पर चर्चा की, अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर जीवन के सुख चैन में कमी रहती हो, आप सुख से, शांति से, चैन से नहीं रह पाते हो, तो रोज शाम को माता लक्ष्मी की विधिवत आराधना करना शुरू कर दीजिए। अब जान लेते हैं दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से
कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है। हमें गुड न्यूज टुडे
7: विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है। हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर

0: समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच, जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: मणिपुर के लीमाकुंग सैन्य स्टेशन पर K9 योद्धाओं ने दिखाया रणकौशल। चुनौतीपूर्ण हालात में 5 डॉग टीमों का प्रदर्शन, राहत बचाव के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ड्रिल। कोच्चि तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी। INS शारदा और डी रुएटर युद्धपोत का युद्धाभ्यास। मानसून के दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन, धौलपुर से रावत भाटा तक चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग से आए श्रद्धालुओं के हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर, सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक, वीर की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत, 500 में से 500 नंबर लाकर बढ़ाया मान। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा राजस्थान के राजगढ़ में एक SHO के संवेदनशील पहल की भी है।
6: राजस्थान के राजगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल छू लिया। तस्वीरें राजगढ़ के पलवा गांव की है जहां दो बहनों की शादी की पूरी जिम्मेदारी जमुआ रामगढ़ में तैनात थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा ने उठाई और अपने घर से दोनों का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही और आसपास के लोगों ने भी परिवार की तरह उनकी मदद की। असल में इन दोनों बहनों की मां नहीं है और पिता मजदूरी करके परिवार चलाते हैं, ऐसे में बेटियों के विवाह की उन्हें चिंता थी, लेकिन थानाधिकारी मीणा और उनकी पत्नी ने बच्चियों के माँ बाप बनकर जिस तरह पूरे रीति रिवाज से उनका विवाह संपन्न कराया वो इलाके में चर्चा का विषय है। प्यार की एक अनूठी कहानी मध्य प्रदेश के सतना सेंट्रल जेल से सामने आई जहां एक जेल अधिकारी को उम्र कैद काट रहे कैदी से प्यार हो गया और एक लंबे इंतजार के बाद जब कैदी की सजा पूरी हुई तो दोनों सामाजिक बंधनों को पीछे छोड़ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। ये तस्वीरें उसी की हैं और ये कहानी है सतना सेंट्रल जेल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फिरोजा खातून और उम्र कैद की सजा काट चुके धर्मेंद्र सिंह के। जेल में वारंट इंचार्ज के तौर पर काम करते हुए फिरोजा धर्मेंद्र से मिली, बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई और ये दोस्ती पहले प्यार और फिर शादी में बदल गई।

0: हालांकि फिरोजा के इस फैसले से उनके माता पिता खुश नहीं थे, लेकिन समाज के लोगों ने आगे आकर दोनों के इस प्यार को मुकाम तक पहुंचाया। एक हिंदू परिवार ने फिरोजा का कन्यादान किया। सामाजिक बंधनों और तमाम वाद विवादों से ऊपर उठकर लिया गया फिरोजा और धर्मेंद्र का ये फैसला इलाके के लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसा मंच जहां दुनिया की सबसे अनोखी और असाधारण प्रतिभाओं को पहचान मिलती है और अब इस प्रतिष्ठित सूची में भारत की बेटी नियति का नाम शामिल हो गया है। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने उपलब्धि हासिल की है, लेकिन उनका हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। 14 साल की छोटी सी उम्र में ही वो 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्तोत्र बजाने से लेकर 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाकर लोगों को हैरान कर चुके हैं। यूपी के देवबंद इलाके में आयोजित सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में उस वक्त अलग ही नजारा देखने को मिला जब एक छोटा बच्चा उनकी ही वेशभूषा में कार्यक्रम में पहुंच गया। लोग उसकी वेशभूषा देखकर हैरान थे। बच्चा थाना देवबंद के जाटूल गाँव का रहने वाला है। उसका नाम संस्कार चौधरी है। संस्कार सीएम से मिलने के लिए खास अंदाज में यहां पहुंचे थे। उनके पिता के मुताबिक उन्होंने पहले भी मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन आज पहली बार संस्कार का सपना पूरा हो गया। वो न सिर्फ सीएम से मिले बल्कि सीएम योगी ने उनसे बात भी की और चॉकलेट भी दी। तस्वीरें मुंबई में रहने वाले हिंदी और भोजपुरी एक्टर अवधेश मिश्रा के घर की हैं, जहां हर काम में ये पेट्स डॉग उनका साथ देते हैं, चाहे भगवान की पूजा और आरती ही क्यों न हो। इन तीनों के नाम हैं जूली, जॉनी और चैम। दिलचस्प ये है कि जैसे ही अवधेश मिश्रा अपनी पत्नी रागिनी और परिवार संग पूजा पाठ करते हैं, सारे ही डॉग्स पूजा में शामिल हो जाते हैं। कोई अपने तड़की से शंख का रूप ले लेता है तो कोई आराधना में इतना लीन हो जाता है कि भगवान की तस्वीर की तरफ ही देखता रहता है। सारे ही पेट्स मिश्रा परिवार के साथ रोजाना ही इस तरह पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं। ये परिवार कबूतरों और बिल्लियों के लिए भी रोजाना खाने की व्यवस्था करता है।
1: और अब बात देश के एक ऐसे गांव की जिसकी पहचान मिनी ब्राजील के रूप में बन चुकी है। जिस तरह फुटबॉल को लेकर ब्राजील का नाम मशहूर है, कुछ उसी तरह से मध्य प्रदेश के इस गांव में फुटबॉल को लेकर जुनून है। अब खास बात यह है कि पहले इस गांव की छवि कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन फुटबॉल की तरफ इस गांव के लोगों का रुझान कुछ इस कदर बढ़ा कि अब गांव की तस्वीर ही बदल गई है। अभी इस गांव के 5 खिलाड़ी जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं, जिनका दिल्ली में शानदार स्वागत किया गया है।

0: इंसान अगर कुछ ठान ले और उसके लिए दृढ़ संकल्प और अटूट मेहनत के साथ प्रयास करे तो कामयाबी की राह खुद ब खुद बनती चली जाती है। ये बच्चे उसी राह पर अपने सफर को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये वो 5 बच्चे हैं जो एक छोटे से गांव से निकल कर जर्मनी तक का सफर पूरा कर लौटे हैं।
1: मध्य प्रदेश का एक छोटा सा इलाका बिचारपुर, जहां पर सबसे ज्यादा नशे का काम होता था, इसलिए वो बदनाम था। लेकिन आज इन बच्चों ने उस जगह का नाम रोशन कर दिया है। पूरे देश दुनिया इन बच्चों को जान रही है, बिचारपुर का नाम जान रही है, और जरिया बना है फुटबॉल। फुटबॉल की वहाँ पर एक ऐसी ललक जगी इन बच्चों में कि फिर उन्होंने खेलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया।
0: ये 5 बच्चे मध्य प्रदेश के शहडोल के उसी बिचारपुर गांव के हैं, जहाँ इन पर फुटबॉल खेलने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि अब जैसे सब कुछ उसी के लिए समर्पित कर चुके हैं। इनका ये जुनून इन्हें विदेश तक ले गया। ये सभी जर्मनी से फुटबॉल की ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं।
2: तो वहाँ तो पहले हम लोग पहले दिन गए तो हम लोग सर से जो हमारे मेन थे उनसे अब मुलाकात की है। फिर उसके हमारे दूसरे दिन हमारे ट्रेनिंग हुआ। फिर मैं एक डिफेंडर हूँ, फिर हमको डिफेंडिंग जो कैसे करना है और कैसे बॉल बचाना है तो वो सिखा रहे थे।
1: आप कभी सोचा था गांव में कि क्या बनना है बड़े होके? इस फुटबॉल के पहले कोई करियर, कुछ गोल कुछ सोचा था?
2: पहले तो हम लोग फुटबॉल ही नहीं खेलते थे। फिर जब सर हमको बोले खेलने के लिए, फिर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट किए। हमारे पास पहले जूते भी नहीं थे तो खाली पाँव भी आते थे खेलने। फिर उसके बाद धीरे धीरे मम्मी पापा ने भी सपोर्ट करने लगा। फिर उसके बाद हम लोग खेलना भी स्टार्ट अच्छे से किया।
3: थोड़ा आर्थिक व्यवस्था जो है, हमारे आर्थिक स्थिति वो थोड़ी खराब होती थी, इसलिए
1: चिंता रही कि फुटबॉल के शूज कहाँ से आएंगे, महंगी किट कहाँ से आएगी।
3: हाँ, वो स्टार्टिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, फिर हो गया। अब खेलना था तो खेलना है।
4: पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं कि इतना सोचे भी नहीं थे इतना आगे जाने के लिए। अभी अब पूरा ध्यान फुटबॉल में देना है।
0: इन होनहार बच्चों की वजह से बिचारपुर गांव अब देश विदेश में फुटबॉल की नर्सरी और मिनी ब्राजील के रूप में मशहूर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में इस गांव का जिक्र कर चुके हैं।
5: एमपी के शहडोल में एक गांव है बिचारपुर। बिचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि बिचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहां फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है।
0: कभी अवैध शराब और नशे के लिए बदनाम बिचारपुर गांव को वहां के बच्चों और युवाओं ने फुटबॉल को अपनाकर एक नई पहचान दी है। वहां से कई ऐसे खिलाड़ी निकल चुके हैं जो नेशनल और स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं और बड़ी संख्या में बच्चे इस खेल को लेकर अपना जुनून दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस गांव के बच्चों की प्रतिभा का जिक्र किया तो जर्मन फुटबॉल कोच डाइटमार बियर्सडॉर्फ भी बिचारपुर गांव पहुंचे थे और बच्चों को ट्रेनिंग देने की पेशकश की थी। ये 5 बच्चे वही हैं जो जर्मनी के मशहूर क्लब FC इंगोलस्टैड 4 में ट्रेनिंग लेकर लौटे। सोनिया सुहानी, प्रीतम, वीरेंद्र और मनीष, इन सभी को जर्मनी के फुटबॉल क्लब में आधुनिक तकनीक, फिटनेस, टीम वर्क और प्रोफेशनल गेम कल्चर की ट्रेनिंग दी गई। बिचारपुर की कहानी सिर्फ खेल की नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की भी मिसाल है। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था, जिसके शुरुआत गांव के कोच और स्थानीय लोगों ने दशकों पहले की थी। पहले बच्चों को खेल के लिए तैयार किया गया, फिर उनके अभिभावकों को मनाना पड़ा। बच्चों के इस खेल की जरूरी सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद जुटाई गई, तब जाकर एक नई क्रांति जैसी आई। और अब जब बच्चे विदेश तक ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो कोच का खुश होना और फख्र करना तो बनता ही है।
6: गांव तो बिचारपुर नशे के नाम से जाना जाता था पहले, क्योंकि फुटबॉल वहां का पूरा संभाग का लोकप्रिय खेल है, इसलिए सारे गांव में फुटबॉल चलती थी। लेकिन यह कि एक कोई स्तर नहीं था, अपने स्तर में बच्चे खेलते थे। तो मैं खुद भी राष्ट्रीय खिलाड़ी था। फिर उसके बाद जब मैंने NIS की ट्रेनिंग लिया तो मुझे लगा कि एक कोच की अहमियत क्या होती है और कुछ मुझे करना है बच्चों के लिए। फिर जो कि हम लोग को उस तरह से कोचिंग नहीं मिल पाई जिससे हम लोगों ने उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए, तो मैं ऐसे गाँव के बच्चों को तैयार करने की ठानी और वहाँ पर फिर मैंने 2002 से इनको कोचिंग देना शुरू किया। फुटबॉल के लिए इनको टेक्निकल की जरूरत थी, फिजिकली ये तो ठीक थे, तो टेक्निकल मैंने डेवलप किया इनको ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सकें, और फिर इनके छोटे छोटे पांचवीं छठवीं के बच्चे लेकर के मैंने काम किया।
0: जो पांच बच्चे जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं उनमें दो लड़कियां भी शामिल हैं। पहले बिचारपुर की लड़कियों के लिए फुटबॉल खेलना महज एक सपना जैसा था, लेकिन अब यहां की लड़कियां न सिर्फ फुटबॉल खेल रही हैं बल्कि इनमें आगे बढ़ने का गजब का हौसला भी नजर आ रहा है।
7: सर, तो मैं पहले फुटबॉल नहीं खेलती थी, फिर रही सर ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम गोलकीपर के लिए अच्छा खेल सकती हो। तो सर, तो फिर मैं डेली रही सर के पास प्रैक्टिस जाने लगी, फिर जाते जाते मैंने विचारपुर में ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ से मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया फुटबॉल पे कि अब मुझे फुटबॉल ही खेलना है। फिर हमें पता चला कि हम जर्मनी जाने वाले हैं। तो सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से गाँव से बिलोंग करते थे, तो ये भी नहीं सोच सकते थे कि हम फ्लाइट में कभी जाएंगे। हमें तो ट्रेन में जाने का भी मौका कभी कभार मिलता था।
8: अच्छा लगता है कि हम लोग इतने दूर गए खेलने और हम लोग का नाम इतना चल रहा है मिनी ब्राजील, तो फैमिली और गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं कि हम लोग का इतना डेवलपमेंट हुआ वहाँ। मिनी ब्राजील को पीएम मोदी जी ने हमारा नाम इतना वो किया, तो अच्छा लगता है सबको।
0: फुटबॉल ने बिचारपुर गांव के बच्चों को न सिर्फ नशे और अपराध से दूर किया बल्कि गांव की छवि को भी चमका दिया, और अब वहां के बच्चे कड़ी मेहनत से नई गाथा लिख रहे हैं।
1: फीमेल कोच भी हमारे साथ में है, बहुत बड़ा रोल होता है कोच का हो या कोऑर्डिनेटर को हो, इन सब का रोल बहुत बड़ा है एक टीम को खड़ा करने में, उस टीम को इतना दूर ले जाने में। मैम, आप कितना मुश्किल, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके लिए रहा होगा लड़कियों को बच्चियों को तैयार करना, उनके पेरेंट्स को मनाना, कितना मुश्किल ये काम था?
9: मेरे टाइम में तो नहीं रहा क्योंकि सर बहुत मेहनत किए थे, तो पहले से ही पेरेंट्स मान गए कि लड़कियाँ आगे जा सकती हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई पेरेंट्स को मनाने में।
1: जो जगह कभी नशे के लिए मशहूर थी वो जगह आज उसको लोग मिनी ब्राज़ील बोलते हैं, इन बच्चों की वजह से ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा जैसे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
10: स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का हुआ सफल परीक्षण। आई सी आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: 11 मई को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके पर पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। वो यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सोमनाथ के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। इससे पहले आज से 11 मई तक मंदिर में अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 75 साल पहले इस मंदिर का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आज सालाना 1.5 करोड़ लोग भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए मंदिर आते हैं। पीएम मोदी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र बोर्ड ने इस साल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। कुल 5% 92.09% रहा है। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। लड़कियों का 5% 94.96% रहा, जो लड़कों के 89.56% से करीब 5% अधिक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। यहां वो नवनिर्मित विष्णु मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां भगवान विष्णु, प्रथम पूज्य गणेश, महादेव शंकर, आदि शक्ति मां दुर्गा और संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां एक साथ स्थापित की गई हैं। सीएम योगी आज यहां अपने परिजनों और गांव के लोगों से भी मिले। गुजरात बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के मामले में भारत के टॉप 5 राज्यों में शुमार हो गया है। गुजरात में अब 5 जगहों पर 870 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता शुरू की गई है। इसके अलावा बैटरी स्टोरेज प्रणाली स्थापित करने के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, पाटन और कच्छ जिले में 13 नए प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। डिफेंस सेक्टर में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। देश में ही बना ये एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, जो बिना गाइड वाले वॉरहेड्स को सटीक निर्देशित हथियारों में बदलने की क्षमता रखता है। हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र ने डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से तारा को डिजाइन और विकसित किया है।
10: और अब बात करते हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में जगह जगह प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही है। तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा और सुविधा की तैयारियों का अधिकारी लगातार जायजा लेते नजर आ रहे हैं और जरूरी महसूस होने पर तैयारियों को लेकर निर्देश भी दे रहे हैं, ताकि श्रद्धालु आराम से पवित्र गुफा तक पहुंच सके और वहां से उसी तरह लौट भी सके।

0: ਦੀ ਫਤਿਹ ਹਰ ਹਰ
1: ਮਹਾਦੇਵ
2: हर साल बड़ी संख्या में शिव भक्त अमरनाथ की कठिन यात्रा करते हैं ताकि वहां पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य मिल सके। बाबा अमरनाथ की यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है, तब भी लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये वही गुफा है जहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। मान्यता है कि इस पवित्र गुफा में बने बर्फ के शिवलिंग का सच्चे मन से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ इस पवित्र धाम की यात्रा से 23 तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य मिलने की भी मान्यता है। इस साल 3 जुलाई से ये तीर्थ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। साथ ही अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
3: यात्रा शुरू होने में अभी समय है, लेकिन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड हो या दूसरी सरकारी एजेंसियां हो, सभी तैयारियों में जुट चुके हैं। अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू जिला हो, उधमपुर जिला हो, रामबन जिला हो या बाकी जिले हों, सभी जिलों में जो हैं तैयारियां जोर शोर से चल रही है और प्राथमिकता यही है कि जो श्रद्धालु देश भर से यहां जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे उनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।
2: अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंचने के बाद यहां से कश्मीर की ओर रवाना होते हैं, इसलिए जम्मू संभाग में भी इस यात्रा को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। 2 जुलाई को यात्रियों के पहले जत्थे को शहर के भगवती नगर यात्री निवास से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 3 जुलाई को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गो से औपचारिक रूप से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, इसलिए यहां यात्रा को लेकर तैयारियों में तेजी देखी जा रही है।
3: जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास भवन के बाहर यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, ये है यात्री निवास भवन जो कि जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और अगर हम इस यात्री निवास भवन की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि इसी यात्री निवास भवन के बाहर से प्रतिदिन जब ये यात्रा शुरू होती है तो यात्रियों का जत्था यहीं से रवाना होता है। दाई और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये पार्किंग स्पेस है और यहीं से जो है श्रद्धालुओं का जो है जत्था प्रतिदिन यहां से रवाना होता है। यहां पर बसें लगी हुई होती हैं, गाड़ियां लगी हुई होती हैं, कार्स लगी हुई होती हैं और उन्हीं के जरिए जो है श्रद्धालु कश्मीर घाटी की तरफ जाते हैं। 3 जुलाई को विधिवत तौर पर ये यात्रा जो है कश्मीर घाटी में शुरू हो जाएगी दो मार्गों से, एक तो पारंपरिक पहलगाम मार्ग है जो कि दक्षिण कश्मीर में है और दूसरा जो है मध्य कश्मीर में बालटाल मार्ग से है।
2: जम्मू कश्मीर में जहां जहां से गुजरते हुए यात्री अमरनाथ गुफा के लिए जाएंगे, वहां की सड़कों से लेकर यात्रियों के ठहराव से लेकर खान पान समेत बाकी सभी सुविधाओं को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है।
4: अब की बार अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि सालों बाद करीब 2 महीने तक यानी रक्षाबंधन तक कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चलेगी। पिछले कई सालों के दौरान अमरनाथ यात्रा को लेकर और उसको सरल बनाने को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से कई सारे उपाय किए गए हैं, जिनमें अमरनाथ गुफा तक रेस्क्यू और मदद के लिए सड़क भी पहुंचाई गई है और साथ ही साथ चिकित्सा जो हेल्थ सोसाइटी है, चाहे मोबाइल नेटवर्क हो, हर तरह की सुविधा जो है श्रद्धालुओं को अब की बार अमरनाथ यात्रा पर दी जा रही है।
2: रामबन जिले में भी अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। हाल ही में यहां NH-44 के किनारे बने यात्री निवास और लंगर सुविधाओं का निरीक्षण करने DC समेत अलग अलग विभागों के अधिकारी भी पहुंचे थे।
5: रामबन बानिहाल सेक्टर की अगर हम बात करें तो चंद्रकोट में यात्री निवास में सभी इंतजाम किए गए हैं और जो सिक्योरिटी हो, चाहे रहने का बंदोबस्त हो, लॉजिंग बोर्डिंग हो, जो भी इंतजाम है उन सबको हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान की सरबराही में SSP रामबन और डिस्ट्रिक्ट के सभी अफसरान ने नाशरी टनल से लेके बानिहाल टनल तक का दौरा किया, जिसमें यात्री जो निवास चंद्रकोट है उसकी भी सभी इंतजाम देखे गए और वहीं लांबर ग्राउंड में भी सभी इंतजाम देखे गए।
2: तीर्थयात्रियों को ठहराने के लिए चंद्रकोट स्थित यात्री निवास और बनिहाल के लंबर ग्राउंड में बने यात्रा पड़ाव पर सुविधाओं को काफी बेहतर बनाया गया है। साथ ही अधिकारियों का जोर रामबन और बनिहाल सेक्टर में सड़कों की हालत को और ज्यादा बेहतर बनाने पर है। अधिकारियों के मुताबिक यहां अमरनाथ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा समेत सभी जरूरी व्यवस्था लगभग अंतिम चरण में है।
6: डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के
0: साथ हमने वहाँ पे विजिट किया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस थी हर डिपार्टमेंट को दी गई हैं डी साहब के थ्रू, और हर डिपार्टमेंट अपने काम में लगा है, और स्टिल वी हैव सफिशिएंट टाइम, हमने काम शुरू कर दिया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सैनिटेशन का हो, चाहे अदर वर्क्स हो, तो सारे डिपार्टमेंट उसमें जोर शोर से काम कर रहे हैं और होपफुली वेल इन टाइम सारी तैयारी हम मुकम्मल कर देंगे। बनिहाल में लांबर यात्रा ग्राउंड है, वहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है, बोर्डिंग लॉजिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट है, और उसमें अगमेंटेशन भी की जा रही है, उसमें ईयर वाइज इम्प्रूवमेंट की जा रही है, होपफुली इस साल कोशिश रहेगी कि तो इसमें अगमेंटेशन हो जाए। अराउंड 1000 से 1500 तक यात्री को स्टे करने का प्रॉपर अरेंजमेंट हमारे पास है।
2: उधमपुर में भी अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में उपायुक्त मिंगा शेरपा ने अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए जा रहे लॉजमेंट सेंटर्स, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और RFID काउंटरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण कर तैयारियों को परखा।
1: यात्रा के मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बार बार विजिट कर रहे हैं, और जो कंसर्न कंपनी है वो भी दिन रात लगे हुए हैं, रोड के जो रोड में डैमेजेस हुए थे उनको रिपेयर किया जा रहा है, और बेहतर रोड बना के अच्छे से यात्रा चल सके इसकी व्यवस्था की जा रही है।
2: प्रशासन का पूरा फोकस तैयारियों को समय पर पूरा कर लेने पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 31 लॉजमेंट सेंटर चिन्हित किए गए हैं, जिन पर श्रद्धालुओं के ठहरने, विश्राम और बाकी दूसरी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
6: यात्रा रिगार्डिंग वर्दी डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी रिव्यू मीटिंग ली थी, तो जिला उधमपुर में भी सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई थी, जो हमारे जितने भी हमारे लॉजमेंट सेंटर्स हैं, लंगर के साइट्स हैं, जितने भी हमारे वॉशरूम्स बनेंगे, टेकअप होंगे यहाँ पे अलॉन्ग द रूट, इसके अलावा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जो हमारे RFID काउंटर्स रहते हैं पिछले साल जैसे इस साल भी रेडी रहेंगे, तो पूरा जिला उधमपुर अभी रेडी हो रहा है कि जो हमारी यात्रा श्री अमरनाथ जी यात्रा होगी उसके सारी तैयारियाँ दुरुस्त रहें।
2: साफ है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली ये पवित्र यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वानी और रामबन से राशिद रसूल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: न्यूज पथ पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
2: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 516 अंक लुढ़ककर 77,328 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 150 अंक फिसला, यह गिरकर 24,176 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रूपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,55,900 रूपए हो गई। वहीं चांदी भी 200 रूपए सस्ती हुई। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,61,300 रूपए पर आ गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 25 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 94 रूपए 47 पैसे हो गई। जापानी लग्जरी कार कंपनी लेक्सस ने अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 3-रो SUV TC को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इस नई इलेक्ट्रिक SUV को 6 सीटों वाले प्रीमियम मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है। लेक्सस टीजी को 2 बैटरी विकल्पों के साथ पेश किया गया है। कंपनी का दावा है कि बड़ी बैटरी वाली कार एक बार चार्ज करने पर 530 किलोमीटर तक जा सकती है और महज 5.4 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है।
7: जारी हुआ संजय दत्त की फिल्म माखरी सवाल का ट्रेलर, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं फिल्मी मोड पर।
2: अभिनेता संजय दत्त की मच अवेटेड फिल्म आखिरी सवाल का ट्रेलर जारी हो गया। ट्रेलर काफी दमदार है और ये कई ऐतिहासिक सवालों के जवाब भी देती है। ट्रेलर की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के ऐलान से होता है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और बाबरी मस्जिद विध्वंस पर आ जाती है। ट्रेलर में संजय दत्त एक प्रोफेसर के रोल में है, जो अपनी बातों को बड़े बेबाक तरीके से रखते नजर आए हैं। फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
8: विल शिवाजी बेंड द नी?
9: देखिए, डिबेट नहीं है, ये दंगा है।
10: पारिजात का पेड़ भले हमारे आंगन में हो, पर इसके फूल तो हमेशा औरों के आंगन में गिरते हैं।
2: रितेश देशमुख की पीरियड ड्रामा फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में ही 50 करोड़ का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। पहले वीकेंड में फिल्म ने 57 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की है। शानदार एक्शन और ऐतिहासिक गाथा से सजी ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म का लेखन, निर्देशन और निर्माण खुद रितेश देशमुख ने किया है। फिल्म में रितेश लीड रोल में है।
10: अकड़ तोड़ने का नुस्खा हम भी जानते।
2: सुबेदार, तुम्हारी सुलू और जलसा जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी ने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली दो फिल्मों का अनाउंसमेंट किया है। एक फिल्म में राकेश बेदी तो दूसरी फिल्म में जयदीप अहलावत लीड रोल में नजर आने वाले हैं। दोनों कलाकारों ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्मों के फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किए हैं। राकेश बेदी की फिल्म का नाम NH404 है। इस फिल्म के पोस्टर में वो एक रोड रोलर के नीचे दबे नजर आ रहे हैं। पोस्टर शेयर करते हुए राकेश बेदी ने लिखा, अगर रोड रोलर देखो तो लेफ्ट और राइट देखकर रोड क्रॉस करो। वहीं जयदीप अपनी फिल्म दलदल के पोस्टर में दलदल में फंसे दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, इस दलदल में तुम सब भी फंसोगे। शाहिद कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहिद एयरपोर्ट में अंदर जाने के लिए लाइन में लगे नजर आए। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शाहिद से कहा कि वो पहले जा सकते हैं, वरना लोग उन्हें पहचान लेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। हालांकि शाहिद ने पहले तो मना किया, लेकिन बुजुर्ग की उनके लिए फिक्र देखकर वो उन्हें मना नहीं कर पाए। वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। लोग इस वीडियो में शाहिद और बुजुर्ग के व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
7: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: मणिपुर के लीमाकोंग सैन्य स्टेशन पर K9 योद्धाओं ने दिखाया रणकौशल। चुनौतीपूर्ण हालात में 5 डॉग टीमों का प्रदर्शन, राहत बचाव के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ड्रिल। कोच्चि तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी। INS शारदा और डी रूटर युद्ध पोत का युद्धाभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन। धौलपुर से रावत भाटा तक चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग से आए श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर। सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक। बीट की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत, 500 में 500 नंबर लाकर बढ़ाया मान। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाएं। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बाराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटी सी ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में एक पोर्टेबल जनरेटर फिट किया गया है, मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ चल रहा है। एक दुल्हन की विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी होता है उसे देख किसी के लिए भी अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है, तो उनमें से कुछ दाने उछल कर उसकी माँ के मुँह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुँह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि शेरों का एक पूरा कुनबा एक अकेले भैंसे को घेर कर खड़ा है। शेर उस पर कहर बनकर टूट पड़े हैं, लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मारकर हवा में उछाल दिया। हालांकि तीन चार शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक दूर से धूल का गुबार उठा और भैंसे के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसे शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, खिसक लेने में ही भलाई है। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है। ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से। जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था, एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचाए हुए है। वीडियो में नानी सीख रही हैं और नातिन से खा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात यह है कि नानी सिर्फ सीख नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी, इसलिए वो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन भी तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा गढ़ देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही अद्भुत रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतना सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये 20 फुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटों में बनाई। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठ कर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरती दिख रही है, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनके आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं।
7: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में चलने वाली मेट्रो सेवा। इन दोनों शहरों में मेट्रो में अब लोग सफर के साथ अपने किसी खास दिन का जश्न भी मना सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भोपाल और इंदौर मेट्रो में सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स पहल शुरू की। इसके तहत लोग अब मेट्रो कोच में बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट, डॉक्यूमेंट्री या फिर फिल्म शूटिंग जैसी एक्टिविटी कर सकेंगे। बिना सजावट वाले मेट्रो कोच की बुकिंग 5,000 रुपये प्रति घंटा और चलती मेट्रो कोच की बुकिंग 7,000 रुपये प्रति घंटा तय की गई। जश्न मनाने के लिए बुक किए गए एक कोच में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति मिलेगी। कोच बुक करने के लिए कम से कम 15 दिन पहले आपको आवेदन करना होगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। मेट्रो कोच के अंदर जश्न मनाने के दौरान स्मोकिंग, आतिशबाजी और शराब पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस अनोखी पहल से लोगों में मेट्रो को लेकर आकर्षण बढ़ेगा और यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही इस नई पहल से मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कमाई बढ़ाने की भी उम्मीद है। भोपाल मेट्रो का उद्घाटन 20 दिसंबर 2025 को हुआ था और 21 दिसंबर से इसे आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। शुरुआती दिनों में यात्रियों की अच्छी संख्या देखने को मिली, लेकिन बाद में मेट्रो यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आ गई। भोपाल में फिलहाल करीब 6 किलोमीटर ट्रैक पर 8 स्टेशनों के बीच मेट्रो चल रही है, जबकि इंदौर में 6.3 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। भोपाल और इंदौर में सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स पहल को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
12: मेट्रो पब्लिक की सुविधा के लिए बनाई गई है। सुविधा देने की बजाय सेलिब्रेशन ऑन व्हील से मुझे लगता है जो पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल करते हैं उनको असुविधा ज़्यादा होगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे टैक्स से ये बनाया गया है उसका सरकार कमर्शियल उपयोग कर रही है, व्यवसायीकरण के लिए उसका उपयोग कर रही है, जो कि एक गलत नीति साबित हो सकता है आगे चल के। 1 या 2 टाइम के लिए, 1 या 2 बार के लिए ये ठीक है कि लोग जाएंगे इंजॉय करने के हिसाब से कि मेट्रो में देख के आते हैं कैसा लगता है, बट उससे ऊपर ये सर्विसेज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगी। बिकॉज आप जहाँ जिस मेट्रो स्टेशन पे रहेंगे पहुँचेंगे, आपको पार्किंग की सुविधा उतनी देनी पड़ेगी, आपको साफ़ सफाई की सुविधा उतनी देनी पड़ेगी, आपको टॉयलेट्स की ऑक्यूपेंसी उतनी देनी पड़ेगी, बिकॉज पार्टी में आप 15-20-25 लोग जैसे ही करते हैं उस हिसाब से उसकी सुविधाएं भी आपको बनानी पड़ेंगी।
13: अभी मैंने देखा जैसे मेट्रो का जो वेडिंग शुरू हुआ है ये अच्छी बात है और करना भी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइप का ये एक यूनिक चीज़ है। मगर मैं गवर्नमेंट को लेके एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा क्योंकि इसकी जगह आप हाईवे पे देखते हाईवे बनाते हाईवे में आप काम करते जैसे यहाँ पर रोडें ख़राब हैं तो आप रोड पे काम करते वो अच्छी चीज़ है बिल्कुल डेफिनेटली। मगर आपने इतना करोड़ों रुपए लगाए हैं जापान की कंपनी से टाई अप किया हुआ है बहुत सारी चीज़ें आपने लगाएं उसके ऊपर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ मैसेज तो जा रहा है गलत। मैं चाहूँगा कि एक आप रोड देखें कितनी ख़राब हो रही है आप रोड पे ज़्यादा ध्यान दें।
14: सर अभी तो देखिए बेसिकली अभी तो है ना पब्लिक सेक्टर में अपन देखते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह और उसके वजह से अभी मतलब प्रॉपर तरीके से यूज़फुल भी नहीं है क्योंकि अभी कहीं पर भी सही तरीके से चल नहीं रही है और ना कहीं पर अभी पब्लिक मतलब या तो बुक कर रही है ना अच्छे से मतलब कोई भी फ़ायदा उठा नहीं पा रही है ठीक है। और दूसरा ये है कि एक तरीके से पब्लिक सेक्टर के हिसाब से ठीक भी है लेकिन मतलब उसी सेक्टर में अपन देखा जाए तो मतलब पब्लिक को उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है दिक्कत भी हो सकती है अगर मतलब पब्लिक मतलब उसमें और उसमें अलग सेलिब्रेशन भी चल रहा है तो उसमें मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है वो थोड़ा स्टे अच्छे से नहीं कर पाएगी ना मतलब कंफर्टेबल रह पाएगी। और दूसरा ये कि मतलब अपन ने मतलब मेट्रो में इतना ज़्यादा पैसा लगाया है इतना ज़्यादा खर्चा किया है तो उसमें ये नहीं है कि मतलब उसमें भी सेलिब्रेशन हो उसमें भी पार्टियाँ हो पार्टियों के लिए दूसरी जगह है और मतलब उसको मतलब जैसे पब्लिक के लिए बेसिक तो अभी बहुत महंगा है तो या तो पब्लिक सेक्टर के लिए थोड़ा टिकट्स वगैरह के पैसे कम कर दिए या तो पब्लिक के लिए सोचना चाहिए ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन वगैरह हर जगह पार्टी वगैरह थोड़ा पब्लिक के लिए सोचना चाहिए अपने को।
15: जैसे अभी जिस हिसाब से अभी भोपाल में जब वो पूरी अभी मेट्रो का जो काम चल रहा है अभी बना नहीं है तो उस हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं जो घाटे में जा रही हैं चीज़ें उस हिसाब से जो नई स्कीम निकाली है तो फ़ायदेमंद है जिनको कुछ नई चीज़ें करने का मन हो या ऐसी चीज़ें करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं इसमें अच्छा करा है तो मैं तो बोलूँगा कि हाँ सही है ये चीज़ कि सब रुपए का अगर करता है ये सब उनको पार्टी करनी हो या कुछ भी ऑर्गेनाइज करना हो ट्रेन में या मेट्रो में तो वो कर सकते हैं।
16: अट्रैक्ट तो होंगे अगर ये सर्विस अगर उनने स्टार्ट करी है तो जो एडवेंचर्स के हिसाब से अगर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ वहाँ पे अगर जाना चाहे जैसे कि बुकिंग भी उसकी 15 दिन पहले की है जो भी चीज़ें हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट ये चीज़ क्योंकि आने वाले टाइम में अभी मेट्रो के 2 रूट चालू हैं आने वाले टाइम में 3रा रूट एक और चालू होगा तो उस हिसाब से तो अभी जो टाइमिंग ले रहे हैं जो मेट्रो का टाइमिंग चल रहा है कि आदमी को वो सुभाष नगर से अगर इस तरफ जाना है एम्स तरफ जाना है तो मेट्रो का टाइमिंग अलग है तो उस हिसाब से आदमी उसमें मैनेज कर सकता है और एंजॉय कर सकता है अपना।
7: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। देश में वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयास रंग ला रहे हैं। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि 20 साल बाद अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर दिखा है। आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्या है अरुणाचल की इस सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिस वजह से यहां पर बंगाल टाइगर की चहलकदमी बरसों बाद नजर आई है।
17: बंगाल टाइगर की इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। दशकों बाद रॉयल बंगाल टाइगर के दर्शन अरुणाचल के जंगलों में हुए हैं। ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि 2 दशकों से अरुणाचल में बंगाल टाइगर नहीं देखे गए थे और चिंता जताई जा रही थी कि क्या जंगल के बदले मिजाज ने रॉयल बंगाल टाइगर्स को अरुणाचल के घने जंगलों से दूर कर दिया है। अरुणाचल के जंगल में ये तस्वीर उस वक्त खींची गई जब डंपर ट्रक ड्राइवर्स ने पुराने कोमली घाट रोड पर बंगाल टाइगर को चहलकदमी करते देखा। यही नहीं कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने बंगाल टाइगर को सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ों की छांव में आराम करते हुए भी देखा। लोगों के अनुसार कुछ देर दिखने के बाद टाइगर वापस जंगल की तरफ चला गया लेकिन ये तस्वीर सुकून का पक्का सबूत बन गई। कुछ दिन पहले अरुणाचल के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर के पंजे देखे गए थे लेकिन ये पहली बार है जब बंगाल टाइगर को इतने पास से देखा गया और उसका वीडियो बनाया गया है। फिलहाल टाइगर के इस दीदार के बाद से अरुणाचल का वन विभाग खुश है। यहाँ बंगाल टाइगर की मौजूदगी इस बात का भी सबूत है कि अरुणाचल के डियरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के जंगलों का इकोसिस्टम अब बेहद हेल्दी है। अरुणाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंगाल टाइगर का दिखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंचुरी 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। ये जंगल लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन का भी ठिकाना है, लेकिन करीब दो दशक बाद यहाँ बंगाल टाइगर का होना इस बात की गारंटी बन गया है कि दुनिया के सबसे बड़े शिकारी के लिए यहाँ पर्याप्त शिकार मौजूद है। अरुणाचल की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जश्न है, लेकिन एक डर भी है। वो ये कि कहीं ये टाइगर आसपास के गांवों पर हमला बोल लाना शुरू कर दे। अरुणाचल के इस इलाके में बंगाल टाइगर की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत सामने आने के बाद वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से रात के समय जंगल की ओर ना जाने की अपील की गई है। रॉयल बंगाल टाइगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। भारत में अभी 3,680 जंगली बाघ हैं, जो दुनिया की कुल बाघ आबादी का करीब 75% माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात आदित्य धर की धुरंधर फिल्मों की, जो कि बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में हैं। रणवीर सिंह की इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस साल बड़े पर्दे पर उतरी फिल्म धुरंधर 2 ने तो अभी तक 1700 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी कर ली है। लेकिन इस फिल्म की कहानी जिस जगह खत्म हुई है, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि आदित्य धर अब धुरंधर 3 भी लेकर आएंगे। हाल ही में धुरंधर की प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने संकेत दिए हैं कि साल के अंत में धुरंधर के फैंस को बड़ा सरप्राइज मिल सकता है।

0: क्या बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी धुरंधर 3? बनेगी पारंपरिक फिल्म या बड़े पर्दे पर होगा नया एक्सपेरिमेंट? कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनती, इतिहास बनाने के लिए बनाई जाती हैं। आदित्य धर की धुरंधर ऐसी ही एक फिल्म है जिसकी फ्रेंचाइजी मतलब धुरंधर के दोनों पार्ट ने 3,000 करोड़ की कमाई कर भारतीय सिनेमा के इतिहास में कमाई का कीर्तिमान स्थापित किया है। बड़ी बात यह है कि धुरंधर फ्रेंचाइजी का सफर यही खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये कि धुरंधर 3 को लेकर संभावना अभी बनी हुई है। माना जा रहा है कि साल के आखिर में धुरंधर के फैंस को बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। धुरंधर की प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभी धुरंधर खत्म नहीं हुई है, हम ऑडियंस के लिए इस साल के आखिर तक में एक सरप्राइज लेकर आएंगे, हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद ही धुरंधर 3 को लेकर चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि मेकर्स इस बार सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि पूरा स्पाई यूनिवर्स तैयार करने की प्लानिंग में है और धुरंधर 3 में हमजा की कहानी को एक बड़े लेवल पर दिखाया जा सकता है। हालांकि ज्योति देशपांडे ने ये नहीं बताया कि फिल्म का तीसरा पार्ट आएगा या कोई स्पिन ऑफ फिल्म होगी और असली पेच यहीं पर फंसा है। दरअसल इससे पहले खबर आई थी कि धुरंधर फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर आदित्य धर इस फ्रेंचाइजी को एक नए और अनोखे अंदाज में आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। ये अंदाज कुछ वैसा ही है जैसा आप कभी कभी फिल्मों के आखिर में देखते हैं, मतलब फिल्म का BTS वीडियो यानी फिल्म मेकिंग का बिहाइंड द सीन वीडियो। बताया गया कि अब धुरंधर और धुरंधर 2 के इन अनदेखे BTS वीडियो को फिल्म का रूप देते हुए रिलीज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म की पूरी टीम अब धुरंधर यूनिवर्स की मेकिंग पर आधारित एक खास फिल्म तैयार कर रही है। इस फिल्म में शूटिंग के दौरान के खास पलों को, पर्दे के पीछे की झलकियों और कलाकारों के इंटरव्यू को शामिल किया जाएगा। इसे एक फुल लेंथ फीचर फिल्म की तरह थिएटर में रिलीज किया जाएगा जो इस साल के आखिर तक दर्शकों के सामने आ सकती है। इस खास प्रोजेक्ट में दर्शकों को फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया करीब से देखने का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि दर्शकों को इस साल के आखिर में सरप्राइज क्या मिलता है, एक नई फिल्म के रूप में धुरंधर 3 या फिर BTS वीडियो और इंटरव्यूज को मिलाकर बनी एक नई एक्सपेरिमेंटल डॉक्यूमेंट्री। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: डायमंड्स के ऑक्शन हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहती है। ऐसे एक ऑक्शन है सोबीज स्प्रिंग ऑक्शन। इस ऑक्शन के दौरान इस बार एक रेयर ब्लू डायमंड नीलामी के लिए रखा गया है। अपनी चमक और कीमत की वजह से ये हीरा सभी का ध्यान खींच रहा है।
2: डायमंड और उसकी कीमत ने हमेशा ही दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरी है और लोगों को हैरान किया है। इस बार सोथबीज की स्प्रिंग ऑक्शन भी दुर्लभ ब्लू डायमंड के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिनेवा में होने वाली इस ऑक्शन में इस बार एक फैंसी विविड ब्लू ग्रेड हीरा शामिल किया गया है और उम्मीद है कि इसकी नीलामी $12 मिलियन यानी $1,20,00,000 रुपए तक जा सकती है। यह हीरा दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक कुलिनन हीरा खदान में से निकला है। यह अनमोल हीरा 6 कैरेट का है और रंगीन हीरों में से दुर्लभ वैरायटी में से एक है। यह हीरा अंदर से पूरी तरह बेदाग है और ना ही इसमें कोई अशुद्धि है, जिसकी वजह से यह विशेष रूप से दुर्लभ पत्थरों में शुमार है। इस हीरे के साथ सोथबीज की स्प्रिंग ऑक्शन में सिंगर रिहाना का एक बेशकीमती मल्टी पीस सेट डिजाइन सेट भी शुमार है। ये सेट मशहूर स्विस लग्जरी ब्रांड चोपार्ड के सहयोग से डिजाइन किया गया है। इसे पहली बार 2017 में कांस रेड कार्पेट पर पेश किया गया था। ये सेट चमकीले रंग के कीमती पत्थरों का मिश्रण है, कलाकार की कैरेबियन जड़ों से प्रेरित है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ ब्रेक प्लाजा में हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. All streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
1: सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई की ओर से जारी की गई है खास एडवाइजरी। खेल जगत से जुड़ी कुछ ऐसी और खबरों को जानने और समझने के लिए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: आईपीएल के जारी इस सीजन के बीच बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाया है। उसने हनी ट्रैप, कानूनी जवाबदेही और सुरक्षा जोखिमों की आशंका जताते हुए आईपीएल में खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और टीम अधिकारियों के होटल के कमरों में बिना इजाजत आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट के दुर्व्यवहार और प्रोटोकॉल उल्लंघन की कुछ घटनाओं की जानकारी को लेकर यह कदम उठाया गया है। आईपीएल के सभी 10 फ्रेंचाइजी के लिए जारी एडवाइजरी में बीसीसीआई ने मेहमानों को खिलाड़ियों और अधिकारियों के कमरों में जाने के लिए टीम मैनेजर से लिखित इजाजत लेने की जरूरत होगी। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीतकर केआरके ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मौजूदा सीजन में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इस मुकाबले से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 10 मैच खेलकर 4 में जीत हासिल की है और 8 अंक के साथ वो 7वें पोजीशन पर है। वहीं केआरके ने 9 मैच खेलकर 3 में जीत दर्ज की है और वो 7 पॉइंट्स के साथ टेबल में 8वें नंबर पर है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या रविवार को आरसीबी के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले के लिए रायपुर पहुंचकर टीम से जुड़ गए हैं। उन्हें पिछले हफ्ते अचानक पीठ में खिंचाव की समस्या हुई थी, जिसके चलते वो पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे और उनकी जगह सूर्य कुमार यादव ने टीम की कप्तानी संभाली थी। पीठ में खिंचाव की परेशानी से पूरी तरह उबरने के बाद वो एक बार फिर टीम से जुड़ गए हैं। मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये जानकारी शेयर की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर बिहार झारखंड के सबसे ज्यादा आयकरदाता बने हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उन्होंने एक बार फिर व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिया है। रांची के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार झारखंड के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डॉक्टर डी सुधाकर राव ने क्षेत्र के टैक्स कलेक्शन और कार्रवाई से जुड़े अहम आंकड़े साझा करते हुए ये जानकारी दी। हालांकि धोनी के भरे गए टैक्स की राशि की जानकारी नहीं दी गई है।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: किन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतियाबिंद का सामना करना पड़ता है और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है? आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
5: Jack, you're killing me.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
0: अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: बेहतरी के क्या हैं उपाय जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: A good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin. Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच, जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04

0: मिनट पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: मणिपुर के लीमाखुंग सैन्य स्टेशन पर केएनआई योद्धाओं ने दिखाया रणकौशल। चुनौतीपूर्ण हालात में 5 डॉग टीमों का प्रदर्शन, राहत बचाव के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ड्रिल। कोच्चि तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी। INS शारदा और डी ब्यूटर युद्धपोत का युद्धाभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन। धौलपुर से रावत भाटा तक चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग से आई श्रद्धालु के लिए हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर। सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक। बीट की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत, 500 में से 500 अंक लेकर आए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा की, जहां रोज आस्था का नया कीर्तिमान बन रहा है। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बागेश्वर की हो रही है, जो बद्रीनाथ में 21 दिन की एकांत साधना में लीन है। श्रद्धालुओं के बीच मौजूद होने के बावजूद कोई उनके दर्शन नहीं कर पा रहा। इस वक्त बद्रीनाथ में धीरेन्द्र शास्त्री की विशेष साधना के क्या मायने हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा बद्री विशाल के धाम पर भक्ति का जन सैलाब भी दिखाएंगे। कठिन मौसम के बावजूद देश के कोने कोने से यहाँ लोगों का आना लगातार जारी है। क्या है महत्व भगवान विष्णु के इस धाम का, और क्यों अधिक मास में यहाँ पूजा आराधना अहम मानी जाती है, आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ चलेंगे केदार घाटी, जहां शिव भक्तों का जोश देखने लायक है। सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे इंतजामों पर भी आज चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं बाबा बागेश्वर से, जो इस साल भी बद्रीनाथ गए हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा उनके 21 दिन की विशेष साधना की हो रही है। 6 मई को बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ पहुंचे और अब अलकनंदा और ऋषिगंगा नदियों के तट पर मौजूद खाक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में कठिन साधना कर रहे हैं। भगवान विष्णु की तपोभूमि पर बाबा बागेश्वर की विशेष साधना इस वक्त क्यों हो रही है और इसका मकसद क्या है, आइए समझते हैं।

0: न दिव्य दरबार, न भक्तों की भरमार, छोड़ दुनिया के जंजाल, बाबा बागेश्वर भगवान विष्णु की तपोभूमि पर एकांत साधना में लीन है। समर्थकों को खबर है बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु भी उनकी मौजूदगी से वाकिफ हैं। मगर बद्रीनाथ में होते हुए भी बागेश्वर सरकार भीड़ से अलग है, न तो किसी से मुलाकात, न प्रवचन और न ही बद्री विशाल के दर्शन। बताया गया है कि खाक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर मौजूद इस आश्रम में वो साधना कर रहे हैं। बुधवार को बाबा बागेश्वर यहाँ पहुँचे और उसी दिन से आश्रम में उनकी साधना शुरू हुई जो 21 दिनों तक चलने वाली है।
1: हर कोई चाहता है बद्रीनाथ धाम में एक महीना जो अधिक मास का होता है, खासकर जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो इसमें बद्रीनाथ धाम में जब तक पूजा पाठ भागवत कथा अनेकों श्रवण करने का मौका मिलता है। ऐसे में खुद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे हनुमान कथा का आयोजन भी करेंगे। उसके बाद जब 21 दिनों की साधना पूरी हो जाएगी, क्योंकि 21 दिन का जो विशेष महत्व निकाला है वो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विशेष तौर पे बद्रीनाथ धाम में ही निकाला है। ऐसे में वो ऋषि गंगा और अलकनंदा के तट पर विराजमान है और यहीं पे जो नगर पंचायत द्वारा जो साधना कुटी बनाई है उनमें भी उनका हो सकता है कि साधना का कार्यक्रम हो, लेकिन अभी तक वो जो प्राचीन हनुमान मंदिर का जो आश्रम है वहीं पे मौजूद है। और आने वाले धीरे धीरे जो दिन बीतेंगे उसके बाद हनुमान कथा का आयोजन यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार करेंगे।
0: बद्रीनाथ से बागेश्वर सरकार का आध्यात्मिक जुड़ाव पुराना है। पिछले 3 वर्षों से वो धाम पर आते रहे हैं, कथा कहानी भी सुनाते रहे हैं। लेकिन इस साल जब छतरपुर से धीरेन्द्र शास्त्री चले तो साफ कर दिया कि यात्रा का विशेष मकसद है।
2: आराम पागलो, अपना ख्याल रखना, आनंद में रहना। साधना का मतलब है स्वयं को साधना, मन को साधना, इंद्रियों को साधना। स्वयं को साधोगे तभी तो दुनिया को साध पाओगे। एक महीना की यात्रा है, 21 दिन हम साधना करेंगे, फिर 5 दिन 26 मई से 30 मई तक वही बद्रीनाथ में कथा कहेंगे। हमारी साधना पहाड़ों पर है, हमें आशीर्वाद दो, हमारी साधना सफल हो गए, मनोरथ पूरा हो गए। हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन के उत्थान के लिए हम ये साधना करने जा रहे हैं। और जो हमारे शुभ चिंतक है, और कुछ हमारे ऐसे भी शुभ चिंतक है जो हमारा सुख देखकर चिंता में पड़ जाते हैं, उनको एक महीना शांति है, तो तुम भी आशीर्वाद दो कि हमारी साधना सफल हो गए।
0: पहले भी जब बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम आए हैं, सबसे पहले खाक चौक आश्रम में पहुँचते हैं जहाँ उनके गुरु भाई बालकनाथ महाराज योगेश्वर दास महाराज का आश्रम है। इसी आश्रम में प्राचीन हनुमान मंदिर मौजूद है जहाँ वो नियम से दर्शन पूजन करते हैं।
3: हमें मंदिर के अगर दर्शन नहीं भी हो तो याद रखना शिखर के दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन ना हो गए, शिखर के दर्शन कर लो, वहां की भूमि को प्रणाम कर लो। और जब दर्शन करने जाओ तो सेल्फी में मत पड़ो, फोटो अच्छी आ रही कि नहीं, भगवान को माला चढ़ी कि नहीं, तुम्हारा आधा दिमाग तो इसी में खराब रहता है।
0: इसी आश्रम में बाबा बागेश्वर विशेष ध्यान साधना में लीन है। लक्ष्य है स्वयं को साधना, स्वयं को समझना, नई ऊर्जा प्राप्त करना ताकि सनातन और देश के लिए बड़ा काम कर सके। ये जानते हुए भी कि बाबा बागेश्वर किसी से नहीं मिलेंगे, आश्रम के बाहर श्रद्धालु जमा है, सभी उनके दर्शन के लिए बेताब हैं, पर कुछ हासिल नहीं। हाँ, 21 दिनों के बाद वो यहीं पर हनुमान कथा का आयोजन जरूर करेंगे। 26 से 30 मई तक हजारों की तादाद में जुटने वाले समर्थकों और श्रद्धालुओं से मुलाकात भी होगी।
3: हमका जो भगवान के यहाँ भी ये कहें कि हमने भी पैसा दिए हैं, इन्हें तो मंदिर में भी घुसा दो तब भी भगवान दिखने वाला नहीं है। अंदर भी गर्भगृह में कर दो, भगवान दिखने वाला। दर्शन का नियम विनम्रता, पहला नियम। वहां दूसरा नियम, हम झगड़ने ना जाएं। मंदिर के दर्शन हमें झगड़ना नहीं, विनम्रता। कोई गाली भी दे दे, सहज बस स्वीकार कर लो। मंदिर के दर्शन का तीसरा नियम, हमको प्रदर्शन नहीं करना, बहुत ध्यान रखना। और तीसरे नियम में यह भी याद रखना कि हमारे दर्शन करते समय किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है।
0: बाबा बागेश्वर की बद्रीनाथ यात्रा और ये साधना इसलिए चर्चा में है क्योंकि पहली बार वो इतने लंबे समय के लिए एकांत में गए हैं। अब सवाल ये है कि साधना के लिए बद्रीनाथ ही क्यों? असल में बद्रीनाथ भगवान विष्णु की तपोभूमि है। न सिर्फ नर और नारायण बल्कि साधु संतों ने भी यह तपस्या की है। इसके साथ ही 15 मई से अधिक मास भी शुरू होने वाला है, जिसका सीधा संबंध बद्री विशाल से माना जाता है और पूजा आराधना और साधना के लिए ये समय सबसे उपयुक्त माना जाता है।
4: अधिक मास भजन पूजन कथा श्रवण के लिए होता है, इसमें शादी विवाह नहीं होते हैं, इसमें शेष कर्म नहीं होते हैं। अधिक मास माने असंक्रांति मासो द्विमासस फुटस्यात्, जिसमें संक्रांति न हो, ऐसा चांद्रमान का मास अधिक मास कहलाता है। वो अधिक मास इस समय है और मई आधे यानी 15 मई से और 15 जून तक लगभग ये मास रहेगा। इसमें धर्म कर्म होते हैं। वस्तु ये मास मल मास कहते हैं। मल माने अपवित्र वस्तु, मल माने अपवित्र चीज, इसका नाम मल मास आया। ये भगवान विष्णु के शरण में गया, स्वयं बद्रीनाथ जी के शरण में मल मास आया है और कहा, बाबा मुझे तो लोग मल कहते हैं, मुझे अपवित्र चीज कहते हैं, मैं और दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ, मैं तो नरक हो गया मेरे को। भगवान ने अपने शरणों में लिया। इत्युक्ता बद्रीनाथो, भगवान के पास गया, भगवान ने उसे कथा सुनाई और कथा प्रत्येक दिन एक दिन की एक कथा, 30 दिन की 30 कथा। श्री बद्रीनाथ उवाच, यहाँ से प्रारंभ होती है, इत्युक्ता बद्रीनाथो बिरराम महामुनि, यहाँ तक भगवान एक दिन कथा बोलते, 2 दिन कथा बोलते, ऐसे चातुर्मास की कथा, ये ऐसा अधिक मास की कथा में आया है। 30 दिन की कथा सुनी, मास पवित्र हो गया। भगवान ने कहा कि तुम्हें लोग मल मास कहते हैं, अपवित्र कहते हैं, नहीं, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा, मेरे नाम से तुम्हारा नाम चलेगा, इसलिए से पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और भगवान के सानिध्य हो जाना पुरुषोत्तम मास में बहुत लाभ की बात होती है। भगवान की कथा सुन लेना पुरुषोत्तम मास की, भागवत की या शिव पुराण की ये कथा सुन लेना, बड़े लाभ की बात समझते हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में फिर से नहीं आना पड़ता, ऐसी मान्यता जुड़ी है इस पावन भूमि से। विष्णु जी की तपस्या के कारण ही इस जगह का नाम बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ पड़ा। पौराणिक कथा के मुताबिक जब विष्णु जी तपस्या कर रहे थे तब कठोर मौसम से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री यानी कि बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया और तब भगवान विष्णु ने इस जगह का नाम बद्रिकाश्रम रखा। कथा ये भी है कि इसी जगह पर पहले भगवान विष्णु का वास था, पर तपस्या के लिए भगवान विष्णु ने बालक रूप धारण करके माता पार्वती से ये जगह मांग ली, शिव केदार चले गए और ये पावन भूमि विष्णु का धाम हो गई। बद्रीनाथ में नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं। कहते हैं कि यहीं पर विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। तब तपस्या आराधना और साधना की इसी पवित्र भूमि पर बाबा बागेश्वर मौजूद हैं और एकांत में विशेष साधना कर रहे हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बद्रीनाथ की पावन भूमि हमेशा से साधु संतों और सन्यासियों के लिए साधना और आराधना की जगह रही है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद ये धाम आध्यात्मिक तौर पर तो अहम है ही, प्राकृतिक रूप से भी बेहद खूबसूरत है। इसीलिए हर साल देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। इस साल भी कठिन मौसम के बावजूद हर रोज करीब 15,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो चलिए आपको भी बद्री विशाल के दरबार के दर्शन करवाते हैं।

बद्री विशाल के धाम पर आस्था का सैलाब है। यात्रा शुरू हुए 2 हफ्ते हुए हैं और श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2 लाख पार जा चुका है। सड़कों पर गाड़ियों की कतार है तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बेशक मौसम की चुनौतियां हैं, बेहद कम तापमान और बारिश की वजह से मुश्किलें हैं, लेकिन बद्री विशाल से जुड़ी श्रद्धा ऐसी है कि किसी भी दिन तादाद जरा भी कम नहीं होती।

0: हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ।
1: नाथ धाम हमारा हो गया, व्यवस्था सारी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, रोड्स वगैरह सारी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, ऊपर बद्रीनाथ धाम पे भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड था।
2: मदुरई से हूँ तमिलनाडु, तीर्थ यात्रा के साथ आया हुआ है, वो फंटास्टिक यात्रा टीम है। हम पूरा गंगोत्री यमुनोत्री पहले ऋषिकेश आया, देन यमुनोत्री देखा, गंगोत्री देखा, देन केदारनाथ पूरा। यस्टरडे मैं तुंगनाथ तक जी होके आया, आज हम बद्रीनाथ जा रहे हैं।
3: सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि यात्रा मार्ग के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले या बाद में लोग जोशीमठ के नृसिंह मंदिर पहुंच रहे हैं।

0: वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत ठंडा है केदारनाथ में, तो बहुत अच्छा है। 12 डेज का यात्रा है, वेरी गुड, वेरी नाइस।
1: हम लोग जयपुर से आए हैं, राजस्थान से, और सिर्फ बद्रीनाथ ही जाने के लिए आए थे। अब वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा व्यू है और बहुत अच्छा एक देखने लायक सब कुछ, बहुत अच्छा लगा।
2: मौसम खराब था?
1: नहीं, यहाँ बहुत अच्छा, हमें अच्छा मौसम मिला, बिल्कुल कहीं भी खराब नहीं मिला। और मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी जो आती हैं कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाओ आप।
3: नीचे बारिश हो रही थी, ऊपर स्नोफॉल हो रही थी, स्नोफॉल के टाइम पे पहुंचे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अगले दिन सुबह दर्शन करके हम लगभग 8 घंटे में वापस आए। रात आके हम गुप्त काशी में रुके और उसके बाद बहुत अच्छा ट्रिप रहा।
4: भक्त देश के कोने कोने से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और अभी तो सिलसिला शुरू हुआ। माना जा रहा है कि मई में जब स्कूलों की छुट्टियां होंगी, बड़ी तादाद में श्रद्धालु बद्रीनाथ का रुख करेंगे। अभी भी बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड से लेकर ब्रह्म कपाल तक श्रद्धालुओं का तांता लगा है।
5: अब देखने को मिल रहा है वही बद्रीनाथ धाम में, अब तक 2 सप्ताह का समय हो चुका है, 2 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। जहां 2 सप्ताह का समय हो चुका है, वहीं अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या 17,000 के पार होने लगी है। ऐसे में दिन प्रतिदिन, क्योंकि अब मई का महीना शुरू हो गया है, मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रचंड दौर देखने को मिलेगा, वहीं पहाड़ों में ठंड हो रही है। ऐसे में अब श्रद्धालुओं की संख्या भी जो है बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ और तमाम जगहों पर जो चारधाम या मार्ग हैं, ये चारधाम हैं, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई देखी जा सकती है। श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, हर जगह दर्शनों के लिए जो अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। ऐसे में हर तरफ इस समय उत्साह जो है चारधाम यात्रा मार्ग का, चाहे वो ढाबे हो या फिर होटल हो, हर कोई उत्साहित है, क्योंकि हर तरफ अब श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। जो यात्री हैं वो बद्रीनाथ धाम, और सिर्फ धामों में ही नहीं बल्कि जो यात्रा मार्गों के मंदिर हैं, तमाम मंदिरों में, चाहे शीतकालीन हो या फिर ग्रीष्मकालीन हो या अलग मंदिर हो, उन जगहों पर भी इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर

0: दूसरों की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई किसी के चेहरे पे थोड़ी सी भी नाराजगी दिखाई नहीं दे रही है, हर कोई उत्साहित होकर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच रहा है।
1: मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराना आसान काम नहीं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मंदिर से जुड़े लोग भी श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हर पल तैयार हैं।
2: में 2 लाख से अधिक लोग अभी 2 हफ्ते में आ चुके हैं, यानी यात्रा स्वयं में, और साथ ही व्यवस्थाएं भी ठीक हैं। मौसम यद्यपि बहुत अनुकूल नहीं, लगभग 3-4 दिन से देख रहे हैं अनुकूल नहीं है, लेकिन यात्रा चकाचक चल रही
1: है। के साथ फोकस साफ सफाई पर भी है। यात्रा के 2 हफ्ते पूरे होने के बाद ITBP माड़ा की तरफ से बद्रीनाथ धाम में सफाई अभियान चलाया गया। जवान तप्तकुंड से लेकर ब्रह्म कपाट तक अलकनंदा नदी के तटों की सफाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी धाम के सभी जगहों से कूड़े को उठाया जा रहा है। चमोली से कमलनंद सिलोड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: उम्मीद के मुताबिक ही बद्रीनाथ और केदार घाटी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। करीब दो हफ्ते में ही यात्रियों की तादाद 9 लाख के आसपास हो चुकी है और सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार के दरबार में है। हालांकि बर्फबारी और बारिश की वजह से केदारनाथ की यात्रा उतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सरकार और प्रशासन भी यात्रियों के लिए सुविधा मुहैया कराने में दिन रात जुटे हैं।
1: आस्था, भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच शिव भक्ति के रंग। श्रद्धालु की भरमार, पहाड़ों की बदली रंगत। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ पूरा हिमालयी क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था ने इस यात्रा को एक महोत्सव में बदल दिया है और खास बात यह है कि इस बार उत्तराखंड का मौसम भी श्रद्धालुओं का पूरा साथ देता नजर आ रहा है। साफ आसमान, ठंडी हवाएं और मनमोहक वादियां यात्रियों के सफर को और भी सुखद बना रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो हर रोज 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यमुनोत्री धाम में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माँ यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माँ गंगोत्री धाम पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं और केदारनाथ धाम में करीब 4 लाख श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन का पुण्य कमा चुके हैं। चार धाम यात्रा में कुल श्रद्धालुओं की बात की जाए तो करीब 9 लाख श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं।
2: हाल के दिनों में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण टेम्परेचर काफी कम हुआ है और लोगों को मौसम के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है, वहाँ से पूरे रूट की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना है, यदि है तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं जेसीबी इत्यादि वो डिप्लॉयड हैं कि नहीं है। साथ ही जो हमारे ट्रैक रूट है उसको सेक्टर्स में बांटा गया है, वहाँ पर हमारे सेक्टर ऑफिसर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और मंदिर परिसर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी कैमरे के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। हमारी टीम्स भी लगी हुई हैं, सेक्टर ऑफिसर्स वहाँ पर भी डिप्लॉयड हैं। तो जो हमारा चिकित्सा विभाग है, जो हमारे निर्माण विभाग है, वो सभी मिल करके एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर यात्रा को अस्थायी रूप से 1-2 घंटे के लिए रोका भी जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगह पर रोका जाता है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचाया जा सके।
1: केदारनाथ में भक्तों में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। खुद CM पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के 2 बार दर्शन कर चुके हैं और आज जब CM केदार धाम पहुंचे तो वहां उन्होंने पहले बाबा केदार के दर्शन किए, पूजा पाठ किया और फिर यात्रियों के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का लोकार्पण किया। रुद्रप्रयाग में यात्रा मार्ग पर अस्पताल बनने से काफी मदद मिलेगी। दरअसल यात्रा मार्ग पर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य जाँच केंद्रों, ऑक्सीजन सुविधाओं एवं आपातकाल

0: लीन चिकित्सा सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
1: प्रत्येक दिन 20,000 से कम श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँचे। लगभग मुझे लगता है कि 22 तारीख को कपाट खुले थे और 22 तारीख से लगभग 4,00,000 का ये आंकड़ा हमारा यहाँ पहुँचने वाला है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
0: जाहिर है देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों आस्था अपने चरम पर है। हरिद्वार से लेकर केदार घाटी तक हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें हैं, तो वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरी वादियां भक्तिमय माहौल में डूबी हुई हैं। और ये उत्सव केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, स्थानीय लोगों के लिए भी खुशियों की सौगात लेकर आया है। बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से स्थानीय लोगों का कारोबार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हमारे इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
5: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
6: मणिपुर के लीमाखोंग सैन्य स्टेशन पर K9 योद्धाओं ने दिखाया रण कौशल. चुनौतीपूर्ण हालात में 5 डॉग टीमों का प्रदर्शन, राहत और बचाव के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन ड्रिल. कोच्चि तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी. INS शारदा और डिरूचर्स युद्धपोत का युद्धाभ्यास. मानसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा. राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन. धौलपुर से रावत भाटा तक चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद. रुद्रप्रयाग से आए श्रद्धालुओं के हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर. सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ.
10: महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं में 189 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक, बीड की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से स्वागत, 500 में से 500 अंक हासिल किए।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: आसमान से उतरे सेना के K9 वॉरियर्स, मणिपुर में दिखाया अदम्य साहस। अभ्यास में 5 डॉग टीमों ने भी हिस्सा लिया, डॉग हैंडलर्स और मिलिट्री डॉग्स के बीच दिखा जबरदस्त तालमेल और आत्मविश्वास। युद्ध और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये डॉग्स निभाते अहम किरदार, अभ्यास में सैनिकों के साथ मिलकर काम करने की बारीकियों को परखा गया। इन योद्धाओं को हथियार छीनने, घुसपैठियों को दबोचने की मिलती है खास ट्रेनिंग, खामोशी से मिशन को अंजाम देने में सक्षम है डॉग्स। नीमाखुंग मिलिट्री स्टेशन पर अभ्यास को दिया गया अंजाम, घने जंगलों में छिपे दुश्मनों को ढूंढने की क्षमता को परखा गया। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हर दिन करीब 25,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं बाबा के धाम, फिलहाल श्रद्धालुओं को मिल रहा है मौसम का साथ। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, अब तक 2,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी भक्तों का तांता, बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड में भी श्रद्धालुओं का जोश हाय। केदारनाथ धाम में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अस्पताल का किया लोकार्पण, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस इस अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दी जा रही है विशेष प्राथमिकता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया अस्पताल का उद्घाटन, बाबा केदार के दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम के सफाई अभियान में जुटे आईटीबीपी के जवान, तप्त कुंड से लेकर ब्रह्म कपाट तक अलकनंदा नदी के तटों की हो रही है सफाई। कोलकाता दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की, मां से आशीर्वाद लिया। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेख, विभाजित दुनिया को दिया सोमनाथ का संदेश, 11 मई को लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। गर्मी की छुट्टियों में दक्षिण भारत घूमने का शानदार मौका IRCTC ला रहा है, 11 दिन का स्पेशल टूर पैकेज। छब्बीस जून से शुरू होने वाली यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम और कन्याकुमारी के कराए जाएंगे दर्शन, ऋषिकेश से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, यूपी के कई स्टेशन से यात्री कर सकेंगे सफर। IRCTC के नए टूर पैकेज में ट्रेन सफर, होटल और खाने की पूरी सुविधा शामिल, बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के इच्छुक लोगों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए चलाई विशेष ट्रेनें, ऋषिकेश से 12 जून को चलेंगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के करौली टाइगर रिजर्व पहुंचा चीता, वन विभाग की टीम ने 24 घंटे में ट्रेस की लोकेशन। रेडियो कॉलर से हो रही चीते की निगरानी, वन विभाग ने लोगों को दी सतर्क रहने की सलाह। राजस्थान में चीता कॉरिडोर बनाने की योजना पर चल रहा है काम, धौलपुर के रावतभाटा तक करीब 400 किलोमीटर के वन क्षेत्र में बनेगा चीता कॉरिडोर। कोची के तट पर भारत नेदरलैंड का शक्ति प्रदर्शन, INS शारदा और रॉयल नेदरलैंड नेवी के फ्रिगेट HNLMS D रॉयटर के बीच अभ्यास। मानसून की दस्तक से पहले गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों की करेंगे चर्चा। भारत की रक्षा ताकत को मिली एक और बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट पर स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का किया सफल परीक्षण। एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है तारा, जो अनगाइडेड वॉरहेड को सटीक गाइडेड हथियार में देती है बदल। भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है तारा, देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को मिली नई मजबूती। तारा के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी, देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। उत्तराखंड की पौड़ी से आई शानदार तस्वीर, महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय में ओपन जिम में यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी एक साथ जिम में कसरत नजर आए। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट आउट, 92% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास। महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में लड़कियों ने मारी बाजी, अकोला में ढोल नगाड़ों पर झूमे विद्यार्थी। महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड परीक्षा में बीड की बेटी का कमाल, सिद्धि ने 10वीं में हासिल किए 100% अंक। सिद्धि के घर पर जोशन का माहौल, लोगों ने बिटिया पर बरसाए फूल, खिलाई गई मिठाइयां। गाजियाबाद के पंडित गोपाल पुजारी की सराहनीय पहल, श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 1 रुपए में करा रहे भरपेट भोजन। उत्तराखंड दौरे पर अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, विष्णु मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। वैदिक मंत्रों से गूंजा हरि विष्णु पंचदेव मंदिर परिसर, मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान गणेश, महादेव आदि शक्ति मां दुर्गा और संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां एक साथ की गई हैं स्थापित। पंचूर में सीएम योगी ने बच्चों से की मुलाकात, अपने परिजनों और ग्रामीणों से भी मुलाकात की। जयपुर में सेना के महामंत्र नए डोमेन में सैनिक क्षमता बैठक की थीम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कॉग्निटिव वॉरफेयर और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मंथन, रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों पर भी चर्चा। दिल्ली के स्कूलों का सीएम रेखा गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ पानी को लेकर अधिकारियों को निर्देश। क्लासरूम में सीएम रेखा ने बच्चों से बातचीत की, साफ पानी से लेकर साफ सफाई के आदेश दिए। गुजरात के गांधीनगर में इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट 2.0 का आयोजन, केंद्र मंत्री बोले 2030 से पहले विश्व स्तरीय बनाया जाएगा अहमदाबाद हवाई अड्डा। अखरूर घाट से के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी, घाट पर बनेंगे प्लेटफॉर्म, सीढ़ियां समेत कई आधुनिक चीजें। मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को अब मिलेगी आधुनिक सुविधाएं, अखरूर घाट का होगा कायाकल्प। श्रीनगर में देखने को मिल रही फूलों की बहार, बागवान विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पौधे बांटने की मुहिम शुरू की। जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की पहल से श्रीनगर में रंग बिरंगे फूलों की खेती को मिल रही है नई रफ्तार, लोगों को मुफ्त पौधे देकर किया जा रहा है जागरूक। श्रीनगर के बाग बागीचे इन दिनों फूलों से महक उठे हैं, बागवानी विभाग की नई पहल ला रही रंग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बनाई गई शानदार रंगोली, इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर सेना और सुरक्षा बलों के शौर्य को दी गई सलामी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर बीएसएफ ने वॉकथॉन का किया आयोजन, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। फिल्मी फ्राइडे में बॉक्स ऑफिस पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज, दादी की शादी में मैं एक्टर नहीं हूं समेत कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज। दादी की शादी में एक्ट्रेस नीतू कपूर, एक्टर कपिल शर्मा समेत कई कलाकार, रुद्रिमा कपूर साहनी ने दादी की शादी से किया फिल्मी डेब्यू। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगना सतरूपा की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं ने थिएटर्स में दी दस्तक, शोबिस की खाली सच्चाई दिखाने में कमजोर पड़ी फिल्म। अल्ताफ खान ऋतिक पारेख की स्टार ड्रामा मिस्ट्री डगडग सिनेमाघरों में हुई रिलीज। समाज की अंधश्रद्धा पर कटाक्ष करती है फिल्म। हॉलीवुड मूवी मॉर्टल कॉम्बैट 2 दुनिया भर में रिलीज। कार्ल अर्बन, एडलाइन रुडोल्फ, जेसिका मैकनेमी और लुइस चैन मुख्य भूमिका में। तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की भूत बंगला की धूम। 21 दिन में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाए 235 करोड़ रुपए। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 63 करोड़ तक पहुंचा। इतिहास रचने के करीब मराठी फिल्म। भारत ही नहीं विदेशों में भी मोहनलाल ममूटी की फिल्म पैट्रियट का जलवा बरकरार। दुनिया भर में 73 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। बॉक्स ऑफिस पर जुनैद खान साई पल्लवी की जोड़ी का नहीं चला जादू। फिल्म एक हफ्ते में महज 4 करोड़ का बिजनेस किया। दुनिया भर के थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद धुरंधर 2 अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक। 14 मई को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। एक्टर जयदेव अहलावत की फिल्म दलदल का पोस्टर रिलीज। गले तक दलदल में फंसे नजर आए जयदेव। जल्द रिलीज डेट का होगा ऐलान। फिल्म NH-404 से पोस्टर से राकेश बेदी का फर्स्ट लुक सामने आया। कैप्शन में लिखा, अगर रोड रोलर देखो तो लेफ्ट और राइट देखकर क्रॉस करो। गुल्लक सीजन 5 का हुआ ऐलान। जल्दी मिश्रा परिवार की होगी वापसी। अनुभया यानी वैभव राजगुप्ता के रोल में नजर आएंगे आनंद जोशी। ईशा अंबानी ने फैशन की दुनिया में फिर से बिखेरा जलवा। कस्टम मेड सुनाल हाउते कॉर्चर साड़ी गाउन पहनकर सबको मंत्रमुग्ध किया। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर वायरल। फैंस खूब पसंद कर रहे हैं इस लुक को। जमकर हो रही तारीफ। अभिनेता संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल का धमाकेदार ट्रेलर आउट। विवादित मुद्दों को उठाती है फिल्म। समीरा रेड्डी और निमाशी चक्रवर्ती आएंगी नजर। 15 मई को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन। पोस्टर जारी। सुपर हीरो दादा के किरदार में अभिनेता जैकी श्रॉफ। फिल्म 29 मई को रिलीज होगी। आस्था और भावनाओं से भरपूर कृष्णा शेट्टी की टीजर आउट। दर्शकों के दिलों को छू गया टीजर। एक्टर अरुण गोविल और दर्शन सवारी मुख्य भूमिका में 29 मई को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। जून को एक्टर रामचरण स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा पेडी का प्रीमियर। फिल्म 4 जून को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। एक्ट्रेस जानवी कपूर भी आएंगी नजर। माथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम ने थिएटर्स में छोड़ी छाप। भव्यता और पर भारी पड़े भाव। भगवान कृष्ण के रूप में सिद्धार्थ गुप्ता की एक्टिंग की जा रही है काफी पसंद।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
11: It's your boy,
1: just
11: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
12: किन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतियाबिंद का सामना करना पड़ता है? और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है। आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: बैटलफील्ड के बाहुबली को मिलेगा सुपर कवच। जमीन से आसमान तक हर खतरा होगा ध्वस्त। इंडियन बैटल टैंक को मिला अमर होने का वरदान। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: मणिपुर के लीमाकोंग सैन्य स्टेशन पर K9 योद्धाओं ने दिखाया रणकौशल। चुनौतीपूर्ण हालात में 5 डॉग टीमों का प्रदर्शन, राहत बचाव के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ड्रिल। कोची तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी। INS शारदा और निर्युटर युद्धपोत का युद्धाभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीटवेव से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आंखों की समस्या के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है हमें आंखों में दिक्कत होती है, आंखों में मिर्च लगती है, कुछ धुंधला दिखने लगता है, हमें चश्मे लगवाने पड़ते हैं। तो अगर हमें आंखों की समस्या हो रही हो तो उसे दूर करने के उपाय क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप शनि की साढ़े साती से या शनि की ढैया से परेशान हैं तो हर शनिवार दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उनका दर्शन करिएगा। हनुमान जी की वो मूर्ति जिसमें हनुमान जी का चेहरा दक्षिण दिशा में हो, ऐसे मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन करेंगे तो शनि की साढ़े साती और ढैया का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
0: 9 मई 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है?
1: दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 2:02 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 11:24 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः

0: और आजकल आंखों का रोग बड़ी तेजी से आता है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। उम्र बढ़ने पे लगना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन बचपन से ही चश्मा लग जाता है। आखिर आंखों के रोग का ज्योतिष से और ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, आंखें मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि हैं। आंखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं किसी व्यक्ति के अपने जीवन के लिए भी और उसके व्यक्तित्व के लिए भी। ये व्यक्ति को दुनिया और लोगों से परिचित करवाती हैं। आंखों का ज्योतिष में दो ग्रहों से सीधा संबंध माना जाता है। दो ग्रह जो प्रकाश देते हैं, ल्यूमिनरीज हैं, सूर्य और चंद्रमा, उनसे आंखों का सीधा संबंध है। इसके अलावा कहीं कहीं पर शुक्र को नेत्रों से संबंधित मानते हैं। वास्तव में शुक्र आंखों के लेंस का मालिक है। कुंडली का दूसरा भाव और बारहवां भाव आंखों का होता है, और इसमें भी दूसरा भाव आंखों को ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। दूसरा भाव और सूर्य, ये आपकी राइट आई है, ये आपकी दाहिनी आंख है। बारहवां भाव और चंद्रमा, ये आपकी बाईं आंख है, ये आपकी लेफ्ट विजन है। लेकिन इन टोटल अगर देखें, कुल मिला जुला के देखें, तो सेकंड हाउस, दूसरा भाव और सूर्य, ये आंखों के लिए बड़े महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं।
1: और अब वक्त हो गया आपके राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं जिन लोगों की मेष, वृष और मिथुन राशि है उनका क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, इस समय थोड़ा प्रयास करेंगे, धन आसानी से मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, संतान की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। शनि मंत्र का एक बार

0: जप कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और आइए जानेंगे कि कब व्यक्ति को आंखों की समस्या हो जाती है।
0: देखिए, व्यक्ति को आंखों में बहुत सारी समस्या हो सकती है। नजर का कमजोर होना, मोतियाबिंद होना, आंखों की रोशनी चली जाना, इंजरी हो जाना। तो आखिर कब व्यक्ति को आंखों की समस्या होती है? अगर कुंडली के दूसरे भाव में या द्वादश भाव में पाप ग्रह पाए जाएं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु, तो आंखों में दिक्कत होगी। सूर्य या चंद्रमा अगर कमजोर होंगे तो भी आंखों में दिक्कत की संभावना बनेगी। शुक्र और सूर्य का अगर कुंडली में संबंध बने तो आंखों से पानी गिरता है और आंखें कमजोर हो जाती हैं। शुक्र अगर ज्यादा कमजोर हो गया कुंडली में तो कम उम्र से ही आंखें बिगड़ जाती हैं, कम उम्र से ही चश्मा लग जाता है। सूर्य अगर खराब हो, कमजोर है तो चश्मा लगेगा, खराब है तो ग्लूकोमा होगा, यानी आंखों की रोशनी जाने की संभावना हो सकती है। शुक्र अगर खराब हो गया तो एक आंख की रोशनी जा सकती है। आपने कथाओं में पढ़ा होगा ना कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक ही आंख है, वो इस बात की सूचना है, इस बात का प्रतीक है कि अगर शुक्र खराब हुआ तो एक आंख की रोशनी चली जाती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शनि मंगल के संबंध से दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं। आंखों के ग्रह से और आंखों के भाव से अगर मंगल का संबंध बन गया तो ये आंखों की सर्जरी करवाएगा, केतु भी करवा देता है। वैसे आंखों में जो मोतियाबिंद होता है वो होता है कफ की वजह से, तो जिनकी कुंडली कफ प्रधान है या जिनके चंद्रमा पर प्रेशर ज्यादा है उनको मोतियाबिंद होने की संभावना होती है और ऐसे लोगों की आंखों की सर्जरी की स्थिति बन जाती है।
1: ये जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: कर्क राशि, इस समय आपके लिए यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कर्ज की समस्याओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, चिंताओं से राहत मिलेगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब पंडित जी द्वारा दे जाने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न विमल शॉ ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 1 फरवरी 1995 का जन्म है, 6:10 शाम को मिदनापुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी करता हूँ एक कोल्ड स्टोरेज में और मैं भविष्य में व्यापार करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा व्यापार करूँ और कब करूँ? विमल जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा भी शनि की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से व्यापार तो बाद में देखिएगा, पहले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। शनि की अंतर दशा शनि में शनि मार्च 2029 तक चलेगी और जब तक शनि में शनि की अंतर दशा आपकी चल रही है, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लेकर बहुत सतर्क रहिए। व्यापार मार्च 2029 के बाद करने के बारे में विचार करिएगा। अभी के लिए ये सलाह है आपको कि 2026, 27 और 28 में हर साल एक बार रुद्राभिषेक करवाइए और रोज सुबह एक बार नारायण कवच का पाठ करिएगा। ये नियमित रूप से करिए, समय थोड़ा नकारात्मक है इसलिए लापरवाही नहीं कर सकते।
1: अगर आपको भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप पंडित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी आज का दूसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी अगला प्रश्न राजीव जैन जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। 29 अप्रैल 1964 का जन्म है, 11:57 प्रातः ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा पारिवारिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है, अभी मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, भविष्य में मैं ग्वालियर में सेटल होना चाहता हूँ, तो क्या वहाँ पर भी मैं कोई काम करूँ और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? राजीव जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा केतु की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप इस साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर 2026 के बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं और भविष्य में ग्वालियर में सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्वालियर में अगर आप सेटल होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आप कपड़े का, कॉस्मेटिक्स का, खाने पीने की चीजों का, पानी का, ऐसा कोई व्यापार अगर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन देखिए आपका एवरेज ही दिखाई देता है, उसमें बहुत सुधार की उम्मीद नहीं है, लेकिन उसका आपकी मानसिक स्थिति पर, जीवन पर बुरा असर ना पड़े इसके लिए हम उपाय जरूर करेंगे। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और ज्यादा से ज्यादा शिव जी की पूजा करें। नमः शिवाय का अधिक से अधिक अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: तो आइए जानते हैं कि अगर हमारी आंखें कमजोर हो रही हों, हमें लग रहा है कि हमें दिखने में दिक्कत हो रही है, तो हमें उसके लिए क्या उपाय करनी चाहिए?
0: देखिए, आंख का कमजोर होना बड़ी स्वाभाविक बात है, कुछ ग्रहों की वजह से और कुछ उम्र होने पर भी आंखें कमजोर हो जाती हैं। आंखों का कमजोर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंखें लगातार कमजोर होती चली जाएं, लगातार उनकी नजर कमजोर होती जाए और पावर बढ़ता चला जाए, तब मुश्किल होती है। क्या उपाय करें अगर आंखें कमजोर होती जा रही हों? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत लाभ होगा। कच्चे गाजर, कच्ची फल और सब्जियों का यानी सलाद का प्रयोग करें, खाएं। सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करें, कुछ मामलों में मोती धारण करने से भी इंप्रूवमेंट होता है। नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करें, 6 फीट की दूरी पर सामने दीवार पर एक बिंदु बना लें काले रंग का सफेद कागज पर, और उस पर अपनी निगाह जमाकर उसे देखने का प्रयास करें। नियमित रूप से 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को त्राटक का अभ्यास करें। अगर किसी योगाचार्य से सलाह ले लें तो और अच्छा होगा। जिनकी आंखें कमजोर हैं, ऐसे लोग खाली पेट बिल्कुल ना रहें, क्योंकि इससे भी आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दांतों को नाखून से ना काटें। जो लोग दांतों से नाखून को चबाते हैं, काटते हैं, उनकी आंखों से पानी गिरने की और आंखों की रोशनी कम होने की संभावना बन जाती है।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन का नुकसान, धन की हानि हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60 प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए जानेंगे हम पंडित जी से कि अगर आंखों की रोशनी जाने के योग बन रहे हो, हमें ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, तो हमें उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए?
0: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और ऐसा लगता है कि एक दिन आंखों की रोशनी चली जाएगी, या कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो कहते हैं कि एक उम्र के बाद आपके आंख की रोशनी चली जाएगी या जा सकती है, ग्लूकोमा कहते हैं उसको। अगर कुंडली में ऐसे इंडिकेशन हैं कि आंखों की रोशनी जा सकती हो या आपके आंखों की रोशनी धीरे धीरे घट रही हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल प्लेन वाटर, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। नियमित रूप से चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करिए, और अगर चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते तो मोबाइल पर लगा के सुबह शाम सुनिए। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक हीरा धारण करिएगा, लेकिन आंखों के लिए अगर हीरा पहनना चाहते हैं तो रिंग फिंगर में अनामिका अंगुली में पहनिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, उससे भी लाभ होगा। ऐसा देखा गया है कि जिनके आंखों की रोशनी घट रही हो, अगर वो नियमित रूप से प्राणायाम करें तो उससे भी आंखों की रोशनी के घटने को काफी समय तक रोका जा सकता है।
1: और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे प्रश्न का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का तीसरा प्रश्न उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: अगला प्रश्न रेशु यादव ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 5 जुलाई 2006 का जन्म है, 9:17 रात को सियोनी मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि क्या मैं सियोनी में अपने जन्म स्थान पर रह पाऊंगा और क्या मैं अपने पिताजी के साथ कंप्यूटर का व्यापार कर सकता हूं। रेशु, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, वैसे आप कंप्यूटर का व्यापार फिलहाल के लिए सियोनी में रह करके कर सकते हैं, लेकिन सियोनी में रहने की संभावना भी कम है और तरक्की की उम्मीद भी ज्यादा नहीं है। ऐसा लगता है कि भविष्य में आप सियोनी के अलावा कहीं और रहेंगे, कहीं और सेटल होंगे और बढ़िया करियर बना सकेंगे। जहां तक माता पिता की सेवा का प्रश्न है, वो आप जरूर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम और चौथे प्रश्न का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न कमाल भाटी जी ने हमें लिखा है, भीलवाड़ा राजस्थान से लिखते हैं। 6 अगस्त 1983 का जन्म है, 2:02 भीलवाड़ा राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मुझे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं अपना मकान कब तक बना पाऊंगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। कमाल जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा भी बुध की चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा है, कुछ न कुछ सेहत में दिक्कतें, ज्यादातर पेट की और मानसिक दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। तो जो आपने पन्ना पहना है वो बिल्कुल पहने रहिए, वो एकदम सही है। साथ में एक ओपल बनवा करके पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। और दूसरे नंबर पर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रोज सुबह जरूर करिए। जहां तक मकान बनने का प्रश्न है, 2028 के अंत में या 2029 की शुरुआत में आप अपना मकान बना पाएंगे, उस समय आपको संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
1: पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम आंखों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हमें आंखों की समस्या से पहले ही कोई उपाय कर लेना है ताकि हमें ये समस्या ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए?
0: जी देखिए, अगर शुरुआत से बचपन से ही बच्चों की कुंडली में देख लिया जाए कि उनको आंखों में समस्या हो सकती है या आंखों में बड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप बचपन से ही उनसे उपाय करवा सकते हैं। तीन बातों का ध्यान बचपन से रखने पर आंखों की समस्या नहीं होगी। पहला, बच्चे को बचपन से सिखाइए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो स्कूल जाते समय तैयार होकर सूर्य भगवान को नमस्कार करके तब स्कूल जाए। दूसरा, बच्चा नाखून चबाने की आदत बिल्कुल डेवलप मत करे, इस आदत पर शुरुआत से कंट्रोल करवाइएगा। और बचपन से ही बच्चे को सलाद, फल और कच्ची सब्जियां खाने की आदत डलवाइएगा। अगर ऐसा किया जाए शुरुआत से ही, तो आंखों में समस्या होने को काफी समय तक टाला जा सकता है।
1: जिनका जन्मदिन 9 मई 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 9 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की नई शुरुआत के और सुधार के योग बनते हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संपत्ति और विवाह के मामलों में इस साल में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें, केवल हनुमान चालीसा ही रोज पढ़ें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा में महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मना करते हैं कि महिलाएं नारियल ना तोड़ें, क्यों है ऐसा? देखिए, नारियल मानव की खोपड़ी का और बलि का प्रतीक है। पशु बलि को हटा करके बाद में नारियल को बलि के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इसीलिए महिलाओं को बलि के प्रतीक के रूप में नारियल तोड़ने को मना किया जाता है। लेकिन अगर कोई महिला नारियल तोड़ देती है तो वो कोई अशुभ बात नहीं है, इसका पाप पुण्य शुभता अशुभता से कोई भी लेना देना नहीं है।
1: और आइए अब जानते हैं 9 मई 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 9 मई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: गुडलक में अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है सामान्यतः। आज की गुडलक राशि है मीन। इनके वैवाहिक जीवन में सब कुछ होने के बावजूद अक्सर अकेलापन रहता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुल मिलाकर खींच खांच कर एवरेज साधारण तरीके से विवाह चलता रहता है।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, नौकरी पाने में दिक्कत हो रही है, तो क्या उपाय करें जिससे जल्दी नौकरी मिल जाए। रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, और शनिवार को दीपक जलाने के बाद मंत्र जप करने के बाद निर्धनों को पूरी सब्जी खिलाइएगा। ऐसा लगातार 1.25 महीने तक करिए, आपके नौकरी की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
3: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.

कोच्ची तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी, INS शारदा और डी ड्यूटर युद्धपोत का युद्धाभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन, धौलपुर से रावत घाटा तक चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग से आई श्रद्धालु के लिए हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर, सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक, बीट की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत, 500 में से 500 अंक लेकर आई।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे भारत के भव्य इतिहास का वो अध्याय जिसे आज से 75 साल पहले लिखा गया था, वो अध्याय जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो गौरवशाली अध्याय ना मिटा ना हल्का हुआ। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसके लोकार्पण को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के बाद आई पहली दीपावली के मौके पर सरदार पटेल ने सोमनाथ में सागर तट पर खड़े होकर मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी। जल्द ही ये प्रतिज्ञा फलीभूत हुई, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 4 साल में मंदिर बनकर तैयार हो गया। आखिरकार 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। वो तारीख थी 11 मई 1951 की। आने वाली 11 मई यानी सोमवार के दिन उस भव्य उत्सव को 75 साल पूरे हो जाएंगे और उसी की याद में सोमनाथ में एक बार फिर से अमृत उत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसका हिस्सा 11 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे और सोमनाथ धाम में आस्था रखने वाले असंख्य शिव भक्त भी।

0: सोमनाथ धाम में सोमनाथ अमृत महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सोमनाथ धाम में भव्य और दिव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 2026 का साल सोमनाथ मंदिर के इतिहास में कई अहम पड़ाव लेकर आया है। पहले इसी वर्ष जनवरी महीने में इस पवित्र मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण और उसके बाद भी मंदिर के अडिग रहने को 1000 साल पूरे हुए और अब सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे होने का अवसर आ रहा है। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण हुआ था। 2026 की 11 मई यानी आने वाले सोमवार को भगवान सोमेश्वर के वर्तमान स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे हो जाएंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैभव का प्रतीक ये धाम अपने पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का गौरवशाली उत्सव मना रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। 11 तारीख को मुख्य उत्सव से पहले मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है।
1: सोमनाथ मंदिर में लिंग की प्राण प्रतिष्ठा को 75 साल 11 मई को पूरे हो रहे हैं। वो दिन अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की, जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, वो आएंगे और पूजा करेंगे। और आज तारीख 8 से लेकर 11 तक के 4 दिनों में वहाँ यज्ञ होगा, मंत्रोच्चार होगा, मंत्र लेखन होगा, कई लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। इस तरह धार्मिक एवं अन्य तरीके से ये अमृत महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं।
0: तय कार्यक्रम के अनुसार 11 मई को सुबह 10 बजे पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां पर हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और विशेष पूजा करेंगे। फिर मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। पूजा और यात्रा के बाद पीएम मोदी सोमनाथ धाम क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ के पुनर्निर्माण के इतिहास पर बात करेंगे।
2: यही जो वो रास्ता है जो 1 किलोमीटर का, यहीं पर प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। दोनों तरफ लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो देश के नृत्य है वो डांस का आयोजन भी किया गया है। बंगाली परिवार है वो भी प्रधानमंत्री का इसी रोड शो में स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन और पूजा करेंगे महादेव की। इसके अलावा यहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया है, जो पहली बार सोमनाथ मंदिर में इस एयर शो का आयोजन किया गया है।
0: 1000 साल की यात्रा में ये एक और मील का पत्थर है। सोमनाथ मंदिर का अमृत उत्सव उन लोगों के लिए और भी खास है, जो मंदिर निर्माण से लेकर इसके पुनरुत्थान की यात्रा का साक्षी प्रथम पंक्ति से रहे हैं। नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों में से एक हैं। वे देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। मंदिर के लोकार्पण की स्वर्ण जयंती के समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री के तौर पर वे अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। इस अवसर पर एक लेख के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार ये यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूँ जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। वास्तव में सोमनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी 1000 साल से भी ज्यादा का इतिहास, विनाश, अटूट आस्था और पुनरुत्थान की अद्भुत गाथा है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप की भव्यता अद्भुत है, लेकिन और भी अनोखी है मंदिर के स्वरूप में ढलने तक की यात्रा। इस यात्रा को दशकों से करीब से देखते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार भास्कर वेद अब 85 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो दिन उनकी स्मृतियों में आज भी ताजा है जब 10 साल की उम्र में वो पिता की उंगली पकड़कर मंदिर के लोकार्पण उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे।
3: सर, जब मंदिर पुराना मंदिर था जिसका फोटोग्राफ अब अवेलेबल है, उस समय मैं अपने फादर के साथ एक गांव में एक उत्सव मना था, इसी दिखाते के लिए मुझे अंगुली पकड़ कर ले आए थे, और मैं उस मंदिर के पुराना मंदिर जो फोटोग्राफ में देखते हैं वहाँ उसकी जगह पर सिर्फ खाड़ा था, गड्ढा था जिसमें कोई मूर्ति मूर्ति थी नहीं, पर हरेक स्थलों उस जगह पर भी कुछ पानी चढ़ाकर, कुछ चंदन चढ़ाकर, कुछ गलाल छांट कर भगवान उसमें ही ऐसा महसूस कर उसकी पूजा तो करते ही थे।
0: एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज सोमनाथ धाम के स्वर्ण मंडित गर्भगृह में पूरी शान से विराजे हैं सोमेश्वर महादेव। कभी जिस मंदिर की दुर्दशा देखकर सागर का खारा जल सरदार पटेल की आंखों में उतर आया था, आज मंदिर को इस रूप में देख पाते तो शायद भावों के अतिरेक में आज एक बार फिर उनकी आंखें भीग जाती।
3: अब तो 75 साल हो गए मंदिर को पूर्ण हुए, तो इतना बदलाव है, तो जिसने मंदिर की पुनरुद्धार किया उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे ड्रीम से भी पार कोई अच्छा मंदिर बन गया जिसे राष्ट्र के सम्माननीय व्यक्तियों उसके साथ जुड़ी है, श्रद्धालु व्यक्ति जुड़ी हुए और विदेश में से भी आने वाले जुड़ते हैं, साधु संत जुड़ते हैं।
0: आज सोमनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 125 करोड़ को पार कर चुकी है। कभी जो चढ़ावे की रकम लाखों में गिनी जाती थी आज 1 अरब के आंकड़े को छू चुकी है।
1: आज से 15 साल पहले मंदिर की आमदनी 8 करोड़ थी, आज 118 करोड़ है। तब 25 लाख लोग आते थे, आज 125 करोड़ लोग सालाना आ रहे हैं। तो अभी जो 75 साल आए हैं ये एक ऐसा लैंडमार्क है जिसके सेलिब्रेशन से सारे विश्व में एक नया संदेश जाएगा।
0: सोमनाथ धाम के निर्माण की इसी यात्रा को मनाने का पर्व है अमृत महोत्सव। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि सोमनाथ धाम की वर्तमान भव्यता को देखते हुए आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अमृत महोत्सव के अवसर पर अगले 50 सालों के लिए मंदिर में सुरक्षा और सुविधा से जुड़े इंतजामों को बेहतर बनाने की योजना पर भी काम किया जाएगा।
1: आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज्यादा कलश हैं, वो सब सुवर्ण मंडित होने से एक नए प्रकार की एक भव्यता और दिव्यता का लोगों को एहसास करा रहा है। इसलिए 75 साल पे जो ये काम हो रहा है उसमें यात्रियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा एवं मंदिर की सुरक्षा हर पहलू को ध्यान में लेते हुए अगले 50 साल में जो भी हो सकता है वो अभी से उसके करने की शुरुआत कर रहे हैं।
0: एक सहस्राब्दी का इतिहास गवाह है कि हर विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ, ये संदेश देते हुए कि महादेव की आस्था अमर है, सनातन अडिग है, सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष और अमृत महोत्सव उसी आस्था का भव्य उत्सव है जिसमें सारा सोमनाथ क्षेत्र एक बार फिर से मगन दिख रहा है। सोमनाथ से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारत के गौरवशाली इतिहास में दर्ज आस्था की अनुपम धरोहर है सोमनाथ मंदिर। एक ऐसी धरोहर जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है, लेकिन इतिहास से परे सनातन धर्म में सोमनाथ मंदिर का अलग ही महत्व है। इसकी कहानी जुड़ी है सोमदेव यानी चंद्रमा से, जिनके नाम पर महादेव स्वयं यहाँ सोमनाथ कहलाते हैं। एक ऐसा वैभवशाली और अद्वितीय मंदिर जिसकी भव्यता के किस्से विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों को भारत तक खींच लाए।

0: सौराष्ट्र के प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर के तट पर आस्था की लहरों के बीच शान से विराजमान हैं सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से लगाव था। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के श्राप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और श्राप से मुक्ति पाई। श्राप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ वहीं रह जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। अपने निर्माण से लेकर कई शताब्दियों तक प्रभास तीर्थ क्षेत्र में शान से सर उठाए खड़ा रहा सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर। अपने अद्भुत वैभव और अकूत संपदा के साथ अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता का वर्णन विस्तार से किया है। लेकिन फिर आई 11वीं सदी। उस दौर में समय की आंखों ने वो मंजर देखा जो भारत की पावन धरती पर कभी नहीं देखा गया था। विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया सोमनाथ के वैभव का वर्णन गजनवी जैसे लुटेरों को हिंदुस्तान की चौखट तक खींच लाया था।
1: प्रथम विध्वंस के आक्रमण के पहले ये भव्य शिवालय की बहुत दूर देशों तक प्रसिद्धि थी, क्योंकि उनकी मंदिर की जो घंटियां थी उनमें सबसे बड़ी घंटी थी उनका वजन 2 मन 40 किलो था। उनकी जो सांकर तंबी थी वो करीबन 4000 किलो सोने से बनी सांकर थी। तो इतना वैभव इस सोमनाथ मंदिर के पास था, तो विध्वंसकारी आक्रमणकारी वर्ग सोचा कि इतना धन हमारे पास हो तो को केवल इसी धन की पिपासा होने उन लोगों ने इस मंदिर पे आक्रमण करने की योजना बनाई।
0: पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच, क्रूरता और रक्तपात से सोमनाथ क्षेत्र का सीना छलनी होने वाला था। जो सोमनाथ मंदिर 11वीं सदी तक भारत की भूमि पर सागर के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, सन 1026 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। उस घटना को 1000 साल बीत चुके हैं। गजनवी ने न केवल मंदिर को तहस नहस किया, बल्कि गजनवी मंदिर में मौजूद सोनी चांदी का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेता गया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया गया, पहले से भव्य, पहले से दिव्य।

इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए हैं।

आज सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र का विस्तार कर इसे विराट रूप दे दिया गया है। मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में करीब 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई के बनाए प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का भी पुनर्निर्माण करवाया है।

0: आज यदि आप सोमनाथ मंदिर के प्रांगण को देखें, तो यकीन नहीं कर पाएंगे। विध्वंसक इतिहास के थपेड़ों का एक भी निशान यहां आज बाकी नहीं दिखता। सोमनाथ मंदिर अगर दिन में सोने सा दमकता है, तो रात में लाइट एंड साउंड शो के दौरान मंदिर की छटा और भी अद्भुत हो जाती है। यानी एक प्रमुख धर्म स्थल होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर अब पर्यटन, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा संगम बन गया है। सोमनाथ प्रांगण में दूर से ही दिखाई दे जाती है मंदिर को निहारते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार पटेल ने ही आखिरी बार मंदिर को फिर से बनवाने की शुरुआत की थी। आज मौजूद सोमनाथ मंदिर देश को उन्हीं की देन है। मंदिर का ये स्वरूप कभी साकार न हो पाता अगर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन वो प्रतिज्ञा न ली होती। 13 नवंबर 1947 को एक विशेष ट्रेन के कोच में सवार होकर पहले जूनागढ़ और फिर वहां से सोमनाथ पहुंचे थे सरदार पटेल। आजादी के बाद वो पहले बड़े नेता थे जो मंदिर की उस खस्ता हालत को देखने पहुंचे थे। मंदिर की हालत देखकर सरदार पटेल को बेहद ठेस पहुंची थी। उसी दिन मंदिर के पीछे समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर लौह पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो जाए, मंदिर का पुनः निर्माण होकर रहेगा। सरदार पटेल मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। गांधी जी ने मंदिर के लिए जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया और देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के दादा पद्मश्री प्रभा शंकर सोमपुरा को मंदिर का आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया और 1951 में चालुक्य वास्तुकला शैली में बनकर तैयार हुआ भव्य सोमनाथ मंदिर। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर ने फिर से अपनी भव्यता को प्राप्त कर लिया। वो समारोह ऐतिहासिक था जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि बनने और मिटने के इस सदियों पुराने सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति और इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुंचते रहे। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के वार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं, बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ। गिर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज के हमारे इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी है, देखते रहिए जीएनटी।
2: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: रात 9 बजे गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: अब इसे टाइगर के लिए जंगल का बेहद और मुफीद इकोसिस्टम ही कहा जाएगा कि 20 साल बाद अरुणाचल सेंचुरी में बंगाल टाइगर दिखा है। लेकिन पहली बार बंगाल टाइगर कैमरे में कैद हुआ तो वन विभाग उत्साह से भर था। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है अरुणाचल की इस सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिस वजह से यहां बंगाल टाइगर की चहलकदमी सालों बाद नजर आई।
0: बंगाल टाइगर की इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। दशकों बाद रॉयल बंगाल टाइगर के दर्शन अरुणाचल के जंगलों में हुए हैं। ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि दो दशकों से अरुणाचल में बंगाल टाइगर नहीं देखे गए थे और चिंता जताई जा रही थी कि क्या जंगल के बदले मिजाज ने रॉयल बंगाल टाइगर्स को अरुणाचल के घने जंगलों से दूर कर दिया है। अरुणाचल के जंगल में ये तस्वीर उस वक्त खींची गई जब डंपर ट्रक ड्राइवर्स ने पुराने कोमली घाट रोड पर बंगाल टाइगर को चहलकदमी करते देखा। यही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने बंगाल टाइगर को सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ों की छांव में आराम करते हुए भी देखा। लोगों के अनुसार कुछ देर दिखने के बाद टाइगर वापस जंगल की तरफ चला गया, लेकिन ये तस्वीर सुकून का पक्का सबूत बन गई। कुछ दिन पहले अरुणाचल के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर के पंजे देखे गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब बंगाल टाइगर को इतने पास से देखा गया और उसका वीडियो बनाया गया है। फिलहाल टाइगर के इस दीदार के बाद से अरुणाचल का वन विभाग खुश है। यहाँ बंगाल टाइगर की मौजूदगी इस बात का भी सबूत है कि अरुणाचल के डियरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के जंगलों का इकोसिस्टम अब बेहद हेल्दी है। अरुणाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंगाल टाइगर का दिखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंचुरी 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। ये जंगल लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन का भी ठिकाना है, लेकिन करीब दो दशक बाद यहाँ बंगाल टाइगर का होना इस बात की गारंटी बन गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी के लिए यहाँ पर्याप्त शिकार मौजूद है। अरुणाचल की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जश्न है, लेकिन एक डर भी है। वो ये कि कहीं ये टाइगर आसपास के गांवों पर हमला बोल लाना शुरू कर दे। अरुणाचल के इस इलाके में बंगाल टाइगर की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत सामने आने के बाद वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से रात के समय जंगल की ओर ना जाने की अपील की गई है। रॉयल बंगाल टाइगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। भारत में अभी 3,680 जंगली बाघ हैं, जो दुनिया की कुल बाघ आबादी का करीब 75% माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: इन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतियाबिंद का सामना करना पड़ता है और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है? आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: मणिपुर के लिमाकुंग सैन्य स्टेशन पर केनाइन योद्धाओं ने दिखाया रणकौशल। चुनौतीपूर्ण हालात में 5 डॉग टीमों का प्रदर्शन, राहत बचाव के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ड्रिल। कोच्चि तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी। INS शारदा और डी रियोटर युद्धपोत का युद्धाभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन, धौलपुर से रावत भाटा तक चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग से आए श्रद्धालु के लिए हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर, सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक, बीड की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत, 500 में से 500 अंक लेकर आए।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर लोगों के सामने पेश किया जाता है, लोग बिना सोचे समझे से सच मान लेते हैं और इसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है अफवाहों का दौर। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं हर खबर की सटीक पड़ताल और आपको बताते सही और सच्ची खबर। आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करेंगे आगे। हमारी अगली खबर उस वायरल तस्वीर से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया, सच्चाई क्या आगे बताए।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पहली बार सत्ता हासिल की, बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वाले बीजेपी के चुनावी गाने पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करने वाले कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां बीजेपी के जीतने के बाद पुलिस वाले भी इस तरह से जश्न मनाते नजर आए। लेकिन वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
6: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर अपनी मुहर लगा दी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम नागरिक सड़क पर नाचते झूमते हुए जश्न मना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। इसे शेयर करने वाले कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां बीजेपी के जीतने के बाद पुलिस वाले इस तरह से जश्न मना रहे हैं। कुछ ने सवाल भी किया कि एक लोकतांत्रिक देश में इसकी इजाजत कैसे हो सकती है। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले और ईवीएम हैक की दुहाई लगाने वाले जरा मुझे ये बताएं कि इन पुलिस वालों को किसने हैक किया है जो बीजेपी के जीतने पर इतना खुश है जैसे आज देश आजाद हुआ हो। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सड़क पर डांस करते पुलिस कर्मियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम नागरिक सड़क पर नाचते झूमते जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही कुछ दुकानों की नेम प्लेट पर गया और जब हमने इसे जूम करके देखा तो ये सामने आया कि नाम मराठी में है। अब वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर यहां पर मराठी शब्द क्यों नजर आएंगे, ये हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो फिर ये मीडिया की नजरों से कैसे बच सकती थी। कहीं ना कहीं किसी अखबार में या किसी मीडिया आउटलेट पर ये सुर्खियां जरूर बनती, लिहाजा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा जिसके बाद हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहाँ का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
6: फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान एक रेडिट पोस्ट में ये वीडियो मिला, जिसे 13 सितंबर 2022 को पोस्ट किया गया था। पोस्ट में इसे भारत में गणेश विसर्जन के दौरान का बताया गया है। पोस्ट में मौजूद कमेंट्स को पढ़ने पर पता चला कि कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताया है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो मिला। यहाँ इसे 10 सितंबर 2022 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो जाती है कि ये वीडियो काफी पुराना है और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से संबंधित नहीं हो सकता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है और इसमें नजर आ रहे पुलिस वाले गणपति विसर्जन के समय नाच गा रहे थे। इस वीडियो में बीजेपी का वो कैंपेन सॉन्ग भी नहीं है जो वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा है। साफ है कि वायरल वीडियो में ये गाना अलग से जोड़ा गया है। सर्च के दौरान हमें एक और मिलता जुलता वीडियो मिला। वीडियो में एक दुकान का नाम नजर आता है, पार्वती ट्रेडर्स। सर्च करने पर पता चला कि ये दुकान कोल्हापुर के पापाची टीकाटी इलाके में गंगावेश रोड पर स्थित है। हमें गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू पर भी हूबहू यही जगह मिल गई। स्ट्रीट व्यू में वायरल वीडियो में नजर आ रही तीनों दुकानें, पार्वती ट्रेडर्स, श्री कृष्ण एजेंसी और भिवसे सैनिटरी वेयर्स देखी जा सकती हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साबित हो जाता है कि ये 2022 का महाराष्ट्र के कोल्हापुर का वीडियो है, न कि पश्चिम बंगाल का। उस वक्त कोल्हापुर में गणेश विसर्जन के दौरान झूमते पुलिस वालों के कई और वीडियो और न्यूज रिपोर्ट्स भी सामने आए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और तस्वीर में हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ईरानी झंडा लिए सैनिकों को देखा जा सकता है। कुछ लोग इस तस्वीर के जरिए ईरानी सैनिकों के शौर्य का महिमा मंडन करते नजर आ रहे हैं। दावा यह कर रहे हैं कि सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
7: सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है और उसके मलबे के पास ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। इस तस्वीर को अलग अलग दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। एक फेसबुक पेज ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि रेगिस्तान की इस तस्वीर में गिरे हुए हेलीकॉप्टर के मलबे के बीच खड़े सैनिक और उनके हाथों में लहराता ईरान का झंडा, ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि जंग के बीच दिए जा रहे एक बड़े संदेश की झलक है। हम जंग जीत रहे हैं, इंशाअल्लाह जैसे नारे इस तस्वीर को और ज्यादा चर्चा में ला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई जंग सिर्फ जीत की कहानी होती है, जहां एक तरफ जीत के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह मलबा उस नुकसान की याद दिलाता है जो हर युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है। टूटे हुए हेलीकॉप्टर के हिस्से, धूल में बिखरी चीजें और हथियारों के बीच खड़े सैनिक, यह सब मिलकर एक ऐसी हकीकत दिखाते हैं जो अक्सर नारों और दावों के पीछे छिप जाती है। ईरान का झंडा इस तस्वीर को एक अलग ही राजनीतिक और वैश्विक संदर्भ दे रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ऐसी तस्वीरें सिर्फ जमीन पर हो रही घटनाओं को नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती हैं कि हर पक्ष अपने तरीके से दुनिया को एक संदेश देना चाहता है, ताकत, नियंत्रण और मनोबल का। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे जीत और साहस का प्रतीक मान रहे हैं, तो कुछ इसे युद्ध के प्रचार का हिस्सा बता रहे हैं।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच इस तस्वीर को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और उसके मलबे के पास ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। ईरानी सैनिकों के शौर्य का बखान करते हुए इसे लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई को जानने के लिए हमने सबसे पहले इंटरनेट को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें वायरल तस्वीर किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली, क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं खबर जरूर होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे में हमें वायरल दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल तस्वीर को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड तस्वीर को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
7: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की जांच में जुटी। सर्च करने पर हमें वायरल तस्वीर किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की भरमार थी। ऐसे में हमें वायरल तस्वीर के फेक होने का शक हुआ, इसलिए हमने इस तस्वीर को सिंथ आईडी डिटेक्टर की मदद से चेक किया। सिंथ आईडी के एनालिसिस ने इस तस्वीर के गूगल एआई की मदद से बनाए जाने की पुष्टि की। इसके एनालिसिस के मुताबिक इस तस्वीर में सिंथ आईडी के डिटेक्ट होने की पुष्टि होती है। जांच को आगे बढ़ाते हुए फैक्ट चेक टीम ने इस तस्वीर को एक दूसरे डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस भी इस तस्वीर को 99.9% एआई निर्मित बताती है। इस तरह हमारी पड़ताल से साबित हो गया कि हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ईरानी झंडा लिए सैनिकों की इस तस्वीर को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: Tune in's how to, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, Tune In has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: Good news today is really good. It's in this, right? वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
10: छोटे बच्चों को खाना खिलाना अक्सर माता पिता के लिए मुश्किल बन जाता है। इसी से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची के पास एक शख्स बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे लोग बच्ची का पिता बता रहे हैं। माँ पहले उस शख्स को खाना खिलाने का नाटक करती है। जैसे ही वो आदमी बच्ची की तरह मुंह बनाकर खाना खाने से मना करता है, तभी महिला उसे हल्का सा थप्पड़ मार देती है। ये दृश्य देखकर बच्ची तुरंत चौकन्नी हो जाती है। उसे शायद लगता है कि अगर उसने भी खाना खाने में आनाकानी की तो उसका भी वही हाल हो सकता है। इसके बाद बच्ची बिना किसी जिद के आराम से खाना खाने लगती है। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है। जब बच्ची खाना खा लेती है तो वो अपने पास बैठे उस शख्स को बेहद मासूम अंदाज से सांत्वना देती नजर आती है। बच्ची का ये क्यूट रिएक्शन लोगों का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं।
11: ये स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, रेड डॉट
12: इसको बंद करके।
11: हाँ, तो जब हो गई रिकॉर्डिंग तो ये दबाना है।
12: फिनिश, प्रेस रेड बटन। हाँ
11: ठीक है।
12: हाँ
11: फिर ये
12: रुको फिर एक मिनट, ये ऐसे है।
10: हाँ। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है। ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से, जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था। दादी नानी आज भी वैसी ही सीखती हैं। एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर खूब धूम मचाया हुआ है। एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचाए हुए है। वीडियो में नानी सीख रही है और नातिन सिखा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात ये है कि नानी सिर्फ सीख ही नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी। इसीलिए तो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन ही तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
11: जैसे आपने रेड डॉट दबाई
12: तो ये आ गया, तो इसको दबा देना है।
11: इसको दबाइए,
12: प्रेस ये रेड,
11: दबा दूं
12: जो एक मिनट रेड। हाँ
11: ठीक है, दबाइए। हाँ
12: तो ये
11: सेव टू फोटो आ गया, टिक भी आ गया।
12: हाँ तो इसका मतलब हो गया।
10: रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा गढ़ देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही विश्वास न कर सकने वाली रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतनी सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये 20 फुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटे में बनाई थी। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठकर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरती दिखाई दे रही है, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनकी आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं। दरअसल ये जापानी महिला की आकृति है जो पारंपरिक किमोनो पहने हुए है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है।

0: बनारस के घाट सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का प्रतीक भी माने जाते हैं। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान करने और पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं। लेकिन कई बार लोग भक्ति तो करते हैं मगर सफाई जैसी जरूरी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो में एक विदेशी युवक बनारस के घाटों पर फैला कूड़ा अपने हाथों से साफ करता नजर आ रहा है। विदेशी युवक बिना किसी दिखावे के लगातार घाट को साफ करता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो एक शादी के दौरान का है, जिसमें देखा जा सकता है कि शादी के बाद एक दुल्हन की विदाई हो रही है। विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। बेटी की विदाई पर रो रही माँ इस रस्म को बहुत ही दुखी होकर निभा रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी हुआ उसे देख किसी के लिए भी अपनी हंसी रोकने मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है, तो उसमें से कुछ दाने उछलकर उसकी माँ के मुंह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुंह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। इस वक्त कैमरे का फोकस दुल्हन की माँ के मुंह पर होता है, जहाँ दुल्हन की माँ का ये रिएक्शन देख लोगों की हंसी छूट जाती है। जब पारा आसमान छूने लगे और सूरज आग उगलने लगे, तो अच्छे अच्छों की बारात निकालने की हिम्मत नहीं होती, मगर इंडिया में जुगाड़ का सिक्का चलता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाए। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटी सी ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में एक पोर्टेबल जनरेटर भी फिट किया गया है। मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है, ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ ही चल रहा है। देश को समर्पित कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलते हैं, जहां भारतवासियों की देशभक्ति लोगों को प्रेरणा देने का काम करती है। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक लोको पायलट की देशभक्ति को पूरा इंटरनेट सलाम कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लोको पायलट अपनी ट्रेन की यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन पर लगे तिरंगे को बड़े ही सम्मान के साथ साफ करते हुए नजर आया। लोको पायलट ट्रेन के अगले हिस्से पर लगे तिरंगे को ट्रेन के ऊपर खड़े होकर वाइपर और पानी से धोते हुए नजर आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन के इंजन पर लगे तिरंगे को बिल्कुल साफ कर देता है, तब जाकर वो अपनी ट्रेन लेकर कहीं आगे बढ़ता है। भले ही ये काम लोगों को छोटा सा लगे, लेकिन इसके पीछे उस लोको पायलट की भावना बहुत ही गहरी है। देशभक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े आयोजन कर अपनी देशभक्ति को साबित करें। लोगों के ऐसे रोज की छोटी छोटी जिम्मेदारियों के पीछे भी देशभक्ति झलकती है। पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध बाली के उलुवातु मंदिर में एक बार फिर बंदरों की शरारत ने भारतीय महिला पर्यटक को बुरी तरह परेशान कर दिया। बंदर ने महिला के चेहरे से सीधे चश्मा छीन लिया और भाग निकला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला की चीख और बंदर की चालाकी देखकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर इन दिनों वाइल्ड लाइफ का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे दोस्त हो तो ऐसे। जंगल के राजा कहे जाने वाले शेरों को अपनी ताकत पर बड़ा गुमान था, लेकिन भैंसों की गैंग ने मिनटों में उसका गुरु मिट्टी में मिला दिया। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि शेरों का एक पूरा कुनबा एक अकेले भैंस को घेर कर खड़ा है। शेर उस पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। कोई पीठ पर सवार है तो किसी ने टांगे दबोच रखी हैं। ऐसा लग रहा था कि अब इस भैंस का काम तो तमाम है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मारकर हवा में उछाल दिया। हालांकि 3-4 शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे। जब लगा कि अब भैंसा थक जाएगा, तभी जो हुआ वो देखने लायक था। अचानक दूर से धूल का गुब्बार उठा और भैंस के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने न आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसें शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ में आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, खिसक लेने में ही भलाई है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार धीरेन्द्र शास्त्री अपने किसी बयान या फिर अपने किसी दावे को लेकर सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार वो 21 दिन की विशेष साधना को लेकर चर्चा में है। इस साधना के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ पहुंचे हैं, जहां वो अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के तट पर मौजूद काक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में कठिन साधना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो 26 से 23 मई तक बद्रीनाथ धाम में ही श्रद्धालुओं को कथा भी सुनाएंगे।

0: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और जाने माने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में हैं, जहां 21 दिनों की कठिन साधना कर रहे हैं। उनकी ये आध्यात्मिक साधना अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के तट पर मौजूद खाक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में हो रही है। बताया जा रहा है कि साधना के दौरान उनके साथ कुछ चुनिंदा सेवादार ही रहेंगे और साधना स्थल को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
1: आने वाला जो समय है 15 मई से अधिक मास का हो रहा है, ऐसे अधिक मास में खासकर बद्री विशाल का जब अधिक मास से खास संबंध होता है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है बद्रीनाथ धाम में एक महीना जो अधिक मास का होता है, खासकर जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो इसमें बद्रीनाथ धाम में जब तब पूजा पाठ भागवत कथा अनेकों श्रवण करने का मौका मिलता है। ऐसे में खुद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे हनुमान कथा का आयोजन भी करेंगे।
0: पिछले 3 सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, जहां पहले वो भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर कांच चौक आश्रम पहुंचते हैं। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां वो इन दिनों साधना में लीन है। ये पहली बार है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने लगातार 12 साल तक कथा, दिव्य दरबार और धार्मिक आयोजनों के बाद इतना लंबा ब्रेक लिया है, और वो भी 21 दिनों की कठिन साधना के लिए। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि 17 मई से अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हो रही है। इस दौरान ईश्वर की साधना बहुत फलदायी मानी जाती है।
2: भगवान के स्थानित्य हो जाना पुरुषोत्तम मास में बहुत लाभ की बात होती है। भगवान की कथा सुन लेना पुरुषोत्तम मास की, भागवत की या शिव पुराण की ये कथा सुन लेना बड़े लाभ की बात समझते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य ये पौराणिक है, पुराणों से निकला है, स्कंद पुराण का हिस्सा है, इसे पढ़ना चाहिए। न पढ़े तो अपने इष्ट मंत्र जो भी आपका ओम नमो भगवते वासुदेवाय है या जो भी मंत्र आपका है तो उस मंत्र का जप करना चाहिए। ये बहुत गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि भगवान ने इसे पुरुषोत्तम कहा है, अपने शरण दी है, ये पुरुषोत्तम मास है। इसमें किए हुए धर्म कर्म अनंताय प्रकल्पते लंबे समय तक लाभकारी होते हैं।
0: पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की देवभूमि में मौजूदगी से उनके समर्थक और अनुयायी बेहद उत्साहित हैं। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब वो हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, तो उनके स्वागत में कई लोग पहुंचे। इनमें से किसी ने पैर छूकर आशीर्वाद दिया, किसी ने दंडवत होकर प्रणाम किया और किसी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

0: श्रद्धालु इनके भक्त जो हैं वहाँ पर स्वागत के लिए पहुँचे। वहीं जो खाक चौक आश्रम है बद्रीनाथ धाम में, हमेशा से बाल जो बागेश्वर धाम सरकार है वो जब भी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो बालकनाथ महाराज का जो खाक चौक आश्रम है, यहीं पे हनुमान मंदिर है, पौराणिक हनुमान मंदिर है, यहीं पे वो पहुंचते हैं। हर कोई जो स्थानीय लोग हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचा है, हर कोई दर्शनों के लिए आया है, भजन कीर्तन जो स्वागत है, हर कोई बाबा की एक दर्शन एक झलक पाने के लिए यहाँ पे बेताब दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बालकनाथ महाराज जो हैं, जो खाक चौक के महाराज हैं, उन्हीं के साथ वो वहाँ पे मौजूद हैं, वहीं पे दर्शन सबको दे रहे हैं।
1: भगवान बद्री विशाल की पवित्र भूमि पर इस आध्यात्मिक साधना के अलावा वो कथा और प्रवचनों के जरिए विश्व कल्याण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संदेश भी देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 21 दिनों की साधना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिव्य कथा सुनाएंगे, जो 26 से 30 मई तक चलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: किन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतिया बिंद का सामना करना पड़ता है? और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है? आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: सोच दिखाती है तो
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: मणिपुर के लिमाखुंग सैन्य स्टेशन पर केनाइन योद्धाओं ने दिखाया रणकौशल। चुनौतीपूर्ण हालात में 5 डॉग टीमों का प्रदर्शन, राहत बचाव के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ड्रिल। कोच्चि तट पर भारत और नेदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी। INS शारदा और डी रियोटर युद्धपोत का युद्धाभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन,

लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग से आए श्रद्धालु के लिए हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर। सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण। स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक। बीट की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत। 500 में से 500 अंक लेकर आई।

आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे भारत के भव्य इतिहास का वो अध्याय जिसे आज से 75 साल पहले लिखा गया था, वो अध्याय जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की गई लेकिन वो गौरवशाली अध्याय ना मिटा ना हल्का हुआ। गुजरात का सोमनाथ मंदिर जिसके लोकार्पण को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के बाद आई पहली दीपावली के मौके पर सरदार पटेल ने सोमनाथ में सागर तट पर खड़े होकर मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी। जल्द ही ये प्रतिज्ञा फलीभूत हुई, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 4 साल में मंदिर बनकर तैयार हो गया। आखिरकार 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। वो तारीख थी 11 मई 1951 की। आने वाली 11 मई यानी सोमवार के दिन उस भव्य उत्सव को 75 साल पूरे हो जाएंगे और उसी की याद में सोमनाथ में एक बार फिर से अमृत उत्सव का आयोजन होने जा रहा है जिसका हिस्सा 11 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे और सोमनाथ धाम में आस्था रखने वाले असंख्य शिव भक्त भी।

अडेगा आस्था और सनातन स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम में सोमनाथ अमृत महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सोमनाथ धाम में भव्य और दिव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 2026 का साल सोमनाथ मंदिर के इतिहास में कई अहम पड़ाव लेकर आया है। पहले इसी वर्ष जनवरी महीने में इस पवित्र मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण और उसके बाद भी मंदिर के अडिग रहने को 1000 साल पूरे हुए और अब सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे होने का अवसर आ रहा है। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण हुआ था। 2026 की 11 मई यानी आने वाले सोमवार को भगवान सोमेश्वर

0: परिसर के वर्तमान स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे हो जाएंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैभव का प्रतीक ये धाम अपने पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का गौरवशाली उत्सव मना रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। 11 तारीख को मुख्य उत्सव से पहले मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है।
1: सोमनाथ मंदिर में लिंग की प्राण प्रतिष्ठा को 75 साल 11 मई को पूरे हो रहे हैं। वो दिन अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की, जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, वो आएंगे और पूजा करेंगे। और आज तारीख 8 से लेकर 11 तक के 4 दिनों में वहाँ यज्ञ होगा, मंत्रोच्चार होगा, मंत्र लेखन होगा, कई लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। इस तरह धार्मिक एवं अन्य तरीके से ये अमृत महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं।
0: तय कार्यक्रम के अनुसार 11 मई को सुबह 10 बजे पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां पर हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और विशेष पूजा करेंगे। फिर मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। पूजा और यात्रा के बाद पीएम मोदी सोमनाथ धाम क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ के पुनः निर्माण के इतिहास पर बात करेंगे।
2: यही वो रास्ता है जो 1 किलोमीटर का, यहीं पर प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। दोनों तरफ लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो देश के नृत्य है वो डांस का आयोजन भी किया गया है। बंगाली परिवार है वो भी प्रधानमंत्री का इसी रोड शो में स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन और पूजा करेंगे महादेव की। इसके अलावा यहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया है, जो पहली बार सोमनाथ मंदिर में इस एयर शो का आयोजन किया गया है।
0: हजार साल की यात्रा में ये एक और मील का पत्थर है। सोमनाथ मंदिर का अमृत उत्सव उन लोगों के लिए और भी खास है, जो मंदिर निर्माण से लेकर इसके पुनरुत्थान की यात्रा का साक्षी प्रथम पंक्ति से रहे हैं। नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों में से एक हैं। वे देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। मंदिर के लोकार्पण की स्वर्ण जयंती के समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और अब प्रधानमंत्री के तौर पर वे अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। इस अवसर पर एक लेख के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है, जिसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार ये यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। वास्तव में सोमनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी 1000 साल से भी ज्यादा का इतिहास, विनाश, अटूट आस्था और पुनरुत्थान की अद्भुत गाथा है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप की भव्यता अद्भुत है, लेकिन और भी अनोखी है मंदिर के स्वरूप में ढलने तक की यात्रा। इस यात्रा को दशकों से करीब से देखते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार भास्कर वेद अब 85 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो दिन उनकी स्मृतियों में आज भी ताजा है, जब 10 साल की उम्र में वो पिता की उंगली पकड़कर मंदिर के लोकार्पण उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे।
3: सर, जब मंदिर पुराना मंदिर था, जिसका फोटोग्राफ अब अवेलेबल है, उस समय मैं अपने फादर के साथ एक गांव में एक उत्सव मना था, इसी दिखाते के लिए मुझे उंगली पकड़ कर ले आए थे, और मैं उस मंदिर के पुराना मंदिर जो फोटोग्राफ पर देखते हैं वहाँ उसकी जगह पर सिर्फ सिर्फ खाड़ा था, गड्ढा था जिसमें कोई मूर्ति मूर्ति थी नहीं, पर हरेक स्थलों उस जगह पर भी कुछ पानी चढ़ाकर, कुछ चंदन चढ़ाकर, कुछ गलाल छांटकर भगवान उसमें ही ऐसा कब ऐसा महसूस कर उसकी पूजा तो करते ही थे।
0: एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज सोमनाथ धाम के स्वर्ण मंडित गर्भगृह में पूरी शान से विराजे हैं सोमेश्वर महादेव। कभी जिस मंदिर की दुर्दशा देखकर सागर का खारा जल सरदार पटेल की आंखों में उतर आया था, आज मंदिर को इस रूप में देख पाते तो शायद भावों के अतिरेक में आज एक बार फिर उनकी आंखें भीग जाती।
3: अब तो 75 साल हो गए मंदिर को पूर्ण हुए, तो इतना बदलाव है, तो जिसने मंदिर की पुनरुद्धार किया उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे ड्रीम से भी पार कोई अच्छा मंदिर बन गया जिसे राष्ट्र के सम्माननीय व्यक्तियों उसके साथ जुड़ी है, श्रद्धालु व्यक्ति जुड़ी हुए और देश विदेश से विदेश में से भी आने वाले जुड़ते हैं, साधु संत जुड़ते हैं।
0: आज सोमनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 125 करोड़ को पार कर चुकी है। कभी जो चढ़ावे की रकम लाखों में गिनी जाती थी आज 1 अरब के आंकड़े को छू चुकी है।
1: आज से 15 साल पहले मंदिर की आमदनी 8 करोड़ थी, आज 118 करोड़ है। तब 25 लाख लोग आते थे, आज 125 करोड़ लोग सालाना आ रहे हैं। तो अभी जो 75 साल आए हैं ये एक ऐसा लैंडमार्क है जिसके सेलिब्रेशन से सारे विश्व में एक नया संदेश जाएगा।
0: सोमनाथ धाम के निर्माण की इसी यात्रा को मनाने का पर्व है अमृत महोत्सव। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि सोमनाथ धाम की वर्तमान भव्यता को देखते हुए आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अमृत महोत्सव के अवसर पर अगले 50 सालों के लिए मंदिर में सुरक्षा और सुविधा से जुड़े इंतजामों को बेहतर बनाने की योजना पर भी काम किया जाएगा।
1: आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज्यादा कलश हैं, वो सब सुवर्ण मंडित होने से एक नए प्रकार की एक भव्यता और दिव्यता का लोगों को एहसास करा रहा है। इसलिए 75 साल पे जो ये काम हो रहा है उसमें यात्रियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा एवं मंदिर की सुरक्षा हर पहलू को ध्यान में लेते हुए अगले 50 साल में जो भी हो सकता है वो अभी से उसके करने की शुरुआत कर रहे हैं।
0: एक सहस्राब्दी का इतिहास गवाह है कि हर विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ, ये संदेश देते हुए कि महादेव की आस्था अमर है, सनातन अडिग है, सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष और अमृत महोत्सव उसी आस्था का भव्य उत्सव है जिसमें सारा सोमनाथ क्षेत्र एक बार फिर से मगन दिख रहा है। सोमनाथ से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारत के गौरवशाली इतिहास में दर्ज आस्था की अनुपम धरोहर है सोमनाथ मंदिर, एक ऐसी धरोहर जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। लेकिन इतिहास से परे सनातन धर्म में सोमनाथ मंदिर का अलग ही महत्व है। इसकी कहानी जुड़ी है सोमदेव यानी चंद्रमा से, जिनके नाम पर महादेव स्वयं यहां सोमनाथ कहलाते हैं। एक ऐसा वैभवशाली और अद्वितीय मंदिर जिसकी भव्यता के किस्से विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों को भारत तक खींच लाए।

0: के प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर के तट पर आस्था की लहरों के बीच शान से विराजमान हैं सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से लगाव था। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के श्राप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और श्राप से मुक्ति पाई। श्राप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ वहीं रह जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। अपने निर्माण से लेकर कई शताब्दियों तक प्रभास तीर्थ क्षेत्र में शान से सर उठाए खड़ा रहा सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर। अपने अद्भुत वैभव और अकूत संपदा के साथ अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता का वर्णन विस्तार से किया है। लेकिन फिर आई 11वीं सदी। इस दौर में समय की आंखों ने वो मंजर देखा जो भारत की पावन धरती पर कभी नहीं देखा गया था। विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया सोमनाथ के वैभव का वर्णन गजनवी जैसे लुटेरों को हिंदुस्तान की चौखट तक खींच लाया था।
1: प्रथम विध्वंस के आक्रमण के पहले ये भव्य शिवालय की बहुत दूर देशों तक प्रसिद्धि थी, क्योंकि उनकी मंदिर की जो घंटियां थी उनमें सबसे बड़ी घंटी थी उनका वजन 2 मन 40 किलो था। उनकी जो सांकड़ तंबी थी वो करीबन 4000 किलो सोने से बनी सांकड़ थी। तो इतना वैभव इस सोमनाथ मंदिर के पास था, तो विध्वंसकारी आक्रमणकारी वर्ग सोचा कि इतना धन हमारे पास हो तो को केवल इसी धन की पिपासा ने उन लोगों ने इस मंदिर पे आक्रमण करने की योजना बनाई।
0: पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच, क्रूरता और रक्तपात से सोमनाथ क्षेत्र का सीना छलनी होने वाला था। जो सोमनाथ मंदिर 11वीं सदी तक भारत की भूमि पर सागर के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, सन 1026 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। उस घटना को 1000 साल बीत चुके हैं। गजनवी ने न केवल मंदिर को तहस नहस किया, बल्कि गजनवी मंदिर में मौजूद सोनी चांदी का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेता गया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया गया, पहले से भव्य, पहले से दिव्य। इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए हैं।

आज सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र का विस्तार कर इसे विराट रूप दे दिया गया है। मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में करीब 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई के बनाए प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का भी पुनर्निर्माण करवाया है।

0: आज यदि आप सोमनाथ मंदिर के प्रांगण को देखें, तो यकीन नहीं कर पाएंगे, विध्वंसक इतिहास के थपेड़ों का एक भी निशान यहाँ आज बाकी नहीं दिखता। सोमनाथ मंदिर अगर दिन में सोने सा दमकता है, तो रात में लाइट एंड साउंड शो के दौरान मंदिर की छटा और भी अद्भुत हो जाती है। यानी एक प्रमुख धर्म स्थल होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर अब पर्यटन, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा संगम बन गया है। सोमनाथ प्रांगण में दूर से ही दिखाई दे जाती है मंदिर को निहारते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार पटेल ने ही आखिरी बार मंदिर को फिर से बनवाने की शुरुआत की थी। आज मौजूद सोमनाथ मंदिर देश को उन्हीं की देन है। मंदिर का ये स्वरूप कभी साकार न हो पाता अगर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन वो प्रतिज्ञा न ली होती। 13 नवंबर 1947 को एक विशेष ट्रेन के कोच में सवार होकर पहले जूनागढ़ और फिर वहाँ से सोमनाथ पहुँचे थे सरदार पटेल। आजादी के बाद वो पहले बड़े नेता थे जो मंदिर की उस खस्ता हालत को देखने पहुँचे थे। मंदिर की हालत देखकर सरदार पटेल को बेहद ठेस पहुँची थी। उसी दिन मंदिर के पीछे समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर लौह पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण होकर रहेगा। सरदार पटेल मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास पहुँचे। गांधी जी ने मंदिर के लिए जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया और देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के दादा पद्मश्री प्रभा शंकर सोमपुरा को मंदिर का आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया और 1951 में चालुक्य वास्तुकला शैली में बनकर तैयार हुआ भव्य सोमनाथ मंदिर। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर ने फिर से अपनी भव्यता को प्राप्त कर लिया। वो समारोह ऐतिहासिक था जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि बनने और मिटने के इस सदियों पुराने सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति और इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुंचते रहे। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के वार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं, बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ। गीर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी है, देखते रहिए जीएनटी।
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
4: अब इसे टाइगर के लिए जंगल का बेहद और मुफीद इकोसिस्टम ही कहा जाएगा कि 20 साल बाद अरुणाचल सेंचुरी में बंगाल टाइगर दिखा है। लेकिन पहली बार बंगाल टाइगर कैमरे में कैद हुआ तो वन विभाग उत्साह से भर था। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है अरुणाचल की इस सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिस वजह से यहां बंगाल टाइगर की चहलकदमी सालों बाद नजर आई।
0: बंगाल टाइगर की इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। दशकों बाद रॉयल बंगाल टाइगर के दर्शन अरुणाचल के जंगलों में हुए हैं। ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि दो दशकों से अरुणाचल में बंगाल टाइगर नहीं देखे गए थे और चिंता जताई जा रही थी कि क्या जंगल के बदले मिजाज ने रॉयल बंगाल टाइगर्स को अरुणाचल के घने जंगलों से दूर कर दिया है। अरुणाचल के जंगल में ये तस्वीर उस वक्त खींची गई जब डंपर ट्रक ड्राइवर्स ने पुराने कोमली घाट रोड पर बंगाल टाइगर को चहलकदमी करते देखा। यही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने बंगाल टाइगर को सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ों की छांव में आराम करते हुए भी देखा। लोगों के अनुसार कुछ देर दिखने के बाद टाइगर वापस जंगल की तरफ चला गया, लेकिन ये तस्वीर सुकून का पक्का सबूत बन गई। कुछ दिन पहले अरुणाचल के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर के पंजे देखे गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब बंगाल टाइगर को इतने पास से देखा गया और उसका वीडियो बनाया गया है। फिलहाल टाइगर के इस दीदार के बाद से अरुणाचल का वन विभाग खुश है। यहाँ बंगाल टाइगर की मौजूदगी इस बात का भी सबूत है कि अरुणाचल के डियरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के जंगलों का इकोसिस्टम अब बेहद हेल्दी है। अरुणाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंगाल टाइगर का दिखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंचुरी 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। ये जंगल लुप्त प्राय बंगाल फ्लोरिकन का भी ठिकाना है, लेकिन करीब दो दशक बाद यहाँ बंगाल टाइगर का होना इस बात की गारंटी बन गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी के लिए यहाँ पर्याप्त शिकार मौजूद है। अरुणाचल की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जश्न है, लेकिन एक डर भी है। वो ये कि कहीं ये टाइगर आसपास के गांवों पर हमला बोल लाना शुरू कर दे। अरुणाचल के इस इलाके में बंगाल टाइगर की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत सामने आने के बाद वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से रात के समय जंगल की ओर ना जाने की अपील की गई है। रॉयल बंगाल टाइगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। भारत में अभी 3,680 जंगली बाघ हैं, जो दुनिया की कुल बाघ आबादी का करीब 75% माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: किन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतियाबिंद का सामना करना पड़ता है? और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है? आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: मणिपुर के लिमाकुंग सैन्य स्टेशन पर केनाइन योद्धाओं ने दिखाया रण कौशल। चुनौतीपूर्ण हालात में 5 डॉग टीमों का प्रदर्शन, राहत बचाव के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ड्रिल। कोच्चि तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी। INS शारद और डी रियटर युद्धपोत का युद्धाभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन, धौलपुर से रावत भाटा तक चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग से आई श्रद्धालु के लिए हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर, सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक, बीट की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत, 500 में से 500 अंक लेकर आए।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। लोग बिना सोचे समझे से सच मान लेते हैं और इसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और यही से शुरू होता है अफवाहों का दौर। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं हर खबर की सटीक पड़ताल और आपको बताते सही और सच्ची खबर। आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करेंगे आगे। हमारी अगली खबर उस वायरल तस्वीर से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया, सच्चाई क्या आगे बताएं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पहली बार सत्ता हासिल की, बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वाले बीजेपी के चुनावी गाने पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करने वाले कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां बीजेपी के जीतने के बाद पुलिस वाले भी इस तरह से जश्न मनाते नजर आए। लेकिन वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
7: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर अपनी मुहर लगा दी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम नागरिक सड़क पर नाचते झूमते हुए जश्न मना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। इसे शेयर करने वाले कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां बीजेपी के जीतने के बाद पुलिस वाले इस तरह से जश्न मना रहे हैं। कुछ ने सवाल भी किया कि एक लोकतांत्रिक देश में इसकी इजाजत कैसे हो सकती है। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले और ईवीएम हैक की दुहाई लगाने वाले जरा मुझे ये बताएं कि इन पुलिस वालों को किसने हैक किया है जो बीजेपी के जीतने पर इतना खुश है जैसे आज देश आजाद हुआ हो। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सड़क पर डांस करते पुलिस कर्मियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम नागरिक सड़क पर नाचते झूमते जश्न मनाते हुए और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही कुछ दुकानों की नेम प्लेट पर गया और जब हमने इसे जूम करके देखा तो ये सामने आया कि नाम मराठी में है। अब वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर यहां पर मराठी शब्द क्यों नजर आएंगे, ये हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो फिर ये मीडिया की नजरों से कैसे बच सकती थी। कहीं ना कहीं किसी अखबार में या किसी मीडिया आउटलेट पर ये सुर्खियां जरूर बनती, लिहाजा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसके बाद हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
7: फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान एक रेडिट पोस्ट में ये वीडियो मिला, जिसे 13 सितंबर 2022 को पोस्ट किया गया था। पोस्ट में इसे भारत में गणेश विसर्जन के दौरान का बताया गया है। पोस्ट में मौजूद कमेंट्स को पढ़ने पर पता चला कि कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताया है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो मिला। यहाँ इसे 10 सितंबर 2022 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो जाती है कि ये वीडियो काफी पुराना है और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से संबंधित नहीं हो सकता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है और इसमें नजर आ रहे पुलिस वाले गणपति विसर्जन के समय नाच गा रहे थे। इस वीडियो में बीजेपी का वो कैंपेन सॉन्ग भी नहीं है जो वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा है। साफ है कि वायरल वीडियो में ये गाना अलग से जोड़ा गया है। सर्च के दौरान हमें एक और मिलता जुलता वीडियो मिला। वीडियो में एक दुकान का नाम नजर आता है, पार्वती ट्रेडर्स। सर्च करने पर पता चला कि ये दुकान कोल्हापुर के पापाची टीकाटी इलाके में गंगावेश रोड पर स्थित है। हमें गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू पर भी हूबहू यही जगह मिल गई। स्ट्रीट व्यू में वायरल वीडियो में नजर आ रही तीनों दुकानें, पार्वती ट्रेडर्स, श्री कृष्ण एजेंसी और भिवसे सैनिटरी वेयर्स देखी जा सकती हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साबित हो जाता है कि ये 2022 का महाराष्ट्र के कोल्हापुर का वीडियो है, न कि पश्चिम बंगाल का। उस वक्त कोल्हापुर में गणेश विसर्जन के दौरान झूमते पुलिस वालों के कई और वीडियो और न्यूज रिपोर्ट्स भी सामने आए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और तस्वीर में हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ईरानी झंडा लिए सैनिकों को देखा जा सकता है। कुछ लोग इस तस्वीर के जरिए ईरानी सैनिकों के शौर्य का महिमामंडन करते नजर आ रहे हैं। दावा यह कर रहे हैं कि सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
8: सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है और उसके मलबे के पास ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। इस तस्वीर को अलग अलग दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। एक फेसबुक पेज ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि रेगिस्तान की इस तस्वीर में गिरे हुए हेलीकॉप्टर के मलबे के बीच खड़े सैनिक और उनके हाथों में लहराता ईरान का झंडा, ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि जंग के बीच दिए जा रहे एक बड़े संदेश की झलक है। हम जंग जीत रहे हैं, इंशाअल्लाह जैसे नारे इस तस्वीर को और ज्यादा चर्चा में ला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई जंग सिर्फ जीत की कहानी होती है? जहां एक तरफ जीत के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह मलबा उस नुकसान की याद दिलाता है जो हर युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है। टूटे हुए हेलीकॉप्टर के हिस्से, धूल में बिखरी चीजें और हथियारों के बीच खड़े सैनिक, यह सब मिलकर एक ऐसी हकीकत दिखाते हैं जो अक्सर नारों और दावों के पीछे छिप जाती है। ईरान का झंडा इस तस्वीर को एक अलग ही राजनीतिक और वैश्विक संदर्भ दे रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ऐसी तस्वीरें सिर्फ जमीन पर हो रही घटनाओं को नहीं दिखाती बल्कि यह भी बताती हैं कि हर पक्ष अपने तरीके से दुनिया को एक संदेश देना चाहता है, ताकत, नियंत्रण और मनोबल का। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे जीत और साहस का प्रतीक मान रहे हैं तो कुछ इसे युद्ध के प्रचार का हिस्सा बता रहे हैं।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच इस तस्वीर को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और उसके मलबे के पास ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। ईरानी सैनिकों के शौर्य का बखान करते हुए इसे लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई को जानने के लिए हमने सबसे पहले इंटरनेट को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें वायरल तस्वीर किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली, क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं खबर जरूर होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे में हमें वायरल दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल तस्वीर को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड तस्वीर को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
8: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की जांच में जुटी। सर्च करने पर हमें वायरल तस्वीर किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की भरमार थी। ऐसे में हमें वायरल तस्वीर के फेक होने का शक हुआ, इसलिए हमने इस तस्वीर को सिंथ आईडी डिटेक्टर की मदद से चेक किया। सिंथ आईडी के एनालिसिस ने इस तस्वीर के गूगल एआई की मदद से बनाए जाने की पुष्टि की। इसके एनालिसिस के मुताबिक इस तस्वीर में सिंथ आईडी के डिटेक्ट होने की पुष्टि होती है। जांच को आगे बढ़ाते हुए फैक्ट चेक टीम ने इस तस्वीर को एक दूसरे डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस भी इस तस्वीर को 99.9% एआई निर्मित बताती है। इस तरह हमारी पड़ताल से साबित हो गया कि हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ईरानी झंडा लिए सैनिकों की इस तस्वीर को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: डॉक्टर फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
9: छोटे बच्चों को खाना खिलाना अक्सर माता पिता के लिए मुश्किल बन जाता है। इसी से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची के पास एक शख्स बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे लोग बच्ची का पिता बता रहे हैं। माँ पहले उस शख्स को खाना खिलाने का नाटक करती है। जैसे ही वो आदमी बच्ची की तरह मुंह बनाकर खाना खाने से मना करता है, तभी महिला उसे हल्का सा थप्पड़ मार देती है। ये दृश्य देखकर बच्ची तुरंत चौकन्नी हो जाती है। उसे शायद लगता है कि अगर उसने भी खाना खाने में आनाकानी की तो उसका भी वही हाल हो सकता है। इसके बाद बच्ची बिना किसी जिद के आराम से खाना खाने लगती है। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है। जब बच्ची खाना खा लेती है तो वो अपने पास बैठे उस शख्स को बेहद मासूम अंदाज से सांत्वना देती नजर आती है। बच्ची का ये क्यूट रिएक्शन लोगों का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं।
10: ये स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, रेड डॉट
11: इसको बंद करके।
10: हाँ, तो जब हो गई रिकॉर्डिंग तो ये दबाना है,
11: फिनिश, प्रेस रेड बटन। हाँ
10: ठीक है।
11: हाँ,
10: फिर ये
11: रुको रुको, फिर एक मिनट, ये ऐसे है।
9: हाँ। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है। ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से, जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था। दादी नानी आज भी वैसे ही सीखती हैं। एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर खूब धूम मचाया हुआ है। एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचाए हुए है। वीडियो में नानी सीख रही है और नातिन सिखा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात ये है कि नानी सिर्फ सीख ही नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी। इसीलिए तो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन ही तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
10: जैसे ही आपने रेड डॉट दबाई
11: तो ये आ गया, तो इसको दबा देना है।
10: इसको दबाइए,
11: प्रेस ये, रेड
10: दबा दूं?
11: एक मिनट, रेड। हाँ
10: ठीक है, दबाइए। हाँ
11: तो ये
10: सेव टू फोटो आ गया, टिक भी आ गया।
11: तो इसका मतलब हो गया।
9: रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा गढ़ देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही विश्वास न कर सकने वाली रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतनी सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये 20 फुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटे में बनाई थी। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठकर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरती दिखाई दे रही हैं, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनकी आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं। दरअसल ये जापानी महिला की आकृति है जो पारंपरिक किमोनो पहने हुए है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है।

0: बनारस के घाट सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति परंपरा और अध्यात्म का प्रतीक भी माने जाते हैं। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान करने और पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं, लेकिन कई बार लोग भक्ति तो करते हैं मगर सफाई जैसी जरूरी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो में एक विदेशी युवक बनारस के घाटों पर फैला कूड़ा अपने हाथों से साफ करता नजर आ रहा है। विदेशी युवक बिना किसी दिखावे के लगातार घाट को साफ करता है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो एक शादी के दौरान का है जिसमें देखा जा सकता है कि शादी के बाद एक दुल्हन की विदाई हो रही है। विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। बेटी की विदाई पर रो रही माँ इस रस्म को बहुत ही दुखी होकर निभा रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी हुआ उसे देख किसी के लिए भी अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है तो उसमें से कुछ दाने उछलकर उसकी माँ के मुंह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुंह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। इस वक्त कैमरे का फोकस दुल्हन की माँ के मुंह पर होता है, जहाँ दुल्हन की माँ का ये रिएक्शन देख लोगों की हंसी छूट जाती है। जब पारा आसमान छूने लगे और सूरज आग उगलने लगे तो अच्छे अच्छों की बारात निकालने की हिम्मत नहीं होती, मगर इंडिया में जुगाड़ का सिक्का चलता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाएं। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटे से ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में एक पोर्टेबल जनरेटर भी फिट किया गया है, मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ ही चल रहा है। देश को समर्पित कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलते हैं, जहां भारतवासियों की देशभक्ति लोगों को प्रेरणा देने का काम करती है। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक लोको पायलट की देशभक्ति को पूरा इंटरनेट सलाम कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लोको पायलट अपनी ट्रेन की यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन पर लगे तिरंगे को बड़े ही सम्मान के साथ साफ करते हुए नजर आया। लोको पायलट ट्रेन के अगले हिस्से पर लगे तिरंगे को ट्रेन के ऊपर खड़े होकर वाइपर और पानी से धोते हुए नजर आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन के इंजन पर लगे तिरंगे को बिल्कुल साफ कर देता है, तब जाकर वो अपनी ट्रेन लेकर कहीं आगे बढ़ता है। भले ही ये काम लोगों को छोटा सा लगे, लेकिन इसके पीछे उस लोको पायलट की भावना बहुत ही गहरी है। देशभक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े आयोजन कर अपनी देशभक्ति को साबित करें। लोगों के ऐसे रोज की छोटी छोटी जिम्मेदारियों के पीछे भी देशभक्ति झलकती है। पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध बाली के उलुवातु मंदिर में एक बार फिर बंदरों की शरारत ने भारतीय महिला पर्यटक को बुरी तरह परेशान कर दिया। बंदर ने महिला के चेहरे से सीधे चश्मा छीन लिया और भाग निकला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला की चीख और बंदर की चालाकी देखकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर इन दिनों वाइल्ड लाइफ का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे दोस्त हो तो ऐसे। जंगल के राजा कहे जाने वाले शेरों को अपनी ताकत पर बड़ा गुमान था, लेकिन भैंसों की गैंग ने मिनटों में उसका गुरु मिट्टी में मिला दिया। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि शेरों का एक पूरा कुनबा एक अकेले भैंस को घेर कर खड़ा है। शेर उस पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। कोई पीठ पर सवार है तो किसी ने टांगे दबोच रखी हैं। ऐसा लग रहा था कि अब इस भैंस का काम तो तमाम है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मारकर हवा में उछाल दिया। हालांकि 3-4 शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे। जब लगा कि अब भैंसा थक जाएगा, तभी जो हुआ वो देखने लायक था। अचानक दूर से धूल का गुब्बार उठा और भैंस के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने न आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसे शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ में आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, खिसक लेने में ही भलाई है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial free on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार धीरेन्द्र शास्त्री अपने किसी बयान या फिर अपने किसी दावे को लेकर सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार वो 21 दिन की विशेष साधना को लेकर चर्चा में है। इस साधना के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ पहुंचे हैं, जहां वो अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के तट पर मौजूद काक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में कठिन साधना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो 26 से 23 मई तक बद्रीनाथ धाम में ही श्रद्धालुओं को कथा भी सुनाएंगे।

0: करके।
1: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और जाने माने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में हैं, जहां 21 दिनों की कठिन साधना कर रहे हैं। उनकी ये आध्यात्मिक साधना अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के तट पर मौजूद खाक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में हो रही है। बताया जा रहा है कि साधना के दौरान उनके साथ कुछ चुनिंदा सेवादार ही रहेंगे और साधना स्थल को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
2: आने वाला जो समय है 15 मई से अधिक मास का हो रहा है। ऐसे अधिक मास में खासकर बद्री विशाल का जब अधिक मास से खास संबंध होता है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है बद्रीनाथ धाम में एक महीना जो अधिक मास का होता है, खासकर जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो इसमें बद्रीनाथ धाम में जब तब पूजा पाठ भागवत कथा अनेकों श्रवण करने का मौका मिलता है। ऐसे में खुद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे हनुमान कथा का आयोजन भी करेंगे।
1: पिछले 3 सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, जहां पहले वो भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर कांच चौक आश्रम पहुंचते हैं। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां वो इन दिनों साधना में लीन है। ये पहली बार है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने लगातार 12 साल तक कथा, दिव्य दरबार और धार्मिक आयोजनों के बाद इतना लंबा ब्रेक लिया है, और वो भी 21 दिनों की कठिन साधना के लिए। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि 17 मई से अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हो रही है। इस दौरान ईश्वर की साधना बहुत फलदायी मानी जाती है।
3: भगवान के सानिध्य हो जाना पुरुषोत्तम मास में बहुत लाभ की बात होती है। भगवान की कथा सुन लेना पुरुषोत्तम मास की, भागवत की या शिव पुराण की ये कथा सुन लेना बड़े लाभ की बात समझते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य ये पौराणिक है, पुराणों से निकला है, स्कंद पुराण का हिस्सा है, इसे पढ़ना चाहिए। न पढ़े तो अपने इष्ट मंत्र जो भी आपका ओम नमो भगवते वासुदेवाय है या जो भी मंत्र आपका है, तो उस मंत्र का जप करना चाहिए। ये बहुत गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि भगवान ने इसे पुरुषोत्तम कहा है, अपने शरण दी है। ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें किए हुए धर्म कर्म अनंताय प्रकल्पते लंबे समय तक लाभकारी होते हैं।
1: पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की देवभूमि में मौजूदगी से उनके समर्थक और अनुयायी बेहद उत्साहित हैं। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब वो हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, तो उनके स्वागत में कई लोग पहुंचे। इनमें से किसी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, किसी ने दंडवत होकर प्रणाम किया और किसी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

0: श्रद्धालु इनके भक्त जो हैं वहाँ पर स्वागत के लिए पहुँचे। वहीं जो खाक चौक आश्रम है बद्रीनाथ धाम में, हमेशा से बाल जो बागेश्वर धाम सरकार है वो जब भी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो बालकनाथ महाराज का जो खाक चौक आश्रम है, यहीं पे हनुमान मंदिर है, पौराणिक हनुमान मंदिर है, यहीं पे वो पहुंचते हैं। हर कोई जो स्थानीय लोग हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचा है, हर कोई दर्शनों के लिए आया है, भजन कीर्तन जो स्वागत है, हर कोई बाबा की एक दर्शन एक झलक पाने के लिए यहाँ पे बेताब दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बालकनाथ महाराज जो हैं, जो खाक चौक के महाराज हैं, उन्हीं के साथ वो वहाँ पे मौजूद हैं, वहीं पे दर्शन सबको दे रहे हैं।
1: भगवान बद्री विशाल की पवित्र भूमि पर इस आध्यात्मिक साधना के अलावा वो कथा और प्रवचनों के जरिए विश्व कल्याण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संदेश भी देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 21 दिनों की साधना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिव्य कथा सुनाएंगे, जो 26 से 30 मई तक चलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
4: It's my music and it's my station.
3: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: किन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतियाबिंद का सामना करना पड़ता है? और किन ग्रहों से आंखों की रोशनी जाने लगती है? आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय जाने।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मणिपुर के लीमाकुंग सैन्य स्टेशन पर केएनआई योद्धाओं ने दिखाया रणकौशल। कोच्ची तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी। INS शारदे और डी ब्यूटर युद्धपोत का युद्धाभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन। धौलपुर से रावत भाटा तक चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग से आई श्रद्धालु के लिए हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर। सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक। बीट की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत, 500 में से 500 अंक लेकर आए।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे भारत के भव्य इतिहास का वो अध्याय जिसे आज से 75 साल पहले लिखा गया था, वो अध्याय जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की गई लेकिन वो गौरवशाली अध्याय ना मिटा ना हल्का हुआ। गुजरात का सोमनाथ मंदिर जिसके लोकार्पण को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के बाद आई पहली दीपावली के मौके पर सरदार पटेल ने सोमनाथ में सागर तट पर खड़े होकर मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी। जल्द ही ये प्रतिज्ञा फलीभूत हुई, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 4 साल में मंदिर बनकर तैयार हो गया। आखिरकार 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। वो तारीख थी 11 मई 1951 की। आने वाली 11 मई यानी सोमवार के दिन उस भव्य उत्सव को 75 साल पूरे हो जाएंगे और उसी की याद में सोमनाथ में एक बार फिर से अमृत उत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसका हिस्सा 11 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे और सोमनाथ धाम में आस्था रखने वाले असंख्य शिव भक्त भी।

0: अडेगा आस्था और सनातन स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम में सोमनाथ अमृत महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सोमनाथ धाम में भव्य और दिव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 2026 का साल सोमनाथ मंदिर के इतिहास में कई अहम पड़ाव लेकर आया है। पहले इसी वर्ष जनवरी महीने में इस पवित्र मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण और उसके बाद भी मंदिर के अडिग रहने को 1000 साल पूरे हुए और अब सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे होने का अवसर आ रहा है। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण हुआ था। 2026 की 11 मई यानी आने वाले सोमवार को भगवान सोमेश्वर के वर्तमान स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे हो जाएंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैभव का प्रतीक ये धाम अपने पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का गौरवशाली उत्सव मना रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। 11 तारीख को मुख्य उत्सव से पहले मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है।
1: सोमनाथ मंदिर में लिंग की प्राण प्रतिष्ठा को 75 साल 11 मई को पूरे हो रहे हैं। वो दिन अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं वो आएंगे और पूजा करेंगे और आज तारीख 8 से लेकर 11 तक के 4 दिनों

0: में वहां यज्ञ होगा, मंत्रोच्चार होगा, मंत्र लेखन होगा, कई लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। इस तरह धार्मिक एवं अन्य तरीके से ये अमृत महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं।
1: तय कार्यक्रम के अनुसार 11 मई को सुबह 10 बजे पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां पर हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और विशेष पूजा करेंगे। फिर मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। पूजा और यात्रा के बाद पीएम मोदी सोमनाथ धाम क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ के पुनः निर्माण के इतिहास पर बात करेंगे।
2: यही वो रास्ता है जो 1 किलोमीटर का, यहीं पर प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। दोनों तरफ लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो देश के नृत्य है वो डांस का आयोजन भी किया गया है। बंगाली परिवार है वो भी प्रधानमंत्री का इसी रोड शो में स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन और पूजा करेंगे महादेव की। इसके अलावा यहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया है, जो पहली बार सोमनाथ मंदिर में इस एयर शो का आयोजन किया गया है।
1: हजार साल की यात्रा में ये एक और मील का पत्थर है। सोमनाथ मंदिर का अमृत उत्सव उन लोगों के लिए और भी खास है, जो मंदिर निर्माण से लेकर इसके पुनरुत्थान की यात्रा का साक्षी प्रथम पंक्ति से रहे हैं। नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों में से एक हैं। वे देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। मंदिर के लोकार्पण की स्वर्ण जयंती के समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और अब प्रधानमंत्री के तौर पर वे अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। इस अवसर पर एक लेख के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है, जिसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार ये यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूँ, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। वास्तव में सोमनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी 1000 साल से भी ज्यादा का इतिहास, विनाश, अटूट आस्था और पुनरुत्थान की अद्भुत गाथा है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप की भव्यता अद्भुत है, लेकिन और भी अनोखी है मंदिर के स्वरूप में ढलने तक की यात्रा। इस यात्रा को दशकों से करीब से देखते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार भास्कर वेद अब 85 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो दिन उनकी स्मृतियों में आज भी ताजा है, जब 10 साल की उम्र में वो पिता की उंगली पकड़कर मंदिर के लोकार्पण उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे।
3: सर, जब मंदिर पुराना मंदिर था, जिसका फोटोग्राफ अब अवेलेबल है, उस समय मैं अपने फादर के साथ एक गांव में एक उत्सव मना था, इसी दिखाते के लिए मुझे उंगली पकड़ कर ले आए थे, और मैं उस मंदिर के पुराना मंदिर जो फोटोग्राफ पर देखते हैं, वहाँ उसकी जगह पर एक सिर्फ खाड़ा था, गड्ढा था, जिसमें कोई मूर्ति थी नहीं, पर हरेक आस्थालु उस जगह पर भी कुछ पानी चढ़ाकर, कुछ चंदन चढ़ाकर, कुछ गलाल छांटकर भगवान उसमें ही ऐसा महसूस कर उसकी पूजा तो करते ही थे।
1: एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज सोमनाथ धाम के स्वर्ण मंडित गर्भगृह में पूरी शान से विराजे हैं सोमेश्वर महादेव। कभी जिस मंदिर की दुर्दशा देखकर सागर का खारा जल सरदार पटेल की आंखों में उतर आया था, आज मंदिर को इस रूप में देख पाते तो शायद भावों के अतिरेक में आज एक बार फिर उनकी आंखें भीग जाती।
3: अब तो 75 साल हो गए मंदिर को पूर्ण हुए, तो इतना बदलाव है कि जिसने मंदिर की पुनरुद्धार किया उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे ड्रीम से भी पार कोई अच्छा मंदिर बन गया, जिसे राष्ट्र के सम्माननीय व्यक्तियों उसके साथ जुड़ी है, श्रद्धालु व्यक्ति जुड़ी हुए और देश विदेश से विदेश में से भी आने वाले जुड़ते हैं, साधु संत जुड़ते हैं।
1: आज सोमनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 125 करोड़ को पार कर चुकी है। कभी जो चढ़ावे की रकम लाखों में गिनी जाती थी आज 1 अरब के आंकड़े को छू चुकी है।
0: आज से 15 साल पहले मंदिर की आमदनी 8 करोड़ थी, आज 118 करोड़ है। तब 25 लाख लोग आते थे, आज 125 करोड़ लोग सालाना आ रहे हैं। तो अभी जो 75 साल आए हैं ये एक ऐसा लैंडमार्क है जिसके सेलिब्रेशन से सारे विश्व में एक नया संदेश जाएगा।
1: सोमनाथ धाम के निर्माण की इसी यात्रा को मनाने का पर्व है अमृत महोत्सव। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि सोमनाथ धाम की वर्तमान भव्यता को देखते हुए आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अमृत महोत्सव के अवसर पर अगले 50 सालों के लिए मंदिर में सुरक्षा और सुविधा से जुड़े इंतजामों को बेहतर बनाने की योजना पर भी काम किया जाएगा।
0: आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज्यादा कलश हैं, वो सब सुवर्ण मंडित होने से एक नए प्रकार की एक भव्यता और दिव्यता का लोगों को एहसास करा रहा है। इसलिए 75 साल पे जो ये काम हो रहा है उसमें यात्रियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा एवं मंदिर की सुरक्षा हर पहलू को ध्यान में लेते हुए अगले 50 साल में जो भी हो सकता है वो अभी से उसके करने की शुरुआत कर रहे हैं।
1: एक सहस्राब्दी का इतिहास गवाह है कि हर विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ, ये संदेश देते हुए कि महादेव की आस्था अमर है, सनातन अडिग है, सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष और अमृत महोत्सव उसी आस्था का भव्य उत्सव है जिसमें सारा सोमनाथ क्षेत्र एक बार फिर से मगन दिख रहा है। सोमनाथ से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारत के गौरवशाली इतिहास में दर्ज आस्था की अनुपम धरोहर है सोमनाथ मंदिर, एक ऐसी धरोहर जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। लेकिन इतिहास से परे सनातन धर्म में सोमनाथ मंदिर का अलग ही महत्व है। इसकी कहानी जुड़ी है सोमदेव यानी चंद्रमा से, जिनके नाम पर महादेव स्वयं यहां सोमनाथ कहलाते हैं। एक ऐसा वैभवशाली और अद्वितीय मंदिर जिसकी भव्यता के किस्से विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों को भारत तक खींच लाए।

0: सौराष्ट्र के प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर के तट पर आस्था की लहरों के बीच शान से विराजमान हैं सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से लगाव था। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के श्राप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और श्राप से मुक्ति पाई। श्राप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ वहीं रह जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। अपने निर्माण से लेकर कई शताब्दियों तक प्रभास तीर्थ क्षेत्र में शान से सर उठाए खड़ा रहा सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर। अपने अद्भुत वैभव और अकूत संपदा के साथ अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता का वर्णन विस्तार से किया है। लेकिन फिर आई 11वीं सदी। उस दौर में समय की आंखों ने वो मंजर देखा जो भारत की पावन धरती पर कभी नहीं देखा गया था। विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया सोमनाथ के वैभव का वर्णन गजनवी जैसे लुटेरों को हिंदुस्तान की चौखट तक खींच लाया था।
1: प्रथम विध्वंस के आक्रमण के पहले ये भव्य शिवालय की बहुत दूर देशों तक प्रसिद्धि थी, क्योंकि उनकी मंदिर की जो घंटियां थी उनमें सबसे बड़ी घंटी थी उनका वजन 2 मन 40 किलो था। उनकी जो सांकड़ तंबी थी वो करीबन 4000 किलो सोने से बनी सांकड़ थी। तो इतना वैभव इस सोमनाथ मंदिर के पास था। तो विध्वंसकारी आक्रमणकारी वर्ग सोचा कि इतना धन हमारे पास हो तो को केवल इसी धन की पिपासा उन्हें उन लोगों ने इस मंदिर पे आक्रमण करने की योजना बनाई।
0: पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच क्रूरता और रक्तपात से सोमनाथ क्षेत्र का सीना छलनी होने वाला था। जो सोमनाथ मंदिर 11वीं सदी तक भारत की भूमि पर सागर के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, सन 1026 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। उस घटना को 1000 साल बीत चुके हैं। गजनवी ने न केवल मंदिर को तहस नहस किया बल्कि गजनवी मंदिर में मौजूद सोनी चांदी का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेता गया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया गया, पहले से भव्य, पहले से दिव्य।

इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए हैं।

आज सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र का विस्तार कर इसे विराट रूप दे दिया गया है। मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में करीब 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई के बनाए प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का भी पुनर्निर्माण करवाया है।

0: आज यदि आप सोमनाथ मंदिर के प्रांगण को देखें तो यकीन नहीं कर पाएंगे, विध्वंसक इतिहास के थपेड़ों का एक भी निशान यहां आज बाकी नहीं दिखता। सोमनाथ मंदिर अगर दिन में सोने सा दमकता है तो रात में लाइट एंड साउंड शो के दौरान मंदिर की छटा और भी अद्भुत हो जाती है। यानी एक प्रमुख धर्म स्थल होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर अब पर्यटन, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा संगम बन गया है। सोमनाथ प्रांगण में दूर से ही दिखाई दे जाती है मंदिर को निहारते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार पटेल ने ही आखिरी बार मंदिर को फिर से बनवाने की शुरुआत की थी। आज मौजूद सोमनाथ मंदिर देश को उन्हीं की देन है। मंदिर का ये स्वरूप कभी साकार न हो पाता अगर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन वो प्रतिज्ञा न ली होती। 13 नवंबर 1947 को एक विशेष ट्रेन के कोच में सवार होकर पहले जूनागढ़ और फिर वहां से सोमनाथ पहुंचे थे सरदार पटेल। आजादी के बाद वो पहले बड़े नेता थे जो मंदिर की उस खस्ता हालत को देखने पहुंचे थे। मंदिर की हालत देखकर सरदार पटेल को बेहद ठेस पहुंची थी। उसी दिन मंदिर के पीछे समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर लौह पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो जाए मंदिर का पुनर्निर्माण होकर रहेगा। सरदार पटेल मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। गांधी जी ने मंदिर के लिए जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया और देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के दादा पद्मश्री प्रभा शंकर सोमपुरा को मंदिर का आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया और 1951 में चालुक्य वास्तुकला शैली में बनकर तैयार हुआ भव्य सोमनाथ मंदिर। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर ने फिर से अपनी भव्यता को प्राप्त कर लिया। वो समारोह ऐतिहासिक था जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि बनने और मिटने के इस सदियों पुराने सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति और इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुंचते रहे। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के वार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं, बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ। गिर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज के हमारे इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बेशक दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी है, देखते रहिए जीएनटी।
2: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: Good news today is really good. It's in this, right? It's the news of the murder and the chilli. It's not the people.
4: Now, टाइगर के लिए जंगल का बेहद और मुफीद इकोसिस्टम ही कहा जाएगा कि 20 साल बाद अरुणाचल सेंचुरी में बंगाल टाइगर दिखा है। लेकिन पहली बार बंगाल टाइगर कैमरे में कैद हुआ तो वन विभाग उत्साह से भर था। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है अरुणाचल की इस सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिस वजह से यहाँ बंगाल टाइगर की चहलकदमी सालों।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: अब इसे टाइगर के लिए जंगल का बेहद और मुफीद इकोसिस्टम ही कहा जाएगा कि 20 साल बाद अरुणाचल सेंचुरी में बंगाल टाइगर दिखा है। लेकिन पहली बार बंगाल टाइगर कैमरे में कैद हुआ तो वन विभाग उत्साह से भर था। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है अरुणाचल की इस सबसे

0: ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिस वाले बीजेपी के चुनावी गाने पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करने वाले कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां बीजेपी के जीतने के बाद पुलिस वाले भी इस तरह से जश्न मनाते नजर आए। लेकिन वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर अपनी मुहर लगा दी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम नागरिक सड़क पर नाचते झूमते हुए जश्न मना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। इसे शेयर करने वाले कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां बीजेपी के जीतने के बाद पुलिस वाले इस तरह से जश्न मना रहे हैं। कुछ ने सवाल भी किया कि एक लोकतांत्रिक देश में इसकी इजाजत कैसे हो सकती है। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले और ईवीएम हैक की दुहाई लगाने वाले जरा मुझे ये बताएं कि इन पुलिस वालों को किसने हैक किया है जो बीजेपी के जीतने पर इतना खुश है जैसे आज देश आजाद हुआ हो। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सड़क पर डांस करते पुलिस कर्मियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम नागरिक सड़क पर नाचते झूमते जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही कुछ दुकानों की नेम प्लेट पर गया और जब हमने इसे जूम करके देखा तो ये सामने आया कि नाम मराठी में है। अब वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर यहां पर मराठी शब्द क्यों नजर आएंगे, ये हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो फिर ये मीडिया की नजरों से कैसे बच सकती थी। कहीं ना कहीं किसी अखबार में या किसी मीडिया आउटलेट पर ये सुर्खियां जरूर बनती, लिहाजा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसके बाद हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहाँ का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
1: फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान एक रेडिट पोस्ट में ये वीडियो मिला, जिसे 13 सितंबर 2022 को पोस्ट किया गया था। पोस्ट में इसे भारत में गणेश विसर्जन के दौरान का बताया गया है। पोस्ट में मौजूद कॉमेंट्स को पढ़ने पर पता चला कि कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताया है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक YouTube चैनल पर भी ये वीडियो मिला। यहाँ इसे 10 सितंबर 2022 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यहीं साफ हो जाती है कि ये वीडियो काफी पुराना है और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से संबंधित नहीं हो सकता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है और इसमें नजर आ रहे पुलिस वाले गणपति विसर्जन के समय नाच गा रहे थे। इस वीडियो में बीजेपी का वो कैंपेन सॉन्ग भी नहीं है जो वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा है। साफ है कि वायरल वीडियो में ये गाना अलग से जोड़ा गया है। सर्च के दौरान हमें एक और मिलता जुलता वीडियो मिला। वीडियो में एक दुकान का नाम नजर आता है, पार्वती ट्रेडर्स। सर्च करने पर पता चला कि ये दुकान कोल्हापुर के पापाची टीकाटी इलाके में गंगावेश रोड पर स्थित है। हमें गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू पर भी हूबहू यही जगह मिल गई। स्ट्रीट व्यू में वायरल वीडियो में नजर आ रही तीनों दुकानें, पार्वती ट्रेडर्स, श्री कृष्ण एजेंसी और भिवसे सैनिटरी वेयर्स देखी जा सकती हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साबित हो जाता है कि ये 2022 का महाराष्ट्र के कोल्हापुर का वीडियो है, न कि पश्चिम बंगाल का। उस वक्त कोल्हापुर में गणेश विसर्जन के दौरान झूमते पुलिस वालों के कई और वीडियो और न्यूज रिपोर्ट्स भी सामने आए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और तस्वीर में हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ईरानी झंडा लिए सैनिकों को देखा जा

0: सकता है। कुछ लोग इस तस्वीर के जरिए ईरानी सैनिकों के शौर्य का महिमा मंडन करते नजर आ रहे हैं। दावा यह कर रहे हैं कि सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है और उसके मलबे के पास ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। इस तस्वीर को अलग अलग दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। एक फेसबुक पेज ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि रेगिस्तान की इस तस्वीर में गिरे हुए हेलीकॉप्टर के मलबे के बीच खड़े सैनिक और उनके हाथों में लहराता ईरान का झंडा, ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि जंग के बीच दिए जा रहे एक बड़े संदेश की झलक है। हम जंग जीत रहे हैं, इंशाअल्लाह जैसे नारे इस तस्वीर को और ज्यादा चर्चा में ला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई जंग सिर्फ जीत की कहानी होती है? जहां एक तरफ जीत के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह मलबा उस नुकसान की याद दिलाता है जो हर युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है। टूटे हुए हेलीकॉप्टर के हिस्से, धूल में बिखरी चीजें और हथियारों के बीच खड़े सैनिक, यह सब मिलकर एक ऐसी हकीकत दिखाते हैं जो अक्सर

0: किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह मलबा उस नुकसान की याद दिलाता है जो हर युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है। टूटे हुए हेलीकॉप्टर के हिस्से, धूल में बिखरी चीजें और हथियारों के बीच खड़े सैनिक, यह सब मिलकर एक ऐसी हकीकत दिखाते हैं जो अक्सर नारों और दावों के पीछे छिप जाती है। ईरान का झंडा इस तस्वीर को एक अलग ही राजनीतिक और वैश्विक संदर्भ दे रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ऐसी तस्वीरें सिर्फ जमीन पर हो रही घटनाओं को नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती हैं कि हर पक्ष अपने तरीके से दुनिया को एक संदेश देना चाहता है, ताकत, नियंत्रण और मनोबल का। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे जीत और साहस का प्रतीक मान रहे हैं, तो कुछ इसे युद्ध के प्रचार का हिस्सा बता रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच इस तस्वीर को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और उसके मलबे के पास ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। ईरानी सैनिकों के शौर्य का बखान करते हुए इसे लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई को जानने के लिए हमने सबसे पहले इंटरनेट को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें वायरल तस्वीर किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली, क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं खबर जरूर होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे में हमें वायरल दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल तस्वीर को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड तस्वीर को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की जांच में जुटी। सर्च करने पर हमें वायरल तस्वीर किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की भरमार थी, ऐसे में हमें वायरल तस्वीर के फेक होने का शक हुआ, इसलिए हमने इस तस्वीर को सिंथ आईडी डिटेक्टर की मदद से चेक किया। सिंथ आईडी के एनालिसिस ने इस तस्वीर के गूगल एआई की मदद से बनाए जाने की पुष्टि की। इसके एनालिसिस के मुताबिक इस तस्वीर में सिंथ आईडी के डिटेक्ट होने की पुष्टि होती है। जांच को आगे बढ़ाते हुए फैक्ट चेक टीम ने इस तस्वीर को एक दूसरे डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस भी इस तस्वीर को 99.9% एआई निर्मित बताती है। इस तरह हमारी पड़ताल से साबित हो गया कि हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ईरानी झंडा लिए सैनिकों की इस तस्वीर को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
4: So they were disallowed from speaking their language.
3: In-depth conversations with A-list celebrities.
5: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
3: True crime podcasts you just can't stop listening to.
6: Others escape justice to live and die in infamy. These
3: individuals. Plus the news and sports content you crave in podcast form.
7: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
3: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
8: छोटे बच्चों को खाना खिलाना अक्सर माता पिता के लिए मुश्किल बन जाता है। इसी से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची के पास एक शख्स बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे लोग बच्ची का पिता बता रहे हैं। माँ पहले उस शख्स को खाना खिलाने का नाटक करती है। जैसे ही वो आदमी बच्ची की तरह मुंह बनाकर खाना खाने से मना करता है, तभी महिला उसे हल्का सा थप्पड़ मार देती है। ये दृश्य देखकर बच्चे तुरंत चौंक

0: करनी हो जाती है। उसे शायद लगता है कि अगर उसने भी खाना खाने में आनाकानी की तो उसका भी वही हाल हो सकता है। इसके बाद बच्ची बिना किसी जिद के आराम से खाना खाने लगती है। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है। जब बच्ची खाना खा लेती है तो वो अपने पास बैठे उस शख्स को बेहद मासूम अंदाज से सांत्वना देती नजर आती है। बच्ची का ये क्यूट रिएक्शन लोगों का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं।
1: ये स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, रेड डॉट
2: इसको बंद करके।
1: हाँ, तो जब हो गई रिकॉर्डिंग तो ये दबाना है,
2: फिनिश, प्रेस रेड बटन। हाँ
1: ठीक है।
2: हाँ,
1: फिर ये
2: रुको, फिर एक मिनट, ये ऐसे है।
0: हाँ। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है। ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से, जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था। दादी नानी आज भी वैसे ही सीखती हैं। एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर खूब धूम मचाया हुआ है। वीडियो में नानी सीख रही है और नातिन सिखा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात ये है कि नानी सिर्फ सीख ही नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी, इसीलिए तो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन ही तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: जैसे आपने रेड डॉट दबाई
2: तो ये आ गया, तो इसको दबा देना है।
1: इसको दबाइए,
2: प्रेस ये रेड,
1: दबा दूं,
2: एक मिनट रेड। हाँ
1: ठीक है, दबाइए। हाँ
2: तो ये
1: सेव टू फोटो आ गया, टिक भी आ गया।
2: हाँ, तो इसका मतलब हो गया।
0: रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा गढ़ देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही विश्वास न कर सकने वाली रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतनी सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये 20 फुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटे में बनाई थी। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठकर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरती दिखाई दे रही है, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनके आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं। दरअसल ये जापानी महिला की आकृति है जो पारंपरिक किमोनो पहने हुए है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है।

0: बनारस के घाट सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का प्रतीक भी माने जाते हैं। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान करने और पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं। लेकिन कई बार लोग भक्ति तो करते हैं मगर सफाई जैसी जरूरी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो में एक विदेशी युवक बनारस के घाटों पर फैला कूड़ा अपने हाथों से साफ करता नजर आ रहा है। विदेशी युवक बिना किसी दिखावे के लगातार घाट को साफ करता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो एक शादी के दौरान का है, जिसमें देखा जा सकता है कि शादी के बाद एक दुल्हन की विदाई हो रही है। विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। बेटी की विदाई पर रो रही माँ इस रस्म को बहुत ही दुखी होकर निभा रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी हुआ उसे देख किसी के लिए भी अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है, तो उसमें से कुछ दाने उछलकर उसकी माँ के मुंह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुंह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। इस वक्त कैमरे का फोकस दुल्हन की माँ के मुंह पर होता है, जहाँ दुल्हन की माँ का ये रिएक्शन देख लोगों की हंसी छूट जाती है। जब पारा आसमान छूने लगे और सूरज आग उगलने लगे, तो अच्छे अच्छों की बारात निकालने की हिम्मत नहीं होती, मगर इंडिया में जुगाड़ का सिक्का चलता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाएं। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटे से ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में एक पोर्टेबल जनरेटर भी फिट किया गया है। मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है, ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ ही चल रहा है। देश को समर्पित कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलते हैं, जहां भारतवासियों की देशभक्ति लोगों को प्रेरणा देने का काम करती है। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक लोको पायलट की देशभक्ति को पूरा इंटरनेट सलाम कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लोको पायलट अपनी ट्रेन की यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन पर लगे तिरंगे को बड़े ही सम्मान के साथ साफ करते हुए नजर आया। लोको पायलट ट्रेन के अगले हिस्से पर लगे तिरंगे को ट्रेन के ऊपर खड़े होकर वाइपर और पानी से धोते हुए नजर आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन के इंजन पर लगे तिरंगे को बिल्कुल साफ कर देता है, तब जाकर वो अपनी ट्रेन लेकर कहीं आगे बढ़ता है। भले ही ये काम लोगों को छोटा सा लगे, लेकिन इसके पीछे उस लोको पायलट की भावना बहुत ही गहरी है। देशभक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े आयोजन कर अपनी देशभक्ति को साबित करें। लोगों के ऐसे रोज की छोटी छोटी जिम्मेदारियों के पीछे भी देशभक्ति झलकती है। पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध बाली के उलुवातु मंदिर में एक बार फिर बंदरों की शरारत ने भारतीय महिला पर्यटक को बुरी तरह परेशान कर दिया। बंदर ने महिला के चेहरे से सीधे चश्मा छीन लिया और भाग निकला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला की चीख और बंदर की चालाकी देखकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर इन दिनों वाइल्ड लाइफ का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे दोस्त हो तो ऐसे। जंगल के राजा कहे जाने वाले शेरों को अपनी ताकत पर बड़ा गुमान था, लेकिन भैंसों की गैंग ने मिनटों में उसका गुरु मिट्टी में मिला दिया। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि शेरों का एक पूरा कुनबा एक अकेले भैंस को घेर कर खड़ा है। शेर उस पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। कोई पीठ पर सवार है तो किसी ने टांगे दबोच रखी हैं। ऐसा लग रहा था कि अब इस भैंस का काम तो तमाम है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मारकर हवा में उछाल दिया। हालांकि तीन चार शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे। जब लगा कि अब भैंसा थक जाएगा, तभी जो हुआ वो देखने लायक था। अचानक दूर से धूल का गुब्बार उठा और भैंस के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने न आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसें शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ में आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, खिसक लेने में ही भलाई है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार धीरेन्द्र शास्त्री अपने किसी बयान या फिर अपने किसी दावे को लेकर सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार वो 21 दिन की विशेष साधना को लेकर चर्चा में है। इस साधना के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ पहुंचे हैं, जहां वो अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के तट पर मौजूद काक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में कठिन साधना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो 26 से 23 मई तक बद्रीनाथ धाम में ही श्रद्धालुओं को कथा भी सुनाएंगे।

0: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और जाने माने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में हैं, जहां 21 दिनों की कठिन साधना कर रहे हैं। उनकी ये आध्यात्मिक साधना अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के तट पर मौजूद खाक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में हो रही है। बताया जा रहा है कि साधना के दौरान उनके साथ कुछ चुनिंदा सेवादार ही रहेंगे और साधना स्थल को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
1: आने वाला जो समय है 15 मई से अधिक मास का हो रहा है। ऐसे अधिक मास में खासकर बद्री विशाल का जब अधिक मास से खास संबंध होता है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है बद्रीनाथ धाम में एक महीना जो अधिक मास का होता है, खासकर जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो इसमें बद्रीनाथ धाम में जब तब पूजा पाठ भागवत कथा अनेकों श्रवण करने का मौका मिलता है। ऐसे में खुद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे हनुमान कथा का आयोजन भी करेंगे।
0: पिछले 3 सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, जहां पहले वो भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर कांच चौक आश्रम पहुंचते हैं। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां वो इन दिनों साधना में लीन है। ये पहली बार है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने लगातार 12 साल तक कथा, दिव्य दरबार और धार्मिक आयोजनों के बाद इतना लंबा ब्रेक लिया है, और वो भी 21 दिनों की कठिन साधना के लिए। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि 17 मई से अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हो रही है। इस दौरान ईश्वर की साधना बहुत फलदायी मानी जाती है।
2: भगवान के सानिध्य हो जाना पुरुषोत्तम मास में बहुत लाभ की बात होती है। भगवान की कथा सुन लेना, पुरुषोत्तम मास की भागवत की या शिव पुराण की ये कथा सुन लेना बड़े लाभ की बात समझते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य ये पौराणिक है, पुराणों से निकला है, स्कंद पुराण का हिस्सा है, इसे पढ़ना चाहिए। न पढ़े तो अपने इष्ट मंत्र जो भी आपका ओम नमो भगवते वासुदेवाय है या जो भी मंत्र आपका है, तो उस मंत्र का जप करना चाहिए। ये बहुत गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि भगवान ने इसे पुरुषोत्तम कहा है, अपने शरण दी है। ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें किए हुए धर्म कर्म अनंताय प्रकल्पते लंबे समय तक लाभकारी होते हैं।
0: पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की देवभूमि में मौजूदगी से उनके समर्थक और अनुयायी बेहद उत्साहित हैं। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब वो हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, तो उनके स्वागत में कई लोग पहुंचे। इनमें से किसी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, किसी ने दंडवत होकर प्रणाम किया और किसी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

0: श्रद्धालु इनके भक्त जो हैं वहाँ पर स्वागत के लिए पहुँचे। वहीं जो खाक चौक आश्रम है बद्रीनाथ धाम में, हमेशा से बाल जो बागेश्वर धाम सरकार है वो जब भी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो बालकनाथ महाराज का जो खाक चौक आश्रम है, यहीं पे हनुमान मंदिर है, पौराणिक हनुमान मंदिर है, यहीं पे वो पहुंचते हैं। हर कोई जो स्थानीय लोग हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचा है, हर कोई दर्शनों के लिए आया है, भजन कीर्तन जो स्वागत है, हर कोई बाबा की एक दर्शन एक झलक पाने के लिए यहाँ पे बेताब दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बालकनाथ महाराज जो हैं, जो खाक चौक के महाराज हैं, उन्हीं के साथ वो वहाँ पे मौजूद हैं, वहीं पे दर्शन सबको दे रहे हैं।
1: भगवान बद्री विशाल की पवित्र भूमि पर इस आध्यात्मिक साधना के अलावा वो कथा और प्रवचनों के जरिए विश्व कल्याण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संदेश भी देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 21 दिनों की साधना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिव्य कथा सुनाएंगे, जो 26 से 30 मई तक चलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: किन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतिया बिंद का सामना करना पड़ता है? और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है? आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: मणिपुर के लिमाखुंग सैन्य स्टेशन पर केनाइन योद्धाओं ने दिखाया रणकौशल। चुनौतीपूर्ण हालात में 5 डॉग टीमों का प्रदर्शन, राहत बचाव के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ड्रिल। कोच्चि तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी। INS शारदा और डी रियोटर युद्धपोत का युद्धाभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन। धौलपुर से रावत भाटा तक चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग से आए श्रद्धालु के लिए हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर। सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक। बीड की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत, 500 में से 500 अंक लेकर आए।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे भारत के भव्य इतिहास का वो अध्याय जिसे आज से 75 साल पहले लिखा गया था, वो अध्याय जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो गौरवशाली अध्याय ना मिटा ना हल्का हुआ। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसके लोकार्पण को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के बाद आई पहली दीपावली के मौके पर सरदार पटेल ने सोमनाथ में सागर तट पर खड़े होकर मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी। जल्द ही ये प्रतिज्ञा फलीभूत हुई, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 4 साल में मंदिर बनकर तैयार हो गया। आखिरकार 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। वो तारीख थी 11 मई 1951 की। आने वाली 11 मई यानी सोमवार के दिन उस भव्य उत्सव को 75 साल पूरे हो जाएंगे और उसी की याद में सोमनाथ में एक बार फिर से अमृत उत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसका हिस्सा 11 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे और सोमनाथ धाम में आस्था रखने वाले असंख्य शिव भक्त भी।

0: बढ़ेगा आस्था और सनातन स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम में सोमनाथ अमृत महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सोमनाथ धाम में भव्य और दिव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 2026 का साल सोमनाथ मंदिर के इतिहास में कई अहम पड़ाव लेकर आया है। पहले इसी वर्ष जनवरी महीने में इस पवित्र मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण और उसके बाद भी मंदिर के अडिग रहने को 1000 साल पूरे हुए और अब सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे होने का अवसर आ रहा है। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण हुआ था। 2026 की 11 मई यानी आने वाले सोमवार को भगवान सोमेश्वर के वर्तमान स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण के 75 साल पूरे हो जाएंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैभव का प्रतीक ये धाम अपने पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का गौरवशाली उत्सव मना रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। 11 तारीख को मुख्य उत्सव से पहले मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है।
1: सोमनाथ मंदिर में लिंग की प्राण प्रतिष्ठा को 75 साल 11 मई को पूरे हो रहे हैं। वो दिन अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की, जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, वो आएंगे और पूजा करेंगे। और आज तारीख 8 से लेकर 11 तक के 4 दिनों में वहाँ यज्ञ होगा, मंत्रोच्चार होगा, मंत्र लेखन होगा, कई लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। इस तरह धार्मिक एवं अन्य तरीके से ये अमृत महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं।
0: तय कार्यक्रम के अनुसार 11 मई को सुबह 10 बजे पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां पर हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और विशेष पूजा करेंगे। फिर मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। पूजा और यात्रा के बाद पीएम मोदी सोमनाथ धाम क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ के पुनर्निर्माण के इतिहास पर बात करेंगे।
2: यही वो रास्ता है जो 1 किलोमीटर का, यहीं पर प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। दोनों तरफ लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो देश के नृत्य है वो डांस का आयोजन भी किया गया है। बंगाली परिवार है वो भी प्रधानमंत्री का इसी रोड शो में स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन और पूजा करेंगे महादेव की। इसके अलावा यहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया है, जो पहली बार सोमनाथ मंदिर में इस एयर शो का आयोजन किया गया है।
0: 1000 साल की यात्रा में ये एक और मील का पत्थर है। सोमनाथ मंदिर का अमृत उत्सव उन लोगों के लिए और भी खास है जो मंदिर निर्माण से लेकर इसके पुनरुत्थान की यात्रा का साक्षी प्रथम पंक्ति से रहे हैं। नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों में से एक हैं। वे देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। मंदिर के लोकार्पण की स्वर्ण जयंती के समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री के तौर पर वे अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। इस अवसर पर एक लेख के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार ये यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूँ जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। वास्तव में सोमनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी 1000 साल से भी ज्यादा का इतिहास विनाश अटूट आस्था और पुनरुत्थान की अद्भुत गाथा है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप की भव्यता अद्भुत है, लेकिन और भी अनोखी है मंदिर के इस स्वरूप में ढलने तक की यात्रा। इस यात्रा को दशकों से करीब से देखते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार भास्कर वेद अब 85 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो दिन उनकी स्मृतियों में आज भी ताजा है जब 10 साल की उम्र में वो पिता की उंगली पकड़कर मंदिर के लोकार्पण उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे।
3: सर, जब मंदिर पुराना मंदिर था जिसका फोटोग्राफ अवेलेबल है, उस समय मैं अपने फादर के साथ एक गांव में उत्सव मना था, इसी दिखाते के लिए मुझे अंगुली पकड़ कर ले आए थे, और मैं उस मंदिर के पुराना मंदिर जो फोटोग्राफ में देखते हैं वहाँ उसकी जगह पर सिर्फ खाड़ा था, गड्ढा था जिसमें कोई मूर्ति मूर्ति थी नहीं, पर हरेक स्थलों उस जगह पर भी कुछ पानी चढ़ाकर, कुछ चंदन चढ़ाकर, कुछ गलाल छांटकर भगवान उसमें ही ऐसा महसूस कर उसकी पूजा तो करते ही थे।
0: एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज सोमनाथ धाम के स्वर्ण मंडित गर्भगृह में पूरी शान से विराजे हैं सोमेश्वर महादेव। कभी जिस मंदिर की दुर्दशा देखकर सागर का खारा जल सरदार पटेल की आंखों में उतर आया था, आज मंदिर को इस रूप में देख पाते तो शायद भावों के अतिरेक में आज एक बार फिर उनकी आंखें भीग जाती।
3: अब तो 75 साल हो गए मंदिर को पूर्ण हुए, तो इतना बदलाव है कि जिसने मंदिर की पुनरुद्धार किया उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे ड्रीम से भी पार कोई अच्छा मंदिर बन गया जिसे राष्ट्र के सम्माननीय व्यक्तियों उसके साथ जुड़ी है, श्रद्धालु व्यक्ति जुड़ी हुए और विदेश में से भी आने वाले जुड़ते हैं, साधु संत जुड़ते हैं।
0: आज सोमनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 125 करोड़ को पार कर चुकी है। कभी जो चढ़ावे की रकम लाखों में गिनी जाती थी आज 1 अरब के आंकड़े को छू चुकी है।
1: आज से 15 साल पहले मंदिर की आमदनी 8 करोड़ थी, आज 118 करोड़ है। तब 25 लाख लोग आते थे, आज 125 करोड़ लोग सालाना आ रहे हैं। तो अभी जो 75 साल आए हैं ये एक ऐसा लैंडमार्क है जिसके सेलिब्रेशन से सारे विश्व में एक नया संदेश जाएगा।
0: सोमनाथ धाम के निर्माण की इसी यात्रा को मनाने का पर्व है अमृत महोत्सव। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि सोमनाथ धाम की वर्तमान भव्यता को देखते हुए आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अमृत महोत्सव के अवसर पर अगले 50 सालों के लिए मंदिर में सुरक्षा और सुविधा से जुड़े इंतजामों को बेहतर बनाने की योजना पर भी काम किया जाएगा।
1: आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज्यादा कलश हैं, वो सब सुवर्ण मंडित होने से एक नए प्रकार की एक भव्यता और दिव्यता का लोगों को एहसास करा रहा है। इसलिए 75 साल पे जो ये काम हो रहा है उसमें यात्रियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा एवं मंदिर की सुरक्षा हर पहलू को ध्यान में लेते हुए अगले 50 साल में जो भी हो सकता है वो अभी से उसके करने की शुरुआत कर रहे हैं।
0: एक सहस्राब्दी का इतिहास गवाह है कि हर विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ, ये संदेश देते हुए कि महादेव की आस्था अमर है, सनातन अडिग है, सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष और अमृत महोत्सव उसी आस्था का भव्य उत्सव है जिसमें सारा सोमनाथ क्षेत्र एक बार फिर से मगन दिख रहा है। सोमनाथ से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारत के गौरवशाली इतिहास में दर्ज आस्था की अनुपम धरोहर है सोमनाथ मंदिर। एक ऐसी धरोहर जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है, लेकिन इतिहास से परे सनातन धर्म में सोमनाथ मंदिर का अलग ही महत्व है। इसकी कहानी जुड़ी है सोमदेव यानी चंद्रमा से, जिनके नाम पर महादेव स्वयं यहाँ सोमनाथ कहलाते हैं। एक ऐसा वैभवशाली और अद्वितीय मंदिर जिसकी भव्यता के किस्से विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों को भारत तक खींच लाए।

0: सौराष्ट्र के प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर के तट पर आस्था की लहरों के बीच शान से विराजमान हैं सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से लगाव था। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के श्राप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और श्राप से मुक्ति पाई। श्राप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ वहीं रह जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। अपने निर्माण से लेकर कई शताब्दियों तक प्रभास तीर्थ क्षेत्र में शान से सर उठाए खड़ा रहा सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर। अपने अद्भुत वैभव और अकूत संपदा के साथ अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता का वर्णन विस्तार से किया है। लेकिन फिर आई 11वीं सदी। उस दौर में समय की आंखों ने वो मंजर देखा जो भारत की पावन धरती पर कभी नहीं देखा गया था। विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया सोमनाथ के वैभव का वर्णन गजनवी जैसे लुटेरों को हिंदुस्तान की चौखट तक खींच लाया था।
1: प्रथम विध्वंस के आक्रमण के पहले ये भव्य शिवालय की बहुत दूर देशों तक प्रसिद्धि थी, क्योंकि उनकी मंदिर की जो घंटियां थी उनमें सबसे बड़ी घंटी थी उनका वजन 2 मन 40 किलो था। उनकी जो सांकड़ तंबी थी वो करीबन 4000 किलो सोने से बनी सांकड़ थी। तो इतना वैभव इस सोमनाथ मंदिर के पास था। तो विध्वंसकारी आक्रमणकारी वर्ग सोचा कि इतना धन हमारे पास हो तो को केवल इसी धन की पिपासा ने उन लोगों ने इस मंदिर पे आक्रमण करने की योजना बनाई।
0: पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच क्रूरता और रक्तपात से सोमनाथ क्षेत्र का सीना छलनी होने वाला था। जो सोमनाथ मंदिर 11वीं सदी तक भारत की भूमि पर सागर के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, सन 1026 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। उस घटना को 1000 साल बीत चुके हैं। गजनवी ने न केवल मंदिर को तहस नहस किया बल्कि गजनवी मंदिर में मौजूद सोनी चांदी का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेता गया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया गया, पहले से भव्य, पहले से दिव्य।

इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए हैं।

आज सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र का विस्तार कर इसे विराट रूप दे दिया गया है। मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में करीब 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई के बनाए प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का भी पुनर्निर्माण करवाया है।

0: आज यदि आप सोमनाथ मंदिर के प्रांगण को देखें, तो यकीन नहीं कर पाएंगे। विध्वंसक इतिहास के थपेड़ों का एक भी निशान यहां आज बाकी नहीं दिखता। सोमनाथ मंदिर अगर दिन में सोने सा दमकता है, तो रात में लाइट एंड साउंड शो के दौरान मंदिर की छटा और भी अद्भुत हो जाती है। यानी एक प्रमुख धर्मस्थल होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर अब पर्यटन, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा संगम बन गया है। सोमनाथ प्रांगण में दूर से ही दिखाई दे जाती है मंदिर को निहारते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार पटेल ने ही आखिरी बार मंदिर को फिर से बनवाने की शुरुआत की थी। आज मौजूद सोमनाथ मंदिर देश को उन्हीं की देन है। मंदिर का ये स्वरूप कभी साकार न हो पाता अगर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन वो प्रतिज्ञा न ली होती। 13 नवंबर 1947 को एक विशेष ट्रेन के कोच में सवार होकर पहले जूनागढ़ और फिर वहां से सोमनाथ पहुंचे थे सरदार पटेल। आजादी के बाद वो पहले बड़े नेता थे जो मंदिर की उस खस्ता हालत को देखने पहुंचे थे। मंदिर की हालत देखकर सरदार पटेल को बेहद ठेस पहुंची थी। उसी दिन मंदिर के पीछे समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर लौह पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण होकर रहेगा। सरदार पटेल मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। गांधी जी ने मंदिर के लिए जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया और देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के दादा पद्मश्री प्रभा शंकर सोमपुरा को मंदिर का आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया और 1951 में चालुक्य वास्तुकला शैली में बनकर तैयार हुआ भव्य सोमनाथ मंदिर। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर ने फिर से अपनी भव्यता को प्राप्त कर लिया। वो समारोह ऐतिहासिक था जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि बनने और मिटने के इस सदियों पुराने सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति और इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुंचते रहे। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के वार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं, बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ। गीर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज के हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें जारी है, देखते रहिए जीएनटी।
2: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn, available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
3: So they were disallowed from speaking their language.
2: In-depth conversations with A-list celebrities.
4: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
2: True crime podcasts you just can't stop listening to.
5: Others escape justice to live and die in infamy. These
2: individuals. Plus the news and sports content you crave in podcast form.
6: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
2: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
7: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अब इसे टाइगर के लिए जंगल का बेहद और मुफीद इकोसिस्टम ही कहा जाएगा कि 20 साल बाद अरुणाचल सेंचुरी में बंगाल टाइगर दिखा है। लेकिन पहली बार बंगाल टाइगर कैमरे में कैद हुआ तो वन विभाग उत्साह से भर था। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है अरुणाचल की इस सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिस वजह से यहां बंगाल टाइगर की चहलकदमी सालों बाद नजर आई।
8: बंगाल टाइगर की इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। दशकों बाद रॉयल बंगाल टाइगर के दर्शन अरुणाचल के जंगलों में हुए हैं। ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि दो दशकों से अरुणाचल में बंगाल टाइगर नहीं देखे गए थे और चिंता जताई जा रही थी कि क्या जंगल के बदले मिजाज ने रॉयल बंगाल टाइगर्स को अरुणाचल के घने जंगलों से दूर कर दिया है। अरुणाचल के जंगल में ये तस्वीर उस वक्त खींची गई जब डंपर ट्रक ड्राइवर्स ने पुराने कोमली घाट रोड पर बंगाल टाइगर को चहलकदमी करते देखा। यही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने बंगाल टाइगर को सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ों की छांव में आराम करते हुए भी देखा। लोगों के अनुसार कुछ देर दिखने के बाद टाइगर वापस जंगल की तरफ चला गया, लेकिन ये तस्वीर सुकून का पक्का सबूत बन गई। कुछ दिन पहले अरुणाचल के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर के पंजे देखे गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब बंगाल टाइगर को इतने पास से देखा गया और उसका वीडियो बनाया गया है। फिलहाल टाइगर के इस दीदार के बाद से अरुणाचल का वन विभाग खुश है। यहाँ बंगाल टाइगर की मौजूदगी इस बात का भी सबूत है कि अरुणाचल के डियरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के जंगलों का इकोसिस्टम अब बेहद हेल्दी है। अरुणाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंगाल टाइगर का दिखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंचुरी 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। ये जंगल लुप्त प्राय बंगाल फ्लोरिकन का भी ठिकाना है, लेकिन करीब दो दशक बाद यहाँ बंगाल टाइगर का होना इस बात की गारंटी बन गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी के लिए यहाँ पर्याप्त शिकार मौजूद है। अरुणाचल की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जश्न है, लेकिन एक डर भी है। वो ये कि कहीं ये टाइगर आसपास के गांवों पर हमला बोल लाना शुरू कर दे। अरुणाचल के इस इलाके में बंगाल टाइगर की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत सामने आने के बाद वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से रात के समय जंगल की ओर ना जाने की अपील की गई है। रॉयल बंगाल टाइगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। भारत में अभी 3,680 जंगली बाघ हैं, जो दुनिया की कुल बाघ आबादी का करीब 75% माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: इन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतियाबिंद का सामना करना पड़ता है और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है? आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: मणिपुर के लिमाखुंग सैन्य स्टेशन पर केएनआईएन योद्धाओं ने दिखाया रणकौशल। चुनौतीपूर्ण हालात में 5 डॉग टीमों का प्रदर्शन, राहत बचाव के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ड्रिल। कोच्चि तट पर भारत और नीदरलैंड नेवी का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में आपसी सहयोग के साथ साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी। INS शारदा और डी रियटर युद्धपोत का युद्धाभ्यास। मॉनसून की दस्तक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, हीट वेव से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चीता संरक्षण के लिए बड़ी योजना पर मंथन। धौलपुर से रावतभाटा तक चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान। वन्य जीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग से आई श्रद्धालु के लिए हेल्थ केयर से जुड़ी अच्छी खबर। सीएम धामी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल का किया लोकार्पण। स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में 179 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक। बीट की मेधावी बेटी सिद्धि का फूलों से हुआ स्वागत। 500 में से 500 अंक लेकर आए।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। लोग बिना सोचे समझे से सच मान लेते हैं और इसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और यही से शुरू होता है अफवाहों का दौर। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं हर खबर की सटीक पड़ताल और आपको बताते सही और सच्ची खबर। आज इन दो खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करेंगे आगे। हमारी अगली खबर उस वायरल तस्वीर से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए कहा जा रहा है ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सच्चाई क्या आगे बताएंगे।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पहली बार सत्ता हासिल की। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वाले बीजेपी के चुनावी गाने पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करने वाले कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां बीजेपी के जीतने के बाद पुलिस वाले भी इस तरह से जश्न मनाते नजर आए। लेकिन वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
10: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर अब

0: दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। इसे शेयर करने वाले कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां बीजेपी के जीतने के बाद पुलिस वाले इस तरह से जश्न मना रहे हैं। कुछ ने सवाल भी किया कि एक लोकतांत्रिक देश में इसकी इजाजत कैसे हो सकती है। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले और ईवीएम हैक की दुहाई लगाने वाले जरा मुझे ये बताएं कि इन पुलिस वालों को किसने हैक किया है जो बीजेपी के जीतने पर इतना खुश है जैसे आज देश आजाद हुआ हो। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सड़क पर डांस करते पुलिस कर्मियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम नागरिक सड़क पर नाचते झूमते जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पुलिस वाले भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही कुछ दुकानों की नेम प्लेट पर गया और जब हमने इसे जूम करके देखा तो यह सामने आया कि नाम मराठी में है। अब वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर यहां पर मराठी शब्द क्यों नजर आएंगे, यह हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो फिर ये मीडिया की नजरों से कैसे बच सकती थी। कहीं ना कहीं किसी अखबार में या किसी मीडिया आउटलेट पर ये सुर्खियां जरूर बनती, लिहाजा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसके बाद हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहाँ का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान एक रेडिट पोस्ट में ये वीडियो मिला जिसे 13 सितंबर 2022 को पोस्ट किया गया था। पोस्ट में इसे भारत में गणेश विसर्जन के दौरान का बताया गया है। पोस्ट में मौजूद कमेंट्स को पढ़ने पर पता चला कि कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताया है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो मिला। यहाँ इसे 10 सितंबर 2022 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो जाती है कि ये वीडियो काफी पुराना है और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से संबंधित नहीं हो सकता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है और इसमें नजर आ रहे पुलिस वाले गणपति विसर्जन के समय नाच गा रहे थे। इस वीडियो में बीजेपी का वो कैंपेन सॉन्ग भी नहीं है जो वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा है। साफ है कि वायरल वीडियो में ये गाना अलग से जोड़ा गया है। सर्च के दौरान हमें एक और मिलता जुलता वीडियो मिला। वीडियो में एक दुकान का नाम नजर आता है, पार्वती ट्रेडर्स। सर्च करने पर पता चला कि ये दुकान कोल्हापुर के पापाची टीकाटी इलाके में गंगावेश रोड पर स्थित है। हमें गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू पर भी हूबहू यही जगह मिल गई। स्ट्रीट व्यू में वायरल वीडियो में नजर आ रही तीनों दुकानें, पार्वती ट्रेडर्स, श्री कृष्ण एजेंसी और भिवसे सैनिटरी वेयर्स देखी जा सकती हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साबित हो जाता है कि ये 2022 का महाराष्ट्र के कोल्हापुर का वीडियो है, न कि पश्चिम बंगाल का। उस वक्त कोल्हापुर में गणेश विसर्जन के दौरान झूमते पुलिस वालों के कई और वीडियो और न्यूज रिपोर्ट्स भी सामने आए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और तस्वीर में हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ईरानी झंडा लिए सैनिकों को देखा जा सकता है। कुछ लोग इस तस्वीर के जरिए ईरानी सैनिकों के शौर्य का महिमामंडन करते नजर आ रहे हैं। दावा ये कर रहे हैं कि सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है और उसके मलबे के पास ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। इस तस्वीर को अलग अलग दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। एक फेसबुक पेज ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि रेगिस्तान की इस तस्वीर में गिरे हुए हेलीकॉप्टर के मलबे के बीच खड़े सैनिक और उनके हाथों में लहराता ईरान का झंडा, ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि जंग के बीच दिए जा रहे एक बड़े संदेश की झलक है। हम जंग

0: देते रहे हैं। इंशाअल्लाह जैसे नारे इस तस्वीर को और ज्यादा चर्चा में ला रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई जंग सिर्फ जीत की कहानी होती है, जहां एक तरफ जीत के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह मलबा उस नुकसान की याद दिलाता है जो हर युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है। टूटे हुए हेलीकॉप्टर के हिस्से, धूल में बिखरी चीजें और हथियारों के बीच खड़े सैनिक, यह सब मिलकर एक ऐसी हकीकत दिखाते हैं जो अक्सर नारों और दावों के पीछे छिप जाती है। ईरान का झंडा इस तस्वीर को एक अलग ही राजनीतिक और वैश्विक संदर्भ दे रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ऐसी तस्वीरें सिर्फ जमीन पर हो रही घटनाओं को नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती हैं कि हर पक्ष अपने तरीके से दुनिया को एक संदेश देना चाहता है, ताकत, नियंत्रण और मनोबल का। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे जीत और साहस का प्रतीक मान रहे हैं, तो कुछ इसे युद्ध के प्रचार का हिस्सा बता रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच इस तस्वीर को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और उसके मलबे के पास ईरान का झंडा लेकर खड़े हैं। ईरानी सैनिकों के शौर्य का बखान करते हुए इसे लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई को जानने के लिए हमने सबसे पहले इंटरनेट को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें वायरल तस्वीर किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली, क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं खबर जरूर होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे में हमें वायरल दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल तस्वीर को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड तस्वीर को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की जांच में जुटी। सर्च करने पर हमें वायरल तस्वीर किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की भरमार थी, ऐसे में हमें वायरल तस्वीर के फेक होने का शक हुआ, इसलिए हमने इस तस्वीर को सिंथ आईडी डिटेक्टर की मदद से चेक किया। सिंथ आईडी के एनालिसिस ने इस तस्वीर के गूगल एआई की मदद से बनाए जाने की पुष्टि की। इसके एनालिसिस के मुताबिक इस तस्वीर में सिंथ आईडी के डिटेक्ट होने की पुष्टि होती है। जांच को आगे बढ़ाते हुए फैक्ट चेक टीम ने इस तस्वीर को एक दूसरे डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस भी इस तस्वीर को 99.9% एआई निर्मित बताती है। इस तरह हमारी पड़ताल से साबित हो गया कि हेलीकॉप्टर के मलबे के पास ईरानी झंडा लिए सैनिकों की इस तस्वीर को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: किन ग्रहों की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं? किन ग्रहों की वजह से आंखों में मोतियाबिंद का सामना करना पड़ता है, और किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी जाने लगती है? आंखों के पीछे कौन से हैं ग्रह और आंखों की बेहतरी के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
5: somebody save me,
4: to timeless favorites,
5: life is like a song,
4: and new discoveries.
5: So much more than a history. Wake up.
4: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
6: छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना अक्सर माता पिता के लिए मुश्किल बन जाता है। इसी से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची के पास एक शख्स बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे लोग बच्ची का पिता बता रहे हैं। माँ पहले उस शख्स को खाना खिलाने का नाटक करती है। जैसे ही वो आदमी बच्ची की तरह मुंह बनाकर खाना खाने से मना करता है, तभी महिला उसे हल्का सा थप्पड़ मार देती है। ये दृश्य देखकर बच्ची तुरंत चौकन्नी हो जाती है। उसे शायद लगता है कि अगर उसने भी खाना खाने में आनाकानी की तो उसका भी वही हाल हो सकता है। इसके बाद बच्ची बिना किसी जिद के आराम से खाना खाने लगती है। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है। जब बच्ची खाना खा लेती है तो वो अपने पास बैठे उस शख्स को बेहद मासूम अंदाज से सांत्वना देती नजर आती है। बच्ची का ये क्यूट रिएक्शन लोगों का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं।
7: स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, रेड डॉट
8: इसको बंद करके
7: हाँ, तो जब हो गई रिकॉर्डिंग तो ये दबाना है,
8: फिनिश प्रेस रेड बटन। हाँ
7: ठीक है
8: हाँ,
7: फिर ये
8: रुको फिर एक मिनट, ये ऐसे है।
6: हाँ। बड़े बुजुर्गों को अक्सर नई पीढ़ी तकनीक सिखाती है। ये लोग सीखते भी बड़े मन से हैं, लेकिन अपने तरीके से, जैसे पहले सब कुछ लिखकर सीखा जाता था। दादी नानी आज भी वैसी ही सीखती हैं। एक नानी का ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर खूब धूम मचाया हुआ है। वीडियो में नानी सीख रही है और नातिन सिखा रही है। ये मोमेंट याद रखने वाला बन गया है। वीडियो की सबसे खास बात ये है कि नानी सिर्फ सीख ही नहीं रही थी, वो सब कुछ याद कर लेना चाहती थी। इसीलिए तो एक एक पॉइंट लिख रही थी। अच्छे से समझने के लिए वो डायग्राम भी बना रही थी। उनका डेडिकेशन ही तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
7: जैसे आपने रेड डॉट दबाई
8: तो ये आ गया, तो इसको दबा देना है।
7: इसको दबाइए,
8: प्रेस ये रेड,
7: दबा दूं
8: एक मिनट रेड। हाँ
7: ठीक है, दबाइए। हाँ
8: तो ये
7: सेव टू फोटो आ गया, टिक भी आ गया।
8: हाँ तो इसका मतलब हो गया।
6: रंगोली ऐसी कला है जिसको बनाने में धैर्य चाहिए होता है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट अपनी उंगलियों से कुछ ऐसा गढ़ देते हैं कि आंखों को यकीन भी नहीं होता है। साउथ कोरिया की सड़कों पर ऐसी ही विश्वास न कर सकने वाली रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली एक इंडियन आर्टिस्ट भाग्यश्री ने बनाई है। ये आर्ट इतनी सुंदर है कि इसके बनते बनते सड़क पर भीड़ ही इकट्ठा हो गई। ये 20 फुट ऊंची रंगोली भाग्यश्री ने 4 घंटे में बनाई थी। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भाग्यश्री सड़क पर बैठकर पहले से बनाई आकृति में सावधानी से रंग भरते दिखाई दे रही हैं, जबकि आसपास के लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनकी आर्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं। दरअसल ये जापानी महिला की आकृति है जो पारंपरिक किमोनो पहने हुए है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है।

0: बनारस के घाट सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति परंपरा और अध्यात्म का प्रतीक भी माने जाते हैं। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान करने और पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं, लेकिन कई बार लोग भक्ति तो करते हैं मगर सफाई जैसी जरूरी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो में एक विदेशी युवक बनारस के घाटों पर फैला कूड़ा अपने हाथों से साफ करता नजर आ रहा है। विदेशी युवक बिना किसी दिखावे के लगातार घाट को साफ करता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो एक शादी के दौरान का है, जिसमें देखा जा सकता है कि शादी के बाद एक दुल्हन की विदाई हो रही है। विदाई के समय धान या चावल फेंकने की रस्म निभाई जा रही है। पीछे खड़ी उसकी माँ अपने आंचल को फैलाकर उसे रोकने का काम कर रही है। बेटे की विदाई पर रो रही माँ इस रस्म को बहुत ही दुखी होकर निभा रही है। अब तक माहौल पूरा दुख भरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी हुआ उसे देख किसी के लिए भी अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो जाएगी। दरअसल इस रस्म के दौरान जब दुल्हन अपने हाथ से पीछे की तरफ बिना मुड़े धान या चावल को फेंकती है तो उसमें से कुछ दाने उछलकर उसकी माँ के मुंह में चले जाते हैं, जिसके बाद माँ का रोना धोना तुरंत बंद हो जाता है और वो अपने मुंह से धान के दानों को निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है। इस वक्त कैमरे का फोकस दुल्हन की माँ के मुंह पर होता है, जहाँ दुल्हन की माँ का ये रिएक्शन देख लोगों की हंसी छूट जाती है। जब पारा आसमान छूने लगे और सूरज आग उगलने लगे तो अच्छे अच्छों की बारात निकालने की हिम्मत नहीं होती, मगर इंडिया में जुगाड़ का सिक्का चलता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारातियों ने गर्मी का ऐसा तोड़ निकाला है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाएं। अक्सर शादियों में आपने नाच गाना और बैंड बाजा देखा होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही निराला है। बराती ठंडी हवा के झोंकों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक छोटी सी ट्रॉली पर बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सड़क पर कूलर चलेंगे कैसे, तो भाई इसका भी सॉलिड इंतजाम है। कूलर को पावर देने के लिए साथ में एक पोर्टेबल जनरेटर भी फिट किया गया है, मतलब बारात जहाँ जहाँ जा रही है ठंडी हवा का पूरा काफिला साथ ही चल रहा है। देश को समर्पित कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलते हैं, जहां भारतवासियों की देशभक्ति लोगों को प्रेरणा देने का काम करती है। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक लोको पायलट की देशभक्ति को पूरा इंटरनेट सलाम कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लोको पायलट अपनी ट्रेन की यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन पर लगे तिरंगे को बड़े ही सम्मान के साथ साफ करते हुए नजर आया। लोको पायलट ट्रेन के अगले हिस्से पर लगे तिरंगे को ट्रेन के ऊपर खड़े होकर वाइपर और पानी से धोते हुए नजर आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन के इंजन पर लगे तिरंगे को बिल्कुल साफ कर देता है, तब जाकर वो अपनी ट्रेन लेकर कहीं आगे बढ़ता है। भले ही ये काम लोगों को छोटा सा लगे, लेकिन इसके पीछे उस लोको पायलट की भावना बहुत ही गहरी है। देशभक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े आयोजन कर अपनी देशभक्ति को साबित करें। लोगों के ऐसे रोज की छोटी छोटी जिम्मेदारियों के पीछे भी देशभक्ति झलकती है। पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध बाली के उलुवातु मंदिर में एक बार फिर बंदरों की शरारत ने भारतीय महिला पर्यटक को बुरी तरह परेशान कर दिया। बंदर ने महिला के चेहरे से सीधे चश्मा छीन लिया और भाग निकला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला की चीख और बंदर की चालाकी देखकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर इन दिनों वाइल्ड लाइफ का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे दोस्त हो तो ऐसे। जंगल के राजा कहे जाने वाले शेरों को अपनी ताकत पर बड़ा गुमान था, लेकिन भैंसों की गैंग ने मिनटों में उसका गुरु मिट्टी में मिला दिया। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि शेरों का एक पूरा कुनबा एक अकेले भैंस को घेर कर खड़ा है। शेर उस पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। कोई पीठ पर सवार है तो किसी ने टांगे दबोच रखी हैं। ऐसा लग रहा था कि अब इस भैंस का काम तो तमाम है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। लेकिन भैंसा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने आए एक शेर को जोरदार सींग मारकर हवा में उछाल दिया। हालांकि 3-4 शेर लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसे नोच रहे थे। जब लगा कि अब भैंसा थक जाएगा, तभी जो हुआ वो देखने लायक था। अचानक दूर से धूल का गुब्बार उठा और भैंस के करीब एक दर्जन साथी गैंगस्टर की तरह वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को मुसीबत में देख बाकी भैंसों ने न आओ देखा न ताओ और शेरों पर हमला बोल दिया। नजारा ऐसा था कि भारी भरकम भैंसे शेरों को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। शेरों को भी समझ में आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, खिसक लेने में ही भलाई है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial free on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार धीरेन्द्र शास्त्री अपने किसी बयान या फिर अपने किसी दावे को लेकर सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार वो 21 दिन की विशेष साधना को लेकर चर्चा में है। इस साधना के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ पहुंचे हैं, जहां वो अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के तट पर मौजूद काक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में कठिन साधना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो 26 से 23 मई तक बद्रीनाथ धाम में ही श्रद्धालुओं को कथा भी सुनाएंगे।

0: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और जाने माने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में हैं, जहां 21 दिनों की कठिन साधना कर रहे हैं। उनकी ये आध्यात्मिक साधना अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के तट पर मौजूद खाक चौक आश्रम में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में हो रही है। बताया जा रहा है कि साधना के दौरान उनके साथ कुछ चुनिंदा सेवादार ही रहेंगे और साधना स्थल को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
1: आने वाला जो समय है 15 मई से अधिक मास का हो रहा है, ऐसे अधिक मास में खासकर बद्री विशाल का जब अधिक मास से खास संबंध होता है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है बद्रीनाथ धाम में एक महीना जो अधिक मास का होता है, खासकर जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो इसमें बद्रीनाथ धाम में जप तप पूजा पाठ भागवत कथा अनेकों श्रवण करने का मौका मिलता है। ऐसे में खुद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे हनुमान कथा का आयोजन भी करेंगे।
0: पिछले 3 सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, जहां पहले वो भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर कांच चौक आश्रम पहुंचते हैं। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां वो इन दिनों साधना में लीन है। ये पहली बार है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने लगातार 12 साल तक कथा, दिव्य दरबार और धार्मिक आयोजनों के बाद इतना लंबा ब्रेक लिया है, और वो भी 21 दिनों की कठिन साधना के लिए। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि 17 मई से अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हो रही है। इस दौरान ईश्वर की साधना बहुत फलदायी मानी जाती है।
2: भगवान के सानिध्य हो जाना पुरुषोत्तम मास में बहुत लाभ की बात होती है। भगवान की कथा सुन लेना पुरुषोत्तम मास की, भागवत की या शिव पुराण की ये कथा सुन लेना बड़े लाभ की बात समझते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य ये पौराणिक है, पुराणों से निकला है, स्कंद पुराण का हिस्सा है, इसे पढ़ना चाहिए। न पढ़े तो अपने इष्ट मंत्र जो भी आपका ओम नमो भगवते वासुदेवाय है या जो भी मंत्र आपका है, तो उस मंत्र का जप करना चाहिए। ये बहुत गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि भगवान ने इसे पुरुषोत्तम कहा है, अपने शरण दी है, ये पुरुषोत्तम मास है। इसमें किए हुए धर्म कर्म अनंताय प्रकल्पते, लंबे समय तक लाभकारी होते हैं।
0: पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की देवभूमि में मौजूदगी से उनके समर्थक और अनुयायी बेहद उत्साहित हैं। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब वो हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, तो उनके स्वागत में कई लोग पहुंचे। इनमें से किसी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, किसी ने दंडवत होकर प्रणाम किया और किसी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया।